मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर एक छोटे से वक्फे के बाद एक बार फिर मैं फेरोज़ आप तमाम सुनने वालों का शानदार इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम भोर सुहानी में। वक्त हो चुका है हमारे स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक ठीक सुबह के 5:36 और 35 सेकेंड। महफिल सजी है आपकी अपनी पसंदीदा भोर सुहानी की, और भोर सुहानी में हम एक नई सुबह में कदम रख चुके हैं, एक नए दिन का आगाज कर चुके हैं। और अगर हम अपने स्टूडियो की खिड़की से देखें तो धूप हल्की हल्की सूरज निकलने लगी है, और बिल्कुल बहुत ही खूबसूरत ये दृश्य है। इस वक्त जब आप इसको देखते हैं सुबह की रोशनी, तब ऐसा लगता है कि ये दिन बेहद प्यारा बहुत ही खूबसूरत है। और एक नई उमंग के साथ आप अपनी ज़िंदगी को आज के इस नए सफ़र पर लेकर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों कहते हैं कि ज़िंदगी एक ऐसा सफ़र है जिसमें कभी खुशियों की बारिश होती है तो कभी गमों के बादल छा जाते हैं। लेकिन जो लोग

सीखने का, कुछ बेहतर करने का और अपने ख्वाबों को नई परवाज देने का। इसलिए मायूसी को अपने करीब मत आने दीजिए और उम्मीद का दामन हमेशा थामे रखिए। आज का ये अगला बेहद खूबसूरत नगमा इसी पैगाम को अपने अल्फाज और सुरों में समेटे हुए हैं। गजल के जादूगर जगजीत सिंह साहब की बहुत ही दिलकश आवाज में ये गीत हमें याद दिलाता है कि जिंदगी कि हर घड़ी को मुस्कुराकर जीना ही सबसे बड़ी नेमत है। तो आइए इसी बेहद खूबसूरत नगमे के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर गौर सुहानी की इस बहुत ही खूबसूरत महफिल में।

जगजीत सिंह साहब की आवाज में ये नगमा था फिल्म राही से। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर भोर सुहानी की इस दिलकश महफिल में मैं हूं आपके साथ फेरोज। दोस्तों कहते हैं कि जिंदगी एक मुसलसल सफर है, एक सफर में कभी आसान राहें मिलती है तो कभी ऐसे मोड़ आते हैं जहां हर तरफ इम्तहान नजर आते हैं, मगर कामयाब वही होते हैं जो हालात से घबराते नहीं बल्कि अपने हौसलों को और बुलंद कर लेते हैं। इंसान की असली पहचान उसकी दौलत या शोहरत से नहीं बल्कि उसके जज्बे, सब्र और हिम्मत से होती है। जब मंजिल दूर लगे, रास्ते वीरान दिखें और दुनिया साथ छोड़ती महसूस हो, तब अपने दिल की आवाज सुनिए, वह आपको आगे बढ़ते रहने का हुक्म देती है, वह आपको आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देती है। जिंदगी का पैगाम भी यही कि रुकना नहीं, थकना नहीं बल्कि अपने मकसद की तरफ बढ़ते रहना है। हर ठोकर एक सबक है, हर मुश्किल एक शिक्षा और हर संघर्ष एक नई कामयाबी की दस्तक। इन्हीं खूबसूरत जज्बों को अपने सुरों में समेटे हुए हैं अगला ये नगमा फकीरा फिल्म का। ये जोश और हौसले से भरपूर गीत अपनी दमदार आवाज से सजाया है महेंद्र कपूर साहब ने। तो आइए अपने दिल में उम्मीद की शमा रोशन करें, हिम्मत को अपना हमसफर बनाएं और हर रुकावट को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ने का हौसला जुटाएं। मंजिल उन्हीं के कदम चूमती हैं जो सफर की मुश्किलों से डरते नहीं, चलते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने ख्वाबों की ताबीर तक पहुंचने का यकीन बनाए रखिए इस नगमे के साथ।

फकीरा फिल्म के इसी नगमे के साथ मुझे यानी फिरोज को अब दीजिए भोर सुहानी से इजाजत। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे अगला कार्यक्रम, तब तक के लिए नमस्कार, फिर होगी हमारी मुलाकात।

ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 30वीं तिथि, तदनुसार 20 जून 2026 सुबह के 5:53 और 44 सेकेंड हुए हैं। हमारे प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं इस वक्त आप 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए अब हम आपको ये बताते हुए आगे बढ़ें कि आज प्रातःकालीन सभा में आप कौन कौन से कार्यक्रम सुन सकते हैं। तो हमसे कुछ ही देर बाद यानी ठीक 6 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार और 6:05 पर अंग्रेजी में समाचार आप सुनेंगे। छः बजकर 10 मिनट पर आप सुनेंगे कार्यक्रम भक्ति संगीत का यह कार्यक्रम अर्पण, जिसे लेकर आपके बीच रहेंगी सुरती। और 6:44 पर आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस गान, जिसमें आप सुन पाएंगे बालकांड भाग 97। 6:55 का वक्त होगा संस्कृत में समाचारों का और 7 बजे एक बार फिर से आप हिंदी में समाचार सुनेंगे और 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार।

7:10 पर आप सुनेंगे गोल्ड सुप्रभात। और 7:30 पर आप सुनेंगे आज सवेरे। 8 बजे का समय होगा समाचार प्रभात का।

0: और 8:15 पर आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार और 8:30 पर उर्दू में समाचार आप सुनेंगे। और 8:45 पर वक्त होगा म्यूजिकल दिल लगी का, जिसे लेकर आपके बीच रहेंगी सुरति जिंदल। अब वक्त हो रहा है समाचारों का, आइए सुनते हैं समाचार।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल और ओडिशा के दौरे पर रहेंगे। ओडिशा में वे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 68वें जन्मदिन के मौके पर उनसे मुलाकात करेंगे। इसके बाद दोनों नेता एक जनसभा को संबोधित करेंगे। ये जनसभा ओडिशा सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित की जा रही है। पश्चिम बंगाल की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री हुगली के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस के समारोह में भागीदारी करेंगे। कोलकाता के रेड रोड पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे और देश में निर्मित 3 युद्धपोत दुनागिरी, अग्रय और संशोधक राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री लगभग 590 करोड़ रुपए की लागत की रेल परियोजनाओं, हावड़ा में 300 बिस्तरों वाले नए रेलवे अस्पताल और पूर्वी मिदनापुर में एक रेल ओवर ब्रिज सहित कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री 315 किलोमीटर से अधिक दूरी की प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 49 ग्रामीण सड़क परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में एक समारोह में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन में तेजी लाना और सभी क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करना है। श्री मोदी ने कहा कि इस योजना का लक्ष्य पहली बार रोजगार पाने वालों को सशक्त बनाना और युवाओं तथा उद्योग के बीच सेतु का निर्माण करना है।
2: दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके। और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ।
1: देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र ओडिशा के झारसुगुड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस कोयला गैसीकरण परियोजना की आधारशिला रखेंगे। ये परियोजना BHEL की स्वदेशी रूप से विकसित कोयला गैसीकरण तकनीक का उपयोग करके प्रतिदिन 2,000 टन अमोनियम नाइट्रेट का उत्पादन करेगी। सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि तय फुटपाथ पर चलने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि किसी नागरिक का तय किए गए फुटपाथ पर चलने का मौलिक अधिकार प्राथमिक है और मोटर वाहनों की आवाजाही की तुलना में इसे प्राथमिकता दी जाएगी। न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार सहित अनुच्छेद 19 और अन्य मौलिक अधिकारों के अंतर्गत गारंटीकृत आवाजाही के अधिकार का हिस्सा है। एक दुखद मोटर दुर्घटना के क्षतिपूर्ति मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला सुनाया। अपने 5 वर्षीय पुत्र को पिता द्वारा स्कूल

0: बताते समय कथित दुर्घटना में बच्चे की मौत हो गई थी। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने विश्व के मौजूदा अस्थिर दौर में राष्ट्रीय हितों, रणनीतिक स्वायत्तता और विविध मतों के साथ संतुलन बनाए रखते हुए सभी देशों के साथ बेहतर संबंधों पर बल दिया। कल शाम नई दिल्ली में भारत अमेरिका फोरम को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने जटिलताओं और चुनौतियों का सामना करते हुए विभिन्न क्षेत्रों में भारत और अमरीका की साझेदारी मजबूत करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि प्रगति के साथ साथ भारत के हितों का भी विस्तार होगा और विविधता बढ़ेगी। वरिष्ठ नौकरशाह विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय कार्रवाई कार्यबल का उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के गाइल्स थॉमसन का स्थान लेंगे। श्री अग्रवाल वर्तमान में संस्कृति मंत्रालय में सचिव हैं। वे वित्तीय कार्रवाई कार्यबल में भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व कर चुके हैं तथा धन शोधन और आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने पर अंकुश रखने वाली वैश्विक संस्था के साथ महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं। 17-19 जून के दौरान कार्यबल की पूर्ण बैठक में ये निर्णय लिया गया। विदेश मंत्रालय ने श्री अग्रवाल के चयन को भारत के लिए एक बड़ी विजय बताया है। मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस नियुक्ति से आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने और गैर कानूनी वित्तीय नेटवर्क के खिलाफ संघर्ष की बात की भारत की प्रतिबद्धता मजबूत होती है। श्री गाइस थॉमसन को कार्यबल का अगला अध्यक्ष नियुक्त किए जाने का निर्णय हुआ है। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज दोपहर चेन्नई के एम ए चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। मेजबान टीम 2-0 की बढ़त के साथ पहले ही श्रृंखला अपने नाम कर चुकी है। दोहा डायमंड लीग में भारत के जेवलिन खिलाड़ी नीरज चोपड़ा कतर में चौथे स्थान पर रहे। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Subhadra Ramachandran. Prime Minister Narendra Modi will be on a visit to Odisha and West Bengal from today. In Odisha, he will join President Draupadi Murmu at Pahadpur village in Mayurbhanj district on the occasion of the President's 68th birthday. The President and Prime Minister will visit Pahadpur village in Mayurbhanj district and offer prayers at sacred groves Santhali Jahera and Ho Jahera Skill Center and Pahadpur School. Later, they will participate in a program at Rai Rangpur in Mayurbhanj district, marking the completion of 2 years of the Mohan Charan Majhi-led state government. During the program, they will inaugurate and lay foundation stone of various development projects worth over 47,000 crore rupees. During his 2-day visit to West Bengal, Prime Minister Modi will participate in Pashchim Banga Divas, West Bengal Day, celebrations at Tarakeshwar in Hooghly district today. He is also scheduled to launch, dedicate to the nation and lay the foundation stone of multiple development projects in West Bengal. Mr. Modi will release the 23rd installment of the Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi, PM Kisan. Tomorrow, Prime Minister Modi will participate in the 12th International Yoga Day celebration in Kolkata at around 6:30 a.m. Senior Indian bureaucrat Vivek Agarwal has been selected as the next Vice President of the Financial Action Task Force, FATF, for the 2026-27 term. He will succeed Giles Thompson of the United Kingdom. Mr. Agarwal, currently serving as Secretary in the Ministry of Culture, earlier headed the Indian delegation to the FATF and played a key role in India's engagement with the Global Anti-Money Laundering and Counter-Terror Financing Watchdog. That decision was taken during the FATF plenary held from 17th to 19th of June. The Ministry of External Affairs has termed Mr. Agarwal's selection a major win for India. In a social media post, the ministry said the appointment reinforces India's commitment to combating terrorism, financing and illicit financial networks. It added that Mr. Agarwal's experience as former head of India's FATF delegation and former director of FIUIND will help advance the FATF's mandate of safeguarding financial integrity. External Affairs Minister Dr. H. Jayashankar has stressed that India must optimize relationships across geographies while pursuing its national interests, strategic autonomy and multipolarity in a turbulent world. Speaking at the India

ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। आप सभी सुन रहे हैं भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम अर्पण, और आज अर्पण में आपके साथ हूं मैं सुरति। सुप्रभात। आइए प्यारी सी सुबह को भक्तिमय बनाएं और भगवान का नाम लेकर एक प्यारी सी शुरुआत करें। तो मिलकर कहते हैं जय श्री राम, और इस भजन के साथ करते हैं अर्पण की शुरुआत।

अच्छे लोगों का स्वभाव शून्य के जैसा होता है, जैसे शून्य की यूं तो कोई कीमत नहीं होती, लेकिन शून्य जिस गिनती के साथ होता है उसकी कीमत बढ़ जाती है। तो इसीलिए ऐसे बनिए कि लोग आपको याद करें और आपकी कीमत को महसूस करें।

कर्म की मार इतनी भारी और भयंकर होती है कि हमारा जमा हुआ पुण्य कब समाप्त हो जाए पता ही नहीं चलता। पुण्य समाप्त होने पर समर्थ राजा भी रंक बन जाता है, इसलिए कभी किसी के साथ छल कपट करके किसी की आत्मा को दुखी नहीं करना चाहिए।

जब हम जीवन में किसी का भला करते हैं तो हमारा लाभ होता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि भला का उल्टा है लाभ। और जब हम किसी पर दया करते हैं तो वो हमें याद जरूर करता है, क्योंकि दया का उल्टा है याद। तो हमेशा याद रखिए कि लोगों का हमें भला करना है और इंसानियत के नाते सब पर दया करनी है।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीद

उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 26 जून तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की

भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम अर्पण में आप सभी भजनों का आनंद ले रहे हैं मेरे यानी सुरति के साथ। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं एक और बहुत ही प्यारे से भजन की ओर।

उच्च विचार इंसान को बड़ा बनाते हैं और तुच्छ विचार इंसान को छोटा। तो इसलिए अगर हमें बड़ा बनना है तो अपने विचारों को उच्च, अच्छा और सर्वोच्च ही रखना चाहिए।

अर्पण में फिलहाल बस इतना ही। इसी के साथ वक्त हो गया है अब श्री रामचरित मानस गान का, तो आइए सुनते हैं अब श्री रामचरित मानस का अगला भाग एफएम गोल्ड पर।

श्री राम के हाथों जब पल भर में शिवजी का धनुष टूट गया तो आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी, पृथ्वी पाताल तथा स्वर्ग लोक में सुयश फैल गया कि श्री राम ने शिव का धनुष भंग करके सीता का वरण कर लिया है। देवलोक भी नृत्य गीत के स्वर से झंकृत होने लगे। सीता जी ने श्री राम के गले में जयमाला पहना दी। सखियां कह रही हैं, सीते स्वामी के चरण छुओ, किंतु सीता से ऐसा करते नहीं बनता। उन्हें गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या का स्मरण हो आया और वो मानो भयभीत हो गईं। सीता जी की अलौकिक प्रीति जानकर श्री राम मन ही मन मुस्काने लगे, किंतु उपस्थित राजाओं में से अनेक ईर्ष्या द्वेष से जल उठे। किसी ने कहा कि दोनों कुमारों को बांधकर सीता को छीन लो, हमारे जीते जी सीता को अन्य कैसे ब्याह सकता है। किंतु वास्तविकता तो ये थी कि वे गाल बजा रहे थे। उनका बल, प्रताप, वीरता, तेज सभी तो धनुष भंग होते ही लुप्त हो गए थे। उनकी ऐसी दुष्ट बुद्धि है, तभी तो उनके चेहरों पर कालिक पुत गई। राजाओं के दुर्वचन सुनकर लक्ष्मण के नेत्र लाल और भौहें टेढ़ी हो गईं। उसी समय धनुष भंग का निनाद सुनकर क्रोधी परशुराम वहां आ पहुंचे।

0: तो आप सभी सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान और इसी के साथ अब वक्त हो गया है समाचारों का। थोड़ी देर में आप सभी सुनेंगे संस्कृत में समाचार, उसके बाद हिंदी में समाचार और फिर अंग्रेजी में समाचार। ठीक 7:10 पर सुनना ना भूलिएगा योग पर आधारित हमारी विशेष श्रृंखला आज का आसन, जिसमें आप जानेंगे पवन मुक्तासन के बारे में और उसके बाद सुनेंगे प्रोग्राम गोल्ड सुप्रभात मेरे यानी सुरति के साथ। लेकिन आइए अब सुनते हैं संस्कृत में समाचार एफएम गोल्ड पर।
1: इयम आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधिः झाः। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य ओडिशा पश्चिम बंगयोः प्रवासे भविष्यति। ओडिशायाः मयूरभंज मंडले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वर्यायाः 68वें जन्म दिवसोत्सवे प्रधानमंत्री तया सह पहाड़पुर ग्रामे सम्मिलितो भविष्यति। तदनन्तरं तौ नेतारौ ओडिशा राज्ये मोहन चरण माझी प्रशासनस्य वर्षद्वयस्य कार्यकाल पूर्त्यवसरे एकां विशाल जनसभां संबोधयिष्यतः, यत्र हि 47,000,000,000,000,000 रूप्यकाणां विकासात्मक परियोजनानां शुभारंभो भविष्यति। पश्चिम बंगे प्रधानमंत्री पश्चिम बंग दिवसावसरे भागं ग्रहीष्यति, यत्र हि अनेकासां प्रणालीनां शिलान्यासं उद्घाटनं च विधास्यति। अस्मिन्नेव अवसरे प्रधानमंत्री पीएम कृषि सम्मान निधिं प्रसारयिष्यति, येन देशस्य 9.44 कोटि कृषकेभ्यः 80.88 लाख कोटि रूप्यकाणि साक्षात् तेषां वित्तकोषेषु स्थानांतरितानि भविष्यन्ति। एनटीए इति राष्ट्रीय परीक्षा संघटनेन प्रख्यापितं यत् श्वः आयोज्यमानायाः नीट यूजी 20-26 पुनः परीक्षायाः निष्पक्षं पारदर्शं च संचालनाय वयं पूर्णरूपेण सज्जाः। परीक्षेयं भारतस्य 150+ नगरेषु विदेशस्य च 14 नगरेषु आयोज्यन्ते। इत्यंतराले एनटीए संस्था परीक्षार्थीनां साहाय्यार्थं एकां आधिकारिक व्हाट्सएप वाहिनीम् अपि निरमात्। संघटनेन स्पष्टीकृतं यत् सर्वे आधिकारिकाः संदेशाः केवलं तस्य प्रमाणीकृत संख्यातः एव प्रेषयिष्यन्ते। सा संख्या वर्तते 9178279802877 इति। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर प्रत्यपादीत यत् अशांत जगति भारतेन स्वकीय राष्ट्रहितस्य रणनीतिक स्वायत्ततायाः अथ बहुध्रुवीयतायाः रक्षणं कुर्वता सहैव विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रैः सह स्वसंबंधाः इतोपि सुदृढाः करणीयाः। नवदिल्ल्यां भारत अमेरिका मंचस्य गोष्ठ्याः सत्रं संबोधयन् डॉक्टर जयशंकरः अवोचत् यत् अनेक जटिलतासु सत्सु अपि भारत अमेरिका देशयोर सहभागित्वं विभिन्नेषु क्षेत्रेषु अविरतं वर्धमानम् अस्ति। तेन सविशेषं प्रकटीकृतं यत् यथा यथा भारतस्य वैश्विक उत्कर्षो भविष्यति तथा तथा तस्य राष्ट्रीय हितानि अपि विशालानि विविधानि च भविष्यन्ति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ह्यः नवदिल्ल्याम् आयोजितस्य एकस्य कार्यक्रमस्य अन्तर्गतं प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजनायां 400+ कोटि रूप्यकाणां प्रोत्साहन राशिं वितरितवान्। एकस्मिन् महत्वपूर्णे निर्णये सर्वोच्च न्यायालयः उदघोषयत् यत् निर्धारिते पदपथि चलनस्य अधिकारः नागरिकस्य मौलिकाधिकारो वर्तते। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा अथ न्यायमूर्ति एएस चंद्रूरकर इत्यनयोः प्रतिपादितं यत् निर्धारित पदपति चलनस्य नागरिकस्य अयं मौलिको अधिकारः प्राथमिकः अस्ति, सहैव यन्त्रीकृत वाहनानां गमनागमनस्य अपेक्षया अस्य प्राथमिकता भविष्यति। फीफा विश्वकप प्रतियोगितायां मैक्सिको दलेन दक्षिण कोरिया दलं 1-0 अंकान्तरालेन पराजितं क्रिकेट क्रीडायां भारत अफगानिस्तानयोः मध्ये तृतीया अन्तिमा च एकदिवसीय स्पर्धा अद्य अपराह्णे चेन्नई नगरस्य एम ए चिदम्बरम क्रीडांगणे भविष्यति। अवधेयं यत् एषः द्वन्द्वः अपराह्णे सार्धैकवादनतः समारप्स्यते। इति वार्ताः।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से ओडिशा और पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। ओडिशा में वे आज मयूरभंज जिले के पहाड़पुर गांव में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से उनके 68वें जन्मदिन पर भेंट करेंगे। इसके बाद राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में मोहन चरण मांझी सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस दौरान वे 47,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। पश्चिम बंगाल के 2 दिन के दौरे में आज प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंग दिवस समारोह में शामिल होंगे। वे राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। श्री मोदी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी करेंगे। कल प्रधानमंत्री कोलकाता में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में भाग लेंगे। देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र ओडिशा के झारसुगुड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस कोयला गैसीकरण परियोजना की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में एक समारोह में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन में तेजी लाना और सभी क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करना है। श्री मोदी ने कहा कि इस योजना का लक्ष्य पहली बार रोजगार पाने वालों को सशक्त बनाना और युवाओं तथा उद्योग के बीच सेतु का निर्माण करना है।
1: दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ।
0: गृह मंत्री अमित शाह आज कोल्हापुर और इचलकरंजी के दौरे पर हैं। वे महालक्ष्मी मंदिर परिसर में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन करेंगे और मंदिर क्षेत्र में पश्चिमी महाराष्ट्र मंदिर विकास योजना के तहत चल रही विकास परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। श्री शाह कोल्हापुर के पुलिस परेड ग्राउंड में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने विश्व के मौजूदा अस्थिर दौर में राष्ट्रीय हितों, रणनीतिक स्वायत्तता और विविध मतों के साथ संतुलन बनाए रखते हुए सभी देशों के साथ बेहतर संबंधों पर बल दिया है। कल शाम नई दिल्ली में भारत अमेरिका फोरम को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने जटिलताओं और चुनौतियों का सामना करते हुए विभिन्न क्षेत्रों में भारत और अमरीका की साझेदारी मजबूत करने पर जोर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने बैंकों, परिसंपत्ति पुनर्गठन कंपनियों और ऋण लेने वालों के बीच साजिश पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। न्यायालय ने डूबे ऋण को निपटाने के तरीके पर भी सवाल उठाए। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति वी मोहन की पीठ ने कहा कि बैंक करदाताओं के पैसे ऋण के रूप में दे रहे हैं, लेकिन वसूलने के प्रभावी उपाय नहीं किए गए हैं। अदालत ने जनता के पैसे के दुरुपयोग पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि इस राशि का उपयोग जनकल्याण में होना चाहिए। वरिष्ठ नौकरशाह विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय कार्रवाई कार्यबल का उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के गाइल्स थॉमसन का स्थान लेंगे। श्री अग्रवाल वर्तमान में संस्कृति मंत्रालय में सचिव हैं। 17 से 19 जून के दौरान कार्यबल की पूर्ण बैठक में यह निर्णय लिया गया। विदेश मंत्रालय ने श्री अग्रवाल के चयन को भारत के लिए बड़ी जीत बताया।

आज ये 20 तारीख और हर साल 20 तारीख को यानी कि 20 जून को दुनिया भर में विश्व शरणार्थी दिवस यानी कि वर्ल्ड रिफ्यूजी डे मनाया जाता है। ये दिन हिंसा, संघर्ष और अत्याचार की वजह से अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर हुए लोगों के साहस, शक्ति और संकल्प को सम्मानित करने के लिए समर्पित है। और अगर हम बात करें इस बार की थीम की, तो इस साल की थीम है शरणार्थियों के साथ एकजुटता। गोल्ड सुप्रभात में फिलहाल बस इतना ही। जाते जाते आइए सुनते हैं एक और प्यारा सा गाना और उसके बाद सुनेंगे समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम आज सवेरे। लेकिन अभी फिलहाल ये बहुत ही प्यारा सा गीत आप सभी के लिए।

0: और इसी के साथ अब वक्त हो गया है कार्यक्रम आज सवेरे का, आइए सुनते हैं अब एफएम गोल्ड पर।
1: समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।

0: नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम आज सवेरे में मैं हूं आपके साथ फरहत नाज और मेरा साथ दे रही हैं मेरी सहयोगी सुभद्रा रामचंद्रन। आज के इस अंक में हम आपको देंगे देश और दुनिया के समाचार और वो सभी जानकारी जिनका है आपसे सरोकार। महानगरों की खबरें होंगी, इतिहास में दर्ज कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं का जिक्र करेंगे, मौसम का हाल जानेंगे और याद करेंगे कुछ जानी मानी शख्सियतों को। तो सबसे पहले एक बार फिर से आप सभी को नमस्कार और सुभद्रा आपको भी मेरा प्यार भरा नमस्कार।
1: Namaskar Farhat, a big hello to you. We welcome all you lovely folks to our Saturday morning edition of our news magazine program, Aaj Savere. As Farhat pointed out, we are going to give you some goodies this morning. Stay with us and enjoy. So Farhat, let's start with some news headlines.
0: जी सुभद्रा, सबसे पहले हम शुरुआत कर लेते हैं पश्चिम बंगाल से जुड़ी यात्रा से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। उड़ीसा में वे आज मयूरभंज जिले के पहाड़पुर गांव में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से उनके 68वें जन्मदिन पर भेंट करेंगे। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री पहाड़पुर में पावन प्राकृतिक स्थल संथाली जहरा और ओ जहरा में प्रार्थना करेंगे। वे कौशल केंद्र और पहाड़पुर विद्यालय भी जाएंगे। इसके बाद राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में मोहन चरण मांझी सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस दौरान वे 47,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत के विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे।
1: ड्यूरिंग हिज टुडे विजिट टू वेस्ट बंगाल, प्राइम मिनिस्टर मोदी विल पार्टिसिपेट इन पश्चिम बंगाल दिवस वेस्ट बंगाल डे सेलिब्रेशंस एट तारकेश्वर इन हुगली डिस्ट्रिक्ट टुडे। ही इज आल्सो शेड्यूल्ड टू लॉन्च डेडिकेट टू द नेशन एंड ले द फाउंडेशन स्टोन ऑफ मल्टीपल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन वेस्ट बंगाल। मिस्टर मोदी विल रिलीज द 23rd installment of the Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi PM Kisan. Under this, more than 18,880 crore rupees will be transferred directly into the bank accounts of over 9.44 crore farmers across the country. And tomorrow, Prime Minister Modi will participate in the 12th International Yoga Day celebration in Kolkata at around 6:30 a.m. He will also commission 3 indigenously designed and built naval ships, INS Dunagiri, INS Sanshodhak and INS Agri at Shyama Prasad Mukherjee Port, Kolkata.
0: और सुभद्रा, वहीं गृह मंत्री की अगर बात की जाए तो अमित शाह आज कोल्हापुर और इचकल करंजी के दौरे पर हैं। वे महालक्ष्मी मंदिर परिसर में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन करेंगे और मंदिर क्षेत्र में पश्चिमी महाराष्ट्र मंदिर विकास योजना के तहत चल रही कई विकास परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। श्री शाह कोल्हापुर के पुलिस परेड ग्राउंड में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे।
1: सीनियर इंडियन ब्यूरोक्रेट विवेक अग्रवाल हैज बीन सिलेक्टेड एज द नेक्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF फॉर द 2026-27 term. He will succeed Giles Thompson of the United Kingdom. Mr. Agarwal, currently serving as secretary in the Ministry of Culture, earlier headed the Indian delegation to the FATF and played a key role in India's engagement with the global anti-money laundering and counter-terror financing watchdog. The decision was taken during the FATF plenary held from 17th to 19th of June. The Ministry of External Affairs has termed Mr. Agarwal's selection a major win for India. In a social media post, the ministry said the appointment reinforces India's commitment.

0: commitment to combating terrorism financing and illicit financial networks.
1: और सर्वोच्च न्यायालय का भी एक फैसला आया है जिसमें फुटपाथ पर चलने वालों के लिए एक अधिकार की बात की गई है. सर्वोच्च न्यायालय का कहना है कि उनका अधिकार एक मौलिक अधिकार है. सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि किसी नागरिक का तय किए गए फुटपाथ पर चलने का मौलिक अधिकार प्राथमिक है और मोटर वाहनों की आवाजाही की तुलना में इसे प्राथमिकता दी जाएगी. न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार सहित अनुच्छेद 19 और अन्य मौलिक अधिकारों के अंतर्गत गारंटीकृत आवाजाही के अधिकार का हिस्सा है. एक दुखद मोटर दुर्घटना की क्षतिपूर्ति मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला सुनाया है. अपने 5 वर्षीय पुत्र को पिता द्वारा स्कूल ले जाते समय कथित दुर्घटना में बच्चे की मौत हो गई थी.
0: The National Testing Agency has said that it is fully prepared for a smooth, fair, transparent conduct of the National Eligibility Cum Entrance Test NEET UG 2026 re-examination, which is scheduled for tomorrow. In a statement, NTA said that the exam will be conducted across 551 cities in India and 14 cities abroad for over 22.79 lakh candidates. The agency noted that more than 2 lakh personnel, including observers, coordinators, police forces and administrators, have been deployed. The NTA noted that multi-layered security framework has been put in place to ensure a fair and transparent examination.
1: भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने बाजार क्षमता बढ़ाने, अनुपालन में आसानी और नियामक व्यवस्था में मजबूती के लिए कई सुधारों को मंजूरी दी है. कल मुंबई में बोर्ड की 214वीं बैठक में सेबी ने मृत निवेशकों के शेयरों के आसानी से हस्तांतरण के उद्देश्य से कानूनी उत्तराधिकारी और दावेदारों को प्रतिभूति अंतरित किए जाने के तरीकों को सरल बनाया. छोटी राशि के दावों के निपटान के लिए त्वरित अंतरण प्रोसेसिंग लागू करने का निर्णय लिया गया. सेबी बोर्ड ने कुछ मामलों में स्थायी खाता नंबर की अनिवार्यता हटाने और सत्यापन को आसान बनाने के लिए QR कोड सक्षम मृत्यु प्रमाण पत्र स्वीकार किए जाने का भी निर्णय लिया है.
0: External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has stressed that India must optimize relationships across geographies while pursuing its national interests, strategic autonomy and multipolarity in a turbulent world. Speaking at the India-US Forum 2026 in New Delhi last evening, Dr. Jaishankar spoke about the deepening India-US partnership across domains even as both nations navigate its issues and complexities. He added that as India rises, its interests will expand and diversify.
1: और अब बात खेल की कर लेते हैं सुभद्रा. भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज दोपहर चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाएगा. ये मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा. मेजबान टीम 2-0 की बढ़त के साथ पहले ही श्रृंखला अपने नाम कर चुकी है. तेज गेंदबाज हर्षित राणा घुटने की चोट से उभरने के बाद अंतिम एक दिवसीय मैच के लिए टीम में है.
0: After cricket, it's badminton. In badminton, India's Ashmita Chaliha stormed into the women's single semi-finals, the Macau Open in China. Ashmita secured her place in the last four with straight game victory over South Korea's Kim Min-sun in the quarterfinals. She will next face South Korea's Park Gae-woon in semi-finals today.
1: और श्रोता, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर जहां हम रुख करेंगे चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता के समाचारों का. तो सुभद्रा से सबसे पहले जानते हैं कि चेन्नई में क्या है आज खास.
0: यस फरहत, स्टार्टिंग विद न्यूज फ्रॉम चेन्नई. यूनियन मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट इन कोऑर्डिनेशन विद द एम्प्लॉईज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन रीजनल ऑफिस ऑर्गेनाइज्ड अ स्पेशल रीजनल प्रोग्राम एट श्री रामचंद्र हॉस्पिटल एंड मेडिकल कॉलेज पोरूर चेन्नई यस्टरडे. द रीजनल इवेंट एट पोरूर वॉज graced by chief guest Shri V. R. Venkatachalam, Chancellor, and Professor Dr. Umar Shekhar, Vice-Chancellor of Sri Ramachandra Institute of Higher Education and Research, SRIHER. The event was attended by 838 participants, including 743 individual beneficiaries, 53 employers, industry association representatives, public representatives, senior state government officials, and EPFO officers and staff. During the function, employers physically handed over 60 new employment letters to newly recruited members. Speaking at the regional event, the chief guest, Professor R. Umar Shekhar, Vice-Chancellor of SRIHER, welcomed the gathering and expressed deep pride in host facilities involvement. We have another news from Chennai. The Aringer Anna Zoological Park in Vandalur will provide free entry to the public on Sunday and Monday as a mark of celebrating Chief Minister C. Joseph Vijay's birthday. Visitors must book tickets online in advance through the zoo's official portal tickets.aazp.in.

0: पुलिसिंग वातावरण प्रदान करने के लिए समर्पित संस्था के रूप में स्थापित किया गया है। इस अवसर पर उपराज्यपाल ने कहा कि ये महिलाओं को बिना किसी डर के शिकायतें दर्ज कराने, न्याय मांगने और सहायता प्राप्त करने के लिए एक सहायक और सुरक्षित वातावरण प्रदान करेगा। वहीं दिल्ली सरकार द्वारा चलाए जा रहे 42 जन कल्याण शिविरों में पहले दिन कल कुल 15,000 नागरिकों ने हिस्सा लिया। इन शिविरों के माध्यम से नागरिकों ने विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी हासिल की। लोग राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, पेंशन, जल कनेक्शन, ई श्रम कार्ड, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना और अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित कार्यों के लिए बड़ी संख्या में शिविरों में पहुंचे। वहीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 की तैयारियां नई दिल्ली नगर पालिका परिषद व्यापक स्तर पर कर रहा है। इसी के अंतर्गत जन सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए नगर पालिका ने कर्तव्य पथ पर पोर्टेबल शौचालय स्थापित किए हैं। एनडीएमसी ने कहा है कि इनका उद्देश्य कार्यक्रम के दौरान लोगों के लिए सुविधाएं सुनिश्चित करना, स्वच्छता के मानकों को बनाए रखना और साफ सफाई को बढ़ावा देना है। तो ये तो थी सुभद्रा राजधानी दिल्ली की खबरें। अब बेंगलुरु में क्या है खास?
1: यस, बेंगलुरु, द कर्नाटका गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड अ 50% कंसेशन ऑन पेंडिंग ट्रैफिक ई चालान फाइंस इन बेंगलुरु फ्रॉम जून 21 टू जुलाई 10। मोटरिस्ट कैन क्लियर आउटस्टैंडिंग वायलेशंस बाय पेइंग हाफ द प्रिस्क्राइब्ड पेनल्टी अमाउंट। अकॉर्डिंग टू बेंगलुरु ट्रैफिक पुलिस, पेमेंट्स कैन बी मेड थ्रू द कर्नाटका वन पोर्टल, द ट्रैफिक मैनेजमेंट सेंटर एंड 12 स्पेशल काउंटर्स अक्रॉस द सिटी। A similar concession scheme introduced earlier helped clear over 41 lakh pending traffic cases and generated more than 120 crore in fine collections. We have another news from Karnataka, Farhad. Karnataka State Level Single Window Clearance Committee, SLSWCC, has approved 55 industrial projects involving investments of 7,506 crore rupees, expected to generate over 28,000 jobs. Industries Minister M.B. Patil said this yesterday. He said 41 projects will be established outside Bengaluru under the state government's Beyond Bengaluru initiative. The approvals include 4 FDI-backed projects from Taiwan, South Korea, Germany and Japan with a combined investment of 314.46 crore rupees. And Harfarhat, Kolkata or Bombay?
0: जी बिल्कुल, मुंबई से सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं सुभद्रा। मॉनसून से पहले मुंबई राज्य आवास निकाय ने मुंबई में 86 बेहद खतरनाक उपकर वाली इमारतों की पहचान की है और अधिकारियों को उनमें रहने वाले लोगों को जल्द से जल्द निकालने और पुनर्वासित करने का निर्देश दिया है। मुंबई भवन मरम्मत और पुनर्निर्माण बोर्ड के अनुसार इन इमारतों में लगभग 2,736 किराएदार और निवासी रहते हैं और विभाग ने बताया कि निवासियों को नोटिस जारी कर दिए गए हैं और बरसात के मौसम में उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्थायी आवास की व्यवस्था भी की जा रही है।
1: And getting to Hyderabad now, Union Minister G. Kishan Reddy attended the Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana PMVBRY program at the RTC Kala Bhavan as the chief guest. Celebrating the successful implementation of this employment linked incentive ELI scheme, the minister lauded the collective efforts of employees and employers in driving national growth. He emphasized that India's vast youth population is its greatest strength, requiring quality education, skill development, and robust employment to transition the country into a developed nation by 2047. Reflecting on recent achievements, Reddy noted that over 3.45 crore youth entered the formal workforce between 2020 and 2025, alongside the distribution of 12 lakh government appointments letters via Rozgar Melas. With a budget of 99,446 crores, PMVBRY aims to incentivize over 3.5 crore jobs over 2 years by offering 15,000 to first-time employees and providing financial support to expanding employers, including extended benefits for the manufacturing sector.
0: और अब बात पश्चिम बंगाल का कर लेते हैं। पश्चिम बंगाल में सक्रिय मानसूनी बादल मौसम में निम्न दबाव व बंगाल की खाड़ी से नमी आने के कारण आज से हिमालय से सटे जिलों में तेज वर्षा हो सकती है। कोलकाता, हावड़ा, हुगली, पूर्वी बर्धवान, पूर्वी और पश्चिमी मेदिनीपुर जिलों में भी आज तेज बारिश होगी। कल कोलकाता उसके आसपास के कई इलाकों और पश्चिम बंगाल के कुछ दक्षिणी जिलों में तेज वर्षा से जलभराव और दार्जिलिंग जिले के कई स्थानों पर भूस्खलन और सिलीगुड़ी को दार्जिलिंग के मिरिक से जोड़ने वाला स्थायी दुधिया लोहे के पुल के ढहने की भी खबरें सामने आई हैं।

0: और श्रोताओं, अब महानगरों के मौसम का रुख कर लेते हैं। सबसे पहले बात राजधानी दिल्ली के मौसम की, तो आज हल्की बूंदाबांदी की संभावना व्यक्त की गई है। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। मुंबई में दोपहर या शाम के समय बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। न्यूनतम तापमान रहेगा 29 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है। पश्चिम बंगाल का तो हम आपको बता ही चुके हैं कि मौसम कैसा रहेगा। आज तेज बारिश की संभावना वहां पर व्यक्त की गई है, लेकिन अगर तापमान की बात करें तो न्यूनतम तापमान वहां पर रहेगा 24 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा।
1: एंड चेन्नई इज एक्सपेक्टेड टू हैव अ जनरली क्लाउडी स्काई विद मॉडरेट रेन। द मिनिमम टेंपरेचर वाज 28 डिग्री सेल्सियस एंड मैक्सिमम विल बी अराउंड 36 डिग्रीज। बेंगलुरु इज एक्सपेक्टेड टू हैव जनरली क्लाउडी स्काई विद लाइट रेन। द मिनिमम टेंपरेचर वाज 22 डिग्री सेल्सियस, मैक्सिमम विल बी अराउंड 29 डिग्री सेल्सियस। हैदराबाद इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू हैव अ पार्टली क्लाउडी स्काई विद द possibility of rain or thunderstorm or dust storm. The temperature will hover between a minimum of 25 degrees Celsius, maximum of 37 degrees Celsius.
0: और सुभद्रा, अब हम इतिहास में दर्ज कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं का जिक्र करेंगे। आज है 20 जून 2026 और आज देश भर में मनाया जा रहा है विश्व शरणार्थी दिवस।
1: Yes, World Refugee Day is observed this day to honor the resilience, courage and contributions of people who have been forced to flee their homes due to conflict, violence or persecution. Established by the United Nations, of course, this serves as a global platform to advocate for the rights and safety of displaced populations worldwide.
0: बिल्कुल सुभद्रा, ये दिवस उन लोगों के साहस, शक्ति और संकल्प के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए मनाया जाता है जिन्हें प्रताड़ना, संघर्ष और हिंसा की चुनौतियों के कारण अपना देश छोड़कर बाहर भागने को मजबूर होना
1: पड़ा। Of course, this was celebrated first in the year 2001. It commemorates the 50th anniversary of the 1951 convention relating to the status of refugees. The UN Refugee Agency, UNHCR, reports that over 117 million people are currently forcibly displaced globally.
0: बिल्कुल, और अब आइए आगे बढ़ते हैं और कुछ और महत्वपूर्ण घटनाओं का जिक्र कर लेते हैं। सन 1858 में आज ही के दिन ग्वालियर के किले पर ब्रिटिश सेना का कब्जा और उसके साथ ही सिपाही विद्रोह का अंत हुआ।
1: 1756, the infamous Black Hole of Calcutta incident took place when 146 British prisoners were held in a cramped, dark dungeon, leading to a high death toll.
0: 1887 में आज के दिन मुंबई स्थित विक्टोरिया टर्मिनस बनकर तैयार हुआ। पहले इसका नाम ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया पर रखा गया। 1996 में नाम बदलकर किया गया छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। ये 19वीं शताब्दी की विक्टोरियन गोथिक वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण था। 2 जुलाई 2004 को यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर घोषित किया और आज ये देश के सबसे व्यस्तम रेलवे स्टेशनों में से एक है।
1: 1863, वेस्ट वर्जीनिया वाज ऑफिशियली एडमिटेड टू द यूनियन एज द 35th यूएस स्टेट। 1948, currency reform in three western zones of Germany was instituted by Allied military governments. Old Reichsmark is invalidated as Deutschmark became the new currency.
0: 1916 में पुणे में आज के दिन SNDT महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई।
1: 1963, the red telephone is instituted. The hotline between the US and the Soviet Union was established following Cuban Missile Crisis.
0: 1998 में विश्वनाथन आनंद ने व्लादिमीर कैमनिक को हराकर पांचवां फ्रैंकफर्ट क्लासिक शतरंज टूर्नामेंट जीता।
1: Also in 1975, this day Steven Spielberg's thriller Jaws premiered in theaters, creating the modern summer blockbuster genre. And 1991, German Parliament moves to Berlin from Bonn.
0: सन 2014 में प्रख्यात कवि केदारनाथ सिंह को ज्ञानपीठ पुरस्कार देने की घोषणा की गई। और अब हम बढ़ रहे हैं अपने आखिरी सेगमेंट की ओर, जहां हम याद करते हैं कुछ जानी मानी शख्सियतों को। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं भारत के प्रसिद्ध उद्योगपतियों में से एक लक्ष्मण काशीनाथ किर्लोस्कर की। किर्लोस्कर उद्योग समूह के वे संस्थापक थे। वे विक्टोरिया जुबली टेक्निकल इंस्टीट्यूट मुंबई में अध्यापक नियुक्त हुए। अपने शुरुआती समय में लक्ष्मण काशीनाथ किर्लोस्कर ने एक साइकिल की दुकान खोलकर जीवन संघर्ष प्रारंभ किया। बाद के समय में अपनी मेहनत और कठिन लगन से इन्होंने किर्लोस्कर की कई औद्योगिक इकाइयों की स्थापना की। किर्लोस्कर ने जीवन में पहली बार एक व्यक्ति को साइकिल चलाते हुए देखा तो अपने भाई के साथ मिलकर किर्लोस्कर ब्रदर्स नाम से साइकिल की दुकान खोली और अतिरिक्त समय में साइकिल बेचते, उनकी मरम्मत करते और लोगों को साइकिल चलाना भी सिखाते।
1: And today is the birth anniversary of American playwright Lillian Hellman, who wrote the screenplay for motion pictures as well as Broadway. Her dramas forcefully attacked injustice, exploitation and selfishness, and she has also made several English adaptations of French plays. Hellman's first

0: और श्रोताओं, आज ही के दिन जन्म हुआ था एक कुशल पत्रकार और लेखक गौर किशोर घोष का। विकासशील देशों में ईमानदारी से प्रगतिवादी और प्रभावी लेखन कर पाना न केवल मुश्किल है बल्कि खतरनाक भी था। सरकारों के अलावा दूसरी बहुत सी ऐसी व्यवस्थाएं थीं जो इस तरीके से प्रसारण में अपना अंकुश बनाए रखना चाहती थी, लेकिन गौर किशोर घोष ने अपनी कामयाबी को आगे बढ़कर दिखाया और इनका एक उपन्यास जल परे न पता परे काफ़ी लोकप्रिय रहा। ये एक बंगाली कहानी थी और इस नाम का मतलब था न पानी गिरता है न पत्ता गिरता है, मतलब बिल्कुल शांत, कोई हवा भी नहीं चल रही, बहुत गहरा सुकून या यूं कह लीजिए कि टेंशन वाला माहौल जो है उन्होंने लिखी थी। और ये कहानी उन्होंने लिखी थी जेल में और इमरजेंसी के टाइम पर।
1: And today is the birth anniversary of Ramakant Desai, who represented India in Test cricket as a fast bowler from 1959 to 1968. And also, friends, easygoing, smooth, soulful love ballads means it's Lionel Richie. Yes, friends, a highly versatile musician, skillfully blends multiple musical styles. He started out as a lead singer of the group Commodores, and of course, and then he moved on to become a very successful solo artist. Richie has so many beautiful songs he's recorded, but I have this one for you called, everybody knows this, world famous, global hit. This is called Hello, and Richie turned 77 years of age today. Here goes.

और सुभद्रा, आपको पता है कि स्नोबर्ड के बारे में कहा जाता है कि न धूप चाहिए न गर्मी, इसे ठंडी हवा उसे भाती है, चिरचिर करके गाता है, सबको खुशी सुनाती है।

0: तो खुशी भरे इस गीत के बाद अब एक और साहित्यकार को याद कर लेते हैं। हिंदी के प्रसिद्ध एकांकिकार, लेखक और कवि थे भुवनेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव। भुवनेश्वर साहित्य जगत का एक ऐसा नाम है जिसने अपने छोटे से जीवन काल में लीक से अलग किस्म का साहित्य सृजन किया। भुवनेश्वर ने मध्य वर्ग की विडम्बनाओं को कटु सत्य के प्रतिरूप में उकेरा। उन्हें आधुनिक एकांकियों के जनक होने का गौरव हासिल है। एकांकी, कहानी, कविता, समीक्षा जैसी कई विधाओं में भुवनेश्वर ने साहित्य को नए तेवर वाली रचनाएं दी। एक ऐसा साहित्यकार जिसने अपनी रचनाओं से आधुनिक संवेदनाओं की नई परिपाटी विकसित की। प्रेमचंद जैसे साहित्यकार ने उनके भविष्य का रचनाकार माना। इसकी एक खास वजह यह थी कि भुवनेश्वर अपने रचनाकाल से बहुत आगे की सोच के रचनाकार थे। उनकी रचनाओं में कालिता बोध है, परंतु आश्चर्यजनक रूप से ये भूतकाल से न जुड़कर भविष्य के साथ ज्यादा प्रासंगिक नजर आती है। कारमा की भूमिका में स्वयं भुवनेश्वर ने लिखा है कि विवेक और तर्क तीसरी श्रेणी के कलाकारों के चोर दरवाजे हैं। उनका ये मानना उनकी रचनाओं में स्पष्टता दर्शाता है। इंसान को वस्तु में बदलते जाने की जो तस्वीर उन्होंने उकेरी, वो आज के समय में और भी अधिक प्रासंगिक हो जाती है।
1: We're going to talk about another novelist, Birthday of Vikram Seth, poet, novelist, travel writer, celebrates his birthday today. We all know that his most famous and celebrated novel is A Suitable Boy, written in 1993. Of course, his next novel, An Equal Music, in 1999, was a love story set in the world of professional musicians. His exceptional contributions to literature have earned him major international and national honors, including the Sahitya Academy Award in 1988, the W.H. Smith Literary Award in 1994, and India's prestigious civilian honor, the Padma Shri, in 2007. Today is also the birthday of American-born Australian actress Nicole Kidman, known for her considerable range and versatility. Besides a whole bunch of hit films, her discography consists of several audio recordings, including one spoken word album, one extended play, and three singles. A five-time Oscar nominee, she is the first Australian actress to win an Oscar for the movie The Hours.
0: और इसके साथ ही वक्त हो चला है आपसे अनुमति लेने का, और कल है योग दिवस। और हम सब जानते हैं कि योग केवल एक व्यायाम नहीं है, बल्कि ये शरीर, मन और आत्मा का संतुलन स्थापित करने का भी मार्ग है। तो हम सब कल

0: प्यारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाए, योग को जीवन का हिस्सा बनाए। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग।
1: करो योग, रहो निरोग। करो योग, रहो निरोग।
0: इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: लो फिर आ रहा 21 जून ला रहा नया संदेश, योग से जीवन बने विशेष। बढ़ती उम्र के साथ योग का साथ न्यारा, योग फॉर हेल्दी एजिंग, ये भरोसा हम सबका प्यारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग। जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग।
1: करो योग, रहो निरोग। करो योग, रहो निरोग।
0: इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: लो फिर आ रहा 21 जून ला रहा नया संदेश, योग से जीवन बने विशेष, बढ़ती उम्र के साथ योग का साथ न्यारा, योग फॉर हेल्दी एजिंग, ये भरोसा हम सबका प्यारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग। जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग।
1: करो योग, रहो निरोग। करो योग, रहो निरोग।
0: इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: लो फिर आ रहा 21 जून ला रहा नया संदेश, योग से जीवन बने विशेष। बढ़ती उम्र के साथ योग का साथ न्यारा, योग फॉर हेल्दी एजिंग, ये भरोसा हम सबका प्यारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग। जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता।

0: यही से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
1: आया खुशियों का पैगाम पीएम किसान।
2: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 20 जून को हुगली पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी करेंगे। इसके तहत 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी। पीएम किसान की इस किश्त के साथ ही किसानों को हस्तांतरित कुल राशि 4,46,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी, जो करोड़ों किसान परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान कर रही है।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा के मयूरभंज में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम बंगाल के हुगली से पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त जारी करेंगे। 9 करोड़ से अधिक किसान होंगे लाभान्वित। वरिष्ठ नौकरशाह विवेक अग्रवाल वित्तीय कार्रवाई कार्यबल के उपाध्यक्ष नियुक्त। भारत ने आतंकवाद वित्त पोषण से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की कल होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले आज राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल। सेबी ने मृत निवेशकों के शेयर उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया आसान बनाई। और भारत और अफगानिस्तान के बीच एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच आज चेन्नई में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से ओडिशा और पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री आज ओडिशा के मयूरभंज जिले के पहाड़पुर गांव में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से उनके 68वें जन्मदिन पर भेंट करेंगे।
4: राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मिलकर पवित्र संथाली जोहरा और हो जोहरा स्थलों पर पूजा अर्चना करेंगे और स्थानीय शिक्षण और कौशल विकास संस्थानों का दौरा करेंगे। इससे आदिवासी समुदायों के सशक्तिकरण के प्रति देश की प्रतिबद्धता जाहिर होगी। इसके बाद दोनों नेता रायरंगपुर में एक बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और ऊर्जा, परिवहन, स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई और औद्योगिक बुनियादी ढांचे जैसे प्रमुख क्षेत्रों में नई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। राष्ट्रपति मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। रायरंगपुर से प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार।
3: पश्चिम बंगाल के दौरे में आज प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंग दिवस समारोह में शामिल होंगे। वे राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी करेंगे। इसके तहत देश के 9 करोड़ 44 लाख किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे अंतरित की जाएगी। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुगली के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में शामिल होंगे और कलकत्ता में रेड रोड पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में नेतृत्व करेंगे। इसी अवसर पर वे 3 स्वदेशी युद्धपोत INS दुनोगिरी, INS संशोधक और INS अग्रय राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री कई महत्वपूर्ण परियोजना का भी उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। कृषि क्षेत्र में श्री मोदी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत करेंगे। संदीपन दास गुप्त के साथ काशफिन नाहर, आकाशवाणी कोलकाता।
3: गृह मंत्री अमित शाह आज कोल्हापुर और इचलकरंजी के दौरे पर हैं। वे महालक्ष्मी मंदिर परिसर में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन करेंगे और मंदिर क्षेत्र में पश्चिमी महाराष्ट्र मंदिर विकास योजना के तहत चल रही विकास परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। श्री शाह कोल्हापुर के पुलिस परेड ग्राउंड में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। वरिष्ठ नौकरशाह विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय कार्रवाई कार्यबल का उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के गाइल्स थॉमसन का स्थान लेंगे। कार्यबल की पूर्ण बैठक में यह निर्णय लिया गया। विदेश मंत्रालय ने श्री अग्रवाल के चयन को भारत के लिए बड़ी जीत बताया है। मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस नियुक्ति से आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने और गैर कानूनी वित्तीय नेटवर्क के खिलाफ संघर्ष की भारत की प्रतिबद्धता मजबूत होती है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के तहत पिछले 12

0: वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज जानकारी सशक्त भारत के संकल्प को साकार करने वाली सरकार की परिवर्तनकारी पहलों के बारे में।
1: पिछले 12 वर्षों में सरकार ने भारत के हाईटेक क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाने का काम किया है। सशक्त भारत के दो महत्वपूर्ण आधार हैं, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का विकास और स्पेस स्टार्टअप्स की तेजी से बढ़ती संख्या। सरकार की नीतियों और फैसलों से सेमीकंडक्टर क्षेत्र में सिर्फ योजनाएं ही नहीं बनी, बल्कि अब निर्माण और डिजाइन से जुड़े कई इकाई भी काम कर रहे हैं। दिसंबर 2021 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन शुरू किया गया। इसके लिए 76,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। इस योजना के तहत सिलिकॉन फैब, कंपाउंड सेमीकंडक्टर इकाई, असेंबली और टेस्टिंग सुविधाओं तथा चिप डिजाइन के लिए 50% तक वित्तीय सहायता दी गई। साल 2026 में सरकार ने सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 शुरू किया, जिसके लिए 1,000 रुपए का प्रावधान किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य उद्योगों के सहयोग से शोध और प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करना, नई तकनीकों का विकास करना और भविष्य के लिए कुशल मानव संसाधन तैयार करना है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मिशन 1.0 ने इस जटिल उद्योग की मजबूत नींव रखी है।
2: We have been able to achieve that in the first.
3: हम अपने सेमीकंडक्टर मिशन के पहले चरण में ये हासिल कर पाए हैं। 75,000 से ज्यादा इंजीनियर इस क्षेत्र में प्रशिक्षित हो चुके हैं। 300 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज छात्रों को चिप डिजाइन करना सिखा रही हैं। और भारत में 2 नैनोमीटर चिप्स डिजाइन की जा रही हैं, जो दुनिया की सबसे एडवांस चिप्स हैं। इनमें एनवीडिया और इंटेल की चिप्स भी शामिल हैं, और ये सभी अब भारत में ही डिजाइन की जाती हैं।
2: They are all designed in India now.
1: वहीं भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 ने निजी कंपनियों को अंतरिक्ष क्षेत्र में पूरी तरह काम करने की अनुमति दी है। अब निजी संस्थाएं रॉकेट लॉन्च, उपग्रह निर्माण और संचालन, डेटा संग्रह और वितरण तथा ग्राउंड स्टेशन जैसी गतिविधियां कर सकती हैं। इस नीति के बाद भारत में स्पेस स्टार्टअप्स की संख्या 2014 में केवल 1 से बढ़कर 400 से अधिक हो गई है। इससे देश की निजी अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को नई गति मिली है। भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था वर्तमान में लगभग $8 अरब से अधिक की है, और अगले 8 से 10 वर्षों में इसके 4 से 5 गुना बढ़कर $40 से $45 अरब तक पहुंचने की संभावना है। आकाशवाणी के साथ बातचीत में अनिल प्रकाश, स्पेस इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ इंडिया के महानिदेशक, ने बताया कि भारत में अब 400 से अधिक स्पेस टेक स्टार्टअप्स हैं।
4: नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्पेस सेक्टर रिफॉर्म, स्पेस की स्थापना और प्राइवेट पार्टिसिपेशन में को बढ़ावा देने वाली नीतियों ने एक नई क्रांति की शुरुआत की है। आज भारत में 400 से अधिक स्पेस टेक स्टार्टअप कार्यरत है, जो सैटेलाइट, लॉन्च व्हीकल, अर्थ ऑब्जर्वेशन और डाटा सर्विस जैसे क्षेत्रों में इनोवेशन कर रहे हैं।
1: सेमीकंडक्टर मिशन की उपलब्धियों और तेजी से बढ़ती निजी अंतरिक्ष क्षेत्र के माध्यम से भारत विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA कल होने वाली नीट UG पुनः परीक्षा से पहले आज राष्ट्रव्यापी अभ्यास संचालित करेगा। परीक्षा से पहले मानक तैयारी के निरीक्षण के लिए ये मॉक ड्रिल की जा रही है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड SEBI ने मृत निवेशकों के शेयरों के आसानी से हस्तांतरण के उद्देश्य से कानूनी उत्तराधिकारी और दावेदारों को प्रतिभूति अंतरित किए जाने के तरीके को सरल बनाया है। कल मुंबई में बोर्ड की 214वीं बैठक में SEBI ने बाजार क्षमता बढ़ाने, अनुपालन में आसानी और नियामक व्यवस्था में मजबूती के लिए कई सुधारों को मंजूरी दी। और अब खेल खबरें। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज दोपहर चेन्नई के MH चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। भारत 2-0 की बढ़त के साथ पहले ही श्रृंखला अपने नाम कर चुका है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
5: धन्यवाद विशाल। टेलीग्राम पर केंद्र सरकार की रोक पर दिल्ली उच्च न्यायालय का फैसला आज के सभी अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। दैनिक जागरण की सुर्खी है टेलीग्राम पर प्रतिबंध सही। फुटपाथ पर पैदल चलना लोगों का मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय का ये निर्णय, दैनिक ट्रिब्यून सहित कई अखबारों में है। इस खबर पर नवभारत टाइम्स ने पहला हक शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, सुरक्षित फुटपाथ केवल सड़क सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा नहीं, ये पर्यावरण और लोगों के सेहत से भी जुड़ा है। पाकिस्तान अपने ही भस्मासुरों का शिकार, आतंकियों की है खुली पनाहगाह, संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि अनुपमा सिंह का ये बयान अमर उजाला में है।
0: धन्यवाद फरहत। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा के मयूरभंज में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम बंगाल के हुगली से PM किसान योजना की 23वीं किस्त जारी करेंगे। वरिष्ठ भारतीय नौकरशाह विवेक अग्रवाल वित्तीय कार्रवाई कार्यबल के उपाध्यक्ष। संयुक्त, भारत ने आतंकवाद वित्त पोषण से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई।

0: For tomorrow, SEBI clears channel for easier transfer of shares to legal heirs of deceased investors. And in men's cricket, India to take on Afghanistan in third and final ODI of series in Chennai this afternoon. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
1: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं शबाना बेगम। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज ओडिशा के मयूरभंज जिले में 47,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत के लिए पीएम किसान स्कीम की 23वीं किस्त जारी करेंगे। भारत के सीनियर अफसर शाह विवेक अग्रवाल को माली एक्शन टास्क फोर्स FATF का नायब सदर मुकर्रर किया गया है। भारत ने दहशतगर्दी को माली मदद फराहम करने की लानत से निमटने के अपने अज़्म को दोहराया है। NTA नीट UG के दोबारा इम्तिहान से पहले आज मुल्क गिर सतह पर मशक करेगी। ये इम्तिहान कल कराया जाएगा। सेबी ने फौत शुदा सरमायाकारों के कानूनी वर्सा को शेयर्स की आसान मुंतकली के तरीक़ेकार की मंजूरी दे दी है। और मर्दों के क्रिकेट में आज दोपहर चेन्नई में सीरीज के तीसरे और आखिरी ODI में भारत का मुकाबला अफगानिस्तान से होगा। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज सुबह ओडिशा का दौरा कर रहे हैं, जहां वो सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू से उनके आबाई ज़िले मयूरभंज में मिलेंगे। जनाब मोदी का यह दौरा सदर जमहूरिया के 68वें यौम पैदाइश और ओडिशा सरकार के 2 साल पूरे होने के मौके पर हो रहा है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी आज देर गए मगरीब बंगाल के शहर हुगली से पीएम किसान स्कीम के तहत 9,44,00,000 किसानों के बैंक खातों के लिए 18,880 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम जारी करेंगे। इसमें मगरीब बंगाल के 45,00,000 से ज्यादा किसानों के खातों में भेजे जाने वाले 900 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम भी शामिल है। पेश है वज़ीर-ए-आज़म के दौरे की खबरें देने वाले हमारे नामानिगार की एक रिपोर्ट।
2: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज 2 रोज़ा दौरे पर मगरबी बंगाल पहुंच रहे हैं। रियासत में BJP के इख्तदार के बाद ये उनका पहला दौरा है। अपने क्याम के दौरान वो हुगली में ताराकेश्वर में मगरबी बंगाल के दिन की तकरीबात में शिरकत करेंगे, कोलकाता के रेड रोड पर बैन अल-अक़वामी योग डे प्रोग्राम की क़्यादत करेंगे और मुल्क ही में तैयार किए गए 3 जंगी जहाज़ों INS दोनागरी, INS संशोधक और INS एग्रे को मुल्क के नाम वक्फ करेंगे। वो बहुत से अहम प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे और संग बुनियाद रखेंगे। जनाब मोदी ज़राअत के शोबे के लिए मगरबी बंगाल में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का भी बाकायदा आगाज करेंगे, जिसके तहत तकरीबन 50,00,000 किसानों को बीमा फराहम किया जाएगा। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मुजीब अख्तर।
1: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल दिवस के मौके पर मगरबी बंगाल के अवाम को मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि इस रोज़ एक ऐसी रियासत का जश्न मनाया जाता है जिसने अदब, मौसीकी, आर्ट, रूहानियत, साइंस, तिजारत और समाजी इसलाह की शक्ल में मुल्क की तारीख में ज़बरदस्त किरदार अदा किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मगरबी बंगाल की तारीख में इस दिन की खास अहमियत है। भारत ने पिछले 12 साल में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के उसूलों के तहत बहुत सी काबिल-ए-ज़िक्र तब्दीलियां की हैं। इस दौरान मोदी हुकूमत ने गरीबों, किसानों, ख़वातीन और नौजवानों की फलाह और उन्हें बाख्तियार बनाने के लिए अहम कदम उठाए हैं। आकाशवाणी का खबरों का शोभा आपके लिए खसूसी फीचर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के पेश कर रहा है। आज हम एक बाख्तियार भारत के तस्वुर के लिए यकसर तब्दीली लाने वाले इकदाम का जिक्र कर रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
3: बाइख्तियार भारत के 2 सबसे अहम सतून सेमीकंडक्टर इको निज़ाम की तश्कील और खला से मुतालिक स्टार्टअप्स की ज़बरदस्त तरक्की है। इस ताज़ा तरीन पॉलिसी से सेमीकंडक्टर इको निज़ाम की उमंगें मैन्युफैक्चरिंग और डिज़ाइनिंग में बदल गई हैं। सेमीकंडक्टर्स कौमी सलामती, इक्तिसादी इस्तेहकाम, डिजिटल खुद मुख्तारी और मुस्तकबिल के मुकाबला जाती रुझान की बुनियाद हैं। ये मिशन दिसंबर 2021 में शुरू किया गया था। 2026 तक हुकूमत ने सेमीकंडक्टर्स मिशन 2M का आगाज़ किया, जिसके बारे में इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी के वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि

0: पहला मिशन इस पेचीदा सनत के लिए बुनियाद के तौर पर कायम किया गया था और मिशन दोयम के तहत इको निज़ाम में गहराई लाई जाएगी। भारत की खलाई पॉलिसी 2023 के तहत प्राइवेट कंपनियों को खलाई सरगर्मियां अंजाम देने की इजाज़त दी गई, जिसमें सैटेलाइट खला में भेजा जाना भी शामिल है। इसके बाद खला से मुतालिक रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स की तादाद में इजाफा हुआ। 2014 में महज एक स्टार्टअप था, जबकि अब इनकी तादाद 400 से ज़्यादा हो गई है। इसकी वजह से मुल्क की प्राइवेट खलाई मईशत में ज़बरदस्त इजाफा हुआ है। आकाशवाणी के खबरों के शोबे से बात करते हुए भारत की खलाई सनत की एसोसिएशन के डायरेक्टर जनरल अनिल प्रकाश ने कहा कि ये कंपनियां इख्तराई तौर पर सरगर्म हैं।
1: पिछले 12 वर्षों में भारत के स्पेस सेक्टर में अभूतपूर्व बदलाव आया है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्पेस सेक्टर रिफॉर्म, स्पेस की स्थापना और प्राइवेट पार्टिसिपेशन में को बढ़ावा देने वाली नीतियों ने एक नई क्रांति की शुरुआत की है। आज भारत में 400 से अधिक स्पेस टेक स्टार्टअप कार्यरत है, जो सेटेलाइट, लॉन्च व्हीकल, अर्थ ऑब्जर्वेशन और डाटा सर्विस जैसे क्षेत्रों में इनोवेशन कर रहे हैं। भारत का पहला सेफ स्पेस टेक यूनिकॉर्न स्काई रूट एरोस्पेस इस परिवर्तन का प्रमाण है।
0: सेमीकंडक्टर मिशन और प्राइवेट खलाई शोबे की पेशरफ्त की शक्ल में एक तरक्की याफ्ता मुल्क की जानिब भारत का सफर जारी और सारी है। अमन यादव की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग।
2: मरकजी वजीर दाखिला जनाब अमित शाह आज कोल्हापुर और इचलकरंजी का दौरा करेंगे। वो महालक्ष्मी मंदिर के अहाते में मुख्तलिफ तरक्याती कामों का इफ्तिताह करेंगे और मंदिर के इलाके में मगरबी महाराष्ट्र मंदिर तरक्याती मनसूबे के तहत शुरू किए गए तरक्याती प्रोजेक्टों का जायजा लेंगे। जनाब शाह कोल्हापुर के पुलिस परेड ग्राउंड में एक अवामी जलसे से भी खिताब करेंगे। बाद में जनाब शाह इचलकरंजी में जनता सहकारी बैंक की नई इमारत का इफ्तिताह करेंगे। जनाब शाह इमदाद बाहमी चीनी मिल को नया नाम दिए जाने और तौसीकारी से मुतालिक एक प्रोग्राम में भी शिरकत करेंगे। जनाब शाह इचलकरंजी में कलपना अवाडे टेक्सटाइल पार्क ग्राउंड में किसानों के एक इज्तिमा से भी खिताब करेंगे। वजीर खारजा डॉक्टर जयशंकर ने जोर देकर कहा है कि भारत को बहरान से दो चार दुनिया में अपने कौमी मफादात, दिफाई खुदमुख्तारी और कसीर कुतबियत को बरकरार रखते हुए ताल्लुकात को मुस्बत बनाना चाहिए। कल शाम नई दिल्ली में भारत अमरीका फोरम 2026 से खिताब करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने बहुत से शोबों में भारत अमरीका शराकतदारी को गहरा करने के बारे में इजहार ख्याल किया, जैसा कि दोनों ममालिक अपने मामलात और पेचीदगियों को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जैसे जैसे भारत तरक्की कर रहा है, इसके मफादात में भी तौसी और तनव्वो पैदा हो रहा है। ये आकाशवाणी है। भारत के सीनियर ब्यूरोक्रेट विवेक अग्रवाल को मालियाती एक्शन टास्क फोर्स FATF का 2026-27 की मुद्दत के लिए नायब सदर मुंतखब किया गया है। वो इंग्लैंड के जिल्स थॉमसन की जगह लेंगे। जनाब अग्रवाल इस वक्त वजारत सकाफत में सेक्रेटरी के फराइज अंजाम दे रहे हैं। इससे पहले वो FATF के लिए भारतीय वफ्द की क्यादत भी कर चुके हैं। 17 से 19 जून के दरमियान FATF के मुकम्मल इजलास के दौरान जनाब अग्रवाल को इस जिम्मेदारी के लिए मुंतखब किया गया। वजारत खारजा ने जनाब अग्रवाल का इंतखाब किए जाने को भारत की बड़ी कामयाबी करार दिया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वजारत ने कहा कि जनाब अग्रवाल की तकरीरी से दहशतगर्दी की माली एयानत और गैर कानूनी माली नेटवर्क और गैर कानूनी मालियाती ढांचों के खात्मे के भारत के अज़्म को मजीद तकवियत हासिल हुई है। इम्तिहानात की कौमी एजेंसी NTA नीट UG 2026 के दोबारा इम्तिहान से पहले आज एक मुल्कगीर मॉक ड्रिल का इनेकाद करेगी। इम्तिहानात को खुशुसलूबी, महफूज और शफाफ तौर से कराए जाने को यकीनी बनाने के मकसद के हिस्से के तौर पर ऐसा किया जा रहा है। पेश एक रिपोर्ट।
0: NTA ने कहा है कि वो नीट UG 2026 के दोबारा इम्तिहान के बिला रुकावट, मुनसिफाना और शफाफ इनेकाद के लिए पूरी तरह तैयार है। ये इम्तिहान कल होना है। एक बयान में NTA ने कहा कि ये इम्तिहान मुल्क के 551 शहरों और बैरून मुल्क के 14 शहरों में मुनक्किद किया जाएगा। तकरीबन 22,79,000 उम्मीदवार इम्तिहान में शरीक होंगे। एजेंसी ने मजीद कहा कि इम्तिहान को मुनसिफाना और शफाफ तौर से कराए जाने को यकीनी बनाने के लिए कसीर सतही सिक्योरिटी निज़ाम नाफिज किया गया है। दोबारा इम्तिहान दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 पर कलम और कागज के तरीकेकार के तहत कराया जाएगा। शिवांग की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग।
2: इसके अलावा दिल्ली हाई कोर्ट ने कल दोबारा इम्तिहान से पहले टेलीग्राम को आर्जी तौर पर ब्लॉक करने के मरकज के फैसले को बरकरार रखा और कहा कि प्लेटफॉर्म का निज़ाम गैर कानूनी मवाद के तेज रफ्तार फैलाव को मुमकिन बनाता है और ये कि महदूद नौयत के दीगर इकदाम इम्तिहान में धोखाधही को रोकने में नाकाम रहे थे। हम अपनी

0: सेबी ने स्टॉक एक्सचेंजों के जरिए खुली मार्केट में अपने फरोख्त किए गए शेयर्स को वापस खरीदने का निज़ाम भी दोबारा शुरू करने का फैसला किया है। ये निज़ाम इस साल 1 अगस्त से दोबारा शुरू हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने बैंकों, असासे की तामीर नौ करने वाली कंपनियों और कर्जा देने वाली कंपनियों के माबेन बकौल उसके गहरी सांठगांठ पर शदीद तशवीश जाहिर की है, जिससे उस तरीके पर शकों को शुबहात पैदा हो जाते हैं जिसके तहत कर्ज नादहिंदगी के मामलात निपटाए जा रहे हैं। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस वी मोहन पर मुश्तमिल एक बेंच ने कल कहा कि बैंक टैक्स दहिंदगान से हासिल किया गया पैसा कर्ज के तौर पर दे रहे हैं, लेकिन इन कर्जों को वापस लेने की अक्सर मौसर कोशिशें नहीं की जा रही। अदालत ने कहा कि उसे सरकारी पैसे के गलत इस्तेमाल पर तशवीश है, जिसे अवाम की बहबूद के लिए खर्च किया जाना चाहिए। योगा का बैनुल अक्वामी दिन 2026 कल पूरी दुनिया में मनाया जाएगा। ये 12वां योगा का बैनुल अक्वामी दिन होगा, जिसका मौजू है सेहतमंद बुढ़ापे के लिए योगा, जो सभी उम्र के लोगों के लिए योगा की अहमियत पर जोर देता है। इस सिलसिले में तकरीबात के हिस्से के तौर पर वजारत सकाफत मुल्क के 100 अहम मकामात पर योगा के बैनुल अक्वामी दिन के ताल्लुक से खसूसी तकरीबात का एहतमाम करेगी। असल तकरीब वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में कोलकाता के तारीखी रेड रोड पर मुनक़िद होगी, जहां वज़ीर आज़म कॉमन योगा प्रोटोकॉल में मुल्क की क़यादत करेंगे। मगरबी बंगाल में खलीज बंगाल से उठने वाले मानसून के सरगर्म बादलों और शदीद रतूबत के सबब हिमालय से मुत्तसिल अजला में आज से इंतहाई शदीद बारिश का इम्कान है। कोलकाता और मज़ाफ़ात के कई इलाकों ने इस मगरबी बंगाल के कुछ जनूबी ज़िलों में कल मूसलाधार बारिश हुई, जिसके सबब लोगों को दिन के मसरूफ़ दफ्तरी औकात में पानी भर जाने की सूरत हाल का सामना करना पड़ा। मर्दों के क्रिकेट में भारत और अफगानिस्तान के दरमियान जारी 3 एक रोज़ा बैनुल अक्वामी मैचों की सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच आज दोपहर चेन्नई के एम ए चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा। ये मैच दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा। मेजबान भारत पहले ही सीरीज में 2-0 से सबकत हासिल किए हुए है और अब वो सीरीज के तीनों मैच को जीतने के मकसद से मैदान में उतरेगा। और अब अखबारात के आईने के साथ हैं मुजीब अख्तर।
1: शुक्रिया शबाना। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के सभी अखबारात ने अलग अलग खबरों को अहमियत दी है। रोना प्रताप ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के मगरबी बंगाल दौरे की खबर को खसूसी तौर पर शाये किया है, जिसके मुताबिक जनाब मोदी आज वहां के दौरे पर रवाना होंगे, जहां वो मगरबी बंगाल दिवस के साथ साथ योगा डे की तकरीब में भी शिरकत करेंगे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश में बैनुल अक़वामी सिकल सेल डे के मौके पर खिताब करते हुए कहा कि सिकल सेल एनीमिया के खात्मे के मिशन के तहत 7 करोड़ अफराद की स्क्रीनिंग हुई है। इस खबर पर रोना प्रताप ने खसूसी तवज्जो दी है। मुल्क दिफाई शोबे में खुद इंसारी की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है और 3 लाख करोड़ रुपये की दिफाई पैदावार नीज 50,000 करोड़ रुपये की दिफाई बरामदात के अहदाफ को वक्त से पहले हासिल कर लिया जाएगा। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने नागपुर में ये बात कही। इस खबर को प्रताप ने पहले सफ़े पर जगह दी है। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर के जरिए दिल्ली के सब्जी मंडी इलाके में अव्वलीन खातून पुलिस स्टेशन के इफ्तिताह की खबर को रोजनामा इनकलाब ने उजागर किया है।
0: आखिर में खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज उड़ीसा के मयूरभंज जिले में 47,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत वाले तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे और संग बुनियाद रखेंगे। वजीर आजम मोदी मगरबी बंगाल के शहर हुगली से 9 करोड़ से ज्यादा किसानों के लिए पीएम किसान स्कीम की 23वीं किस्त जारी करेंगे। भारत के सीनियर अफसर शाह विवेक अग्रवाल को माली एक्शन टास्क फोर्स FATF का नायब सदर मुकर्रर किया गया है। भारत ने दहशतगर्दी को माली मदद फराहम करने की लानत से निमटने के अपने अज़्म को दोहराया है। NTA नीट UG के दोबारा इम्तिहान से पहले आज मुल्कगीर सतह पर मॉक ड्रिल करेगी। ये इम्तिहान कल कराया जाएगा। और सेबी ने फौतशुदा सरमायाकारों के कानूनी वर्षा को शेयर्स की आसान मुंतकली के तरीकेकार की मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।

छोटी छोटी बातें दिल में रखने से बड़े बड़े रिश्ते कमजोर होते हैं, इसीलिए सोच को बड़ा रखना चाहिए और दिल को भी बड़ा। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज पर मेरे यानी सुरदी के साथ। वक्त हो गया है आपके अपने मनपसंद प्रोग्राम का जिसका नाम है म्यूजिकल दिल लगी। एक बहुत ही प्यारे से गाने के साथ करते हैं म्यूजिकल दिल लगी की शुरुआत कुछ ऐसे।

0: जानते हैं, कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
1: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
0: 12 साल विश्वास।

0: सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
2: स्टेज आ गया है। दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
1: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
2: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
1: और विनर्स को क्या मिलेगा?
2: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकेंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
3: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही www.dellytalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
4: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

और अब दिल्ली मेट्रो में रोजाना सफर करने के दौरान भारी भीड़ से बचने के लिए यात्रियों को अपनी सीट मिल जाए, अपनी बोगी मिल जाए, ऐसी सुविधा दिलाने के लिए DMRC ने अब एक खास स्कीम निकाली है जिसमें कि आप पूरे मेट्रो कोच को अपने ग्रुप के लिए रिजर्व कर सकते हो। वाओ। लेकिन उसके लिए एक तय रकम आपको देनी होगी। ये पॉलिसी खास तौर पर किसी बड़े ट्रिप के सफर को आसान बनाने के लिए शुरू की गई है ताकि बाकी यात्रियों को भी परेशानी ना हो, आपका ग्रुप भी आराम से ट्रैवल कर सके। तो इस पॉलिसी का फायदा टूरिस्ट, टूर ऑपरेटर या फिर परिवार के साथ यात्रा करने के लिए उठाया जा सकता है। वहीं स्कूल ग्रुप के लिए भी कम से कम 50 बच्चे और 2 टीचर्स होने चाहिए। ऐसे में जो आपको शुल्क देना होगा, एक कोच की बुकिंग के लिए करीब 8,000 से 18,000 रुपए तक का खर्च देना होगा। और इसके अतिरिक्त अगर कुछ और टैक्सेस हैं, सुविधा शुल्क हैं, तो वो भी आपको देने होंगे। लेकिन ये है कि पूरा ट्रिप आपका होगा और वो बोगी आपकी अगर आप रिजर्व करना चाहें तो। वाह भाई वाह, क्या बात है, क्या अमेजिंग पॉलिसी है ना, काबिले तारीफ। और ऐसे में ट्रैवल करते हुए अगर ये प्यारा सा गाना सुनने को मिल जाए तो क्या कहने। आहा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से ओडिशा और पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री आज ओडिशा के मयूरभंज जिले के पहाड़पुर गांव में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से उनके 68वें जन्मदिन पर भेंट करेंगे।
1: राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मिलकर पवित्र संथाली जोहरा और हो जोहरा स्थलों पर पूजा अर्चना करेंगे और स्थानीय शिक्षण और कौशल विकास संस्थानों का दौरा करेंगे। इससे आदिवासी समुदायों के सशक्तिकरण के प्रति देश की प्रतिबद्धता जाहिर होगी। इसके बाद दोनों नेता रायरंगपुर में एक बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री 47,000 करोड़

0: से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और ऊर्जा, परिवहन, स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई और औद्योगिक बुनियादी ढांचे जैसे प्रमुख क्षेत्रों में नई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। राष्ट्रपति मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। रायरंगपुर से प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार।
1: पश्चिम बंगाल के दौरे में आज प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंग दिवस समारोह में शामिल होंगे। वे राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी करेंगे। इसके तहत देश के 9 करोड़ 44 लाख किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रुपये से अधिक की राशि सीधे अंतरित की जाएगी। प्रधानमंत्री ने आज पश्चिम बंग दिवस पर पश्चिम बंगाल के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल मध्य प्रदेश के जबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगी। इसके बाद राष्ट्रपति मुर्मू रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जाएंगी और 36वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि होंगी। वरिष्ठ नौकरशाह विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय कार्रवाई कार्यबल का उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के गाइल्स थॉमसन का स्थान लेंगे। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस नियुक्ति से आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने और गैर कानूनी वित्तीय नेटवर्क के खिलाफ संघर्ष की भारत की प्रतिबद्धता मजबूत होती है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA कल होने वाली नीट UG पुनः परीक्षा से पहले आज राष्ट्रव्यापी अभ्यास संचालित करेगा। परीक्षा से पहले मानक तैयारी के निरीक्षण के लिए ये मॉक ड्रिल की जा रही है। एक रिपोर्ट।
2: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने कहा है यह परीक्षा भारत के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में 22 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों के लिए आयोजित की जाएगी। एजेंसी ने बताया कि 2 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को तैनात किया गया है, जिनमें परिवेशकों, कोऑर्डिनेटर, पुलिस बल और एडमिनिस्ट्रेटर शामिल हैं। NTA ने कहा कि निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई स्तरों वाली सुरक्षा व्यवस्था की गई है। परीक्षा कल दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक पेन और पेपर मोड में आयोजित की जाएगी। शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड SEBI ने मृत निवेशकों के शेयरों के आसानी से हस्तांतरण के उद्देश्य से कानूनी उत्तराधिकारी और दावेदारों को प्रतिभूति अंतरित किए जाने के तरीके को सरल बनाया है। कल मुंबई में बोर्ड की 214वीं बैठक में SEBI ने बाजार क्षमता बढ़ाने, अनुपालन में आसानी और नियामक व्यवस्था में मजबूती के लिए कई सुधारों को मंजूरी दी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री JP नड्डा ने कल सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा की। इस दौरान TB मुक्त भारत अभियान की प्रगति का आकलन किया गया और आगे की रणनीति तैयार की गई। आकाशवाणी की विशेष श्रृंखला पीपल्स पद्म के अंतर्गत आज आप सुनेंगे सामाजिक कार्यकर्ता और उद्यमी SKM मेलानंदन पर एक विशेष कार्यक्रम। श्री मेलानंदन को उनके उत्कृष्ट सामाजिक योगदान और उद्यमिता के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्यों के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया जाएगा। ये विशेष कार्यक्रम आज सुबह 9:10 पर आकाशवाणी गोल्ड से प्रसारित किया जाएगा। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज दोपहर चेन्नई के MH चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। भारत 2-0 की बढ़त के साथ पहले ही श्रृंखला अपने नाम कर चुका है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज ब्राजील ने हैती को 3-0 से हराकर अपनी पहली शानदार जीत दर्ज की। ग्रुप सी के एक मैच में आज मोरक्को ने स्कॉटलैंड को 1-0 से हराया। इससे पहले ग्रुप डी के मैच में अमरीका ने ऑस्ट्रेलिया को 2-0 से हराकर नॉकआउट चरण में अपनी जगह पक्की कर ली। इस समय ग्रुप डी के एक मैच में तुर्की का सामना पैराग्वे से हो रहा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय सुभद्रा रामचंद्रन। Prime Minister Narendra Modi will be on a visit to Odisha and West Bengal from today. In Odisha, he will join President Draupadi Murmu at Paharpur village in Mayurbhanj district on the occasion of the President's 68th birthday. The President and Prime Minister will visit Pahadpur village in Mayur Bhanj district and offer prayers at sacred groves, Santhali Jahera and Ho Jahera Skill Centre and Pahadpur school. Later, they will participate in a program at Rai Rangpur in Mayur Bhanj district, marking the completion of 2 years of the Mohan Charan Majhi-led state government. During his

हर सुबह की लाली में खुशियों को तू लुटाता चल, हर सुबह ठंडी हवा में अहम का ताप घुलाता चल, हर सुबह पंछी के सुर जैसी उम्मीद को जगाता चल, हर सुबह नीले आकाश से फैलाव को पाता चल, हर सुबह कोई एक नेक काम कर, हर सुबह अपनों के दिल में अपनी जगह बनाता चल, हर सुबह अपनों के दिल में अपनी जगह बनाता चल।

दीवानापन बहुत अच्छी बात है और दीवानापन किसी हद तक अच्छा भी होता है, लेकिन जब दीवानेपन में कोई उल्टे सीधे काम करने लगे, जैसे कि ऐसे ही मस्ती में जाते हुए अपने रैपर को कहीं पे भी फेंक देना, सड़क पे फेंक देना, या फिर ऐसे किसी सार्वजनिक जगह पर, किसी पार्क में या ऐसी जगह पर जहाँ पर लोग आते जाते हैं, वहाँ पर कचरा ऐसे ही मतलब मस्ती में फेंक दें, दीवानेपन में फेंक दें, तो ये अच्छी बात थोड़ी है। इसे दीवानापन नहीं कहते, इसे गलती कहते हैं। सुबह ठंडी हवा में घुली प्राकृतिक खुशबू, ये हर किसी को नसीब नहीं है, कारण है बढ़ता हुआ कचरा। इस समस्या को हम सब मिलकर हल कर सकते हैं। रसोई के कचरे और बाकी के कचरे जैसे कि फ्यूज बल्ब, पैन का खाली रिफिल, इन सबको अलग अलग करके। रसोई का जो कचरा है ना, जैसे कि सब्जियों के छिलके, आपकी चाय की पत्ती, या फिर ऐसी बहुत सारी चीजें जो रोजमर्रा में किचन में इस्तेमाल होती हैं, और वो कचरा हम हरे डिब्बे में डालें तो सही रहेगा। और रासायनिक कचरा यानी कि जैसे हमने कहा ना फ्यूज बल्ब, पैन का खाली रिफिल, या फिर कोई टूटा हुआ कांच का ग्लास, इन सबको नीले डिब्बे में डालें। और कचरा देने से पहले ये सब बताना भी जरूरी होता है कि इसमें कुछ ऐसा सामान है जो आपको लग सकता है, तो उसको अलग रखिएगा। अपने शहर को साफ सुथरा रखना, अपने लोगों को स्वच्छ वायु में जो है वो हवा लेने के लिए प्रेरित करना और ऐसा माहौल भी बनाना, ये हमारा ही तो फर्ज है ना। हो सकता है कोई लोग आपकी बात पहले ना माने कि हम क्यों करें ऐसा, आप क्यों कह रहे हैं, आपको क्या है, क्यों, ये हमारा शहर है और हम सबको एक दूसरे को ये कहने का पूरा हक है कि सफाई रखिए, कचरे

को अलग अलग रखिए, नीले डिब्बे में और हरे डिब्बे में अलग अलग तरह से कचरे को रखिए। और अगर कोई आपकी बात ना माने तो पहले हल्का सा आप उसे डांट के भी कह सकते हैं, आपका हक है। और अगर बात ना माने तो फिर प्यार से भी कह दीजिए, क्योंकि प्यार से तो हर बात हर कोई माने जाता है।

0: पूरा रशिया का जनसंख्या कितना है बताओ? 14 करोड़ जितनी। बहुत बड़ा नंबर है ना? पर बड़ा नंबर तो ये है कि भारत में लगभग इतने ही घरों में लगे हैं नल पिछले 12 सालों में। 16 करोड़ घरों में हर दिन हर मौसम आता है नल से निर्मल जल, जिससे करोड़ों महिलाओं को पानी ढोने से तो मुक्ति मिली ही साथ गाँव में जल व्यवस्थापन की शक्ति भी मिली।
1: जल जीवन मिशन का विजन

0: सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का उसका भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये विलेज ड्रिवन, विमेन ड्रिवन मूवमेंट है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
3: स्टेज आ गया है। दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
2: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
3: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
2: और विनर्स को क्या मिलेगा?
3: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकेंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
2: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही www.delhitalenthunt.com। कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।

101.1 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल प्रोग्राम म्यूजिकल दे लगी मैं आपके साथ भावना। पता है संगीत जो होता है ना वो दिल लगी के लिए तो होता ही है, लेकिन इसके साथ साथ जो नए नए एक्सपेरिमेंट्स होते हैं ना, बहुत ही रोचक सी जानकारी है ये, उनके पीछे भी संगीत का हाथ होता है। संगीत अगर बैकग्राउंड में हो तो हमारे दिमाग में बहुत अच्छे अच्छे विचार आते हैं, ये शोध बताती है। नई नई जो इनोवेशंस हैं वो हो सकती हैं, और इनोवेशन से हमें याद आया अटल इनोवेशन मिशन है जिसकी शुरुआत जो है 2016 में की गई थी। ये बहुत ही खास है, इनोवेशन जो है ना मतलब नवाचार, इसको बढ़ाने के लिए सारी यूनिवर्सिटीज में, स्कूल्स में, MSME तक इनोवेशंस को बढ़ाना, उनकी संस्कृति को बढ़ावा देना, इसका उद्देश्य है कि जितने भी ये 6 से 12 तक के स्कूली छात्र होते हैं ना, उनमें वैज्ञानिक सोच को और नवाचार को बढ़ावा देना मेन मोटिव ये है। मतलब जो हमारी आने वाली पीढ़ी है वो इनोवेटिव हो, उसको वैज्ञानिक तरीके से सोचने की आदत हो जाए, ये इसका मुख्य उद्देश्य है इस योजना का। इसके लिए स्कूल्स में जो है ना 3D प्रिंटिंग, रोबोटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सब की सुविधा और ख़ास तरह की लैब्स स्कूल में छात्रों के लिए उपलब्ध करवाना, इसके अलावा यूनिवर्सिटीज़ में और उद्योगों में भी स्टार्टअप्स को मेंटरशिप जो है वो मिलाना, दिलवाना, आधारभूत संरचना यानी इंफ्रास्ट्रक्चर, वित्तीय सहायता, ये सब जो है उनको प्रदान करना। और जो ख़ास बात है कि मतलब जो राष्ट्रीय महत्व के चैलेंजेस होते हैं ना, चुनौतियाँ होती हैं, मतलब क्या क्या हमारे देश में ऐसा है कि उसको ठीक करने की ज़रूरत है और कैसे उसको ठीक किया जा सकता है, इसके बारे में तकनीकी आधारित नवाचारों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। मतलब जितने भी इनोवेटिव आइडियाज़ उन सब चुनौतियों को उनका सामना करने के लिए जो लिए जा रहे हैं उनको प्रोत्साहित करना, और ना केवल प्रोत्साहित करना बल्कि वित्तीय सहायता भी देना उनको पूरा करने के लिए, और आने वाली पीढ़ी की सोच ऐसी हो, उनके भी दिमाग में वो सब बातें डालना कि अगर हमारे सामने कोई प्रॉब्लम है राष्ट्रीय स्तर की, नेशनल लेवल की, तो उसको किस तरह से हम अपनी इनोवेशन से और नई तकनीकों से उसको ओवरकम कर सकते हैं, उसको पूरा कर सकते हैं, उसका उपचार निकाल सकते हैं, समाधान निकाल सकते हैं। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है इसमें कि Tier 2, Tier 3 ये जो शहर है ना, इनके अलावा जो वंचित शहर हैं या क्षेत्र हैं उनमें भी नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देना, लोगों में ये सोच लाना और मार्गदर्शन करने के लिए उद्यमियों का भी और छात्रों का भी, उनको जो अनुभवी पेशेवर हैं उनके मंच तक पहुँचाना, उनको वो मंच प्रदान करना, मतलब छात्रों को या जो स्टार्टअप्स उद्यमी हैं या फिर जो चाहते हैं उद्यमी सेटल्ड भी हैं, उनको एक ऐसे मंच पे मतलब उनको मंच प्रदान करना, और उन उस मंच पर जो पेशेवर अनुभवी पेशेवर लोग हैं उनको भी लाना, मतलब एक साथ सबको मिला देना ताकि वो क्वेश्चंस भी पूछ सकें और उनको उनके आंसर्स भी मिल सकें। तो मतलब पूरी तरह से हर बच्चे के, हर स्टूडेंट के, हर उद्यमी के, स्टार्टअप्स के जो सोच है ना

वैज्ञानिक सोच हो जाए और प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नए नए इनोवेटिव आइडियाज जो हैं वो भी आए, ये इसकी प्राथमिकता है, उद्देश्य है अटल इनोवेशन योजना।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 26 जून तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
1: पहले कोई विदेश से आता था तो वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर का गुणगान करता रहता था, पर अब हमारे अपने देश के अटल सेतु देखिए, सुदर्शन सेतु, चिनाब रेल ब्रिज, बोगीबील पुल, अटल टनल देखिए, पंबन समुद्री पुल देखिए, ऐसा लगेगा मंजिल भी पास है और सफर भी है सुहाना।
2: 21वीं सदी का भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जिस नए युग में प्रवेश कर रहा है वो अभूतपूर्व है, अकल्पनीय है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: समय मिला लीजिए, 9:45 और 45 सेकंड हो गए हैं। आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 MHz पर। प्रोग्राम है म्यूजिकल तिलकी।

के प्यार का इजहार जब ये सब बातें होती हैं ना, तो हम सीधा 60-70 के दशक में पहुंच जाते हैं। चारों तरफ फूल, हरियाली हरियाली और हाथों में उनका हाथ। आप पूछेंगे कि 60-70 के दशक में जाने की क्या जरूरत है? जरूरत है, क्योंकि आजकल हरियाली बहुत कम नजर आती है, फ्लैशबैक में जाना पड़ता है। बात मजाक में हो रही है लेकिन है गंभीर। इससे पहले कि ये बहुत कम, बिल्कुल कम हो जाए, हमें पेड़ लगा लेने चाहिए। अगर हर एक सिर्फ एक पौधा भी जिंदगी में लगाए और उसे सींच कर फूल बनाए, पेड़ बनाए, तो भी काम बन जाएगा। बस जरूरत है तो अपने मन में ठान लेने की, अपने आप से एक कसम लेने की कि हम ऐसा जरूर करेंगे।

कभी भी कोई अपनों से जुदा ना हो, ऐसा दिन कभी ना आए, लेकिन हिंसा की वजह से, प्राकृतिक आपदाओं की वजह से, युद्ध की वजह से कई बार लोगों को अपनों से, अपनी जगह से, अपने देश से जुदा होना पड़ता है। वर्ल्ड रेफ्यूजी डे है आज, हर साल 20 जून को मनाया जाता है ये। उन सब लोगों के लिए, उनको सम्मान देने के लिए दिन मनाया जाता है जिन्हें अपना घर, अपना देश छोड़ना पड़ा, अपने लोग छोड़ने पड़े, दूर आना पड़ा। उनकी हिम्मत, उनकी ताकत को बढ़ाने के लिए आज का दिन मनाया जाता है। दुनिया भर के शरणार्थियों को साहस देने के लिए, शक्ति और दृढ़ संकल्प का सामना करना जो है उन्हें सिखाने के लिए आज का दिन मनाया जाता है। इसी के साथ साथ मतलब पूरे विश्व में जागरूकता फैलाना कि जो अपनों से दूर हैं उन्हें हमारे प्रेम की, हमारे अपनेपन की, हमारी सहायता की कितनी ज़रूरत है, इस बात का एहसास कराना आज के दिन का उद्देश्य है। तो फिल्म रेफ्यूजी का ये खूबसूरत सा गीत आज सुनते हैं वर्ल्ड रेफ्यूजी डे पर।

0: ये जहाज कहाँ जा रहा है?
1: बेटा, अब तो भारत का हर कोना आसमान से जुड़ रहा है।
2: जब भारत उड़ान भरता है तो उड़ान भरते हैं सपने, जुड़ते हैं शहर, बढ़ते हैं अवसर।
1: पिछले 12 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सक्षम नेतृत्व में विकसित हुए हैं 160 से ज्यादा एयरपोर्ट्स। उड़ान योजना से संभव हुआ है छोटे शहरों तक हवाई संपर्क। डीजी यात्रा से सरल एवं सुगम हुई हवाई यात्रा।
2: नागर विमानन मंत्रालय, विकसित होते भारत की नई उड़ान। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: म्यूजिकल दिल लगी से अब भावना लेती है विदा। मैं कहीं नहीं जा रही, 10:30 बजे दिल का मेल बॉक्स लेकर मैं भावना आपके साथ ही रहूंगी। लेकिन उससे पहले अभी समय है समाचारों का।

0: गोल्ड, खरा सोना।
1: तुम्हाला माहित आहे का, केंद्र सरकारने जवळपास जर्मनीच्या एकूण लोकसंख्ये इतकी किसान क्रेडिट कार्ड जारी केली आहेत, म्हणजेच 8 कोटी शेतकऱ्यांना। त्यामुळेच आपले शेतकरी म्हणतात की बियाणांपासून ते बाजारपेठेपर्यंत देश त्यांच्या सोबत खंबीरपणे उभा आहे।
2: हमारा छोटा किसान बाजार से महंगे ब्याज पर ऋण लेने के लिए मजबूर था। हमने ऐसे करोड़ों छोटे किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से जोड़ा।
1: 12 वर्षे विश्वासाची, विकासाची, जनकल्याणाची।
3: मित्रांनो, तुम्हाला माहिती आहे का की ज्या तीव्र सूर्यप्रकाशाला कधी काळी आपण केवळ असह्य उष्णता म्हणून पाहत होतो, त्याच उन्हाचा वापर आता आपल्या घराच्या छतावरून ऊर्जा निर्मिती करण्यासाठी केला जात आहे। यामुळेच आज देशातील सुमारे 37 लाख घरे प्रधानमंत्री सूर्य घर बनली आहे। यामुळे विजेच्या बिलांमध्ये कपात झाली आहे आणि संपूर्ण देशभरात एक नवा आत्मविश्वासही वाढला आहे।
2: 1 दशक पहले भारत सोलर पॉवर के मामले में बहुत पीछे था, लेकिन आज सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप 5 देशों में आ गया।
3: 12 वर्षे विश्वासाची, विकासाची, जनकल्याणाची।
4: चीन का हांजोऊ शहर जानते हैं आप? वहीं पर हमने रचा था इतिहास जब 2022 के एशियन गेम्स में हमने 107 मेडल्स जीते थे, क्योंकि पीछे थी हमारे 1045 खेलो इंडिया सेंटर्स की ट्रेनिंग, कंडीशनिंग कोचेस, डाइटिशियंस और फिजियोस की पूरी फौज। तभी तो पैरालंपिक में भी हमने रिकॉर्ड 29 पदक जीते और हॉकी, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, वुमन क्रिकेट, बॉक्सिंग, चेस सभी मैदानों में तिरंगा फहराया।
2: एक खिलाड़ी दुनिया के किसी कोने में हाथ में तिरंगा लेकर के दौड़ता है, सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है, सारे हिंदुस्तान में चेतना भर देता है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
0: FM गोल्ड, खरा सोना।
5: तर मंडळी, आयुष्य देणाऱ्या, आयुष्याला उभारी देणाऱ्या कवितांविषयी आपण बोलतोय। वेगवेगळ्या कवी

घायल आला मेरो एक घायल नजर हाय देवामाला रोज एक अपघात कर देवामाला रोज एक अपघात कर।

0: निशुल्क कायदेशीर मदत मिळवण्यासाठी टेली लॉ ऍप किंवा www.tele-law.in या वेबसाइट वर किंवा टोल फ्री क्रमांक 1-4-4-5-4 वर संपर्क साधा.
1: मित्रांनो, तुम्हाला माहिती आहे का की ज्या तीव्र सूर्यप्रकाशाला कधी काळी आपण केवळ असह्य उष्णता म्हणून पाहत होतो, त्याच उन्हाचा वापर आता आपल्या घराच्या छतावरून ऊर्जा निर्मिती करण्यासाठी केला जात आहे. यामुळेच आज देशातील सुमारे 37 लाख घरे प्रधानमंत्री सूर्य घर बनली आहे. यामुळे विजेच्या बिलांमध्ये कपात झाली आहे आणि संपूर्ण देशभरात एक नवा आत्मविश्वासही वाढला आहे.
2: एक दशक पहले भारत सोलर पॉवर के मामले में बहुत पीछे था, लेकिन आज सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप 5 देशों में आ गया.
1: 12 वर्ष विश्वासाची, विकासाची, जनकल्याणाची.
3: चीन का हांजोउ शहर जानते हैं आप? वहीं पर हमने रचा था इतिहास जब 2022 के एशियन गेम्स में हमने 107 मेडल्स जीते थे, क्योंकि पीछे थी हमारे 1045 खेलो इंडिया सेंटर्स की ट्रेनिंग, कंडीशनिंग कोचेस, डाइटिशियंस और फिजियोस की पूरी फौज. तभी तो पैरालंपिक में भी हमने रिकॉर्ड 29 पदक जीते. और हॉकी, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, वुमेन क्रिकेट, बॉक्सिंग, चेस, सभी मैदानों में तिरंगा फहराया.
2: एक खिलाड़ी दुनिया के किसी कोने में हाथ में तिरंगा लेकर के दौड़ता है, सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है, सारे हिंदुस्तान में चेतना भर देता है.
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के.

0: हीरोइन अभी तू सत्यना।
1: रूप तुला नस्ताना एक्टिंग बॉम्ब अस्ताना, रूप तुला नस्ताना एक्टिंग बॉम्ब अस्ताना, कौन हीरोइन तुझला कर लगा अच्छा।
2: अब असं काय करता, अजून एक चांस द्या ना।

याहू आटा गोणी मला जंगली मां वा पागल मजनू मणा आटा गोणी

ओडिशा के मयूरभंज जिले में अपने पैतृक गांव पहाड़पुर पहुंची। ओडिशा के राज्यपाल हरि बाबू कंभमपति, मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी और स्थानीय लोगों ने राष्ट्रपति के आगमन पर उनका स्वागत किया। अपने पैतृक गांव में राष्ट्रपति ने 68वां जन्मदिन भी मनाया। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहाड़पुर गांव पहुंच गए हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ अपने गांव का दौरा किया। वे पवित्र संथाली जहेरा और होजहरा उपवनों में पूजा अर्चना करेंगे, साथ ही कौशल विकास केंद्र और पहाड़पुर स्कूल का दौरा भी करेंगे। इसके बाद राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री रायरंगपुर में ओडिशा सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। वे ऊर्जा, अवसंरचना, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सिंचाई सहित विभिन्न क्षेत्रों में 47,000 करोड़ रूपये से अधिक के विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इस अवसर पर वे जनसभा को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल भी जाएंगे। वे हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंग दिवस समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। वे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी करेंगे। इसके अंतर्गत देश के 9,44,00,000 किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रूपये से अधिक की राशि सीधे अंतरित की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंग दिवस पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि ये दिन पश्चिम बंगाल के

बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज। 1:11 हुए हैं और ये वक्त रहता है कलाकार बेमिसाल का। कलाकार बेमिसाल में आज हिंदी फिल्मों की प्रसिद्ध अभिनेत्री बीना रॉय, असली नाम जिनका रहा कृष्णा सरीन। 50 के दशक की बेहतरीन अभिनेत्रियों में से एक बीना रॉय, जिन्होंने 1951 में प्रदर्शित फिल्म काली घटा से अपना फिल्मी करियर शुरू किया था। ऐसी सशक्त अभिनेत्री जिन्होंने अपने शुरुआती फिल्मों में ही अपनी कला का जौहर दिखाना शुरू कर दिया। उनका अभिनय, प्रेजेंटेशन, हाव भाव और फेस एक्सप्रेशंस काफी प्रभावित करते थे। उनका सदा हुआ अभिनय लोगों के दिलों में घर कर गया और बस वो जल्दी ही फिल्म जगत की एस्टैब्लिश्ड हीरोइन बन गई। बीना रॉय, इन्हीं का जिक्र होता रहेगा कलाकार बेमिसाल के इस सफर पर चलते हुए, आज इस सफर को तय करते हुए। सुनते रहे आकाशवाणी गोल्ड 100.1। अंजलि है आपके साथ।

किसी भी स्टार को कैसे मौका मिलता है ये जानने की बहुत उत्सुकता रहती है और काफी दिलचस्प भी रहता है इसे बयां करना। तो बात करते हैं कैसे बीना राय को मिली उनकी पहली फिल्म काली घटा। 1950 में उस जमाने के मशहूर निर्माता, निर्देशक और अभिनेता किशोर साहू फिल्म काली घटा के लिए नई अभिनेत्रियों की तलाश में थे। इसी सिलसिले में उन्होंने विज्ञापन के माध्यम से नई प्रतिभाओं को आमंत्रित किया। बीना उस वक्त 12th की स्टूडेंट रही होंगी और बीना राय और उनके भाई, बड़े भाई, इस विज्ञापन को देखकर बीना जी ने कुछ इंटरेस्ट दिखाया तो वो अपने बड़े भाई के साथ मुंबई आकर किशोर साहू से मिले। ऑडिशन हुआ और बस बीना जी को मुख्य भूमिका के लिए चुन लिया गया और इसी दौरान उनका असली नाम कृष्णा सरीन से बदल कर कर दिया बीना रॉय और वो बन गई फिल्म इंडस्ट्री की एक्ट्रेस हीरोइन बीना रॉय। तो चलिए किशोर साहू की निर्मित और अभिनीत ये फिल्म बीना रॉय जी के साथ काली घटा का ये गीत पहुंच रहा है आप तक लता जी और रफी की आवाज़।

0: मम्मी, ये जहाज कहाँ जा रहा है?
1: बेटा, अब तो भारत का हर कोना आसमान से जुड़ रहा है।
2: जब भारत उड़ान भरता है तो उड़ान भरते हैं सपने, जुड़ते हैं शहर, बढ़ते हैं अवसर।
1: पिछले 12 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सक्षम नेतृत्व में विकसित हुए हैं 160 से ज्यादा एयरपोर्ट्स। उड़ान योजना से संभव हुआ है छोटे शहरों तक हवाई संपर्क। डीजी यात्रा से सरल एवं सुगम हुई हवाई यात्रा।
2: नागर विमानन मंत्रालय, विकसित होते भारत की नई उड़ान। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: जानी मानी अभिनेत्री बीना रॉय, जो अपने करियर के शुरुआती दिनों में ही अभिनेता प्रेम नाथ के साथ शादी के बंधन में बंध गई थी, उन्होंने शादी के बाद भी अपना फिल्मी करियर जारी रखा। सही मायने में बाद में ही उनके फिल्मी करियर ने गति पकड़ी। गौहर, शोले, मीनार, इंसानियत, मतभरे नैन, मेरिन ड्राइव, सरदार, चंद्रकांता, हमारा वतन, दुर्गेश नंदिनी, बंदी, हिल स्टेशन, मेरा सलाम, तलाश, घूंघट, वल्ला क्या बात है, ताजमहल और दादी माँ जैसी अनेक फिल्मों में अपनी जबरदस्त प्रतिभा का हुनर और प्रतिभा फन बीना रॉय ने हमें फिल्में में दिखाया। और सचमुच उनकी फिल्में देखो ना तो हम किसी और ही दुनिया में महसूस करते हैं। इतनी शालीन, सौम्य और दमदार

0: चीन का हांजो शहर जानते हैं आप? वहीं पर हमने रचा था इतिहास जब 2022 के एशियन गेम्स में हमने 107 मेडल्स जीते थे, क्योंकि पीछे थी हमारे 1045 खेलो इंडिया सेंटर्स की ट्रेनिंग, कंडीशनिंग कोचेस, डाइटिशियंस और फिजियोस की पूरी फौज। तभी तो पैरालंपिक में भी हमने रिकॉर्ड 29 पदक जीते और हॉकी, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, वुमन क्रिकेट, बॉक्सिंग, चेस सभी मैदानों में तिरंगा फहराया।
1: एक खिलाड़ी दुनिया के किसी कोने में हाथ में तिरंगा लेकर के दौड़ता है, सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है, सारे हिंदुस्तान में चेतना भर देता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: अपने समय के लगभग सभी दिग्गज कलाकारों के साथ बीना जी ने फिल्में की। अशोक कुमार, दिलीप कुमार, देवानंद, भारत भूषण, किशोर कुमार, प्रदीप कुमार, शमी कपूर और उनके पति प्रेमनाथ। एक समय के बाद बदलते वक्त के रुख को पहचान कर उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री से शालीनता के साथ किनारा कर लिया। 1968 में बनी फिल्म अपना घर अपनी कहानी बीना रॉय की आखिरी प्रदर्शित फिल्म रही। इसके बाद वो पूरी तरह से अपने गृहस्थ जीवन में रम गई। सौंदर्य की मल्लिका बीना रॉय, जिनकी सौम्य जितनी सौम्य दिखती थी स्क्रीन पर, उतनी ही गहराई थी उनके अभिनय में। ऐसी प्रतिभाएं, ऐसा व्यक्तित्व, ऐसे कलाकार हमेशा हमेशा यूं ही याद किए जाते रहेंगे। उनकी अभिनीत फिल्म वल्ला क्या बात है, आशा जी की आवाज में ये गीत और साथ में है मोहम्मद रफी साहब।

इसी के साथ अंजलि आपसे ले रही है इजाजत, लेकिन आप सुनते रहे हमेशा आकाशवाणी गोल्ड 100.1। कुछ ही देर में सुनिएगा उर्दू खबरें, उसके बाद अंग्रेजी और हिंदी में समाचार।

0: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं फैसल खान। वजीर आजम नरेंद्र मोदी सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के हमराह उड़ीसा में 47,600 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे। सरकार ने 16 फिक्स्ड डोज कम्बिनेशन FDC अद्वियात की तैयारी, फरोख्त और तकसीम पर पाबंदी आयद कर दी है। इम्तिहानात कराने वाली कौमी एजेंसी NTA ने कल मुनाकिद होने वाले NEET UG के दोबारा इम्तिहान से कबल मुल्कगीर मॉक ड्रिल का इनेकाद किया। भारतीय मौसमियात महकमे ने मगरबी बंगाल के जैली हिमालयी खित्ते और सिक्किम में बाज मकामात पर कल तक शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। और फीफा वर्ल्ड कप में ब्राजील ने हेती को 0 के मुकाबले 3 गोल से हराकर पहली जीत हासिल की। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज उड़ीसा के मयूरभंज जिले में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के आबाई गांव पहाड़पुर का दौरा किया और सदर जमहूरिया के साथ उनकी सालगिरह की तकरीब में भी हिस्सा लिया। वहां पहुंचने पर उड़ीसा के गवर्नर डॉ हरिबाबू कंबमपति और वजीराला मोहन चरण मांझी ने वजीर आजम का इस्तकबाल किया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के साथ वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने संथाली जहेरा गोशानी पीठ और होजहरा जाकर प्रार्थना की और गांव के अहम इदारे देखने गए, जिनमें हुनरमंदी के फरोग से मुतालिक मरकज और पहाड़पुर स्कूल भी शामिल हैं। मोहतरमा मुर्मू ने हुनरमंदी के फरोग से मुतालिक मरकज में तलबा के साथ बातचीत भी की। बाद में सदर जमहूरिया और वजीर आजम ने एक अहम अवामी प्रोग्राम में शिरकत की, जो मोहन चरण मांझी की जेर क्यादत उड़ीसा सरकार के 2 साल पूरे होने के सिलसिले में मनाया जा रहा है। इस प्रोग्राम में 47,600 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के तरक्याती प्रोजेक्टों का संगे बुनियाद रखा जाएगा और उनका इफ्तिताह किया जाएगा। इन प्रोजेक्टों में तवानाई, ट्रांसपोर्ट, सनती बुनियादी ढांचा, आबपाशी और पीने के पानी वगैरह समेत कई दूसरे प्रोजेक्ट शामिल हैं। सरकार ने 16 तरह के फिक्स डोज कम्बिनेशन FDC अद्वियात की इंसानी इस्तेमाल के लिए तैयारी, फरोख्त और तकसीम पर फौरी तौर पर पाबंदी आयद कर दी है। अद्वियात के तकनीकी सलाहकार बोर्ड की जानिब से कायम करदा माहरीन की एक कमेटी की रिपोर्ट का सुप्रीम कोर्ट ने जायजा लेने का हुक्म दिया था। रिपोर्ट के मुताबिक इन अद्वियात में दाफे अमराज का कोई उनसुर नहीं पाया जाता और ये सेहत के लिए खतरा साबित हो सकती है। जिन अद्वियात पर पाबंदी लगाई गई है उनमें एंटीबायोटिक पर मबनी कुछ अद्वियात, दर्द से राहत देने वाली अद्वियात और कुछ डर्माटोलॉजिकल अद्वियात शामिल हैं। भारत ब्रिक्स मुल्कों के कौमी सलामती के मुशीरों की 2 रोजा मीटिंग का एहतमाम करेगा, जो पीर से शुरू होगी। इस मीटिंग की सदारत कौमी सलामती के सलाहकार अजीत डोभाल करेंगे। मीटिंग के दौरान ब्रिक्स मेंबर मुल्कों के कौमी सलामती के सलाहकार और वफदों के सरबराह दुनिया को दरपेश गैर रिवायती सिक्योरिटी चैलेंजों के बारे में तबादले ख्याल करेंगे। इम्तिहानात से मुतालिक कौमी एजेंसी NTA NEET UG 2026 के कल फिर से होने वाले इम्तिहानात की तैयारियों के हिस्से के तौर पर आज मुल्क भर में मॉक ड्रिल कर रही है। यह सिलसिला सुबह 9 बजे शुरू हुआ है और पूरे दिन जारी रहेगा। मुल्क भर के इम्तिहानी मराकज में इस तरह की ड्रिल हो रही है, जिसमें 2.5 लाख से ज्यादा सिक्योरिटी अमले के जवान भी हिस्सा ले रहे हैं। दिल्ली में दिल्ली कैंट और अशोक विहार फेज 2 के इम्तिहानी मराकज में इस मॉक ड्रिल का एहतमाम किया गया। इम्तिहानात को साफ, शफाफ और खुश असलूबी से कराने की खातिर ये मश्क कराई जा रही है। NTA ने बताया है कि मुल्क भर के 551 और दूसरे मुल्कों के 14 शहरों में इम्तिहान मुनाकिद होगा, जिसमें 22,79,000 से ज्यादा उम्मीदवार शामिल होंगे। एजेंसी ने यह भी बताया कि मुनसिफाना और साफ सुथरे इम्तिहान को यकीनी बनाने की खातिर कई मरहलों वाली सिक्योरिटी का बंदोबस्त किया गया है। इसमें CCTV के जरिए निगरानी और आधार पर मबनी बायोमेट्रिक तस्दीक शामिल है। इसके अलावा पुलिस मुहाफिजत में इम्तिहानी साजो सामान पहुंचाने के लिए GPS की सहूलत से लैस गाड़ियां भी शामिल हैं। कल ये इम्तिहान 2 बजे से 5:15 बजे तक होगा। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू कल मध्य प्रदेश के शहर जबलपुर में रियासती सतह के बैन अल-अक़वामी योग प्रोग्राम में मेहमान खसूसी होंगी। ये प्रोग्राम सदर के गैरिसन ग्राउंड में सुबह 7:30 बजे शुरू होगा। सदर जमहूरिया आज शाम भारतीय फिजाइया की खसूसी तैयारी से जबलपुर पहुंचेंगी। हवाई अड्डे पर गवर्नर मंगू भाई पटेल उनका खैर मकदम करेंगे। सदर जमहूरिया योग के प्रोग्राम के बाद रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी जाएंगी, जहां वो यूनिवर्सिटी की 36वीं जलसे तकसीम इसनाद में मेहमान खसूसी होंगी। इस तकरीब में रियासती गवर्नर भी शामिल होंगे। सदर जमहूरिया के दौरे से पहले जिला इंतजामिया ने डुमना एयरपोर्ट, गैरिसन ग्राउंड, सर्किट हाउस और रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी के 15 किलोमीटर के दायरे में ड्रोन गुब्बारों और पतंगबाजी पर पाबंदी लगा दी है। योग का बैन अल-अक़वामी दिन 2026 कल दुनिया भर में मनाया जाएगा। इस साल योग का 12वां बैन अल-अक़वामी दिन सेहतमंद बुढ़ापे के लिए योग के मौजू के तहत मनाया जा रहा है, जो हर उम्र के अफराद के लिए योग की अहमियत को उजागर करता है। इस सिलसिले की तकरीबात के हिस्से के तौर पर वजारत सकाफत मुल्क भर के 100 तारीखी और नुमाया मकामात पर खसूसी प्रोग्रामों का इनेकाद करेगी, जिसका मकसद भारत के मालामाल सकाफती विरसे और योग की रिवायत को यकजा करना है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
1: नई दिल्ली में वाक़ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद ने योग के दिन की तकरीबात से कबल योग के लिए दौड़ और एक खसूसी सेशन का इनेकाद किया। इस मौके पर रोजमर्रा की जिंदगी में योग को शामिल करने पर जोर दिया गया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति ने कहा कि योग को सिर्फ एक दिन तक महदूद नहीं रखा जाना चाहिए, बल्कि पूरे साल बाकायदगी से इसे करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ आसन और वर्जिश के जरिए रोजाना योग तर्ज जिंदगी से मुतालिक बीमारियों पर मुअस्सर तौर पर काबू पाने में मददगार साबित हो सकता है। योग के बैन अल-अक़वामी दिन की अहम कौमी तकरीब कल कोलकाता के तारीखी रेड रोड पर वजीर आजम मोदी की क्यादत में मुनक़िद होगी। इस साल सकाफती ताल्लुकात के भारतीय कौंसिल ICCR और बैरून मुल्क भारतीय मिशनों के इश्तराक से दुनिया भर में तकरीबन 2500 मकामात पर योग के दिन की तकरीबात मुनक़िद की जा रही हैं। अमन यादव की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
0: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक मजबूत और मौसर रहनुमा के तौर पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए उन्हें चीन के सदर शी जिनपिंग के साथ दुनिया की सबसे बासर शख्सियात में से एक करार दिया। एक अमरीकी न्यूज पोर्टल को दिए गए इंटरव्यू में सदर ट्रंप ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने भारत को एक ऐसे दौर के बाद इस्तेहकाम फराहम किया है जब मुल्क में क्यादत बार बार तब्दील होती रही। उन्होंने मजीद कहा कि जनाब मोदी गुज़श्ता 12 साल से ज्यादा अरसे इक्तदार में हैं। इंडियन इन्फॉर्मेशन सर्विस के साबिक सीनियर अफसर दीपांकर मुखोपाध्याय का कल कोलकाता में इंतकाल हो गया। वो कुछ अरसे से बीमार थे। जनाब मुखोपाध्याय की उम्र 77 साल थी। उन्होंने इत्तला तो नशियात की वजारत के मुख्तलिफ शोबों और आकाशवाणी की खबरों के महकमे में भी काम किया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जमहूरिया CP राधाकृष्णन और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल दिवस के मौके पर मगरबी बंगाल की आवाम को मुबारकबाद दी। खबर मिली है कि इसराइल ने जुनूबी लेबनान के सजद इलाके में जबल अल राफे इलाके में हवाई हमला किया। यह हमला कल लेबनान और इसराइल के दरमियान जंगबंदी के फौरन बाद किया गया। भारत के महकमे मौसमियात IMD ने मगरबी बंगाल के जिली हिमालयी खत्ते और सिक्किम में बाज मकामात पर कल तक शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। IMD केरला, माहे, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और मुल्क के शुमाल मशरकी इलाकों में आज शदीद बारिश की पेशगोई की है। ब्राजील ने आज फिलाडेल्फिया स्टेडियम में हेती को 0 के मुकाबले 3 गोल से हराकर फीफा वर्ल्ड कप में अपनी पहली जीत दर्ज की। ग्रुप सी के इफ्तिताही मैच में मराकश से ड्रा के बाद ब्राजील पर इस मैच में जीत हासिल करने का काफी दबाव था। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी सदर जमहूरिया द्रौप

0: manufacture, sale and distribution of 16 fixed dose combinations in public interest. NTA conducts nationwide mock drill ahead of NEET UG re-examination scheduled for tomorrow. IMD issues red alert for extremely heavy rainfall at isolated places over sub-Himalayan West Bengal and Sikkim till tomorrow. In cricket, third and final ODI between India and Afghanistan underway in Chennai. And in FIFA World Cup, Brazil register their first win, defeating Haiti 3-0. For details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and News on AIR app. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ ओडिशा में 47,600 करोड़ रुपए से अधिक के विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं। सरकार ने 16 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन दवाओं के उत्पादन, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगाया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा कल होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले देश भर में मॉक ड्रिल। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में कुछ स्थानों पर कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच चेन्नई में जारी। और फीफा विश्व कप में ब्राजील ने हैती को 3-0 से हराकर पहली जीत दर्ज की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा के मयूरभंज जिला स्थित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पैतृक गांव पहाड़पुर पहुंचे। राष्ट्रपति मुर्मू अपने 68वें जन्मदिन के अवसर पर अपने गांव में हैं। ओडिशा के राज्यपाल डॉ. हरिबाबू कंभमपति, मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी और स्थानीय लोगों ने उनके आगमन पर गर्मजोशी से स्वागत किया।
2: उड़ीसा के आदिवासी इलाकों तक पहुंचने की एक अहम कोशिश के तहत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मयूरभंज जिले में अपने गांव पहाड़पुर गई। प्रधानमंत्री ने पवित्र सांथाली जोहरा और जो जहरा पूजा स्थलों पर प्रार्थना की और स्थानीय आदिवासी समुदायों के लोगों के बातचीत के, जिससे उन्हें उनकी समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं और जीवन शैली के बारे में जानकारी मिली। प्रधानमंत्री ने स्किल डेवलपमेंट सेंटर और SLS मेमोरियल स्कूल का भी दौरा किया, जहां उन्होंने छात्रों से बातचीत की और उन्हें शिक्षा, कौशल विकास और आत्मनिर्भरता के दिशा में बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। ये दौरा इसलिए भी खास था क्योंकि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति मुर्मू के 68वें जन्मदिन के मौके पर उनके गांव में उनका साथ शामिल हुए। इन कार्यक्रम से आदिवासी सशक्तिकरण, शिक्षा को बढ़ावा देने और समावेश विकास के प्रति उनकी साझा प्रतिबद्धता को पता चलता है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री अब रायरंगपुर के डांडा बेस में उड़ीसा सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित एक बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। यहां प्रमुख क्षेत्रों में 47,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजना का उद्घाटन और उन्हें राष्ट्र को समर्पित किया जा रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए रायरंगपुर से मैं प्रकाश दास।
1: इस समय राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ओडिशा सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर रायरंगपुर में आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित हैं। इस अवसर पर ऊर्जा, परिवहन, औद्योगिक ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई और पेयजल से जुड़ी 47,600 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। इस समय प्रधानमंत्री एक विशाल जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
3: प्रवति परिदा जी, उड़ीसा के मंत्री गणेश जी खुंटिया जी, कृष्णचंद्र महापात्र जी, सांसद नवाचरण मांझी जी, मनमोहन सामल जी, बैजन पांडा जी, अन्य महानुभाव भाई और बहनों, हमारा ओडिशा इन दिनों उत्सवों के आनंद में डूबा हुआ है। यहां का गण पर्व रज पिछले हफ्ते ही धूमधाम से मनाया गया है। महाप्रभु जगन्नाथ

0: जी की रथ यात्रा की तैयारियां भी पुरजोश चल रही है। मयूरभंज के बारीपदा रथ यात्रा को लेकर भी उत्साह का माहौल है।
1: प्रधानमंत्री मोदी आज पश्चिम बंगाल भी जाएंगे। वे हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंग दिवस समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। वे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी करेंगे। इसके अंतर्गत देश के 9,44,00,000 किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रूपये से अधिक की राशि सीधे अंतरित की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंग दिवस पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि ये दिन पश्चिम बंगाल के भारत का अभिन्न अंग बने रहने के संकल्प और आकांक्षाओं का प्रतीक है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि वर्ष 1947 में इसी दिन एक ऐतिहासिक फैसले में भारत के एक अहम हिस्से के रूप में पश्चिम बंगाल राज्य के गठन का मार्ग प्रशस्त किया गया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल साहित्य, संगीत, कला, आध्यात्मिकता, विज्ञान, व्यापार, वाणिज्य के लिए प्रसिद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता में कल स्वदेश में निर्मित नौसेना की 3 जहाजों INS धुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय का अनावरण करेंगे। इन जहाजों का निर्माण भारत में किया गया है। इनका उपयोग समुद्री सुरक्षा, सर्वेक्षण और पनडुब्बी रोधी अभियानों में किया जाएगा। ये भारत की रक्षा जहाज निर्माण क्षमता को मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह आज कोल्हापुर और इचलकरंजी के दौरे पर हैं। वे महालक्ष्मी मंदिर परिसर में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन किया और कोल्हापुर के पुलिस परेड ग्राउंड में एक जनसभा को संबोधित किया।
2: मोदी जी प्रधानमंत्री बने और अयोध्या में भव्य राम मंदिर आज अपनी भगवी ध्वजा के साथ खड़ा हुआ। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जो औरंगजेब ने

0: कॉरिडोर बन रहा है और अब अंबाबाई का कॉरिडोर बनाने का काम भी शुरू हो गया।
1: इसके बाद गृह मंत्री इचल करंजी में जनता सहकारी बैंक के नए भवन का उद्घाटन करेंगे तथा एक सहकारी चीनी कारखाने के नामकरण और विस्तार के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। सरकार ने जनहित में 16 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन एफडीसी दवाओं के उत्पादन, बिक्री और वितरण पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। यह फैसला सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर की गई विशेषज्ञ समिति की समीक्षा के बाद लिया गया। समिति ने पाया कि इन दवाओं के संयोजन का पर्याप्त चिकित्सीय औचित्य नहीं है और इनके उपयोग से स्वास्थ्य संबंधी जोखिम हो सकते हैं। प्रतिबंधित दवाओं में त्वचा, दर्द और शरीर में ऐंठन के उपचार तथा कुछ एंटीबायोटिक दवाएं शामिल हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि इसका उद्देश्य केवल सुरक्षित, प्रभावी और वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। मंत्रालय ने राज्य औषधि नियामकों और संबंधित एजेंसियों को इस प्रतिबंध को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी कल होने वाली नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा की तैयारियों के अंतर्गत आज देश भर में मॉक ड्रिल कर रही है। सुबह 9 बजे शुरू हुआ यह अभ्यास पूरे दिन जारी रहेगा। इस अभ्यास में 2.5 लाख से अधिक सुरक्षा कर्मी तैनात हैं। इसका उद्देश्य परीक्षा का सुरक्षित, निष्पक्ष और सुचारू संचालन सुनिश्चित करना है। एजेंसी के अनुसार नीट यूजी पुनर्परीक्षा भारत के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में आयोजित की जाएगी, जिसमें 22,79,000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा में सीसीटीवी निगरानी, आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन और परीक्षा सामग्री के सुरक्षित परिवहन जैसे विशेष सुरक्षा व्यवस्थाएं की गई हैं। सरकार के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय कार्यवाही कार्यबल का उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के गाइस थॉमसन का स्थान लेंगे। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस नियुक्ति से आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने और गैरकानूनी वित्तीय नेटवर्क के खिलाफ संघर्ष की भारत की प्रतिबद्धता मजबूत होती है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल दुनिया भर में मनाया जाएगा। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय

0: स्वस्थ आयु के लिए योग। ये विषय हर उम्र में योग के महत्व को रेखांकित करता है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर संस्कृति मंत्रालय देश भर में 100 स्थानों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इनमें भारत की समृद्ध विरासत और योग परंपराओं को प्रदर्शित किया जाएगा।
1: नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने कल मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले रन फॉर योग और एक विशेष जुम्बा सत्र का आयोजन आज किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को अपने दैनिक जीवन में योग अपनाने के लिए प्रेरित करना था। संस्थान के निदेशक प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि योग केवल एक दिन मनाने की चीज नहीं है, बल्कि इसे पूरे साल नियमित रूप से करना चाहिए।
2: हमारे लिए ये बहुत जरूरी है कि हम 365 डेज योगा करें, और इस बार के योगा के ऊपर डिक्लेरेशन भी होने जा रहा है कि हम वर्ल्ड में कम से कम 15 से 20 मिनट अगर योग करते हैं, अपने प्राणायाम करते हैं, तो जो इस तरह की हमारे लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, उनको हम बहुत अच्छी की तरह से मैनेज कर सकते हैं, और ये प्रूव हो चुका है।
1: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य राष्ट्रीय कार्यक्रम कल कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आयोजित किया जाएगा। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद और विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों के संयुक्त प्रयासों से इस वर्ष योग दिवस के कार्यक्रम दुनिया भर में लगभग 2500 स्थानों पर आयोजित किए जा रहे हैं। इनमें 210 से अधिक भारतीय मिशन भाग ले रहे हैं। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: स्लोवाकिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। स्लोवाकिया गणराज्य में भारतीय राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने आकाशवाणी को बताया कि स्लोवाकिया में योग और आयुर्वेद बहुत लोकप्रिय हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि भारतीय दूतावास और अन्य संगठन राजधानी ब्रातिस्लावा और अन्य स्थानों पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं।
3: स्लोवाक रिपब्लिक में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए भारतीय दूतावास का मुख्य कार्यक्रम ब्रातिस्लावा शहर में आयोजित किया जाएगा। दूतावास मशहूर ब्रातिस्लावा कैसल में भी एक योग कार्यक्रम आयोजित करेगा। स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने बताया कि दूतावास परिसर में हर दिन 2 योग कक्षाएं आयोजित की जा रही हैं, और अब पूरे स्लोवाकिया में सैकड़ों योग प्रशिक्षण केंद्र संचालित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाल ही में हुई स्लोवाकिया यात्रा के दौरान आयुष मंत्रालय द्वारा हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन से स्लोवाकिया में योग को और मजबूत करने के रास्ते खुलने की उम्मीद है। स्मृति एस पल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: इस कड़ी में आकाशवाणी समाचार आयुष राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार प्रताप राव जाधव का विशेष साक्षात्कार प्रसारित करेगा। आकाशवाणी FM गोल्ड 100.1 MHz चैनल पर यह साक्षात्कार आज रात 9:30 प्रसारित किया जाएगा। श्री जाधव ने बताया कि कामकाजी लोगों के लिए सरकार ने वाईब्रेक ऐप भी शुरू किया है।
4: लोग दिन भर चेयर पे बैठे के काम करना पड़ता है, वो लोग भी जब लंच ब्रेक होता है तब तक बहुत सारी थकान वो लोगों में आती है, तो वो थकान दूर करने के लिए भी उनके लिए वाई ब्रेक नाम का एक हमने ऐप निकाला है कि उसमें 10 मिनट में तुम चेयर पर बैठे बैठे कौन से आसन कर सकते हो, करने से जो भी तुम्हारा थकान आई होगी वो दूर हो जाएगी।
0: भारत सोमवार से शुरू हो रही 2 दिवसीय ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल करेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार बैठक में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और प्रतिनिधिमंडल नई सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श करेंगे। बैठक में नई तकनीक से जुड़े सुरक्षा खतरों और आतंकवाद से निपटने के उपायों पर भी चर्चा होगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हुए उन्हें मजबूत और प्रभावशाली नेता बताया है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ दुनिया के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक हैं। एक साक्षात्कार में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि श्री मोदी के पिछले 12 सालों के नेतृत्व में भारत को मजबूती और स्थिरता मिली है। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में कल तक कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में भी बारिश की संभावना व्यक्त की है। भारतीय सूचना सेवा के पूर्व अधिकारी दीपांकर मुखोपाध्याय का कल रात लंबी बीमारी के बाद कोलकाता में निधन हो गया। वे 77 वर्ष के थे। क्रिकेट में चेन्नई में भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरे अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच में ताजा समाचार मिलने तक अफगानिस्तान ने 12वें ओवर में 4 विकेट पर 42 रन बना लिए हैं। उधर फीफा फुटबॉल विश्व कप में ब्राजील ने हैती को 3-0 से हराकर पहली जीत दर्ज की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ

0: ऊर्जा में 47,600 करोड़ रुपए से अधिक के विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं। सरकार ने 16 फिक्स डोज कॉम्बिनेशन दवाओं के उत्पादन, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगाया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा कल होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले देश भर में मॉक ड्रिल। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में कुछ स्थानों पर कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच चेन्नई में जारी। और फीफा विश्व कप में ब्राजील ने हैती को 3-0 से हराकर पहली जीत दर्ज की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: प्रस्तुत है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसान की बात।

0: आ चौपाटी देखानी।
1: हाँ
0: आ ताजमहल होटल

आप सांभळी रह्या छो 100.1 एफएम गोल्ड खरा सोना कार्यक्रम छे गीत गुर्जरी। मित्रों आपणे वातो करी रह्या छे विक्टोरिया टर्मिनल स्टेशन एटले के हालनु छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल नु, जेणे के जेणे आजे 139 वर्ष पूरा कर्या छे। एटले के आजे आपणे एवुं कही शकीए के वीटी स्टेशन अथवा तो सीएसएमटी नो बर्थडे छे। तो मित्रों 2 जुलाई 2004 ना रोज आ स्टेशन ने यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इनो समावेश करवामा आव्यो। ज्यारे आ विक्टोरिया टर्मिनल स्टेशन बन्यो त्यारे एमा मात्र 6 प्लेटफॉर्म हता। 1929 मा 13 प्लेटफॉर्म करवामा आव्या अने हाल अही 18 प्लेटफॉर्म छे, जेमा पहेलो ने बीजो प्लेटफॉर्म हार्बर लाइन माटे छे, 3-7 सेंट्रल रेलवे अने 8-18 एक्सप्रेस पेसेंजर्स अने मेल ट्रेन माटे छे। ब्रिटिश आर्किटेक्ट फेडरिक विलियम स्टीवने आ स्टेशननी डिजाइन करी हती। मित्रों जय हो आ गीत होय के अनेक फिल्मों जेनी शूटिंग आ स्टेशन पर थई छे। 26 નવેમ્બર 2008 નો આતંકવાદી હમલાનો સાક્ષીદાર પણ આ રેલવે સ્ટેશન બન્યો છે।

डगर पर धंधो धंधो कार अने एज नगर नी बीजी डगर पर चालू गोली बार ज्या मानसाई थी पण मोघा रूपी।

0: चला चला वाला
1: अरे बाजू
0: जा जादू करना खेल करे दे खेल लड़ावे रिंग जा चंपी माल तेल पकोड़ी भेल तिनाई सिंग जा शरम मुकी ने धर्म कदम नु साधु करे धतिंग अरे जे दे ती पर लैला मजनू पात करे इवनिंग अरे एज देत पर नेताओ की रोज भरे मीटिंग भाई मानो या ना मानो एना पानी मा कहीं

0: रामा को ना जा तो ना जी नहीं को मारे वाचन जनता रे वो पढ़ के उपवासी
1: हमें मुंबई ना रे वासी मुंबई ना रे वासी।
2: मित्रों अपने बात करी रहा छे विक्टोरिया टर्मिनस अथवा तो CSMT आ रेलवे स्टेशन ने जेने आज 139 वर्ष पूरा कर्या छे। तो ज्यारे आ स्टेशन नो निर्माण थयो त्यारे एमा भारत ब्रिटन अने इटली आ त्रणे देशों नी स्थापत्य कलाना एमा दर्शन थाय छे।

पीड़ो बेलुआ एटले के येलो सैंडस्टोन, चूनापत्थर, लाइमस्टोन अने विभिन्न प्रकारना बेसाल्ट पत्थरनो एना निर्माण में उपयोग थयो छे। विक्टोरियन गोथिक इंडो सैरसेनिक वास्तुशैलीनो पण अहीं उपयोग थयो छे। मित्रों, आ मात्र एक इमारत के मात्र एक रेलवे स्टेशन नथी, परंतु ए मुंबईनी ओळख छे। विक्टोरिया टर्मिनल स्टेशन ए भारतनी एशियानु सौथी पहेलू रेलवे स्टेशन, अने हा आ रेलवे स्टेशन एशियानी सौथी मोटी इमारत पण कहेवाय छे ए जमानामां, अने सौथी मोंघी इमारत, अने जेने बनवा माटे सौथी वधारे समय लाग्यो एटले के 10 वर्षनो समय लाग्यो, एटले लांबो समय जेना निर्माणमां लाग्यो एवुं आ रेलवे स्टेशन।

हार नहीं लावे दियो।

ने नाना ना सौनाद समझी ने मांगवानू तू नहीं मुके तो मने मुका विश तो मने मु

अरे भावनगर भागी जईश के रखड़िश हूँ राजकोट कई दऊ छू हाँ पाण।

आप सांभळी रह्या छो 100.1 एफएम गोल्ड खरा सोना कार्यक्रम गीत गुर्जरी। मित्रों, देशनो सौथी व्यस्त रेलवे स्टेशन एटले के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल अथवा तो पहेलाना जमानानो आ विक्टोरिया टर्मिनल, देशमां सौथी वधारे फोटोग्राफी ताजमहलनी थाय छे अने त्यारबाद बीजा नंबर पर आवे छे आ मुंबईनो छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल, जे 2.85 हेक्टर जमीन पर विस्तार में आवेलो छे। मित्रों, अहीं एक अद्भुत म्यूजियम पण आवेलो छे, जेमां 19मी सदीनी घड़ियाळो, ब्रिटिश जमानानी टिकीट, पंचिंग मशीन, हेन्डलवाला टेलिफोन, जूना नक्शा, एटलुं ज नहीं जूना दस्तावेजो पण अहीं मूकवामां आवेला छे। अने ट्रेनना जूना मॉडल जो आपने जोवा होय तो आप आ म्यूजियममां जई शको छो। पण हा, आ म्यूजियम માત્ર સોમવારથી શુક્રવાર જ શરૂ હોય છે, શનિવાર રવિવાર અને પબ્લિક હોલિડેના દિવસે બંધ હોય છે।

छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल्स। मित्रों अहीं जे टिकिट बारी छे ग्राउंड फ्लोर पर एनी छत पर इटालियन मार्बल ना स्तंभो कमानो अने इना छत पर तारालियानी सरस मजानी कलाकृति करवामां आवी छे। तो अहीं ज मुख्य जे गुंबज छे त्या आगळ टोच ऊपर 16.5 फूट ऊंची कांसानी बनेली लेडी ऑफ प्रोग्रेस नी मूर्ति छे, जेना जमणा हाथ में सड़कती मशाल छे तो डाबा हाथ में चक्र छे जे विकासनु प्रतीक छे। मित्रों आ इमारतना मुख्य प्रवास द्वारना स्तंभ पर सिंह जे ब्रिटननु प्रतीक छे अने वाघ जे भारतनु प्रतीक छे एनी शिलाओ मुकवामां आवेली छे। तो इमारतनी दीवालो अने बारीओ पर पक्षी प्राणी मोर वांदराना चित्रों दोरवामां आव्या छे अने आ चित्रों जे जे स्कूल ऑफ आर्ट्सना ते समयना विद्यार्थीओ अने स्थानिक कामगारोए कर्या छे। मित्रों वरसादमां पाणीनो निकाल बराबर रीते थाय ए माटे छत पर ड्रेगन अने गॉर्गोलियस एवी शिलाओ मूकवामां आवी छे, जेना कारणे पाणीनो निकाल एकदम सहेलाईथी थई शके।

आप सांभळी रह्या छो 100.1 एफएम गोल्ड खरा सोना कार्यक्रम छे गीत गुर्जरी। तो आ इमारत एटले के आ रेलवे स्टेशन नी मुख्य दीवाल पर 10 पत्थरो थी गोळाकार शिला पर बनावेलो एक खूब सरस एवो कलाकृति छे, शिला छे, जेना पर आ रेलवे स्टेशन बनावामां जे जे व्यक्तिओनो फाळो छे एमना चित्रों दोरवामां आव्या छे। मित्रों, आ रेलवे स्टेशन पर जे मध्य भाग छे, मध्य गुंबज छे, एनी नीचे एक 139 वर्ष जूनी रोमन आंकड़ावाड़ी घड़ियाळ छे। अने आ घड़ियाळ लंडन थी मंगावामां आवी हती। अने आ इमारतनुं एक बीजुं एक आकर्षण छे, अहीं आवेलो 160 फूट ऊंचो पत्थरनो बनेलो गुंबज जे अष्टकोणीय आकारमां छे। मित्रों, आ इमारत इटालियन गौथिक शैलीमां बनी छे अने इटालियन गौथिक शैलीमां बनेली बधी ज इमारतोमां पत्थरना गुंबजवाड़ी आ प्रथम इमारत छे।

0: कि करीब 9.5 करोड़ किसानों के खाते में सीधे हस्तांतरित किए जा चुके हैं। तो वैभव, ये एक जहां एक ओर हम महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर किसान सशक्तिकरण की भी बात चल रही है, क्योंकि जैसा कि सरकार का उद्देश्य है कि प्राथमिकता हमारे प्रधानमंत्री की किसानों को आगे रखना, किसानों को लेकर इस विकास यात्रा को आगे रखना है।
1: Absolutely, Siddharth, to make the incomes of the farmers go double and triple. When the country develops, we have to take care of every person in the nook and corner of the country. The policy of

0: देखते हैं इसमें तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी से 1947 में बंगाल विभाजन की रूपरेखा और निर्णय से जुड़ा है। ये 15 अप्रैल 1947 को तारकेश्वर में ही बंगई हिंदू महासभा का एक महत्वपूर्ण 3 दिन का अधिवेशन हुआ था। इस अधिवेशन में ही डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को पश्चिम बंगाल के गठन के लिए कदम उठाने के लिए आधिकारिक रूप से अधिकृत किया गया था और इसी ऐतिहासिक जनादेश के आधार पर डॉक्टर मुखर्जी ने बंगाल विभाजन का प्रस्ताव रखा था और आज पूरे पश्चिम बंगाल में ये दिवस पारंपरिक रूप से मनाया जा रहा है।
1: सिद्धार्थ, इन द ग्रेट वर्ड्स ऑफ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, प्रोटेस्ट अगेंस्ट इनजस्टिस, रेजिस्ट ऑप्रेशन एंड इफ नेसेसरी रिटेलिएट, दीज वर द वर्ड्स ऑफ दिस ग्रेट मैन हु गेव विजन टू द पीपल ऑफ वेस्ट बंगाल दैट यस, वी एज पार्ट ऑफ इंडिया हैव टू मेक इंडिया a sone ki chidiya, that golden bird again. We have fought a long battle against the British Raj, against the colonial rule, and now it's time that we take things into our own hands and we make not just Bengal but the country great. And today's occasion, wherein we remember all those great years during the critical years of 1946 to 1947, Dr. Shyama Prasad Mukherjee exerted a powerful voice for safeguarding the interests of Bengal and its people. Strong public opinion emerged, demanding that the western part of Bengal remain within India. Tarkeshwar stands as a silent witness to that momentous chapter of history. On June 20th, 1947, this historic decision, as told by Siddharth, was taken, determining the future of Bengal, which later laid the foundation stone for the formation of West Bengal. This is a glorious history. This is a pride of heritage. This is a commitment to progress.
0: बिल्कुल वैभव, जैसा कि तुमने प्राइड की बात करी तो इस वर्ष के पश्चिम बंगाल दिवस का विषय है पश्चिम बंगाल, विरासत, सद्भाव और विकास, राज्य की सांस्कृतिक समृद्धि, सामाजिक एकता और विकासात्मक आकांक्षाओं को ये दिवस दर्शाता है। और अब से आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंग दिवस के अवसर पर पश्चिम बंगाल के सभी नागरिकों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि यह दिवस उस राज्य का जश्न मनाता है जिसने साहित्य, संगीत, कला, आध्यात्म, विज्ञान, व्यापार एवं वाणिज्य, सामाजिक सुधार सहित अनेक क्षेत्रों में अपने अमूल्य योगदान से भारत के इतिहास को महत्वपूर्ण रूप से आकार दिया है। माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल ने अनगिनत तरीकों से भारत की राष्ट्रीय चेतना को समृद्ध बनाया है और जिस तरह की बात आज बंगाल के लिए बेहद खास है और ये दिन उस राज्य का जश्न मनाता है जिसने साहित्य, संगीत, कला को एक नई दिशा दी वैभव। और बंगाल की जब भी बात होती है तो इस तरह से जिस तरह का पूरा बंगाल का हम देखते हैं कि वहां का साहित्य, वहां की कला, वहां की संस्कृति, और बंगाल अब विकास की एक नई ऊंचाइयों को छूने जा रहा है।
1: Absolutely, Siddharth. This is the promise with which the government has been formed in Bengal after years and years of injustice. Now we see that the government, and this will be a government which will be a government of a double engine. And today's function, Siddharth, is not just something that we are seeing for the first time. This is the 23rd installment. This is a direct transfer. We don't just see one promise. We see many promises together. We see an actual execution of the digital Bharat. We see no middlemen. We see direct transfers, financial benefits going into the hands of brother and sister farmers throughout the country. This is a place where an amount exceeding 907.21 crores will be transferred to over 45.35 lakh beneficiaries in West Bengal alone in the 23rd installment. Imagine the mammoth scale on which this PM Kisan Samman Nidhi is operating right now and the mammoth scale on which it is benefiting the farmer brothers and sisters in the country. Along with the release of the 23rd installment, Siddharth, of PM Kisan Nidhi, the following schemes or the programs that will be launched will be Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana, that is the restructured weather-based crop insurance scheme. The next one will be a digital agriculture mission. There will also be a national mission on natural farming, NNNF, and the Pradhan Mantri Dhan Dhan Krishi Yojana, which was approved by the Union Cabinet in the July of 2025 and launched on the 11th of October 2025, an initiative aimed at accelerating agricultural growth in 100 districts characterized by low productivity, low cropping intensity and limited credit flow. Imagine, we are taking so many steps. It's not just the credit flow that is going to the farmers. It's

0: not just the money that is going to the farmers, it is also fertilizers, it is also the good quality of seeds, it is also the scientific research that is going on continuously in the country, which is helping the farmers gain momentum and be a part of this development journey.
1: बिल्कुल वैभव, जैसा कि तुमने बताया कि ये जो यात्रा है, ये न सिर्फ योजनाओं की यात्रा है बल्कि किसानों को हर तरीके से सशक्त बनाने की यात्रा है। और आज प्रधानमंत्री जी कई केंद्रीय कृषि योजनाओं का शुभारंभ करने वाले हैं। इन योजनाओं में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, डिजिटल कृषि मिशन के अंतर्गत एग्री स्टैक, प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय मिशन और प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना शामिल है। प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जिसे हम PMFBY का नाम देते हैं, इसका शुभारंभ करेंगे, जिससे विश्व की सबसे बड़ी फसल बीमा योजना का लाभ राज्य के किसानों तक पहुंचेगा। 2026-27 के दौरान इस पहल का उद्देश्य पश्चिम बंगाल राज्य में लगभग 14 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि पर लगभग 50 लाख किसानों को बीमा कवरेज प्रदान करना है, जिससे लगभग 28,140 करोड़ रुपए के अनुमानित बीमित मूल्य की फसलों की सुरक्षा हो सकेगी और किसानों को पर्याप्त प्रीमियम सब्सिडी के माध्यम से सहायता प्रदान की जाएगी। और इसके अलावा, जैसा कि वैभव हम जानते हैं कि डिजिटल जमाना है और जिस तरह से अभी ये सारी चीजें चल रही है, डिजिटल कृषि मिशन के अंतर्गत क्या होने वाला है, प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल में एग्री स्टैक का शुभारंभ कर रहे हैं। इसके अंतर्गत उर्वरक वितरण, किसान क्रेडिट कार्ड, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण और न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली के अंतर्गत खरीद जैसी सत्यापित कृषि संबंधी सेवाओं के लिए एक एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म यानी यूनिफाइड डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध होगा। और ये पहल कृषि क्षेत्र में डिजिटल शासन को मजबूत करेगी और किसान केंद्रित सेवाओं के कुशल वितरण को सुगम बनाएगी। तो अब चीजें डिजिटली लोगों के पास पहुंच जाएंगी बहुत फास्ट।
0: एब्सोल्युटली, एज यू सेड, चीजें बहुत जल्द लोगों के पास पहुंच जाएंगी। एंड आई वांट टू से दैट इट वोंट जस्ट बी द प्रोक्योरमेंट ऑफ थिंग्स दैट विल हैपन इन अ वेरी स्मूथ एंड अ वेरी फंक्शनल वे, बट द होल लाइन ऑफ क्रेडिट। Once you get the raw material, which is of a good quality, which has been backed by scientific research, which has been done by great government institutions, huge amounts of money that has been invested into those, you get those raw materials into the soil, which is being continuously made fertile by more fertilizers, again, through natural and organic ways. Then you get the produce of those farms, you get them to the markets at a good rate, again, benefit to the farmers. And then when you get those rates and when you have to improve, or let's say you have to develop your farms, you have to expand your farms, you get the credit facilities. So at each and every level of this whole line flow, you're getting support from the government. The kisan or the farmer brothers and sisters are getting support from the government, and that is exactly what should happen. That is the feeling, that is the concept of Antyodaya. When you include each and every person who is there in the nook and corner of the country, when you include everyone together in the development journey, that is exactly when you get a developed Bharat. That is exactly when you get a Vikasit Bharat.
1: बिल्कुल, विकसित भारत की बात आपने की है। और एक सरकार की एक जो नई पहल है, देश में जिस तरह से कोऑपरेटिव सोसाइटीज का निर्माण किया जा रहा है, जो मिडिल मैन की भूमिका है उसको खत्म किया जा रहा है ताकि किसानों को सीधे मार्केट में एक अवसर मिल सके। आप ऐसा सोचिए कि वैभव, किसी गांव में बना हुआ कोई उत्पाद या देश के किसी सुदूर क्षेत्र में किसी किसान का जो प्रोड्यूस होता है या वो प्रोडक्ट होता है, उसको एक बाजार को उपलब्ध कराना सरकार की मंशा है कि देश में ज्यादातर जो कोऑपरेटिव्स को हम डेवलप करें, इस फॉर्म को डेवलप करें और ज्यादा से ज्यादा किसानों को इससे जोड़ें ताकि एक एक जो व्यवस्था है वो डिजिटल रूप में उनको एक टेक्नोलॉजी मिले। जैसे आपने आज आपने टेक्नोलॉजी की बहुत बात करी है कि उत्कृष्ट तकनीक के साथ एक उत्कृष्ट उत्पाद की बात हम करते हैं वो किसानों का लोगों तक पहुंचने के लिए, और जितनी भी सारी उसमें इस पूरी प्रोसेस में, इस पूरी प्रक्रिया में जहां जहां किसानों को, चाहे हम किसान की सॉइल की बात करनी हो, चाहे फर्टिलाइजर की बात करनी हो, चाहे हमें अन्य टेक्नोलॉजी की बात करनी हो। आज ड्रोन दीदी की बात होती है तो किस तरीके से, आज वेदर फोरकास्टिंग की बात होती है, हम हर तरीके से वैज्ञानिक रूप से किसानों को सशक्त बनाने की कोशिश कर रहे हैं।
0: एब्सोल्युटली सिद्धार्थ, द वर्ड दैट यू यूज्ड एंड यू हैड यूज्ड दिस वर्ड अर्लियर एज वेल, व्हिच इज सशक्त बनाना, that is to make the farmer brothers and sisters empowered. How do you make them empowered exactly? That is the question, and that was probably the question in the mind of the Honorable Prime Minister when he had introduced the Digital India Mission, because Imagine a farmer sitting in one corner

0: जी हाँ, और इस समय हम देख पा रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी का मंच पर आगमन हो रहा है और वो मंच पर पहुंच गए हैं और चारों तरफ से ये लोगों की आवाजें उनको अभिवादन करते हुए, उनका स्वागत करते हुए लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं और माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने अपना स्थान ग्रहण कर लिया है और
1: समर्पण करेंगे।
2: The Honorable Prime Minister on the stage sitting along with the Governor of West Bengal, Shri Arun Ravi, and the Chief Minister of West Bengal, Shri Suvendu Adhikari. People craning their necks. Now, the national anthem and the national song.

0: धन्यवाद.
1: Listen to that roar, Siddharth. Listen to those voices coming from Tarkeshwar. Look at those faces, happy faces, craning necks. So excited to see the Honorable Prime Minister. So excited to see their Chief Minister. And so excited for the fact that all the promises that were being made, that have been done, are now coming true, are now being seen, the face of execution. They know that all these things are coming true. And the Honorable Prime Minister getting up from his seat along with the Governor of West Bengal and the Chief Minister of West Bengal.
2: जी हाँ, माननीय प्रधानमंत्री, इस समय उनका स्वागत किया जा रहा है और माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं इस समय. और प्रधानमंत्री जी के साथ
0: अभिनंदन करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री शुभेंदु अधिकारी,
2: माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करने के लिए मुख्यमंत्री माननीय श्री शुभेंदु अधिकारी जी,
0: और सम्मान का प्रतीक है पहले बाबा तारकनाथ जी की प्रतिकृति.
2: जी हाँ, बाबा तारकनाथ जी की प्रतिकृति, उनको भेंट करते हुए. और बंगाल में माँ दुर्गा का बहुत महत्व है और माँ दुर्गा की पूजा की जाती है. और माननीय प्रधानमंत्री महोदय को भेंट देते हुए
0: और आइकॉनिक मिठाई रसगुल्ला यानी रसगुल्ला,
2: और वह बंगाल का जो रसगुल्ला है वो तो पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, उसको भेंट दे रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी को.
0: जल भरा संदेश यानी संदेश के अंदर रस से भरा हुआ एक अनमोल मिठाई.
1: Siddharth, you should remember that this is not just a culmination of religion, it's not just a culmination of tradition, of legacy, of heritage, of sweetness, of all the things that now people are expecting from the government, the sweetness of those dreams and aspirations that the people have from the Honorable Prime Minister.
2: और वैभव उसकी मिठास यहाँ जो जन समुदाय है उसमें दिख रहा है. और माननीय प्रधानमंत्री जी लोगों को संबोधित और इस समय मुख्यमंत्री महोदय जो है वो संबोधित करने के लिए आए हैं.
3: डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी लौह प्रणाम. डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी लौह प्रणाम. भारत केसरी लौह प्रणाम. स्वामी प्रणवानंद लौह प्रणाम. सम्मानीय देशेर यशस्वी प्रधानमंत्री, गोटा पृथ्वीर सबसे जनप्रिय नेता, जिन्हें 140 कोटी भारतवासीर हृदयेर अंतरेर आत्मीय, जिनि निजे के प्रधानमंत्री बोलें ना प्रधान सेवक बोलें, उनाके बाबा तारकनाथेर पुण्यभूमि तारकेश्वरे पश्चिमबंग दिवसे पश्चिमबंग सरकारेर पक्ष थेके आमी प्रणाम श्रद्धा एवं स्वागत जानाच्छि. आमादेर मध्ये उपविष्ट आछेन एई राज्येर अत्यंत लोकप्रिय एकजन राष्ट्रवादी राज्यपाल, आमादेर सरकारेर प्रधान परिचालक सम्मानीय आर एन रविजी एवं जनता जनार्दन. आजकेर ए ऐतिहासिक दिने ए तारकेश्वरेर पुण्यभूमिते माननीय प्रधानमंत्री तार व्यस्ततम शिड्यूलेर मध्ये उपविष्ट हयेछेन, तार कारण आमी अल्प कथाय निवेदन करब. माननीय प्रधानमंत्री जी उड़ीसाय महामहिम राष्ट्रपति जीर संगे प्रोग्राम करे एखाने एसेछेन, ताके कलकाता फिरते हबे. তিনি আজকে লোকভবনে থাকবেন, আগামীকাল বিশ্ব যোগা দিবসে বন্দে যোগম কর্মসূচিতে তিনি লক্ষ লক্ষ যোগা অভ্যাসকারীদের সঙ্গে থাকবেন, তাই আমি বিস্তারিত বক্তব্য রাখব না. ১৯৪৭ সালে ডক্টর শ্যামা

সঙ্গীতের পরে মৃত্যু কোচবিহারের কোচ রাজবংশী সম্প্রদায়ের ঐতিহ্যবাহী লোকনৃত্য বৈরাতি माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करने के लिए पेश है अतिथि बरन बैराती नृत्य।

0: अब मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से विनम्र अनुरोध करती हूं कि वे कृपया विभिन्न मंत्रालय की कुछ विशेष परियोजनाओं का शुभारंभ, उद्घाटन तथा राष्ट्र को समर्पण करने की कृपा करें।
1: The release of the PM Kisan Nidhi, the 23rd installment being done by the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi with a smile on his face and a confident handshake. Now, this has been released. Various beneficial scheme for the people of the country. Various schemes including infrastructure of railways, of roadways, of port developments, of fisheries, of highways. So many things together being released by the Honorable Prime Minister.
2: जी हाँ, माननीय प्रधानमंत्री ने कई सारी योजनाओं का शुभारंभ किया आज, और किस तरीके से लगातार यहाँ पे आप देख रहे हैं, और हम आपको बताना चाहते हैं कि इस रंगारंग कार्यक्रम के तुरंत बाद ये जो कई विकास जो परियोजनाएं हैं उन परियोजनाओं की शुरुआत की है माननीय प्रधानमंत्री जी ने।
1: इट रिलेट्स टू द गुड प्रोडक्शन, द लेबोरेटरीज दैट आर देयर, इट रिलेट्स टू द पोर्ट्स दैट आर बीइंग डेवलप्ड, इट रिलेट्स टू द फार्मर प्रोड्यूसर्स दैट विल बी गिवन अ फेयर शेयर इन द market. All these things have been released now by the Honorable Prime Minister. The people craning their necks, happy to see the Prime Minister and happy to see the fact that the Prime Minister has delivered on each and every promise that he had made. And the one vision that is in mind is, of course, of Viksit Bharat, of a developed India by 2047.
2: Ji haan, Pradhan Mantri, अभी लगातार कई सारी परियोजनाओं का शुभारंभ कर रहे हैं, और अब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान योजना की जो 23वीं किस्त का हस्तांतरण माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने रिमोट का बटन दबाकर किया, और इसके साथ ही ये किसानों के खाते में ये रकम पहुंच गई। आज 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रुपए वो उनके खाते में पहुंचे हैं।
1: एंड सिद्धार्थ, मोर देन 2 करोड़ वुमेन बेनिफिशरीज आर अमंग्स दोज फार्मर्स हु विल बी गेटिंग दिस डायरेक्ट ट्रांसफर, दिस इंस्टॉलमेंट ऑफ पीएम किसान सम्मान निधि। इमेजिन द लेवल एट विच दिस scheme is now operationalized, is functional, is being executed. Imagine what is happening. And now the moment that everyone has been waiting for, everyone is now waiting for the fact that yes, the Honorable Prime Minister will speak his heart out. And there he is on stage, Prime Minister Modi.

मंच पर विराजमान राज्यपाल आरएन रवि जी, यहां के लोकप्रिय और ऊर्जावान मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी जी, अन्य सभी महानुभाव और बंगाल के मेरे भाई और बहनों, बाबा तारकनाथ और बंगाल की पुण्य भूमि पश्चिम बंग दिवस की ऐतिहासिक तारीख और इतनी बड़ी संख्या में आप सभी की उपस्थिति आज चुनाव और शपथ ग्रहण के बाद मुझे पहली बार आपके बीच आने का सौभाग्य मिला है। बंगाल की हवा में अब एक नई ताजगी है। यहां के कण कण से एक नई खुशबू आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे बंगाल अब बेड़ियों से आजाद हो गया है, जैसे बंगाल का गौरव लौटने का आरंभ हो गया है। आज का ये कार्यक्रम साक्षी है, इन परियोजनाओं का शुभारंभ गवाह है कि हमारा बंगाल अपने नए भविष्य के निर्माण में जुट गया है। बंगाल के लोगों के चेहरों की चमक, गांव गांव में खुशी और विश्वास का भाव, मैं आपके इस आनंद में भागीदार बनने के लिए आया हूं। आपका एक वोट, एक चुनाव कितना कुछ परिवर्तन कर सकता है ये बंगाल में साफ साफ नजर आ रहा है। परिवर्तन भालो लागे छे, तो मैं इस अवसर पर बंगाल के लोगों को और सभी देशवासियों को इस आयोजन की, पश्चिम बंग दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज आप सभी की मैं स्वच्छता से स्वागत पहल के लिए भी सराहना करना चाहता हूं, भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। स्वच्छता हमारे दैनिक जीवन का अभिन्न हिस्सा होना चाहिए। जहां स्वच्छता होगी वही विकास भी उतना ही सुंदर दिखेगा। मैं आपको स्वच्छता से स्वागत के लिए भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, इस बार पश्चिम बंग दिवस की यह तारीख और भी खास है। आजादी के बाद बंगाल के उज्जवल भविष्य के लिए जो सपना देखा गया था, बंगाल की महान आत्माओं ने जो परिकल्पना की थी, आज एक तरह से पहली बार हम पश्चिम बंग दिवस पर उन सपनों को सच्चाई में बदलते देख रहे हैं। ये ऐतिहासिक तारीख पश्चिम बंगाल के विकास की प्रेरणा बने, हम एक नया और गौरवशाली इतिहास रचे। आज

बीजेपी एनडीए सरकार में इसके लिए विकास के महाअभियान की शुरुआत हो रही है। साथियों, बंगाल में दशकों तक पहले लेप और फिर टीएमसी ने जो गड्ढे बनाए उन्हें भरने के लिए डबल इंजन सरकार ने सुपर फास्ट स्पीड से काम करना शुरू कर दिया है। बिजली की रफ्तार से फैसले हो रहे हैं, रुकी हुई योजनाओं पर काम आगे बढ़ने लगा है। इसी कड़ी में आज यहां सैकड़ों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास हुआ है। रेल, रोड, कृषि, मछली पालन, इससे जुड़ी ये परियोजनाएं बंगाल के विकास को नई गति देगी। इन परियोजनाओं से यहां की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। मैं बंगाल के लोगों को इन विकास परियोजनाओं की बधाई देता हूं। आज पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी की गई है। देश भर के 9 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में लगभग 19,000 करोड़ रुपए सीधे भेजे गए हैं। मैं देश के सभी लाभार्थी मेरे किसान परिवारों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, गुलामी के दौर में हमारे बंगाल ने क्या कुछ नहीं सहा, कितने बलिदान दिए, कितने त्याग किए। 1946 में कोलकाता में हुई हिंसा, नोआखली के दंगे, कितने निर्दोष बंगाली मानुष, बंगाल के लोग उसकी भेंट चढ़ गए। भाइयों बहनों, बंगाल ने रक्तपात सहा, बंगाल ने अपनों को खोया, अपनी मातृभूमि के टुकड़े होते देखे, लेकिन बंगाल ने अपनी अस्मिता और पहचान को नष्ट नहीं होने दिया। इसी का परिणाम था जब पूरे बंगाल को भारत से अलग करने की साजिश हो रही थी, तब अलग पश्चिम बंगाल बनाकर उन मंसूबों को कामयाब नहीं होने दिया गया। हजारों वर्ष पुरानी सभ्यता और संस्कृति, यहां की मूल आस्था और परंपरा, तब अनेक संघर्षों के बाद बच गए थे और आज भी वो मूल्य इस धरती के संस्कार आज पश्चिम बंगाल के रूप में न केवल सुरक्षित है बल्कि जीवंत भी है। इसलिए पश्चिम बंग दिवस के रूप में हम केवल 1 तारीख को याद नहीं कर रहे हैं, हम पूरे इतिहास को याद कर रहे हैं। हम हजारों साल पुरानी बंगाल की विरासत को नमन कर रहे हैं। साथियों, आज की पीढ़ी को हमें बार बार पश्चिम बंग दिवस की अहमियत बताने की जरूरत है। उस दौरान क्या हो रहा था, ये युवा

पीढ़ी को जानना जरूरी है। जब पूरे बंगाल को पाकिस्तान का हिस्सा बनाए जाने की कोशिशें हो रही थी तो कांग्रेस उन षड्यंत्रकारियों के सामने घुटने टेके पड़ी थी और यही वो समय था जब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उसके खिलाफ आवाज उठाई। अप्रैल 1947 में उन्होंने ऐतिहासिक रिजोल्यूशन पास कराया। उन्होंने घोषणा की पूरा बंगाल पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनेगा। इसके लिए बंगाली हिंदू होमलैंड मूवमेंट शुरू किया गया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसका नेतृत्व कर रहे थे। प्रसिद्ध वैज्ञानिक मेघनाथ साहा, इतिहासकार आरसी मजुमदार, इतिहासकार जदुनाथ सरकार, सुनीति कुमार चट्टोपाध्याय, बंगाल के ऐसे कितने प्रबुद्ध और प्रसिद्ध लोग इस मूवमेंट का हिस्सा बने। जीडी बिरला जैसे उद्यमियों ने इसे आगे बढ़ाया। मतवा लीडर पीआर ठाकुर ने आगे आकर इस मूवमेंट को समर्थन दिया। अखबारों में लेख लिखे गए, इससे कहानियां लिखी गई। वंदे मातरम की भावना को एक बार फिर स्फुरित किया गया। बंगाल की जिस आवाज को मजहबी एजेंडों से दबाया जा रहा था, इस जन आंदोलन से वो स्वर फिर से मुखर हो उठे। इसी का नतीजा था भारत विरोधी लोगों को ये पता चल गया पूरे बंगाल को भारत से तोड़ना नामुमकिन होगा और पश्चिम बंगाल के रूप में ये हिस्सा मां भारती के साथ रह गया। साथियों, जिस भावना से पश्चिम बंगाल को बचाया गया था आजादी के बाद, उसी भावना पर इसे आगे बढ़ाने की जरूरत थी। लेकिन दुर्भाग्य से ठीक इससे उलट काम हुआ। पश्चिम बंग दिवस और इसकी भावना को भुलाने की कोशिश हुई। सियासी एजेंडों के कारण इतिहास का व्हाइट वॉश किया गया। भाइयों बहनों, विभाजन के समय जो कांग्रेस बंगाल को लावारिस छोड़ना चाहती थी, विभाजन के बाद उसने बचे हुए पश्चिम बंगाल में भी तुष्टीकरण के खेल खेलने शुरू कर दिए। पश्चिम बंगाल के इस इतिहास को दबाया गया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जनसंघ के संस्थापक बने, इसलिए उनके योगदान को नकारा गया। जिस भावना को लेकर उन्होंने बंगाल के लिए लड़ाई लड़ी थी, उस विचार को भी खत्म करने की कोशिशें होती रही। गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, स्वामी विवेकानंद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे जिस धरती का ऐसी महान संतानों से नाता रहा हो, उस पर विदेशी विचारधारा थोपी गई। पहले कांग्रेस, फिर लेफ्ट,
टीएमसी दशकों तक पश्चिम बंगाल को सहेजने और संवारने की जगह इसे अवैध घुसपैठियों का अड्डा बनने दिया गया। जो बंगाल भारत के विकास का नेतृत्व कर सकता था वो आगे बढ़ने की जगह पिछड़ता चला गया। साथियों, आज पश्चिम बंग दिवस पर हमारा कर्तव्य है, हम संकल्प लें, अब इतिहास की वो गलतियां दोहराई नहीं जाएगी। अब पश्चिम बंग दिवस से प्रेरणा लेकर नया इतिहास रचा जाएगा। साथियों, दशकों के कुशासन ने पश्चिम बंगाल को मीलों पीछे पहुंचा दिया है। आप सबने देखा है, पुरानी सरकारों के समय में कैसे हालात हो गए थे। यहां से बड़े उद्योगों का पलायन हुआ, छोटे उद्योग धंधे ठप पड़ते चले गए, युवाओं का रोजगार छिनता गया, संसाधनों पर घुसपैठियों का कब्जा होता चला गया। जो पश्चिम बंगाल कभी अवसरों की भूमि होती थी वो पलायन का केंद्र बनती चली गई। इसी माहौल में आपने एक संकल्प लिया, टीएमसी सरकार को पलटने का, उसे हटाने का। आपने बीजेपी को आशीर्वाद दिया, रिकॉर्ड सीटों के साथ हमें विजयी बनाया। और आज पूरा देश देख रहा है कैसे तुरंत ही इसका नतीजा भी बंगाल को मिलने लगा है। जिन अधिकार से आपको बरसों तक दूर रखा गया, आज वो हक आपके द्वार तक पहुंच रहा है। मैंने चुनाव के समय आपको आयुष्मान भारत योजना की गारंटी दी थी। जब बंगाल के हर गरीब को आयुष्मान भारत का लाभ मिलना तय हो गया है, माताओं बहनों को अन्नपूर्णा योजना का सीधा लाभ मिलना शुरू हो गया है, हर घर स्वच्छ पानी पहुंचे, इसके लिए भी पश्चिम बंगाल सरकार और केंद्र सरकार के बीच जल जीवन मिशन को लेकर एमओयू साइन हो गया है। हमने चुनाव के समय बंगाल के युवाओं से वादा किया था, वो वादा पूरा करते हुए नौकरियों में आयु की सीमा में ढील दी गई है। महिलाओं को फ्री बस यात्रा का वादा भी पूरा हो चुका है। साथियों, सालों साल राजनीतिक दुश्मनी में जिन योजनाओं को रास्ते में ही लटकाया गया, आज उन सारी बंदिशों को तोड़कर जन कल्याण शिविरों के जरिए हर सरकारी योजना का लाभ सीधे आप तक पहुंचाया जा रहा है। अब कोई बिचौलिया नहीं, कोई रुकावट नहीं, सिर्फ आपके अधिकार पर फोकस है, बंगाल के विकास पर फोकस है, बंगाल और देश की सुरक्षा पर फोकस है। आपने देखा होगा, सीमा पर फेंसिंग के लिए पिछली सरकारों ने जमीन ट्रांसफर का जो काम दशकों से रोक रखा था, नई सरकार बनते ही वो काम भी पूरा करने का काम शुरू हुआ है। भाइयों बहनों, मुझे खुशी है

कि पश्चिम बंगाल में औद्योगिक प्रगति की नींव फिर से बननी शुरू हो गई है। इस नींव के दो अभिन्न अंग है, ईमानदार और पारदर्शी शासन और दूसरा कानून का राज। पश्चिम बंगाल ही नहीं, पूरा देश

आज इस बदलाव को देख रहा है, जिन्होंने आपको लूटा वो खुद आकर लूट के पैसे लौटा रहे हैं। बड़े बड़े लुटेरों को जेल भेजा जा रहा है, सिंडिकेट वाले जनता से माफी मांग रहे हैं, टोल नाकों पर अवैध वसूली करने वाले गुंडे नाके छोड़कर भाग गए हैं, बंगाल के लोग बिना रोक टोक के आ जा रहे हैं। एखन काट माने शेष काज शुरू होए गए छे। साथियों, जो बंगाल अभी तक खराब सड़कों और खस्ता हाल इंफ्रास्ट्रक्चर से जूझ रहा था, वहां अब वर्षों से लटके अटके प्रोजेक्ट्स तेजी से आगे बढ़ने लगे। आप देखिए, चिंगरी घाटा क्रॉसिंग पर कोलकाता मेट्रो की ऑरेंज लाइन का रुका हुआ काम पूरा भी हो गया है। हावड़ा में लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से नए डिविजनल रेलवे अस्पताल की नींव भी रखी गई है। यहां इमरजेंसी सेवाएं होगी और गंभीर बीमारियों के इलाज की व्यवस्था होगी। पूर्व मेदिनीपुर में हौर और राधा मोहनपुर के बीच रोड ओवर ब्रिज, संकरेल संतरागाछी लिंक लाइन, ऐसे प्रोजेक्ट से यहां के लोगों को सुविधा होने वाली है। साथियों, आज पीएम किसान सम्मान निधि के तहत देश भर के 9 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में पैसे भेजे गए हैं और पश्चिम बंगाल के किसानों के लिए एक और खुशी की खबर है। आज से राज्य में पीएम फसल बीमा योजना शुरू की जा रही है। फसल बीमा योजना मुश्किल समय में किसान के परिवार को सहारा देगी। फसल को नुकसान होने पर किसान पर बोझ नहीं पड़ेगा। साथियों, अब पश्चिम बंगाल डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन से भी जुड़ रहा है। एग्रीस्टैक के माध्यम से किसान रजिस्ट्री बनेगी, गांवों के नक्शे और बोई गई फसल की जानकारी डिजिटल रूप में उपलब्ध होगी। खाद की खरीद, किसान क्रेडिट कार्ड, डीबीटी और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद जैसी सेवाओं में इससे आसानी होगी। साथियों, कृषि क्षेत्र में जो सबसे पिछड़े जिले हैं उन्हें आगे लाने के लिए सरकार ने पीएम धनधान्य कृषि योजना शुरू की है। इसमें पश्चिम बंगाल के 4 जिले पुरुलिया, दार्जिलिंग, अलीपुरद्वार और झाड़ग्राम शामिल है। इन जिलों में खेती की उत्पादकता बढ़ाने, स्टोरेज की सुविधा बनाने और किसानों के लिए लोन आसान करने पर काम होगा। बंगाल में मछली पालन से किसान, मछुआरे, व्यापारी सब जुड़े हैं। इसे दक्षिण 24 परगना के फेसरगंज फिशिंग हार्बर की क्षमता बढ़ाई गई है। वीरभूम में आधुनिक फिश मार्केट बनाने का भी काम हुआ है। अब बंगाल थमेगा नहीं, बंगाल अब इतिहास रचेगा। ए बार बांग्ला थाम्बे ना, एखन इतिहास गोरबे। साथियों, आज इस कार्यक्रम में देश के अलग अलग हिस्सों के लाखों किसान साथी भी जुड़े हुए हैं।

के मुख्यमंत्री गवर्नर भी जुड़े हुए हैं, देश भर की सरकारों के मंत्री भी जुड़े हुए हैं। इसके साथ साथ लाखों किसान भी आज हमारे इस दिवस को मनाने में वो वहां भी भागीदार बने हैं। ये सभी किसान पीएम किसान सम्मान निधि के लाभार्थी हैं। आज अपने इन सभी किसान भाइयों बहनों से मैं एक आग्रह भी करना चाहता हूं, और मेरे किसान भाई बहन मेरी बात को जरा गौर से सुनिए। मैं आपको हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, क्योंकि हमें अपने बच्चों को बर्बाद होते खेत नहीं देने हैं। हमें अपने बच्चों को उपजाऊ खेत देने हैं। हमें हमारी धरती माता को बचाना है। इस समय भारत सरकार खेत बचाओ अभियान चला रही है। इसके तहत मिट्टी की सेहत बचाने, केमिकल खाद का इस्तेमाल कम करने और प्राकृतिक खेती अपनाने पर जोर दिया जा रहा है। आप भी ज्यादा से ज्यादा संख्या में खेत बचाओ अभियान से जुड़े, खुद का खेत बचाने का संकल्प करें, आसपास के किसानों को खेत बचाने के लिए प्रेरित करें, और हम सब मिलके हमारी धरती मां की रक्षा करें। वो हमारी मां है। हम केमिकल से हमारी मां को मारने का पाप नहीं कर सकते हैं। हमें हमारी धरती मां को बचाना होगा। साथियों, भारत 2047 तक विकसित देश बनने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। विकसित भारत के संकल्प का सबसे बड़ा आधार है पूर्वी भारत का विकास। इसके लिए हम मिशन पूर्वोदय पर काम कर रहे हैं। इसमें बंगाल की भूमिका बहुत बड़ी है। बंगाल की प्रगति से पूर्वी भारत की गति बढ़ेगी। भाइयों बहनों, विकास के इस अभियान में हमें एक और बात का ध्यान रखना है। विकास की पहली शर्त है, जिसे हमें कभी भूलना नहीं है, और वो है शांति, सौहार्द और सामाजिक स्थिरता। हमें बंगाल की सांस्कृतिक पहचान और सामाजिक ताने बाने को और मजबूती देनी है। हमें सबको साथ लेकर चलना है। साथियों, कल देश और दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी मनाया जाना है। इस बार मैं बंगाल में ही योग दिवस का हिस्सा बनूंगा। स्वामी विवेकानंद और महर्षि अरविंद जैसे योगियों की भूमि, यहां से जो संदेश जाएगा उससे पूरे विश्व का मार्गदर्शन होगा। मैं चाहूंगा इस बार बंगाल कोने कोने में योग दिवस के आयोजन हो। आप सब योग करें, योग दिवस का हिस्सा बने। इसी अनुरोध के साथ मैं एक बार फिर आप सभी को विकास परियोजनाओं की बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज जब हम उत्साह और उमंग के साथ पश्चिम बंगाल दिवस मना रहे हैं, तो मेरा आप सबसे आग्रह है, अपना मोबाइल फोन निकालिए, अपने मोबाइल फोन की फ्लैश लाइट चालू कीजिए, और हम सब मिलकर के आज ये बंग दिवस मनाएं। सबके मोबाइल फोन की लाइट चालू हो। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की।

0: माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे वंदे वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: Moving towards a future, towards a Viksit Bharat developed India by 2047, we hope and pray that the resolve and the vow of the Prime Minister bears fruit and we see all those great results in our lives, in the lives of the country, in the lives of everyone to be there in the future.
2: धीरे धीरे कार्यक्रम अपनी समाप्ति की ओर बढ़ रहा है, अब समय है आपसे विदा लेने का। श्रोताओं, इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचाने में प्रस्तुति सहयोग दिया श्री एस वाई खान ने और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे श्री प्रमोद कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया। इसी के साथ मैं सिद्धार्थ सिंह अपने साथी कमेंटेटर वैभव ज्योत्सना श्रीवास्तव के साथ आपसे अनुमति लेता हूँ। नमस्कार।

0: यह आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है 100.1 मेगाहर्ट्ज। आइए सुनते हैं कार्यक्रम प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
1: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
0: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। इसके अंतर्गत सुनिए स्वच्छ और हरित पंचायत की श्रेणी में राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित असम की पंचायत के प्रयासों पर चर्चा। इस संवाद में भाग ले रही हैं जिला परिषद अध्यक्ष गीतांजलि हजारिका और सचिव सनकदान नार्जरी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं निखिल कुमार।
2: श्रोताओं नमस्कार। असम ने इस वर्ष के लिए राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए 3 प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार अपने नाम किए हैं। आपको हम बता दें कि असम के नागांव जिले की जुमरमुर ग्राम पंचायत ने स्वच्छ और हरित पंचायत श्रेणी में राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त रूप से 2 स्थान प्राप्त किया और एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। आपको ये भी बता दें कि ये प्रतिष्ठित सम्मान दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार के रूप में प्रदान किया गया। जिसके अलावा आपको हम बता दें कि असम के डिब्रूगढ़ जिले में स्थित हुगरी जान ग्राम पंचायत ने आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचा श्रेणी में राष्ट्रीय स्तर पर 2 स्थान प्राप्त करके एक शानदार उपलब्धि हासिल की है। और इसी तरह से असम के सोनितपुर जिले की न्यू नापाम ग्राम पंचायत ने राष्ट्रीय स्तर पर पहला स्थान हासिल करते हुए एक ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज की, जिसे नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और श्रोताओं आज हमारे साथ हैं नागांव जिला परिषद अध्यक्ष गीतांजलि हजारिका और जुमरमुर ग्राम पंचायत से ग्राम पंचायत सचिव सनकदान नर्जारी। आप दोनों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
3: नमस्कार।
2: गीतांजलि जी, सबसे पहले तो आपकी ग्राम पंचायत को पुरस्कार मिलने पर बहुत बहुत बधाई, और मैं आपसे यही पूछना चाहूंगा कि ये पुरस्कार मिला तो आपको कैसा महसूस हुआ, और जब पहली बार आपने इसके बारे में जाना तो कैसी भावनाएं थी आपकी?
3: पहले मैं आकाशवाणी
4: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा तब कितना कष्ट घटा होगा।
5: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: एक्चुअली में हम लोग पुरस्कार पाने के लिए काम नहीं कर रहे थे, हम लोग अपने गांव को बेहतर करने के लिए, हमारे जो गांव में जो परिस्थिति है, लोग

0: कचरा यहाँ वहाँ फेंकते हैं उनके बीच में जागरूकता फैलाने के लिए हमने बहुत सारे काम किए थे, तो वो जाके सफल हुआ तभी हमें ये पुरस्कार मिली है।
1: गीतांजलि जी, पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता, कचरा प्रबंधन, वृक्षारोपण और जल संरक्षण जैसी जो बातें हैं काफी महत्व रखती हैं और काफी काम भी आपके यहाँ पर किया गया है, तो इनके बारे में हमारे श्रोताओं को आप क्या बताएंगे?
2: हमने सबसे पहले गांव-गांव के महिला को जाकर सहायता किया, SHG जैसे ग्रुप महिलाओं के लिए खोले गए थे उनको शामिल किया, घर घर जाकर जैविक खाद बनाए और यो कचरे प्लास्टिक को अलग अलग करके हम लोग परीक्षण दिए और पंचायत की ओर जैसे कचरा संग्रह नियमित व्यवस्था की गई थी। सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों ने अपने आंगन के साथ सामाजिक रास्तों से कर्तव्य का समझकर आगे बढ़ा।
1: सुनंदन जी, लोगों को जोड़ने के लिए किस तरह की प्रक्रिया अपनाई आपने, किस तरह से उनको मोटिवेट किया?
0: सर्वप्रथम तो हमने हमारे जो गांव के अंतर्गत जितने भी स्वयं सेवक ग्रुप है महिलाओं को हमने बुलाया अपने पंचायत में और उन लोगों के बीच में जागरूकता फैलाई, उनको समझाया कि हमें हर, जबकि हम लोग कुछ ही कार्यकर्ता है पंचायत में, तो हमने उनकी सहायता ली। वो लोग जाके अपने अपने गांव में अपने अपने घर के आसपास के लोगों को जाके उन लोगों ने जागरूकता फैलाई है। ऐसे ही करके हम लोगों ने लोगों के बीच में पहले तो ये संदेश भेजा कि जो हमारे गांव में वो लोग के घर के आसपास जो कूड़ा फेंकते हैं उसको एक निर्धारित जगह पे फेंकना चाहिए। वैसे हमने बहुत सारे जगहों पे डस्टबिन्स भी बनाए हैं और जितने भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और प्लास्टिक वेस्ट उनको सबको सेग्रीगेट किया गया था, फिर वैसे प्लास्टिक वेस्ट को हमने रिसाइकल करने के लिए भेजा और बायोडिग्रेडेबल को डंप साइट्स में भेजा, उनका अच्छे तरह से डिस्पोजल हुआ। हमने निश्चित किया कि हर घर पे गैस सिलेंडर गैस जो होता है वो यूज हो, लकड़ी ये सब जलाने से उनको जो पोल्यूशन होता है उससे उसको रोकने का कोशिश किया। तो अभी तो 100% सब लोग सिलेंडर गैस LPG यूज करते हैं और बहुत सारे घरों में आजकल सोलर पावर भी लग चुका है, हमारे जितने भी स्ट्रीट लाइट है सब सोलर पावर ही है।
1: गीतांजलि, एकल इस्तेमाल प्लास्टिक होता है, सिंगल यूज प्लास्टिक जिसे हम बोलते हैं, उसका इस्तेमाल कम करने के लिए कौन कौन सी गतिविधियों को संचालित किया?
2: हम लोग गांव में जो पंचायत वार्ड है SHG ग्रुप है, SHG ग्रुप को हम लोग को गांव-गांव जाकर हम लोग को प्लास्टिक एक जगह कर रखे, पंचायत को भी हम लोग को सरकार ने जो पंचायत से निकाल कर एक जगह में रखने के लिए बोले।
1: और सनकदान जी, इसमें युवाओं की क्या भूमिका रही, किस तरह से उन्होंने इस चीज को लिया?
0: हमने जितने भी हमारे स्कूल्स है उन सब में भी हमने अवेयरनेस कैंप्स किए हैं, वहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स है उन लोगों ने पहले उन लोगों को समझाया गया कि कैसे हम लोग कचरे को सेग्रीगेट कर सकते हैं, अलग अलग करना है हमें, तो हर स्कूल में डेडिकेटेड डस्टबिन दिए गए थे जहाँ पे हम लोग बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल एक्स्ट्रा करते हैं। वैसे ही स्टूडेंट्स जब स्कूल पे सीख के गए वो अपने घर पे भी यही सारे हैबिट्स अपनाने लगे।
1: विकास कार्यों की जब हम बात करते हैं तो इसमें कई तरह के फैसले लिए जाते हैं, ग्रामीणों की भागीदारी कैसी रही थी इसमें?
0: तो हम लोगों ने जाके वार्ड सदस्यों को पहले जागरूक किया, वार्ड सदस्य अपने अपने वार्ड में जाके अपने अपने गाँव के लोगों को अपने वार्ड के लोगों को बताने लगे कि ये जो आप कर रहे हैं ये हमारे पृथ्वी के लिए कैसे हानिकारक है और आगे जाके ये हमारे स्वास्थ्य के लिए कैसे हानिकारक है, तो वो लोग धीरे धीरे समझने लगे। बहुत सारे लोग अभी इसमें ये समझ चुके हैं कि कैसे हमें अपने गांव को साफ रखना है, कचरा यहाँ वहाँ नहीं फेंकना है, ऐसे करके हमारे गांव के लोगों ने बहुत सारा हमें सहयोग किया है।
1: गीतांजलि जी, जो भी कार्य आपने किया जिससे आपको सफलता मिली है, तो किस तरह की चुनौतियाँ आपके सामने आई, कैसी समस्याओं का सामना आपने किया?
2: सरकार ने जैसे हम लोग स्वच्छ भारत मिशन में हम लोग को समझाया था कि हम लोग घर घर सबको समझाया, जैसे पारदर्शी होती है हम लोग जैसे खोलते हैं उनको कैसे देंगे, घर घर जाकर हम लोग बोले जैसे साफ सफाई करना और अच्छे से रखना, पानी को सेव करना, तो पहले तो लोग सीखा नहीं, फिर जब हम पंचायत में सबको बुलाया सिखाया तो धीरे धीरे सीखने लगा और अभी ऐसा अच्छा से चल रहा है।
1: संगठन जी, जिस तरह की चुनौतियां सामने रहती हैं उनसे निपटने के लिए अलग अलग तरह की योजनाएं भी बनाई जाती हैं, लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उपाय भी किए जाते हैं, आपकी तरफ से ऐसे कौन से प्रयास होते रहे जिनसे लगता रहा लोगों को कि हमें इससे जुड़ना चाहिए इन कार्यों से?
0: सबसे पहले हमने हर वार्ड में एक एक करके वार्ड सभा किए हैं और नियमित तरीके में हमने वार्ड सभा किए हैं, हम लोग सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद बाद जाके उनके बीच में अवेयरनेस फैलाते हैं। हम लोग कई स्कूल के जो हेडमास्टर है, एक्चुअल में गांव के लोग शिक्षकों को बहुत ही सम्मान करते हैं, तो हम लोग उनको भी हमारे साथ हमारे वार्ड सभा में बुला के लेके जाते हैं। जब शिक्षक ये सब बताते हैं लोगों को तो वो लोग अच्छे से सुनते हैं, ध्यान देते हैं इस बातों में। दूसरा है कि हमने गांव में प्रोसेशन भी किया है, कभी कभी हम लोग करते हैं, और हमारे जो सरपंच जी है उन्होंने अपने तरीके से कुछ लोगों को लगा के गांव में जो कचरा है वो सब झाड़ू से साफ कराया है और इवन वाटर भी छोड़ा है, पानी छोड़ा है और वो सब रास्ता को साफ कराया है, तो ऐसे करके हम लोग जागरूकता फैलाने लगे, फिर धीरे धीरे वो लोग इन सारे हैबिट्स को अपनाने लगे और ऐसे करके हम लोग लोग पुरस्कार को पाने में सक्षम हुए हैं।
1: खुले में शौच मुक्ति की लगातार बात की जा रही है, बहुत सारे ऐसे इलाके हैं, क्षेत्र जिन्हें खुले में शौच से मुक्त घोषित कर दिया गया है, तो आपके यहाँ पर इसमें किस तरह की गतिविधियाँ संचालित हुई?
0: हमारे यहाँ 100% ये खत्म हो चुका है खुले में शौच करना। पहले भी नहीं था इतना, लेकिन कुछ लोग थे जिनका जो शौचालय था उसका जो हालत था इतना अच्छा नहीं था, तो उनको सरकार के तरफ से एक फंड आता है, उससे हमने शौचालय दिलाए और बाद में जाके वो लोग शौचालय सही में इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं, ये सब भी हमने चेक किया, तब जाके खुले में शौच एकदम 100% खत्म हो चुका है अभी हमारे गांव में।
1: सनातन जी, वैसे जो सरकार की जितने भी योजनाएं होती हैं उन्हें आजकल डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए जमीन पर उतारने की कोशिश रहती है, ज्यादा से ज्यादा डिजिटल चीजों को किया जाए ताकि उसमें आसानी भी हो सके और पारदर्शिता भी बनी रहे, तो इस दिशा में आपकी पंचायत ने क्या कार्य किए?
0: हमने ई ग्राम स्वराज में जो हमारा जितना भी अचीवमेंट है वो सब आप देख ही सकते हैं, और आजकल जो PAI है, पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स, उसमें हम लोगों को अपना जो काम है उन सबको अपलोड करते रहना पड़ता है, उस हिसाब से हमारा जो एक मार्कशीट के जैसा निकलता है उसमें हमें पता चलता है कहाँ कहाँ हमने कितना काम अच्छा किया है, कहाँ कहाँ और बेहतर कर सकते हैं, और जहाँ बेहतर करना होता है हम उस पे जोर देते हैं।
1: सरंगदान जी, सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाने के लिए किस तरह का मॉडल आपने अपनाया? क्या सोच रखी थी कि जो भी योजनाएं हैं हम उसको लोगों तक पहुँचाएं, हमारी जो गतिविधियां हैं उन्हें अच्छे से संचालित करें?
0: यूजुअली जब हमें कोई स्कीम आती है हमारे यहाँ तो हम उसका माइकिंग करते हैं, हम गांव-गांव में अनाउंसमेंट करते हैं, हाँ, जो भी पेंशन स्कीम्स है वो सब कितने गांव वासियों को मिलनी चाहिए, हम अपने वार्ड सदस्यों को बोलते हैं, वो हमें सूची देते हैं कि कितने के पेंशन स्कीम के तहत जितना भी बेनिफिशियरीज है उनको ढूंढ के निकालने में वो हमें मदद करते हैं, और उसके साथ ही जिन जगहों में गांव के कुछ कुछ गलियों में अभी भी रास्ते अच्छे नहीं है तो उन लोगों से हम लोग ग्रीवेंस लेते हैं, उनका जो कंप्लेंट आता है उसमें हम लोग MGNREGA के तरह से हम उधर रास्ता बनाने का कोशिश करते हैं। ऐसे ही हम लोग हर वार्ड में वार्ड सदस्यों को हम लोग बोलते हैं कि आप लोग जाके गांव में लोगों से बात कीजिए, क्या असुविधाएं आई है उनके बारे में हमें बताइए, हम इसका हल करेंगे। हम वार्ड सभा भी करते हैं, ग्राम सभा भी करते हैं, और उसी में लोगों से उनका जो मत है वो हम लोग लेते हैं और उसके ऊपर हम काम करते हैं।
1: अब चूंकि आपकी पंचायत को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिल चुकी है, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर सम्मानित होना एक गर्व की बात है, तो अब आगे के लिए आपने क्या सोच रखा है कि आने वाला जो समय है उसमें आपकी ग्राम पंचायत और क्या बेहतर करेगी, या फिर उनके माध्यम से और लोग भी और कितना अच्छा कर सकते हैं अपने जीवन के लिए?
0: सर्वप्रथम तो बात यह है कि हमें द्वितीय स्थान मिली है, हमारा पूरा कोशिश रहेगा कि हम अगले बार पहले स्थान प्राप्त करें। हमने अभी तक जितना भी अचीवमेंट किया है उसमें थोड़ा और काम करना बाकी है, तो हम अभी जाके बस पहला तो यही है हमारा कि हम उसमें काम करना शुरू करेंगे। दूसरी बात यह है कि हमारे ब्लॉक में जितने भी पंचायत है वो हमसे बहुत ही प्रेरित हुए हैं, और हमें यह समझ में आया है कि अभी नौगांव भी बहुत ही गर्वान्वित हुआ है हमारे इस पुरस्कार को जो हमें मिला है, इस खबर को पाके पूरे नौगांव जिले में जितने भी पंचायत है सब गर्वान्वित हुए हैं और वो लोग सब प्रेरित हुए हैं, वो लोग का भी अभी उनके अंदर भी यह आ चुका है कि हम भी इसमें काम करेंगे।
1: तो आपको ये लगता है कि अब देश की जो सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत है उसमें जब आपका नाम आ चुका तो लोगों की?
3: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा तब कितना कष्ट घटा होगा।
4: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
0: थोड़े ही पास में उनका गांव है, विधायक जी भी आते रहते हैं, समय समय पे देखते रहते हैं कि हमने सही में काम किया है कि नहीं। हमारे जो भी उन्नयन खंड के अधिकारी सर है वो भी आते हैं, देखते हैं कि हमने सही में काम किया है कि नहीं। जिला परिषद के भी लोग आते हैं। पारदर्शिता का बात यह है कि हम लोग हमारा जो PAI है वही एक सबसे बड़ा प्रूफ है कि हमने काम कितना किया है, क्योंकि हम लोग ऐसे उसमें जो एक्चुअल डेटा है वही अपलोड होता है उसमें, तो इट्स क्वाइट ट्रांसपेरेंट।
1: गीतांजलि जी, आपके इस बदलाव से जो आपने परिवर्तन इतना बड़ा वहां पर किया है आपकी पंचायत के माध्यम से, जो भी बदलाव वहां पर देखा जा रहा है, इससे वहां के जो लोग हैं सभी लोग उनके जीवन में किस तरह से बदलाव आ रहा है?
2: उनके जीवन में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। जैसे हम लोग पंचायत में जो सहायता के लिए वो हम लोग निकल आ रहे हैं, पहले महिलाएं बाहर नहीं निकलती थी। आजकल हर घर से एक एक महिला निकल कर आती है, हम लोग को सहयोग करती है। जैसे आजकल समाज में ड्रग्स का बहुत चल रहा है, तो महिला संगठन आकर उसको सेफ देती है। पंचायत की प्रतिनिधि हो, हम लोग को पास आती है कि ऐसे ऐसे कर ऐसे सहायता करके

0: अंदर अंदर के जगह रिमोट एरियाज है वहाँ पे हम लोग स्ट्रीट लाइट्स लगाने के सोच रहे हैं, वो भी सब सोलर पावर्ड होंगी। कुछ ऐसे जगह पे हम लोग तालाब भी बनाने चाह रहे हैं जहाँ पे हम लोग मीन पालन कर सके लोगों को और जीविका हम लोग निकाल सके उनके लिए। साथ ही हम लोग आगे जाके अपने जो गाँव के आसपास जितने भी घर है उन सब में अभी भी जैसे हम लोग ये जो हम लोग काम करके ये पुरस्कार हमें प्राप्त हुआ है आगे जाके वो लोग रुक ना जाए, इस प्रयास को छोड़ ना दे, इस हैबिट को छोड़ ना दे, वो हम लोग कैरी फॉरवर्ड करेंगे, ये हम लोग मेक श्योर करेंगे, बस यही है। और हम चाहते हैं कि हमारे जितने भी पंचायत के प्रतिनिधियां हैं वो भी इसी तरह जैसे आज तक हमें सपोर्ट करते आ रहे, सहयोग करते आ रहे हैं वैसे आगे भी करते जाए। हमारे जितने भी गाँव वासी है वो लोग भी ऐसे हमें सपोर्ट करते रहे। हम लोग जितना भी जो भी हम लोग कर रहे हैं गाँव के लिए ही कर रहे हैं, हमारे राज्य हमारे देश के लिए कर रहे हैं, इसी भावना को मन में रख के अगर आगे भी वो यही ऐसे ही काम करते जाए तो सबके साथ मिलके हम लोग जरूर आगे बढ़ सकेंगे।
1: जी, सनकदान जी और गीतांजलि जी, आप दोनों ने इस चर्चा में भाग लिया, तमाम प्रश्नों का उत्तर दिया, इसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।
2: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे स्वच्छ और हरित पंचायत की श्रेणी में राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित असम की पंचायत प्रयासों पर चर्चा। इस संवाद में भाग ले रही थी जिला परिषद अध्यक्ष गीतांजलि हजारिका और सचिव सनकदान नर्सरी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे निखिल कुमार। इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं, पता है podcast.airnews@gmail.com।
3: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।

ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड रेडियो स्टेशन है 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। सभी सुनने वालों को सीमा वर्मा का नमस्कार। आइए साथियों, सुनते हैं कुछ मधुर गीत।

0: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
1: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
0: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
1: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
0: और विनर्स को क्या मिलेगा?
1: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
0: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही www.dellytalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
2: मम्मी, ये जहाज कहाँ जा रहा है?
3: बेटा, अब तो भारत का हर कोना आसमान से जुड़ रहा है।
4: जब भारत उड़ान भरता है तो उड़ान भरते हैं सपने, जुड़ते हैं शहर, बढ़ते हैं अवसर।
3: पिछले 12 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सक्षम नेतृत्व में विकसित हुए हैं 160 से ज्यादा एयरपोर्ट्स। उड़ान योजना से संभव हुआ है छोटे शहरों तक हवाई संपर्क। डीजी यात्रा से सरल एवं सुगम हुई हवाई यात्रा।
4: नागर विमानन मंत्रालय, विकसित होते भारत की नई उड़ान। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
5: स्वागत आप सभी का आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड रेडियो स्टेशन 100.4 पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना की है। उन्होंने आज कहा कि श्री मोदी ने विश्व नेताओं के साथ अपने दूरदर्शी शासन और संपर्क के जरिए वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है। राष्ट्रपति ने मोहन चरण मांझी सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ओडिशा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में एक जनसभा में ये बात कही। प्रधानमंत्री मोदी भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं से सशक्त होकर आदिवासी समुदाय भारत के विकास में सक्रिय योगदान दे रहे हैं। श्री मोदी ने पूर्वी भारत के विकास में तेजी लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के पूर्वोदय दृष्टिकोण का उल्लेख किया।
1: ओडिशा में आर्थिक गतिविधियां, निवेश और उद्योगों को आकर्षित करने का सामर्थ्य आज नजर आ रहा है। केंद्र सरकार का विजन है पूर्वी भारत के विकास से भारत का विकास। इसलिए हम पूर्वोदय की नीति पर काम कर रहे हैं। जिस पूर्वी भारत को कांग्रेस के दौर में पिछड़ेपन का पर्याय बना दिया गया था, आज वो प्रगति का प्रवेश द्वार बन रहा है।
0: इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को उनके 68वें जन्मदिन की शुभकामनाएं भी दी। इस दौरान ओडिशा में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया। बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में शामिल हुए।

0: दौरान उन्होंने राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी।
1: आज यहाँ सैकड़ों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास हुआ है। रेल, रोड, कृषि, इससे जुड़ी ये परियोजनाएं बंगाल को नई गति देगी। इन परियोजनाओं से यहाँ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। मैं बंगाल के लोगों को इन विकास परियोजनाओं की बधाई देता हूँ।
0: श्री मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त भी जारी की। इसके अंतर्गत देश के 9 करोड़ 44 लाख किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे अंतरित की गई। प्रधानमंत्री कोलकाता में कल स्वदेश में निर्मित नौसेना के 3 जहाजों INS दूनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय का अनावरण करेंगे। इन पोतों में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। इनके निर्माण में 200 से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों ने योगदान दिया है। सरकार ने जनहित में 16 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन FDC दवाओं के उत्पादन, बिक्री और वितरण पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर विशेषज्ञ समिति की समीक्षा के बाद ये फैसला लिया गया। समिति ने पाया कि इन दवाओं के संयोजन का पर्याप्त चिकित्सीय औचित्य नहीं है और इनके उपयोग से स्वास्थ्य संबंधी जोखिम हो सकते हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA कल होने वाली नीट UG 2026 पुनर्परीक्षा की तैयारियों के तहत आज देश भर में मॉक ड्रिल कर रही है। सुबह 9 बजे शुरू हुआ ये अभ्यास पूरे दिन जारी रहा। इस अभ्यास में 2.5 लाख से अधिक सुरक्षाकर्मी शामिल रहे। भारत सोमवार से शुरू हो रही 2 दिवसीय ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल करेंगे। बैठक में नई तकनीक से जुड़े सुरक्षा खतरों और आतंकवाद से निपटने के उपायों पर भी चर्चा होगी। बोलीविया के राष्ट्रपति रोड्रिगो पाज ने देश भर में ईंधन की कमी, रिकॉर्ड महंगाई और लगभग 50 दिनों से जारी सरकार विरोधी प्रदर्शनों और सड़कों की नाकेबंदी के बाद पूरे देश में आपातकाल की घोषणा की है। चेन्नई में तीसरे और अंतिम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान ने भारत को 219 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने चौथे ओवर में बिना किसी नुकसान के 35 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. President Draupadi Murmu today lauded Prime Minister Narendra Modi's leadership, stating that he has significantly enhanced India's prestige and influence on the global stage through his visionary governance and constructive engagement with world leaders. Addressing a large public gathering at Rai Rangpur in Odisha's Mayurbhanj district, organized to mark the completion of 2 years of the Mohan Charan Majhi government in the presence of Mr. Modi, the President said, India has consistently emerged as a voice of peace, dialogue and cooperation under Prime Minister Modi's stewardship. Addressing the public gathering, Prime Minister Modi lauded Odisha's progress as the state completed 2 years under Chief Minister Mohan Charan Majhi, saying it is moving rapidly on the path of development and contributing significantly to the growth of eastern India.
1: Odisha mein aarthik gatividhiyan, nivesh aur udyogon ko आकर्षित करने का सामर्थ्य आज नजर आ रहा है। केंद्र सरकार का विजन है पूर्वी भारत के विकास से भारत का विकास, इसलिए हम पूर्वोदय की नीति पर काम कर रहे हैं। जिस पूर्वी भारत को कांग्रेस के दौर में पिछड़ेपन का पर्याय बना दिया गया था, आज वो प्रगति का प्रवेश द्वार बन रहा है।
2: The Prime Minister today inaugurated and laid the foundation stones for development projects worth around 47,000 crore rupees across multiple sectors. Later, the Prime Minister arrived in West Bengal for a 2-day visit. He took part in Pashchim Bango Divas celebrations at Tarakeshwar in Hooghly district. He also released the 23rd installment of PM Kisan scheme worth 18,000

जी हाँ, आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है ये, जिसे आप सुन रहे हैं 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 6:11 और 3 सेकंड हो गए हैं और इस समय आपके साथ एफएम गोल्ड पर मैं हूँ रेशमा, सुनवा रही हूँ आपको ये खूबसूरत संगीत फिल्म काजल से मोहम्मद रफी की आवाज़ में।

जी आकाशवाणी का FM गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप। शाम के 6:14 और 40 सेकंड हो गए हैं और 6:20 पर यहीं FM गोल्ड पर आप सुनेंगे संस्कृत समाचार। लेकिन उससे पहले ये बताइए, कल शाम आप क्या कर रहे हैं? अगर अब तक कोई योजना नहीं बनाई है और थिएटर में रुचि रखते हैं तो आपके लिए कल की शाम थोड़ी व्यस्त हो सकती है। अगर आप लाजपत नगर के लाजपत भवन में मंचित होने वाले हास्य व्यंग के नाटक देखने में रुचि रखते हैं, जी कल रविवार 21 जून की दोपहर 3 बजे से डायरेक्टर प्रोड्यूसर मनोज हैरी के 2 नाटक मंचित होंगे जिन्हें आप देख सकते हैं। और उसके बाद 6 बजे से गीत संगीत का कार्यक्रम होगा तराना। तो रविवार की शाम का तो कार्यक्रम आपका तय हो गया है। आइए फिलहाल आज की शाम का ये गीतों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। सनम तेरी कसम फिल्म से किशोर कुमार की आवाज में इस गीत के साथ।

0: Good evening and welcome to the Saturday edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic news of the day. Today we'll also be taking calls from you, our listeners, on any queries that you may have on business, economic and stock market matters. But do remember that we don't address stock or company specific queries. The numbers to call us on are 2331-4444, 2331-0464 and 2371-7106. And those of you who would be calling us from outside Delhi, please prefix 011. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak.
1: नमस्कार. मार्केट मंत्र के ताजा अंक में आपका स्वागत है. आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम देश और दुनिया की चुनी हुई कारोबारी, आर्थिक और शेयर बाजार से संबंधित ताजा खबरों को लेकर हाजिर हैं. आज शनिवार है और आज के दिन हमारे कार्यक्रम में आप भी हुआ करते हैं सम्मिलित. हमसे पूछ सकते हैं अर्थनीति, कारोबार या शेयर बाजार से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल. बस ये याद रखिएगा कि हम किसी खास कंपनी या शेयर के बारे में आपको जानकारी नहीं दे सकते हैं. हमसे सवाल पूछने के लिए आप डायल कर सकते हैं 2331-4444, 2371-7106 या फिर 2331-0464. हमारे साथ खबरों पर चर्चा और आपके सवालों का जवाब देने के

0: ये आज स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है आर्थिक मामलों के देश के जाने माने विश्लेषक शरद कोहली जी को। शरद जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत।
1: वार्म वेलकम शरद।
2: धन्यवाद मनोज, धन्यवाद राजेश और सभी श्रोताओं को मेरा दिल से अभिवादन।
0: आइए शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइन से, जिसे लेकर मौजूद हैं राजेश लेख।
1: बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज राइज फॉर द सेकेंड स्ट्रेट वीक, सेंसेक्स एंड निफ्टी क्लाइम नियरली 1.7%। US stock market log weekly gains and global crude oil prices plunge around 8% this week.
0: घरेलू शेयर बाजार में लगातार दूसरे सप्ताह बढ़त के साथ बंद हुए प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी दोनों लगभग 1.7% ऊपर आए। अमरीकी शेयर बाजार में भी साप्ताहिक आधार पर इस बार हुई बढ़ोतरी और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में इस सप्ताह कच्चे तेल के दाम लगभग 8% घट गए।

0: is a disclaimer. The views and opinions expressed by the experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise our listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: हमारे साथ फोन लाइन पर जोड़ने का सिलसिला शुरू हो गया है. कई श्रोता जुड़ चुके हैं. आप सभी का स्वागत. लाइन पर बने रहिए. पहले कुछ खबरें, उसके बाद हम आपसे बातचीत करेंगे. भारतीय शेयर बाजार में लगातार दूसरे सप्ताह प्रमुख सूचकांक बढ़त के साथ बंद हुए. भू राजनीतिक तनाव के सुधरते हालात, कच्चे तेल के दाम घटने और रुपये में मजबूती के बीच निवेशकों द्वारा की गई खरीदारी से शेयर बाजार लाभ के साथ बंद हुआ है. बीते कारोबारी सप्ताह में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 1275 अंक यानी 1.68% बढ़कर 76803 पर बंद हुआ. उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 50 390 अंक यानी 1.65% की बढ़त लेकर 24013 दर्ज हुआ. विस्तारित बाजार की ओर चलें तो एनएसई पर सूचीबद्ध छोटी और मझौली कंपनियों का प्रदर्शन सेंसेक्स और निफ्टी पैक की तुलना में बेहतर रहा. एनएसई मिड कैप इंडेक्स में लगभग 2.9% की वृद्धि हुई. स्मॉल कैप 100 इंडेक्स 3.2% से अधिक लाभ के साथ बंद हुआ. विदेशी मुद्रा बाजार पर ध्यान दें तो इस सप्ताह भारतीय रुपये का प्रदर्शन पिछले सप्ताह की तुलना में बेहतर रहा. एक डॉलर की तुलना में रुपए का विनिमय मूल्य 78 पैसे मजबूत होकर 94.33 रुपए पर पहुंच गया.
0: We've got two callers online with us, one from Delhi and the other from Mumbai. First we go to Sachin in Mumbai. A warm welcome, Sachin. Please ask your question.
2: Hello, Market Mantra team.
0: Hello.
2: Hello.
0: Please carry on.
2: Yes. I am holding sugar stocks actually for last 3-4 years, but these sugar stocks are under tremendous pressure actually due to this government policies. They are not increasing the selling price of sugars, not giving the export quota to sugar industry properly, and also it is like a kind of election commodity right now, and also it is giving grain based alcohol ethanol promoting instead of sugar based ethanol. So what do you think, anything, something positive on these sugar stocks?
3: Sachin, yes, sugar stocks, you know, because we have to keep in mind inflation in the country, because sugar is something which is practically used in every household. There must be very rarely people, except for some people suffering from diabetes and all that, because everybody uses sugar. So therefore, you know, price regulation and I would say price control, or, you know, natural price movements are not as frequent as other commodities. And export restrictions also we have to be there for the same reason, because what you definitely don't want is, because see, government works in the larger interest of the people. A government cannot, I think Manoj and Rajesh would agree, cannot always work in the interest of investors of sugar companies. You have to look at people at large. So where, you know, if export, open export is allowed in the times when, let's say, Diwali comes, you need a lot of sugar here, you know, so there are these occasional restrictions. I would suggest, Sachin, that if your stocks are in marginal profits, you can probably exit, and there are so many other sectors to look at, which we keep talking market mantra every other day. You can look at FMCG, defense, renewable energy, electric vehicles. There are so many sectors which are looking promising. So if you can exit out of them, since it is causing you a bit of frustration, so I think you can exit if you're not in losses. If you are in losses, I would suggest you should wait for some time, because the sugar companies are doing well with the improvement of their bottom lines. They will improve, albeit a bit slowly.
1: दिल्ली से हमारे साथ फोन लाइन पर हैं प्रदीप. प्रदीप जी, स्वागत है आपका, सवाल पूछिए.
4: नमस्कार मार्केट मंत्रा टीम, प्रदीप बोल रहा हूँ दिल्ली से.
1: जी, स्वागत आपका.
4: सर, मैंने ना 3 साल पहले सर एक पॉलिसी ली थी, हेल्थ पॉलिसी.
3: जी.
4: तो सर उन्होंने लास्ट ईयर प्रीमियम बढ़ा दिया.
3: जी
4: सर, मैं क्या नाम ले सकता हूँ पॉलिसी का, कौन सी कंपनी से है, कंपनी का नाम ले सकता हूँ?
3: ना ले तो बेहतर है, आप बताइए, सवाल पूछिए.
4: हाँ, तो उन्होंने सर प्रीमियम बढ़ा दिया, तो इस साल क्योंकि जीएसटी के रेट आपको पता है कट हो गए थे, हेल्थ पॉलिसी पे है नहीं
3: जी,
4: तो अब प्रीमियम भरने की बारी अब आई नेक्स्ट मंथ में है
3: जी,
4: तो उन्होंने इस साल भी प्रीमियम इंक्रीज कर दिया. मतलब जो जीएसटी का रेट कट हुआ था, जो बेनिफिट हमें मिलना चाहिए था सर
3: जी,
4: उन्होंने फिर प्रीमियम इंक्रीज कर दिया सर
3: जी.
4: और मेरे को जस्ट एक दिन पहले, मतलब एक हफ्ते पहले मेल करा कि आप आज इस डेट तक प्रीमियम भरते हो, तो ठीक है, नहीं तो हमारा प्रीमियम इंक्रीज हो जाएगा
3: जी।
4: तो आज उनके एग्जीक्यूटिव का फोन आया कि आपने 19 तक प्रीमियम नहीं भरा, तो आपका हमने प्रीमियम 25,000 रुपए भरना, मतलब 25,000 समथिंग भरना पड़ेगा आपको
3: जी।
4: तो मैं ये जानना चाह रहा था सर, इसकी कंप्लेंट मैं कहाँ रजिस्टर कराऊं कि हर साल ये लोग प्रीमियम बढ़ाते जा रहे हैं और दूसरा मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि सर जैसे ये लोग प्रीमियम बढ़ाते या क्लेम रिजेक्ट कर देते हैं
3: जी,
4: तो इससे बेटर हम ये नहीं है कि कोई अपनी SIP शुरू कर ले और एक उस पर्टिकुलर पर्पज के लिए अपना हेल्थ के लिए एक SIP रख ले अपना।
3: देखिए प्रदीप, आपकी समस्या बहुत जेन्युइन लग रही है, आपको पिंच कर रहा है जो हर बार प्रीमियम बढ़ा रहे हैं। हम यहाँ कंपनी का नाम नहीं लेते, पर आपका तथ्य समझ में आ गया। तो देखिए, अगर आपको जेन्युइनली लग रहा है कि कंपनी ने गैर जरूरी तरीके से प्रीमियम बढ़ाया है, तो IRDAI इंश्योरेंस रेगुलेशन और डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उनकी वेबसाइट पर जाकर आप वहां पर कंप्लेन कर सकते हैं। पर इसको कंप्लेन करने से पहले मैं आपको यह सलाह दूंगा कि आप बाकी जो कंपनीज हैं उनसे एक बार कंपैरिजन करें कि आप ही की एज में, आप ही की सिचुएशन में बाकी कंपनीज आपसे क्या मांग रही हैं। और ये भी तो ऑप्शन है प्रदीप कि आप स्विच भी तो कर सकते हैं ना, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस देती हैं, तो आप स्विच करके देख लीजिए। आजकल तो
0: पोर्टेबिलिटी अलाउड,
3: हाँ पोर्टेबिलिटी है। और दूसरा, आजकल तो ऐसे एप्स हैं कई जो आपको कंपैरिजन दे देते हैं, आप उस ऐप पे डालेंगे, हम नाम नहीं लेते हैं किसी का, तो आप देखेंगे तो आपको अलग अलग कंपनीज की कंपैरिजन दे देते हैं। तो मैं समझता हूं वो भी कर सकते हैं, अगर आपको जेन्युइनली कुछ लग रहा है तो IRDAI की साइट पे आप कंप्लेंट दाखिल कर सकते हैं। दूसरा, आपका दूसरा सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है, क्या इसकी जगह में SI, देखिए क्लेम का रिजेक्ट हो जाना हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में कुछ तकनीकी जो एलिजिबिलिटी है आपकी, ऐसा लग रहा है वो एलिजिबिलिटी नहीं रही होगी, कई दफे एज की होती है, कई दफे कोई जैसे क्रॉनिक बीमारी है आपने लिया और उससे संबंधित है, तो आप ऐसा लग रहा है कि आप उस कंपनी से सेटिस्फाइड नहीं है। देखिए SIP का पर्पज बिल्कुल दूसरा होता है, SIP का पर्पज होता है प्रदीप वेल्थ क्रिएशन लॉन्ग टर्म की, पर हेल्थ इंश्योरेंस तो ऐसा है ना कि मान लीजिए ऐसा हो ना, हम तो कभी प्रार्थना नहीं करेंगे, मान लीजिए 6 महीने में कोई बीमारी आ गई, आपको जरूरत पड़ गया लमसम अमाउंट, तो SIP तो आपकी जब मैच्योर होगी तब होगी। तो दोनों में ऐसे कोई डायरेक्ट कंपैरिजन, ये तो नहीं मैं कहूंगा हेल्थ इंश्योरेंस की जगह आप SIP करिए और जब 10 साल बाद आपकी मैच्योर हो आपको लंबी उम्र दे और आपको कभी बीमारी ना आए हम तो ये विश करेंगे, पर अगर कभी जरूरत पड़ गया तो उसमें दिक्कत आएगी, तो SIP को हम हेल्थ इंश्योरेंस से ना जोड़े। आप एक बार कंपैरिजन करके देखिए प्रदीप, बाकी कंपनी से करके देखिए और IRDAI में आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं अगर आपको जेन्युइनली ऐसा कुछ नजर आ रहा है जी।
1: केशव हमारे साथ दिल्ली से हैं, स्वागत आपका, सवाल पूछिए।
5: सर कॉल
3: जी,
5: मैं आपसे दो सवाल पूछता
3: हूं जी।
5: जैसे कि मार्केट के बारे में, जैसे लास्ट ईयर GST घटी थी
3: जी,
5: तो सरकार कंपनियों के साथ बैठ के ये बात करती है कि नहीं करती कि जो रेट GST से पहले था उस पे और जो अब रेट आया है कार्ड छाट के, तो कंपनी दोनों ही रेट अपनी प्रोडक्शन पे लिख के कस्टमर को कोई दिक्कत ना हो कि लास्ट ईयर हमारा रेट अगर 500 था तो इस बार हमारा रेट 550 हो गया या 400, तो कस्टमर को डायरेक्ट ही प्रोडक्शन पे लिखा आना चाहिए कि लास्ट ईयर GST से पहले ये रेट था, आने अब जो रेट है नया जो संशोधन हो गया तो इस वक्त ये रेट है। और जब तो अमेरिका ईरान की जो युद्ध संधि खत्म हो गई, लड़ाई खत्म हो गई, तो ये पेट्रोल के दाम बढ़े थे, क्या गवर्नमेंट इस पे रेट बढ़ाने के लिए क्या अभी सोच रही है, क्या कितना टाइम लग जाएगा ऐसे में, क्योंकि रेट इसलिए बढ़ा था कि पीछे से।
1: केशव जी आप अपने सवाल की जगह लगातार सुझाव और वो भी सरकार को हमारी सीमाओं का, हमें लगता है कि

0: बनिएगा। थोड़ा सा अतिक्रमण हो रहा है, सभी श्रोताओं से आग्रह कि अपना सवाल संक्षिप्त रखें, विषय पर रखें और सीधे सवाल पर
1: आए। और मनोज ये भी है कि जो इनका सवाल जीएसटी वाला था, इससे संबंधित मुझे याद है, मैं भी यहीं था जब जीएसटी सितंबर में आया था, जीएसटी 2.0 जिसको हम कहते हैं, जीएसटी बचत उत्सव। तो उस समय हमने जीएसटी के अधिकारियों को भी यहां बुलाया था और उन्होंने भी आपको तरीके बताए थे केशव। तो अगर ये तो नहीं हो सकता कि कंपनी दो रेट प्रिंट करे कि पहले ये था, पर ये सच है कि कंपनियां जब जीएसटी कम होता है तो कुछ थोड़ी सी अपनी जो उनकी कॉस्ट बढ़ती है वो वसूलती हैं। अगर आपको इसमें समस्या नजर आ रही है तो आप जीएसटी का पोर्टल, उस समय भी बताया गया था, आज भी ये पोर्टल मुझे उम्मीद है खुला होगा, आप उस पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है किसी कंपनी ने इस तरीके से किसी प्रोडक्ट में शरारत करी है या उन्होंने जीएसटी को एब्जॉर्ब करके और रेट बढ़ाया है, तो वो आप कर सकते हैं। पेट्रोल रेट देखिए, अंडर रिकवरी जब पेट्रोल ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की, जब उनको लगेगा कि आप कंफर्ट जोन में है तो कीमतें कम भी हो सकती हैं। ऐसा तो कुछ नहीं है कि कीमतें सिर्फ एक तरफ जाएंगी, दूसरी तरफ भी आ सकती हैं। जी,
0: जॉइनिंग अस फ्रॉम दिल्ली इज अमित, अ वार्म वेलकम अमित।
2: हाँ नमस्कार सभी को।
0: जी
2: सर, कोहली सर नमस्कार।
1: हाँ नमस्कार नमस्कार।
2: सर मेरा प्रश्न एक के है या दो है, जैसे एक तो ये कि यूएस और ईरान का जो एग्रीमेंट हुआ, जो भी समझौता शांति समझौता हुआ है, इसमें पूरी तरह क्लियर हो चुकी सारी बातें या अगर मगर कुछ रह रही है कि हाँ ये नहीं तो अगले हफ्ते पता चले कि ट्रंप साहब कुछ बोल दें। दूसरा कि जैसे कि आपने आईटी सेक्टर के बारे में पहले मैंने सवाल पूछा था सर, और अभी भी मैं वही पूछ रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं आप कहते हैं कि आईटी सेक्टर ही क्लाउड की जननी है, यानी कि जो टेक्नोलॉजी अपडेट उन्होंने निकाला है
1: जी।
2: उन्होंने खुद ही निकाला है
1: जी।
2: बट इसके बावजूद कि सर पूरे सेक्टर की देखा जाए इस वीक में अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, आईटी फिर भी ईयर एंड पे सॉरी पिछले दिसंबर के मुकाबले अभी भी माइनस 40% है, और इस वीक का तो कहना ही क्या है
1: जी।
2: तो आखिर ये संभल क्यों नहीं पा रही सर? क्या हम हमारी आईटी कंपनी उस चीज को अडॉप्ट नहीं कर पा रही या आरएनडी कुछ नहीं कर पा रही, क्या समस्या है सर आईटी में? धन्यवाद।
1: चलिए अमित, आपका पहला सवाल तो मार्केट मंत्रा का आइडियली नहीं है, ईरान और यूएस का समझौता क्लियर है नहीं है, ये तो डोनाल्ड ट्रंप साहब जाने और ईरान की एडमिनिस्ट्रेशन आने वाला वक्त बताएगा। इसमें कुछ आर्थिक या मार्केट या बिजनेस फाइनेंस का तो मुझे कोई मुद्दा नहीं नजर आता है सवाल में, तो इस जवाब को मैं रिजर्व रखना चाहूंगा। मैं दे भी सकता हूंगा तो मुझे लगता है मंच ठीक नहीं रहेगा। दूसरा, आपने आईटी सेक्टर का, ये सही है, अभी कल ही एक्सेंचर के नतीजे आए, उनकी जो आउटलुक आई उनकी वजह से आईटी सेक्टर में काफी गिरावट आई, हमारी जो मुख्य कंपनीज थी उनकी काफी पिटाई हुई। तो उसमें एक तो मिडिल ईस्ट वॉर की वजह से मुझे लग रहा है कि प्रेशर था, ऑर्डर बुक्स इनकी थोड़ी सूखने लगी थी एक्सेंचर की आउटलुक से, जिसको हम गाइडेंस नोट कहते हैं। दूसरा, इसमें एआई का भी रोल रहा है, एआई की हम चर्चा करते हैं, पर आपको मैं ये बताना चाहूंगा हमारी जो आईटी कंपनीज हैं ऐसा नहीं है कि खाली हम और आप ही चर्चा करते हैं एआई की, वो लोग कुछ नहीं करते हैं इसके लिए। आपको बताना चाहूंगा कि इन कंपनीज में बकायदा एआई रिसर्च विंग बन चुके हैं, इनके एआई एप्लीकेशन टूल्स हैं, बहुत विस्तृत रूप से एआई का इस्तेमाल कर रही है और एआई पे काम कर रही है। तो देखिए उतार चढ़ाव मार्केट में होता रहता है, कोई खबर आती है मार्केट एकदम रिएक्ट करती है, फिर उस खबर को दो तीन दिन में भूल जाते हैं, मार्केट भूल के ऊपर जाने लगती है। तो मुझे लग रहा है हमें बहुत शॉर्ट टर्म नजरिए से नहीं देखना चाहिए, पर हाँ आईटी प्रेशर में रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि जिन कंपनीज के आपके पास अगर स्टॉक्स हैं तभी आप पूछ रहे हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि उन कंपनीज ने एआई में भरपूर मात्रा में निवेश किया है और आगे वो इस चैलेंज को स्वीकार कर पाएंगे।
0: दिल्ली से ही हमारे साथ फोन लाइन पर हैं योगेश, स्वागत आपका योगेश जी, सवाल पूछें।
3: जी अक्षर को नमस्कार, मेरा सवाल ये है कि जैसे हमेशा कहते हैं कि इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को अलग अलग करके देखना चाहिए और अलग अलग इसमें निवेश करना चाहिए, लेकिन आज भी इंडिया के अंदर बहुत सारी ऐसी एंडोमेंट पॉलिसियां बेची जाती हैं जिसमें कि देश की सबसे बड़ी कंपनी में शामिल है
1: जी।
3: और जिसके अंदर ऑलमोस्ट हर इंसान के पास वो एक ना एक पॉलिसी पड़ी हुई है जो पहले की खरीदी हुई है
1: जी।
3: तो उसमें वो ट्रैप है, तो ऐसी पॉलिसीज को लेकर के आपका क्या व्यू है और अब जो टाइम चेंज हो रहा है
1: देखिए, मैं पहले तो राजेश और मनोज को कहना चाहूंगा, देखिए मुझे याद है मैंने अनेकों बार इस बात की चर्चा करी कि इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को अलग रखना चाहिए
0: जी।
1: और मुझे खुशी इस बात की है कि मार्केट मंत्रा के जो श्रोता हैं वो जागरूक हो रहे हैं, उनको अब ये फर्क समझ आ रहा है। नेचुरली जैसे योगेश पूछ रहे हैं तो इन्होंने कभी पॉलिसी ली होगी, शायद उस समय मार्केट मंत्रा नहीं सुनते होंगे तो इस वजह से ये पॉलिसी इन्होंने ली होगी, आज इनको ये मालूम पड़ गया। देखिए आप कंपनी से संपर्क कर सकते हैं योगेश, अगर हर कंपनी का कुछ वर्ष के बाद आपको एक एग्जिट रूट देती है, अगर वो एग्जिट रूट हो उसको सरेंडर वैल्यू कहते हैं, आप सरेंडर वैल्यू दे के बाहर आ सके तो आप बाहर आ जाइए। पर ये भी तो हमें याद रखना चाहिए कि एक इंश्योरेंस भी तो एक जरूरत है, जो रिस्क कवरेज है योगेश, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने रिस्क कवरेज की वजह से भी ली होगी, तो आपका रिस्क कवरेज तो है ही है, आपके अपने जो है उसके बाद उनके उनको पैसा मिलता है और अपनों के लिए एक प्रोटेक्शन रिंग बन जाता है। बाकी आप कंपनी से संपर्क करिए।

0: राष्ट्रपति ने मोहन चरण मांझी सरकार के दो वर्ष पूरे होने के अवसर पर ओडिशा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में आयोजित एक जनसभा को संबोधित किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री भी उपस्थित थे। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत लगातार शांति, संवाद और सहयोग की एक आवाज के रूप में उभरा है। उन्होंने कहा कि ऐसे समय में जब विश्व के कई क्षेत्र संघर्ष और अनिश्चितता के दौर से गुजर रहे हैं, तब भारत ने कूटनीतिक संपर्क और आपसी समझ के जरिए विवादों को सुलझाने का लगातार समर्थन किया है। इससे पहले समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश की विकास यात्रा में जनजातीय समुदाय के लोग सक्रिय रूप से भागीदारी निभा रहे हैं। केंद्र द्वारा इनके सशक्तिकरण, कल्याण और विकास के लिए अनेक योजनाएं चलाई गई हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने 47,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली अनेक विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी और पूरी हुई परियोजनाओं का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के पूर्वोदय विजन के माध्यम से भारत के पूर्वी क्षेत्रों का तेज गति से विकास चल रहा है।
1: साथियों, हमारी सरकार ओडिशा के संसाधनों को ओडिशा की संभावनाओं में बदल रही है। ओडिशा में बड़ा निवेश आए, यहाँ नए उद्योग लगे, इसके लिए उत्कर्ष ओडिशा जैसे अभियान चलाए जा रहे हैं। इसके तहत अब तक करीब 20 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिल चुके हैं। 3.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की अनेक मेगा परियोजनाओं पर भी काम चल रहा है।
2: Prime Minister Narendra Modi today took part in Paschim Bong Diwas celebrations at Tarakeshwar in Hooghly district. He also released the 23rd installment of PM Kisan scheme worth 8,880 crore rupees, benefiting over 9.44 crore farmers across the country. The Prime Minister also launched, dedicated and laid foundation stones for various development projects across railways, agriculture, rural development, fisheries and animal husbandry sectors. Speaking on the occasion, Prime Minister Modi said, BJP government has started working at super fast pace for Bengal's development.
0: इस बीच हमारे साथ कई श्रोता फोन लाइन पर बने हुए हैं धैर्य के साथ। सबसे पहले हम आमंत्रित करना चाहेंगे मुंबई से अमरीश को। अमरीश जी, स्वागत आपका, सवाल पूछिए।
3: गुड इवनिंग टू मार्के मंद्रा टीम,
0: स्वागत आपका।
3: मेरा सवाल ये है सर, मैं एक ऑटोमोटिव कंपनी का शेयर्स खरीदा था
4: जी।
3: देन दैट कंपनी परचेज एनसीएलटी रेफर हो गया। देन एनसीएलटी में अनदर कंपनी परचेज दैट ऑर्गेनाइजेशन। नाउ अभी आई एम नॉट एबल टू ट्रेड द शेयर्स बिकॉज ऑफ न्यू कंपनी, now they are not listed. So what I should do now? I am holding huge quantity of shares.
4: Well, Amresh, very sorry to know about the fact that your company got referred to NCLT and must be having problems, and then it was taken over and it's not listed yet. But unfortunately, there is nothing much that you can do, except to what you can probably do is reach out to the company which has taken over this company. You can contact the company secretarial department of this company and or the registrars, if they still have registrars, although if it's not listed, may not be having registrar, they may be having a secretarial department. You can reach out to them, write an email to them. If it is around your place, not too far from your place, if it is very much in Mumbai, maybe you can visit them one of these days and find out as to what their plan is. Well, in such a case, well, that's the risk of equity, because if equity gives you humongous returns also, you know, over a period of time, because you are a stakeholder in the company, so you have to be, isko hum Hindi mein kehte dukh sukh ke aap saathi hote hain. So when the company is in pain, I mean, you have to bear the pain by way of your investment. There's no doubt about that. But please do try and reach out to the new company secretarial department. They'll let you know the plan.
0: Sonipat se hamare saath phone line par hain Deepak. Deepak ji, swagat aapka, sawal puche.
5: Namaskar sir.
0: Namaste.
5: Sir, mere do chote question hain. Sir, pehla question hai ki jo maine paisa lagaya hai equity mein ya debt mutual fund mein, wo ek hi application ke dwara ek hi fund mein hai sara paisa.
4: Ji.
5: To kya ye safe hai? दूसरा है, मैं ये कि मतलब फंड हाउस में है। दूसरा क्वेश्चन ये है, जो इक्विटी में है वो तो उसमें लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगता है, वो हमें आईटीआर में भरना होता है या रिडीम करते हैं वो अपने आप डिडक्ट हो जाता है? और डेप्ट में क्या रूलिंग है इसकी, लॉन्ग टर्म शॉर्ट?

0: ट्रंप की? बस दो क्वेश्चन थे सर।
1: देखिए, जो आपने पैसा लगाया है सारा एक ही फंड में लगाया है, अब ये तो दीपक पता लगे कि फंड कौन सा है और उसकी पास्ट परफॉर्मेंस कैसी है, लार्ज कैप है, मिड कैप है, स्मॉल कैप है, हाइब्रिड फंड है, कितने समय से आपने लगा रखा है। तो मैं आपको ये सलाह दूंगा दीपक के संडे को एक डेडिकेटेड प्रोग्राम होता है जो खाली म्यूचुअल फंड्स पे होता है, तो आप उसमें जो कि कल है, कल एक बार फिर कॉल करें, इस अपने अपने इन राजों को खोलें और खोल के जब आप बताएंगे तो आई थिंक जो भी एक्सपर्ट उस समय मौजूद रहेंगे वो आपको गाइड कर पाएंगे, क्योंकि इसके बारे में सारी डिटेल्स चाहिए होगी। दूसरा आपने पूछा लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो आपने फंड्स में लगाते हैं, वो बिल्कुल आपको रिटर्न में दिखाना होता है, वो अपने आप तो वो कट के आ जाता है, उस पर जो TDS कटना होता है वो कट जाता है, पर आपको रिटर्न और इसमें आयकर विवरणी में एक शेड्यूल होता है या स्केड्यूल होता है, जो भी आप कहना चाहते हैं, उसको हम कहते हैं स्केड्यूल CG कैपिटल गेन का। उसमें LTCG और STCG के अलग अलग सेक्शंस होते हैं, उसमें जिसमें आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है उसको आप शॉर्ट टर्म में बढ़िए, जिसमें लॉन्ग टर्म है, और आपने शायद इन्होंने शायद डेट का भी पूछा था, तो डेट का अब जो है वो स्लैब रेट पर चार्ज होता है, जो नए आयकर अधिनियम आए हैं उसके अंतर्गत जो भी आपका स्लैब रेट है, पर अगर आप खुद भरते हैं अपनी विवरणी तो आप उसमें LTCG और STCG को स्केड्यूल CG के अंदर जिस जिस फंड में हुआ है अलग अलग आपको दिखाना पड़ेगा, जिसमें क्योंकि लॉन्ग टर्म आपको पता होगा एक साल से ऊपर आप रखते हैं तो लॉन्ग टर्म होता है, एक साल से कम रखते हैं तो शॉर्ट टर्म होता है।
2: Moving on, the US stock markets remain closed yesterday in observance of Juneteenth holiday. Meanwhile, major US indices logged weekly gains with investor sentiment broadly supported by the signing of a memorandum of understanding between the US and Iran, clearing the way for the reopening of the Strait of Hormuz. The Nasdaq Composite Index surged over 2.4%, the S&P 500 gained more than 0.9%, and the Dow Jones Industrial Average advanced by 0.7% over the week. What is it that is going to happen in the coming week? Is the Strait opening, not opening, signing in formally happening or not happening, truce maintained or not maintained? There are so many questions.
1: No, I think the document has been signed very much in France itself. In
2: remotely,
1: Warsaw.
2: Yeah.
1: It's now got signed, and I think the officials are moving to Switzerland as well. I think principally things have been agreed. It's just that opening of the Strait of Hormuz, and some ships have started moving from Strait of Hormuz, the last report I had. Just that there are sea mines which were laid down in Strait of Hormuz. So I think to clear those sea mines, which has now been the responsibility of Iran, that will take a while. So I think normal traffic, as per my understanding, it will take about 2 to 3 weeks for normal traffic to flow from there. But we should not forget that this is a 60-day kind of a period. And after 60 days, the final agreement would be there, what happens. So I think fingers crossed is all I would say. I hope everything goes well and the peace is maintained and sustained. So that the world economy can heave a sigh of relief, Rajesh, isn't it?
2: Meanwhile, the global crude oil prices rose yesterday but registered steep losses on a weekly basis. Over the week, Brent crude August futures plunged more than 7.7% to settle at $80.57 per barrel, while West Texas Intermediate July futures shed over 8.6% to end at $77.54 per barrel. Yesterday, a fragile ceasefire between Israel and Hezbollah took effect following intensive diplomatic efforts by the United States, Qatar, and Iran. The ceasefire is being seen as an important step in supporting ongoing diplomatic efforts between Washington and Tehran, aimed at reducing regional tensions and ensuring the smooth flow of trade through the strategically vital shipping routes. Now, we are talking about this intensive diplomatic efforts that took place between US, Qatar and Iran, and hopefully this ceasefire between Israel and Hezbollah, which is a very, very important signal that the world is watching at, because if that is broken, then everything else will cut loose.
1: I know things are very fragile at this point of time, and a very delicately poised, I would say, peace. As I said, fingers crossed.
2: Okay, we have
3: दिल्ली से हमारे साथ सतीश हैं। सतीश जी, समय कम है, जल्दी से सवाल पूछ लीजिए।
4: सर माई गुड इवनिंग सर, कोहली साहब
1: गुड इवनिंग।
4: माई क्वेश्चन सर इज व्हाट अबाउट द फ्यूचर ऑफ ऑयल कंपनीज एंड व्हाट इज द वेदर दिस टाटा एलेक्सी इज IT कंपनी। थैंक यू सर।
1: वेल आई थिंक द फ्यूचर ऑफ ऑयल कंपनीज इज anybody's guess, as much a guess for anybody, because you know the way crude prices have been, their margins have been under pressure. Now they were funded by the government also. I would suggest that if you are in oil companies and if you are finding an exit route, maybe a small investors can you know, consider taking an exit if you don't want to sound too risky. IT companies are going through a roller coaster ride at this point of time because of AI and the Middle East war. So you know, but then the future of IT companies is not all that bad, is not as pessimistic as it is appearing to be.
2: Yeah. Okay, shall quickly want to find out about this SEBI, as a lot of approved reforms, series of reforms approved by them at market efficiency, easing compliance requirements, and strengthening regulatory frameworks across the financial sector. What's your views?
1: I think it's a step in the right direction, because it is opening the markets to the foreign institutional investors. I think they'll be more happy. Retail investors would be more happy, and so would be the companies who are listed.
3: हमारे साथ कई श्रोता फोन लाइन पर अभी भी हैं, आप सबों का बहुत बहुत आभार, लेकिन अब हमारे पास समय बिल्कुल नहीं, आप सभी हमारे साथ जुड़े इसके लिए आपको धन्यवाद, और आप सबों की ओर से हमारे विशेषज्ञ शरद कोहली जी को बहुत बहुत धन्यवाद। शरद जी,
2: थैंक यू शरद फॉर बीइंग विद अस।
1: थैंक यू।
2: एंड बिफोर वी क्लोज द हेडलाइंस वंस अगेन, benchmark domestic indices rise for the second straight week. Sensex and Nifty climb nearly 1.7%. US stock market log weekly gains, and global crude oil prices plunge around 8% this week. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye.
0: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना की। उन्होंने कहा कि श्री मोदी ने विश्व नेताओं के साथ अपने दूरदर्शी शासन और संपर्क के जरिए वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है। राष्ट्रपति ने मोहन चरण मांझी सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ओडिशा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में एक जनसभा में यह बात कही। प्रधानमंत्री मोदी भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं से सशक्त होकर आदिवासी समुदाय भारत के विकास में सक्रिय योगदान दे रहे हैं। श्री मोदी ने पूर्वी भारत के विकास में तेजी लाने के उद्देश्य से सरकार के पूर्वोत्तर दृष्टिकोण का भी उल्लेख किया।
1: ओडिशा में आर्थिक गतिविधियां, निवेश और उद्योगों को आकर्षित करने का सामर्थ्य आज नजर आ रहा है। केंद्र सरकार का विजन है पूर्वी भारत के विकास से भारत का विकास। इसलिए हम पूर्वोदय की नीति पर काम कर रहे हैं। जिस पूर्वी भारत को कांग्रेस के दौर में पिछड़ेपन का पर्याय बना दिया गया था, आज वो प्रगति का प्रवेश द्वार बन रहा है।
0: इस दौरान ओडिशा में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया। बाद में प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी।
1: आज यहाँ सैकड़ों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास हुआ है। रेल, रोड, कृषि, इससे जुड़ी ये परियोजनाएं बंगाल को नई गति देगी। इन परियोजनाओं से यहाँ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। मैं बंगाल के लोगों को इन विकास परियोजनाओं की बधाई देता हूँ।
0: श्री मोदी ने प्रधानमंत्री किसान योजना की 23वीं किस्त के रूप में 18,880 करोड़ रुपए जारी किए। इससे देशभर के 9,44,00,000 से अधिक किसानों को लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री कोलकाता में कल स्वदेश में निर्मित नौसेना के 3 जहाजों INS दोनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय का अनावरण करेंगे। इन पोतों में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। इनके निर्माण में 200 से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों ने योगदान दिया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल दुनिया भर में मनाया जाएगा। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम पश्चिम बंगाल के कोलकाता में ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में सामान्य योगाभ्यास के दौरान राष्ट्र का नेतृत्व करेंगे। ये राष्ट्रीय कार्यक्रम सुबह 5 बजे से शुरू होगा। सरकार ने जनहित में 16 फिक्स डोज कॉम्बिनेशन FDC दवाओं के उत्पादन, बिक्री और वितरण पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर विशेषज्ञ समिति की समीक्षा के बाद यह फैसला लिया गया। समिति ने पाया कि इन दवाओं के संयोजन का पर्याप्त चिकित्सीय औचित्य नहीं है और इनके उपयोग से स्वास्थ्य संबंधी जोखिम हो सकते हैं। भारत सोमवार से शुरू हो रही 2 दिवसीय ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल करेंगे। बैठक में नई तकनीक से जुड़े सुरक्षा खतरों और आतंकवाद से निपटने के उपायों पर भी चर्चा होगी। कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए तीर्थयात्रियों का पहला जत्था आज नाथूला दर्रे से होते हुए चीन में प्रवेश कर गया। जत्थे में 2 संपर्क अधिकारियों और 1 चिकित्सा अधिकारी सहित 41 तीर्थयात्री और 4 सहायक कर्मचारी शामिल हैं, जिससे इस दल की कुल संख्या 47 हो गई है। चेन्नई में तीसरे और अंतिम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान ने भारत को 219 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 16वें ओवर में बिना किसी नुकसान के 123 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। President Draupadi Murmu today lauded Prime Minister Narendra Modi's leadership, stating that he has significantly enhanced India's prestige and influence on the global stage through his visionary governance and constructive engagement with world leaders. Addressing a large public gathering at Rai Rangpur in Odisha's Mayurbhanj district, organized to mark the completion of 2 years of the Mohan Charan Majhi government, in presence of Mr. Modi, the President said, India has consistently emerged as a voice of peace, dialogue and cooperation under Prime Minister Modi's stewardship. Addressing the public gathering, Prime Minister Narendra Modi lauded Odisha's progress as the state completed 2 years under Chief Minister Mohan Charan Majhi, saying it is moving rapidly on the path of development and contributing significantly to the growth of eastern India.
1: Odisha mein aarthik gatividdhiyan, nivesh aur udyogon ko aakarshit karne ka samarthya aaj nazar aa raha hai. केंद्र सरकार का विजन है पूर्वी भारत के विकास से भारत का विकास. इसलिए हम पूर्वोदय की नीति पर काम कर रहे हैं. जिस पूर्वी भारत को कांग्रेस के दौर में पिछड़ेपन का पर्याय बना दिया गया था, आज वो प्रगति का प्रवेश द्वार बन रहा है.
2: The Prime Minister today inaugurated and laid the foundation stones for development projects worth around 47,000 crore rupees across multiple sectors. Later, the PM arrived in West Bengal for a two-day visit. He took part in Pashchim Banga Divas celebrations at Tarkeshwar in Hooghly district. He also released the 23rd installment of PM Kisan scheme worth 18,880 crore rupees, benefiting over 9.44 crore farmers across the country. Mr. Modi participated in a grand function to celebrate the State Day along with Chief Minister Suvendu Adhikari. He launched, dedicated and laid foundation stones for various development projects across railways, agriculture, rural development, fisheries and animal husbandry sectors. Speaking on the occasion, Prime Minister Modi said the BJP government has started working at super fast pace for Bengal's development. He expressed hope that this historic Pashchim Banga Divas inspired development of West Bengal. Prime Minister Narendra Modi will lead the nation to celebrate International Yoga Day 2026 tomorrow at Red Road in Kolkata. Thousands of yoga enthusiasts will participate, while millions of citizens are expected to join virtually from across India and abroad. The event will reaffirm yoga's growing role as a global movement promoting health, harmony and collective well-being. This year marks the 12th International Day of Yoga with the theme Yoga for Healthy Aging, which highlights the importance of adopting yoga as a lifelong practice for healthy, active and dignified aging. Prime Minister Narendra Modi will commission 3 indigenously built Indian Navy platforms, INS Dhunagiri, INS Sanshodhak and INS Agre in Kolkata tomorrow. Designed by the Navy's Warship Design Bureau and built by Garden Reach Shipbuilders and Engineers, the vessels are intended to strengthen combat operations, hydrographic surveying and anti-submarine warfare. The government has notified the expansion of central drugs laboratory functions at Chaudhary Charan Singh National Institute of Animal Health in Baghpat, Uttar Pradesh for veterinary vaccine testing. With the latest notification, the scope of testing at the institute has been substantially expanded from testing 2 vaccines to now test 42 veterinary vaccines. The ministry said that the notification will further strengthen the regulatory framework for ensuring the quality, safety and efficacy of veterinary vaccines. The first batch of pilgrims undertaking the Kailash Mansarovar Yatra 2026 crossed into China through the Nathula Pass today, marking the commencement of their onward journey. Governor of Sikkim Om Prakash Mathur flagged off the batch in the presence of Minister of Tourism Shering Thendu Bhutia. According to the schedule, the pilgrims are expected to reach Gangtok today. The Mansarovar Parikrama is slated for 27 June and the first batch is scheduled to return to Gangtok on 1st of next month. In cricket, Afghanistan have set a target of 219 runs for India in the third and final ODI in Chennai. In reply, India were 132 for no loss in 17 overs when reports last came in. And that is the end of this news bulletin.

0: ये आकाशवाणी है। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए सशक्तिकरण से समृद्धि की ओर बढ़ते भारत पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार नीलू रंजन और सर्जना शर्मा। परिचर्चा का संचालन कर रही हैं सोनू सूद।
1: 12 वर्षों के कार्यकाल में वर्तमान सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सभी को भागीदार बनाकर राष्ट्र विकास का जो मूल मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, उसके तहत उन्होंने जो एक लक्ष्य रखा है 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने का भारत को, उसमें उन्होंने चार जो स्तंभ है उनकी पहचान की है, जिसे ज्ञान भी कहा जाता है, गरीब, युवा और अन्नदाता यानी कि हमारे किसान और नारियां। तो इन चारों जो वर्ग है उनके सशक्तिकरण पर सरकार ने लगातार बल दिया है। अगर हम हर बजट में देखें, जो भी प्रमुख संबोधन होता है प्रधानमंत्री जी का, उसमें इन वर्गों को सशक्त करने की बात की जाती है। और आज हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट सर्जना शर्मा जी और नीलू रंजन जी जुड़े हैं। इनसे हम समझना चाहेंगे कि इन 12 वर्षों में जो ये चार वर्ग है इनको सशक्त करके कैसे जो देश को समृद्ध करने का सपना है उसको साकार करने की तरफ हम बढ़े हैं। सो आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत कार्यक्रम।
2: थैंक यू सोने जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
3: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: सर्जना जी, सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं, लेडीज फर्स्ट कहा जाता है। सो आपसे मैं महिलाओं की ही बात करना चाहूंगी। जिस तरह का विकास महिलाओं का हुआ है और जो सरकार का मूल मंत्र रहा है कि विमेन्स डेवलपमेंट से आगे बढ़कर हमें विमेन्स लेड डेवलपमेंट यानी महिलाओं के नेतृत्व में विकास जो है उसकी ओर बढ़ना है, हमें बताएं कि इन 12 वर्षों में कौन से ऐसे परिवर्तनकारी रिफॉर्म्स हैं जो महिलाओं के लिए लाए गए हैं जिनको आप सबसे महत्वपूर्ण मानती हैं।
2: सोनू जी देखिए, महिला जो है वो कोई भी परिवार है, परिवार की धुरी महिला है, और जो एक अच्छा परिवार है वो एक अच्छे समाज का और एक अच्छा समाज अच्छे राष्ट्र का निर्माण करता है। अगर महिला सशक्त है, अगर महिला समृद्ध, मेरा मतलब खाली पैसे से नहीं, और भी बहुत सारी चीजें होती है जिसको समावेशी विकास कहते हैं, अगर महिला उस तरह की है तो वो पूरे अपने परिवार को बढ़िया करेगी, समाज को अच्छा बनाएगी और फिर राष्ट्र को। तो इसका मतलब धुरी जो है परिवार से

0: आज तक महिला के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता। भले ही आज से कुछ साल पहले तक महिलाएं बहुत घर से बाहर नहीं निकलती थी, लेकिन घर में रहते हुए भी जो उनकी अर्थव्यवस्था है, जो उनका मनी मैनेजमेंट है, जो उनका रिलेशनशिप मैनेजमेंट है, पुरुषों को तो शायद बहुत चीजें घर की पता भी नहीं होती जितना वो खुद सब मैनेज कर लेती है। आपने देखा होगा कि कोविड में पूरी दुनिया की इकोनॉमी ध्वस्त हुई, लेकिन भारतीय महिलाओं को जिस तरह की ट्रेनिंग है पैसे को जोड़ने की और आत्मनिर्भरता का जो उनका मूल मंत्र है, तो उसके कारण हमारी अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी रही, क्योंकि सेविंग की बहुत आदत है हमारी महिलाओं को। तो मोदी जी ने जो ये सोचा, तो उसमें देखिए दो तीन चीजें तो मैं कहूंगी कि जो सबसे अच्छी रही, एक है उज्ज्वला योजना और एक है हर घर नल हर घर जल। तो ये जो दो चीजें सुलभ हुई है महिलाओं को, उससे उनकी जो फिजिकल लेबर है वो कम हुई है, उनकी एफिशिएंसी इम्प्रूव हुई है। आपको लकड़ियां बिनने जंगल में नहीं जाना और धुएं में काम नहीं करना। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत आपको सब्सिडाइज सिलेंडर मिल रहा है, तो आप सोचिए उसकी कितनी मेहनत कम हुई। खाना अच्छा बनेगा, वो भी खुद भी रिलैक्स रहेगी। दूसरा है, अगर हम देखें कि हमारे भारत में बहुत सी ऐसी जगहें थी जहां पे महिलाओं की आधे से ज्यादा एनर्जी पानी लाने में भी लगती थी
1: जी।
0: तो ये जल मंत्रालय ने जो काम किया है, हर घर नल जो पहुंचाया है, हर घर जल पहुंचाया है, उसका भी बहुत लाभ हुआ है। फिर आपने इनको कहा है कि जरूरी नहीं कि आप 10 से 5 की जॉब करने जाओ, अगर आपके घर के आसपास या अपने घर में बैठे आप क्रोशिया भी बुनते हैं, आप स्वेटर भी बुनते हैं, आपको सिलाई भी आती है, या आपके आसपास जैसे कि मखाना की खेती में आपने देखा होगा, मशरूम खेती, बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जो लखपति दीदी बनी है उन्हीं चीजों से। जरूरी नहीं कि आपके पास बीए एमए की डिग्री हो, ऐसा भी नहीं है। तो जो इस तरह की योजनाएं हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप जो बनाए, जिसमें कि लगभग 91 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप है और 10 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बन गई हैं
1: जी।
0: तो इस तरह की जो योजना, और दूसरा मुद्रा योजना जो है कि अगर अपने घर में मुझे कोई काम शुरू करना है, मुझे लगा कि मुझे एक सिलाई स्कूल खोलना है, मुझे लगा कि मुझे क्रोशिया सेंटर बनाना है अपने घर में, मुझे लगा कि मेरे पास जो स्किल है जो मुझे किसी स्कूल से नहीं अपनी फैमिली से ट्रेडिशनल मिली है, अगर मैं उसी को आगे विकसित कर, कौशल हुनर जो कि परंपरागत हमारे यहाँ आपने देखा कि कोई साड़ी बनाता है तो कोई लकड़ी का सामान बनाता है, तरह तरह की चीजें हैं, मतलब गिनाना मुश्किल है क्योंकि भारत में इतनी विविधता है। अब कुछ तो महिलाएं जैसे हल्दी उगा रही हैं, कोई मशरूम उगा रहे हैं, तो उनको जो लोन मिल रहा है सस्ती किस्तों में, मतलब कि उनको बहुत ज्यादा भागदौड़ नहीं करनी, और मुद्रा लोन जो मिल रहा है इससे भी उनका जो लाइफ है वो बहुत आसान हुई है। दूसरा है शिक्षा को लेकर भी बहुत काम हुए हैं, केजी टू पीजी जो है कि आप केजी से लेकर पीजी तक बच्चियां जो है वो पढ़ेंगी। और फिर ये है कि सुरक्षा का वातावरण, आप देखेंगे कि कई राज्यों में तो ऐसा था कि 6 बजे के बाद लड़कियां घर से नहीं निकलते। उत्तर प्रदेश का मैं आपको एक उदाहरण दूं जैसे कि, तो अब देखिए वहां बेखौफ लड़कियां रात को 2-2.5 बजे तक भी आराम से घूम सकती हैं, क्योंकि सुरक्षा इतनी ज्यादा। जब तक माँ और बेटी को नहीं लगेगा कि वो सुरक्षित है, तो बेटी बाहर काम करने उसको कोई जाने नहीं देगा।
1: बहुत इम्पोर्टेंट ये सशक्तिकरण का,
0: ये बहुत सुरक्षा की भावना, वो जो इस सरकार ने सुरक्षा की भावना दी, महिला थाने खोले, महिला हेल्पलाइन खोली कि आप तुरंत फोन कीजिए आपको मदद मिलेगी। और एक और देखिए कि महिलाओं को मैटरनिटी लीव में डबल किया है
1: जी।
0: 3 महीने से 6 महीने किया, ये भी एक बहुत बड़ा सशक्तिकरण है महिला का।
1: बिल्कुल,
0: मातृत्व सुरक्षा योजना है, शिशु योजना है, इन सब योजनाओं ने महिलाओं के जीवन को आसान किया है, सुविधा दी है। मैं बात कर रही हूँ उन महिलाओं की जो कि अभी तक बहुत बाहर निकल के काम नहीं करते। अब हम बात करते हैं उन महिलाओं की जो पढ़ लिख के आगे, जैसे कि आपने सैनिक स्कूल लड़कियों के लिए खोल दिया गया, जैसे कि एनडीए खोल दिया गया लड़कियों के लिए, लड़कियां फाइटर पायलट हैं। तो ये जो इस तरह की चीजें भी आई है ना, उससे पूरे देश में बाकी लड़कियों को भी एक प्रेरणा मिली। 26 जनवरी परेड का आपने जो स्वरूप बदलते हुए देखा होगा, आप देखिए कैसे स्वरूप बदला है। पहले आप देखिए किसी भी कंटिजेंट में लेडी नहीं लीड करते,
1: एकदम गर्व से सर ऊंचा हो जाता।
0: अब आप देखिए, अब 26 जनवरी परेड का रूप बदल गया है। तो मुझे लगता है बहुत सारे, और इसका सबका कारण मैं एक समझती हूँ, क्योंकि इस सरकार का जो है अंत्योदय, जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, शुरू से ही भाजपा का ये मूल नियम रहा है अंत्योदय, अंत से उदय करना है। तो ये बहुत सी योजनाएं जो है जो सबसे वंचित वर्ग है वहां से शुरू होती हैं, और जैसे कि जो अफोर्ड कर सकते हैं एलपीजी, तो उनको अब आप देखिए सबका हटा दिया, हमने भी सरेंडर
1: बिल्कुल,
0: और वो उन वर्गों तक पहुंचा जिनको उसकी आवश्यकता थी।
1: बिल्कुल टारगेटेड जो है, फोकस्ड इम्प्लीमेंटेशन भी हुई है रिफॉर्म्स की। नीलू जी, अगर हम एक बहुत बड़ी जो शक्ति मानी जाती है भारत की, कि भारत एक युवा देश है, यहाँ पे डेमोग्राफी

0: से जो युवा पीढ़ी है उस पर जो ध्यान दिया है सरकार ने और जिस तरह से उनका सशक्तिकरण हुआ है, आप किन पहलों को इन 12 वर्षों में सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं? अगर आप टॉप 2-3 हमें बताएं कि कौन सी आपको पॉलिसी डिसीजंस जो है वो सबसे आपको लगता है कि परिवर्तनकारी सिद्ध हुए हैं या हो सकते हैं।
1: देखिए, सबसे बड़ी बात यह है युवाओं के लिए कि युवाओं में अपनी ऊर्जा बहुत होती है, शक्ति उनकी अपनी बहुत है
0: जी।
1: उस ऊर्जा को अवसर देने की जरूरत है, उसके लिए बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको
0: जी।
1: ये पहली बात है, सबसे महत्वपूर्ण बात है। और समस्या ये थी कि युवाओं को अवसर नहीं मिलता था और वो जीवन के हर फील्ड में, चाहे वो अर्थव्यवस्था के किसी भी फील्ड में चले जाएं, शिक्षा में चले जाएं, खेल में चले जाएं, हर फील्ड में वो काम कर सकते हैं, उनकी एनर्जी है और सबके अपने अपने खासियत है। तो जो उनकी रुचि है, जो वो कर सकते हैं, उसमें अवसर कैसे दिए जाएं, तो मैं ये कह सकता हूं कि युवाओं के लिए अवसर के ऐसी अनंत संभावनाओं के दरवाजे खुल गए हैं कि हर युवा जो है वो अपने अपने कौशल के विकास में, अपने अपने क्षेत्र में जिसमें करना चाहता है वो कर रहा है। और इसलिए आप देखें, खेल हो, शिक्षा हो, चाहे वो स्वरोजगार हो, चाहे वो साइंटिफिक चीजें डेवलपमेंट हो, नई टेक्नोलॉजी हो, जो अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी है, आईटी से रिलेटेड है, आप युवाओं को देखेंगे पूरी दुनिया में छा रहे हैं भारत के युवा। इसमें 2-3 चीजें महत्वपूर्ण है जो देखने की बात है कि जैसे युवाओं के लिए अवसर की जब मैं बात करता हूं तो पहले मेडिकल की सीटें जो थी, अगर MBBS के देख लें तो 55,000-56,000 की होती थी। 140 करोड़ के देश में केवल 56,000 MBBS आप बना रहे थे, आज वो 1,25,000 की सीटें हो गई हैं, डबल से भी ज्यादा हो गई हैं। जो पोस्ट ग्रेजुएट थी वो लगभग 30-32,000 के आसपास थी, वो लगभग 65-70,000 हो गई, डबल से ज्यादा वहां भी हुई हैं। ये यूथ पहले बाहर जाता था, यूक्रेन से कर रहा है, चीन से कर रहा है, नेपाल से कर रहा है, वहां जो यूक्रेन की आपदा में कैसे फंस गए थे सब देख रहे हैं, MBBS कर रहे थे, इंजीनियरिंग कर रहे थे। वैसे यूनिवर्सिटीज जो है, मेडिकल कॉलेजों की संख्या जो है, सीटें बढ़ी हैं तो मेडिकल कॉलेज की संख्या बढ़ी है, वो लगभग 380 के आसपास थी आजादी के बाद, 2014 तक खोली गई थी, वो लगभग 750 के आसपास हो गई है। 50-60 और मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, जो सीटें जो है MBBS की 50,000 और बढ़ने वाली हैं। ये युवाओं को अवसर दिया देश के भीतर कि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, आपके लिए है। ऐसे यूनिवर्सिटीज, क्योंकि यूनिवर्सिटीज में एडमिशन आप देखते थे कितना मारामारी है, एडमिशन नहीं मिलता था, लोग जो हैं वो ओपन स्कूलिंग करते थे। ओपन स्कूलिंग अभी भी खुला है और वो एक बढ़िया विकल्प है कि उसमें हम कैसे कर सकते हैं, क्या हम और कोई काम करते हुए भी हम ओपन स्कूलिंग से कोई शिक्षा ले सकते हैं। लेकिन यूनिवर्सिटीज की संख्या लगभग 800 से बढ़ करके और 1300-1400 हो गई है, वो डबल हो गई है, ये तो उन्हीं के लिए हुआ है। और खेल में प्रतिभाओं को निखारने के लिए सरकार ने पैसे दिए हैं, जो स्कीमें लाई हैं, जो युवा खेल जो प्रतिभाएं हैं उनको कैसे ट्रेनिंग दी जा रही है। तो आप देखें कि ओलंपिक खेल हो, चाहे एशियाड खेल हो, चाहे कोई भी खेल हो, जो भारतीय युवा, जो कहा जाता था कि खेलों के लिए भारत में युवाओं का जो शारीरिक संरचना है वो ऐसे खेलों में कंपटीशन के लिए नहीं है, वो कहीं ना कहीं कम है, वो गलत थी बात, वो कहा जाता था।
0: और ये अपॉर्चुनिटी दी खेलो इंडिया जैसे आयोजनों के,
1: खेलो इंडिया, वही मैं कह रहा हूँ, खेलो इंडिया आयोजन वो तो एक आयोजन है, लेकिन आप जो साई के सेंटर्स हैं, जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो सेंटर्स हैं, वहां पे युवाओं पे जो इन्वेस्ट किया जा रहा है, उनको जो ट्रेनिंग दी जा रही है, उन पे जो खर्च हो रहे हैं, इंटरनेशनल कोचेज अगर युवा को अच्छा कर रहा है, ओलंपिक के और एशियाड के लाइक कर रहा हो, तो जर्मनी हो चाहे कहीं भी, सरकार के खर्चे पे ट्रेनिंग हो रही है। तो ये एक बड़ा अवसर जो है युवाओं के लिए है। निश्चित रूप से आप कह सकते हैं कि सारे युवाओं को जो है वो सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती है, सारे युवा इस तरफ नहीं जाएंगे, तो वोकेशनल स्टडीज का जो है एक बड़ा उन्होंने किया है ट्रेनिंग, और जो ITI हमारा जो ट्रेनिंग का जो था उसका मॉड्यूल को पूरा चेंज किया है। पहले युवाओं को होता था कि वहीं पे है ITI करो, जो कोर्सेज है वही करो, वो सब पुराने कोर्सेज हो गए हैं, अब उसको रीडिजाइन किया जा रहा है कि हर डिस्ट्रिक्ट में अगर ITI है तो उस डिस्ट्रिक्ट में कौन से उद्योग हैं, वहां कहां प्रशिक्षित युवाओं की मांग है, तो ऐसे वहां पे उसी लेवल पे उनको ट्रेनिंग दें, वहां फैसिलिटीज दें। अब कितने ट्रेनर हैं, किस किस फील्ड में हैं, ये नहीं पता था, अब सरकार एक नया बना रही है डायरेक्टरी जिसमें कि किस फील्ड के कितने अच्छे ट्रेनर हमारे कहां कहां हैं, कहां कहां गैप है, कहां क्या डिमांड है, दे सकते हैं, तो एक बड़ा चीज है। और सबसे बड़ी चीज जो है वो सबसे बड़ी चीज जो सबसे ऊपर जाती है वो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, वो तो बिल्कुल विशुद्ध युवाओं के लिए है
0: और बदलते परिवेश के अनुसार जो जरूरतें हैं उसके अनुकूल है।
1: उसने जो 10+2+3+2 का जो पूरा का पूरा शिक्षा मॉडल था उसका शिकंजे से युवाओं को मुक्त कर दिया है कि आपको 12th करना है, फिर

0: साल जो है आपको बीए करना है, फिर 2 साल पीजी करना है, फिर एमफिल करना है, ये करना है, उसके बाद कम्पिटेटिव एग्जाम देना है। अगर बीच में आपकी पढ़ाई छूट गई तो छूट गई, आपकी सारी मेहनत खत्म। अब उसमें बिल्कुल फ्लेक्सी कर दिया है कि क्रेडिट सिस्टम होगा, आपने 1 साल पढ़ा, 1 साल के बाद आपकी जरूरत पड़ गई, घर में कोई समस्या हो गई, कुछ कहीं नौकरी आपको करनी पड़ रही है, या आपको कहीं कोई अच्छी नौकरी मिल गई, आप वहां चले गए, आपको लगा कि वो पढ़ लेते तो मेरा हो जाता। तो जो आपने 1 साल पढ़ा हो, 2 साल पढ़ा हो, वो आपके क्रेडिट में है, वो आप कर सकते हैं। जो सिलेबस चुनने में जो था, जो समस्याएं थी कि बच्चा क्या करेगा, साइंस लेगा तो बायोलॉजी लेगा, केमिस्ट्री लेगा, जब वो कहो तो मैथमेटिक्स लेगा, फिजिक्स लेगा, मतलब एक था कि आप सेट हैं, उसी में हैं। अब कोई बच्चा जो है वो हिस्ट्री भी पढ़ना चाहता है और मैथमेटिक्स भी अच्छा हो, वो क्यों नहीं ले?
1: तो युवाओं के लिए बहुत सारे जो
0: मतलब जितने शिकंजे थे, जो अनंत संभावनाएं, जो अवसर उसके युवाओं के लिए है, वो अवसर के दरवाजे सरकार ने खोले हैं।
1: बिल्कुल,
0: कि आप जो करना चाहे करो। युवाओं में इतनी ऊर्जा है कि वो बाकी सब कुछ कर लेंगे, उनको करने के लिए आपको कुछ सपोर्ट की जरूरत नहीं है, केवल अवसर देने की जरूरत है। और पिछले 12 सालों में वो अवसर मैंने इतने गिनाए आपको कि जो जो करना चाहे, जहां करना चाहे, इस देश में अवसर है, आपको देश छोड़ के जाने की जरूरत
1: तो नहीं। सरकार का जो ये एक सोच है कि आप जॉब सीकर के बजाय जॉब क्रिएटर बने, आत्मनिर्भर उद्यमी, जिस तरह से अगर हम स्टार्टअप्स की अगर हम जब स्टैटिस्टिक्स देखते हैं कि 350 स्टार्टअप्स थे 2014 में, और अब वो बढ़कर जो संख्या है 2.2 लाख हो गई है। आपको लगता है कि ये जो एक इनोवेशन की स्पिरिट, एंटरप्रेन्योरशिप की स्पिरिट, इसको बहुत बढ़ावा दिया गया है इन 12 वर्षों में?
0: बिल्कुल, निश्चित रूप से। स्टार्टअप्स जब शुरू शुरू आया था तो लोग कह रहे थे कि भाई युवाओं को नौकरी चाहिए, स्टार्टअप में क्या कर लेंगे, कैसे कर लेंगे। अब आप देखें कि उसमें जो स्टार्टअप्स हैं वो अब बड़े बड़े बन रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के रूप में हो रहे हैं। 8,000-10,000 करोड़ का उनका टर्नओवर वो तत्काल हो रहा है। 150-200 स्टार्टअप ऐसे हो गए हैं जिनका टर्नओवर जो आप देखें तो अच्छी अच्छी कंपनियों से बेहतर है। वो तो वो एक अवसर, और स्टार्टअप में सरकार का जो मदद है
1: स्टार्टअप इंडिया द्वारा,
0: कि उसमें आपको ये टैक्स में छूट है, और इसमें आपके जो पुराने इंस्टीट्यूट हैं, IIT हैं, IIM, उन्होंने जिस ढंग से उनको आगे बढ़ाया है, वहां उनके टीचर जो मेंटोर हैं, वहां पे एक इकोसिस्टम बन रहा है, वो चल रहा है। और अगर स्टार्टअप में देखेंगे तो टेक के क्षेत्र में जो कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी में ज्यादातर वो काम कर रहे हैं, बाकी तो नए नए जो वेंचर्स उसमें भी आ रहे हैं, उसमें आप देखेंगे कि पेटेंट की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ी, यानी कि जो हमारे यूथ जो कहीं रिसर्च में लगे हुए हैं, कुछ नई चीज ढूंढ रहे हैं, पहले पेटेंट नहीं होता था, पूरा पेटेंट के जो रजिस्ट्री, जो पूरे मैकेनिज्म है वो चेंज किया जा रहा है। लाखों यूथ जो है वो अब नए नए पेटेंट के लिए हर साल लाखों अप्लाई हो रहे हैं, और पेटेंट मिल रहा है। पेटेंट मिलने का मतलब यह है कि बिल्कुल नई चीज, नए इनोवेशन करके आप दे रहे हैं। तो ये हर क्षेत्र में यूथ के लिए उन्होंने, चाहे खेल हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे रोजगार हो, अगर आप रोजगार देने वाला स्टार्टअप जैसे अगर आप उद्यमी बनना चाहते हैं तो वो अवसर भी है जो पहले नहीं मिलता था।
1: बिल्कुल। और अगर हम तीसरे स्तंभ की बात करें किसानों की, तो किसानों के सशक्तिकरण का रंजन जी जो एक क्रांतिकारी हमने बदलाव देखा है प्रोडक्शन फिगर्स में, अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें तो हम top 10 एक्सपोर्टर्स ऑफ द वर्ल्ड में अब शामिल हो गए एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स, और जिस तरह से नई मिनिस्ट्रीज का गठन हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, एलाइड सेक्टर्स के लिए एक अलग मिनिस्ट्री, किसानों के सशक्तिकरण को आप कैसे देखते हैं पिछले 12 सालों में, और इसका आधुनिकीकरण जो हुआ है उसके प्रमुख पहलू आप क्या मानते हैं?
0: देखिए, उसमें पहले आपको समझना पड़ेगा कि जब खेती में 2 चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती है, एक तो होता है इनपुट कॉस्ट, कि आप जब खेती करने जा रहे हैं तो आपको क्या क्या उसमें लगाना पड़ेगा, और अगर खराब हो गई फसल, बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया, कुछ भी हो गया, आपदा आ गई, तो आपका क्या होगा। पहले जो समस्या थी कि इनपुट कॉस्ट की तुलना में जो हम मिनिमम जो गारंटी सरकार देती भी थी कि हम खरीदेंगे, तो कुछ फसलों पे थी, चावल था, गेहूं था, 1-2 फसलें और थी, वो नहीं थी कि ये हम आपको खरीदेंगे। अगर आप देखेंगे 12 सालों में तो जो उर्वरक है, जो फर्टिलाइजर है, कीमत उसकी लगभग सेम है, 12 साल में नहीं बढ़ा है, सरकार को सब्सिडी बढ़ रही है, लेकिन वो लगभग 250-300 रुपए की बोरी जो 45 किलो की जो यूरिया की थी आज भी वही है,
1: और बड़ा समर्थन है।
0: इसका मतलब कि जो कॉस्ट आपका है वो उर्वरक वाला वो नहीं बढ़ा है, वो सेम है। दूसरा कि पूरे देश में बिजली जो है वो 24 घंटे उपलब्ध है लगभग, मतलब ग्रामीण इलाकों में कहते हैं कि एवरेज 22-23 घंटे बिजली आज है, पहले नहीं होती, या और किसान अधिकांश जो राज्य है उसमें किसानों की बिजली फ्री है, तो सिंचाई के लिए आपको अलग से कोई कॉस्ट नहीं आ रहा है, और आपके खाद्यान्न की कीमत अगर आप देखेंगे तो कुछ बढ़ा ही है, दूसरी इससे भी बड़ी बात यह है कि सरकार जो सहायता दे रही है 2,000 रुपए का,
1: 6,000 प्रति वर्ष तीन इंस्टॉलमेंट
0: में, 2,000 के तीन इंस्टॉलमेंट में 6,000 के हैं, तो वो उसका अगर आप समय देखेंगे कि वो उस वक्त दिया जाता है और छोटे किसान, आपके अधिकांश जो देश में किसान हैं 12 करोड़ छोटे किसान हैं, उनके पास पैसे नहीं होते हैं, जिस वक्त उनको बुआई करनी होती है, जो खेत लगाना होता है, कुछ करना होता है, बीज खरीदने के लिए पैसे नहीं होते हैं, उनके लिए उस वक्त उनको पैसे दिए जाते हैं, वो मदद उनको दी जा रही है, किसान क्रेडिट कार्ड उनको दिया जा रहा है कि लाख रुपए तक अगर आपका खर्च कोई करना हो तो बहुत सस्ते में, कुछ नहीं देना है आपको, आप उसमें खर्च कर सकते हैं। जो फिशरीज का जो अलग से मिनिस्ट्री बना करके उनका जो ब्लू रेवोल्यूशन जो उनका किया है और जो एक्सपोर्ट बढ़ा है वो आप देखिए, हॉर्टिकल्चर में जो भारत का एक्सपोर्ट जो मेनली जो आपको दिख रहा है एक्सपोर्ट जो कृषि क्षेत्र में, वो उसमें दिख रहा है क्योंकि उसमें 10% 12% का ग्रोथ है, वो एक बड़ी ताकत के रूप में भारत उभर रहा है। तो किसान एज ए होल कह लें आप, बड़ा परिवर्तन हुआ है। और किसान अगर आप कहते हैं ना सिर्फ, तो किसान नहीं होता है सिर्फ, उसी घर में महिलाएं भी, महिलाओं का जो सेल्फ हेल्प ग्रुप बन रहा है
1: जैसा अभी सर्जना जी बता रही
0: हैं, सर्जना जी बता रही हैं, तो वो भी तो वहीं बन रही हैं, जो 10 करोड़ महिलाएं हैं वो भी तो किसान परिवारों से ही आती हैं, वो किसान परिवार सशक्त हो रहा है। जो मार्केट का डेवलपमेंट, जो आपकी सड़कें बन रही हैं, तो उन सड़कों के बनने से किसान का जो प्रोडक्ट है वो मार्केट तक आसानी से पहुंच रहा है। और आपने आज 20-25 फसलें ऐसी हो गई हैं जिनकी गारंटी सरकार दे रही है खरीदने के लिए कि हम उसको खरीदेंगे, है ना, आप उपजाओ और गारंटी है इस कीमत पे हम करेंगे। कई राज्य सरकारों ने इधर भावांतरण योजना शुरू कर दी है कि अगर आपको मार्केट से कम कीमत आपको बेचना पड़ रहा है, मार्केट में बेच रहे हैं, तो वो उस कीमत का पैसा हम आपको देंगे, यानी किसानों को कोई नुकसान नहीं होगा। तो जो अन्नदाता है उसके लिए उन्होंने खोला है, सारी चीजें व्यवस्था हो रही है। जो मतलब जो सीधे से कहां से नहीं जुड़ा है, किसान से लगता है कि जुड़ा हुआ नहीं है। अब मान ले कि जो सरोवर बनाने का था कि जीर्णोद्धार करना है, तमाम तालाबों का सब भर गए थे, सब कुछ है, वो किसका पानी का लेवल बढ़ रहा है, वहां सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध हो रही है, किसको जा रहा है फायदा, ये कई चीजें सीधे उनसे जुड़ी हुई नहीं है। जो ग्रामीण इलाकों में जो गरीब परिवार हैं उनका जो फ्री में इलाज जो 5 लाख का हो रहा है, उसमें बहुत सारे परिवार ऐसे गरीब हैं जो आयुष्मान भारत योजना के तहत, वो किसान परिवार से आते हैं। जो 55-60 करोड़ लोग हैं वो कहां से 55-60 करोड़ लोग हैं, बहुत सारे वहां से भी हैं। इसीलिए किसानों पे जो इनपुट कॉस्ट है, उनके जो जीवन के लिए जरूरी चीजें हैं, जो खर्चे हैं, सरकार ने उसे कम किया है, उनकी उत्पादकता बढ़ाई है, और अब कोऑपरेशन मिनिस्ट्री अलग से बना करके उनका कैसे वो जो फार्मर का जो प्राथमिक जो है वो संघ बने, कोऑपरेटिव बने, उसकी 1 लाख के आसपास हो गया है, उसमें है कि 2-3 लाख कोऑपरेटिव बनाने हैं। कोऑपरेटिव बना करके सिर्फ कोऑपरेटिव नहीं करना है, इंटरनेशनल कैसे उनका ऑर्गेनिक खेती करे, कैसे वो विदेश में एक्सपोर्ट हो, इसके लिए अलग से कोऑपरेटिव बना दिया है।
1: बिल्कुल,
0: तो हर तरफ से किसानों को सशक्त कर, किसान सशक्त मतलब देश सशक्त।
1: बिल्कुल सर्जना जी, अगर आपके पास आए, जैसा कि अभी नीलू जी कह रहे थे कि सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है, जो सारे चारों स्तंभ हैं ये भी आपस में जुड़े हुए हैं। अगर हम खासतौर से वंचितों की बात करें, जो इन्हें मार्जिनलाइज्ड कहते हैं या आर्थिक रूप से कमजोर, इनके बारे में थोड़ा सा बताएं कि इनके जैसे जो जनजातीय समूह के लिए जो स्टेप्स उठाए गए हैं या जो पर्संस विद डिसेबिलिटीज के लिए स्टेप्स उठाए गए हैं, ये मार्जिनलाइज्ड सेक्शन के लिए आप हमें बताएं कि किस तरह के परिवर्तनकारी उपाय हुए हैं।
2: वर्ग में तो एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया है, वो ऐसे आया है कि एक तो सबसे पहले उस वर्ग में आत्मसम्मान, आत्म गौरव की भावना पैदा करना, जो हमारे शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, जिनको पहले आदिवासी बोला जाता है, अभी वनवास जनजाति जैसे है, तो इनके लिए आप देखें कि जो उनके हीरो रहे हैं, बिरसा मुंडा हैं और बहुत सारे, उन सबको इन्होंने निकाला और जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है बिरसा मुंडा जी के नाम से। फिर आदि मेले लगने शुरू हुए और एकलव्य स्कूल बनाए गए हैं इन बच्चों के लिए, उसका नाम है एकलव्य स्कूल, कि जितने ट्राइबल बच्चे हैं, क्योंकि अगर वो रेगुलर स्कूल में नहीं जा पा रहे तो आप उनको बोर्डिंग स्कूल है ये, उसमें आप उनको पूरी तरह से एक आधुनिक शिक्षा भी दे रहे हैं, आप उनको शिक्षा से जोड़ रहे हैं। दूसरा, जो ट्राइबल्स हैं वो हमारे जल, वन के रक्षक और संस्कृति के रक्षक सबसे ज्यादा वो हैं। हम जो पढ़े लिखे शहरी हैं, हम पर्यावरण की उतनी रक्षा नहीं कर सकते जितना वो लोग करते हैं। तो उनके लिए जो वन धन योजना है उससे बहुत लाभ है। उनको कहीं नहीं जाना, नौकरी के लिए एप्लीकेशन नहीं देना, क्योंकि उन लोगों को ये भी मालूम है कि कौन सी जड़ी बूटी का क्या असर है।

0: पत्तों को हम नीलू जी या आप जंगल में जाके नहीं पहचान सकते। उनको पता है कि कौन सा फूल जब खिलेगा तो उसके बाद कब बारिश होगी, कब आंधी आएगी। तो वो लोग प्रकृति के साथ सहचर हैं, प्रकृति के। ये जो मंत्रालय है, ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री है, तो ये भी आप देखिए कि वैसे तो अटल जी के समय में बना था, लेकिन अब इसमें बहुत सारे परिवर्तन आए हैं। और ये खेलने में बहुत अच्छे हैं, ये हॉकी में है, स्पेशली तीरंदाजी में, कुश्ती में, तो उस पर भी ध्यान दिया गया है। इनके लिए बोर्डिंग्स खोले गए, इनके लिए कोचेस दिए गए हैं, इनके लिए बहुत सारी योजनाएं हैं। और जिस एरिया में जो चीज ज्यादा जो पैदावार हो रही है, अब देखिए कि जैसे मखाना बोर्ड बिहार में बनाया गया, पहले तो नहीं था। दूसरी बात, खाली मखाना बोर्ड बना देने से काम नहीं होगा, ट्रेनिंग है उनकी, फिर उनकी प्रोडक्ट की कीमत है, फिर उनकी प्रोडक्ट को देश में और विदेश में सब जगह पे उनको मंच मिले, ई कॉमर्स जिसको वो भी चला रहे हैं। अभी जब मोदी जी यात्रा पर गए, हमारे प्रधानमंत्री जी, फ्रांस, स्लोवाकिया और G7 में, तो मैं जो लिस्ट देख रही थी, आप सोचिए, उसमें वो पिछली बार मखाने लेके गए थे, इस बार वो ठेकुआ भी लेके गए। ठेकुआ भी आप मतलब,
1: हाँ, उन्होंने सम्मान दिलाया है पूरे,
0: श्री अन्न उसको नाम दिया, जिसको मोटा अनाज सब बोलते थे, अब उसको देखिए मान श्री अन्न। और सब चीजों की कीमतें भी बढ़ गई उसकी वजह से, और उसका किसान को लाभ हो रहा है। आज मखाने का आप रेट देखिए बाजार में, तो वो सारा आप सोचिए कि वो लाभ किसान को जा रहा है। और दूसरा, जैसा अभी नीलू जी ने कहा कि खाली विकास समग्र होना चाहिए, अगर मेरे पास प्रोडक्ट है और मैं मंडी तक ही नहीं पहुंच पाऊं, तो मेरे पास मंडी तक पहुंचने के लिए सड़क नहीं है, साधन नहीं है, तो मेरी प्रोडक्ट का क्या होगा, क्योंकि ये तो पेरिशेबल आइटम जो होती है, तो उनको तुरंत बाजार चाहिए। तो ये भी बहुत सुविधा हुई है उसके लिए
1: जी।
0: और जब ये MSP की बात होती है, तो MSP अब कहा कि आप जाके किसान अपनी फसल, जरूरी नहीं कि किसी को, भाई जिसको जो कीमत दे रहा है किसान को, जितनी दे रहा है, और जिसके पास वो जाके खरीद ले,
1: हो जाता है,
0: नहीं खरीद लीजिए जाके जितना रेट है। तो ये विपक्ष जो कहता रहा, जो किसान आंदोलन हुआ, उन्होंने MSP की बात की, तो वो उससे चार कदम आगे चले। तो वंचित वर्ग में फिर है कि पढ़ाई है उनकी, पहले लोगों को लगता था कि अगर बेटी पैदा हो गई तो क्या होगा, अब किसी को नहीं लगता। सुकन्या समृद्धि योजना है, लड़कियों को वर्दी है, लड़कियों को सब कुछ। और दूसरा, अगर मान लीजिए अब जो असंगठित क्षेत्र था, जहां पर ये वंचित वर्ग जिसकी आप बात कर रहे हैं, क्योंकि उसके पास कोई स्किल, कोई एजुकेशन कुछ नहीं था, या उसके पास अपना पारंपरिक हुनर भी, कौशल भी नहीं है कोई, तो खैर कौशल विकास मंत्रालय भी खोला गया और कौशल विकसित किया जा रहा है। तो अगर उसके पास कुछ भी नहीं, तो वो किसी मान लो फैक्ट्री में काम कर रहा है, तो ये भी सरकार ने सुनिश्चित किया, जो नए 4 लेबर कोड आए हैं, कि अगर कोई असंगठित क्षेत्र में है और काम कर रहा है, स्पेशली महिलाएं हैं, तो उनका वेजेस तय कर दिए गए हैं कि आप इससे कब वेज पे बिल्कुल काम नहीं करवाओगे
1: जी।
0: तो ये आप देखिए कितनी अच्छी बात है।
1: हाँ।
0: फिर दूसरा, अगर महिला आपके यहाँ काम कर रहे हो, तो आप उसको घर पहुंचाने की व्यवस्था भी करेंगे, फैक्ट्री आपकी करेगी, तो ये भी एक अच्छी बात है। अब सैनिटरी पैड पर देखिए, लड़कियों की जो सबसे बड़ी एक समस्या होती है, कि वैसे इसको कहा गया था कि ये बातचीत करने के, लेकिन ये भी 1 रुपए में जन औषधि केंद्र में सैनिटरी नैपकिन मिल रहा है लड़कियों को, किशोरियों को, तो आप सोचिए महिलाओं को, तो ये भी
1: बहुत बड़ा,
0: हम इसको एक अगर देखें तो एक तरह से ये भी एक सशक्तिकरण की ओर एक बड़ा कदम है। पिंक टॉयलेट्स हैं महिलाओं के लिए, अलग से अच्छे शौचालय बनाए गए हैं। तो ये ऐसी चीजें हैं जो आपको, अगर हम किसी मैनेजमेंट स्कूल की बुक देखें, तो उसमें ये चीजें नहीं दिखेंगी, लेकिन पिछले 12 साल में जो इतनी छोटी छोटी चीजों को सोच के समझ के जिनके ऊपर काम किया गया, पिछले 12 साल में जनधन खाते खोले गए, डायरेक्ट बेनिफिट उनको मिल रहा है, लेकिन उसके साथ साथ उनका कौशल विकसित किया गया,
1: और एक तरह से जो हमारी ट्रेडिशन है हमारे देश की, वो भी अलाइव,
0: मतलब कि हमारी एजुकेशन पॉलिसी जो मैकॉले ने जो लाया था, उसने व्हाइट कॉलर जॉब को बहुत प्रेफरेंस दिया था, पर ये जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, जो सरकार की औद्योगिक नीतियां हैं, जो MSME आप देखिए ना, MSME सेक्टर में कितनी चीजें जो महिलाएं घर में बैठे बैठे शौक शौक में बना लेती हैं, जिनको ये शौक है, जिनके पास स्किल है, अपनी दादी नानी माँ से सीखा है, तो उसके लिए भी सरकार लोन दे रही है।
1: बिल्कुल।
0: तो ये बहुत महिलाओं का सशक्तिकरण। दूसरा मैं आपसे कहूंगी कि जैसे मातृत्व वंदन है, वो योजना कितनी अच्छी है, जो मातृ शिशु रक्षा योजना है, तो ऐसी योजनाएं पहले था कि हाँ,
1: और एक्चुअली वो फिगर्स में दिखाई दे रहा है कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज जो अस्पतालों में हो रही हैं, उनका संख्या इतनी बढ़ गई है, 98% पे पहुंच गई है, और भी जो मॉर्टेलिटी रेट है,
0: बेसिक मेरी जरूरत है वंचित वर्ग की, अगर हम बात करते हैं कि रोटी कपड़ा और मकान,

0: उनको प्रधानमंत्री आवास योजना में घर दिया जा रहा है
1: जी, जी।
0: ठीक है, उनको जो राशन दिया जाता है एक बीपीएल जो है उससे बिलो में जो राशन मिलता है, ठीक है वो आज नहीं तो कल कमाने लगेगा, वो भी बाकी समाज के साथ पेस मिलेगा, लेकिन जब उसको अपनी बेसिक जरूरतें पूरी हो रही हैं तो उसको उसके लिए नहीं स्ट्रगल करना, इसलिए उसका जीवन स्तर आगे बढ़ा। और कितने करोड़ लोग नीलू जी गरीबी रेखा से ऊपर उठे,
2: 25 करोड़
0: गरीबी रेखा से ऊपर उठे। और डिजिटल पेमेंट देखिए, आप सारी दुनिया आज हमसे सीखना चाहती है भारत।
3: और ये जो डिजिटलाइजेशन की आप बात कर रही हैं वो पूरे देश में है।
0: सब्जी वाला भी कहता है जी यहाँ पे पेमेंट कर दो, जो फूल बेच रहा है वो भी कहता है, गोलगप्पे वाला
3: जी,
0: टिक्की वाला।
3: व्यापक सशक्तिकरण है। अगर हम सामाजिक न्याय की बात करें, समावेशी विकास की बात करें, तो कुछ ऐसे आंकड़े हैं, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में 71% बेनिफिशियरीज जो है शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब ओबीसी फार्मर्स हैं। और मुद्रा योजना की अगर हम बात करें या जनधन योजना की बात करें तो 70% से अधिक जो अकाउंट्स हैं वो महिलाओं के हैं। सो आपको लगता है कि जो स्कीम्स हैं वो अच्छी भी हैं, लेकिन वो ज्यादा जरूरी है कि वो इम्प्लीमेंट बहुत कहें कि सिंसियरिटी से हुई है।
4: निश्चित रूप से मैं ये अनुभव अपना बताता हूँ, जहां मैं अभी गया था पिछले दिनों, जगदलपुर गया था। जगदलपुर का नाम सुनते ही बस्तर सोचते हैं लोग, नक्सली प्रभावित था, नक्सली इलाके में कोई सरकारी कर्मचारी जा ही नहीं सकता था, स्कूल जला दिए थे, जो जंगल में जो लोग थे उनको सारी चीजें नहीं मिलती थी। अब वहां के जो प्रोडक्ट हैं, जो वहां ट्रेनिंग दी जा रही थी और बिल्कुल एक संस्थागत रूप में सब कुछ लाया जा रहा है वहां पे, कि जो कैंप लगे थे, नक्सल समस्या खत्म हो गई, तो जो सुरक्षा बलों के कैंप थे उसको सेवा केंद्र में बदला जा रहा है। अमित शाह जो गृह मंत्री हैं वो खुद हमारे साथ थे, उनके साथ मैं भी था। वहां मैंने देखा कि जो जंगल के प्रोडक्ट हैं, जैसे इमली बहुत होती है, अब इमली वहां पे जो तोड़ा अब वो बिचौलिए सब खाते थे और जैसे थे जाता था, अब वो मशीनें लगी हैं, उनको ट्रेनिंग दी जा रही है कि इमली को कैसे आप पैकेजिंग करो, 500-500 ग्राम के, 1 किलो के छोटे पैकेजिंग बिल्कुल एकदम उसको, और उसके बीज हटने चाहिए, उसका ये होना चाहिए और बिल्कुल शुद्ध ऑर्गेनिक बिना किसी केमिकल के, और उसकी बहुत डिमांड है। एक वहां महुआ बहुत होता है, फ्री में चुनते हैं। अब महुआ और बाकी जो श्री अन्न है मिला करके इतने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट बन रहे हैं उसके, तो मार्केटिंग की एक सोच का अंतर आया है,
3: एक अवेयरनेस क्रिएट हुई।
4: अवेयरनेस नहीं, सोच का अंतर ये है कि जब देश आजाद हुआ था तो हमने ये मान लिया था कि ये तो ट्राइब्स हैं, ये जैसे हैं वैसे ही खुश हैं, इनमें हमें छेड़छाड़ नहीं करनी है, इनको हमारे डेवलपमेंट जो, इनको हमारे स्कूल नहीं चाहिए, इनको हमारी बिल्डिंग नहीं चाहिए, इनको गाड़ी नहीं चाहिए, इनको जहाज नहीं चाहिए, इनको कुछ नहीं चाहिए, इनको ये जंगल में ही खुश है। अब आपने उनको छोड़ दिया तो उस जंगल में नक्सली घुस गए। अब जो चेंज आया है कि सारी सुविधाएं वो जंगल में रहें, जहां है जैसे जी रहे हैं रहें, लेकिन सारी सुविधाएं हम पहुंचाएं और उनके जो चीजें हैं वो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट तक भी जाए, बाकी जगह भी जाए,
3: विकास और उनके बच्चे पढ़े भी, अगर वो चाहे शिक्षा वहां पे पहुंची।
4: एकलव्य स्कूल का उन्होंने नाम लिया कि आदिवासी बच्चे।
3: अच्छा, आप जो सोच की बात कर रहे हैं नीलू जी, यहाँ पे मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि जो टर्मिनोलॉजी भी यूज की गई है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, कितनी खूबसूरत है कि रिकॉग्नाइज कर रही है सरकार की एस्पिरेशंस है उन लोगों की और उनको पूरा करने के लिए ये पॉलिसी मेजर्स उठाए जा रहे हैं।
4: वो यही है कि जब आप सिंसियरली देखते हो कि जिले हैं तो कौन कौन से जिले देश में जो है वो पिछड़े, पहले होता था पिछड़े राज्य की बात, लेकिन अगर आप देखोगे केरल में भी तो केरल कहें कि वहां बहुत साक्षरता है, वहां महिलाओं का सशक्तिकरण है, ये है, तमाम चीजें हैं, लेकिन वहां भी कुछ जिले जो है पीछे रह जाते हैं। और जब बिल्कुल आप पिछले जो कहोगे छत्तीसगढ़ का, तो छत्तीसगढ़ के कुछ जिले बहुत अच्छे हैं। तो जो जिले पीछे छूट गए हैं वो किन किन मापदंडों में छूटे हैं, वहां क्या करने की जरूरत है। अब वो जब हो गया तो जिले के भीतर ब्लॉक हैं, तो अब 500 ब्लॉक्स के अलग चल पड़ी है वहां पे। यानी कि जब समग्र और समेकित विकास की आप बात सोचते हो, कि अंत्योदय जो उन्होंने कहा कि दीनदयाल उपाध्याय जी का था कि कोई छूटे न पीछे, ये जब आपकी सोच होती है तो जितने लोग छूटे हुए हैं सबको आप चुनते हो, क्यों छूट गया, क्या कमी है, क्या हम लगाएं कि यहाँ पे आ जाए, वो चीजें हो रही है।
3: सज्जना जी आप भी कुछ कहना चाहेंगी?
0: देखिए, मुझे जो सबसे अच्छा दो तीन चीजें लगती हैं। एक है विरासत के साथ विकास
3: जी,
0: जो स्लोगन है वो बहुत बढ़िया लगता है मुझे कि हम अपनी परंपराओं को, अपनी ट्रेडिशंस को बचाते हुए विकास की राह पर चले। ऐसा विकास ना हो जो हमें हमारी जड़ों से अलग कर दे। तो हमारी जड़ों से जोड़ने का जो विकास है वो ये सोच बहुत अच्छी है। अगर मैं अपनी जड़ से उखड़ कर कहीं बहुत उन्नति करती हूँ अपने समाज से, अपने रीति रिवाज से, अपनी परंपराओं से, तो वो विकास एक दिन जाकर मुझे दिल को बहुत दुखी करेगा। लेकिन मैं अपनी जड़ों से भी जुड़ी हूँ, अपनी परंपरा से, अपनी संस्कृति से, और उसके साथ मेरा विकास हो रहा है। अब एक चीज मैं और कहना चाहूंगी कि यूनेस्को धरोहर में अब हमारी टेंजिबल एंड इनटेंजिबल कितनी सारी चीजें आ गई। आप सोचिए, हमारा गरबा, हमारी दुर्गा पूजा, हमारी दिवाली, हमारे बहुत सारी चीजें हैं जो अब यूनेस्को की लिस्ट में शामिल हो गई। और एक और सोचिए, पर्यावरण की दृष्टि में रामासर जो आर्द्र भूमि जिनको हम बोलते हैं, वो 100 होने वाली है। 99 तो हो ही चुकी, हो गई शायद 100 हो गई।
3: और ये सब चीजें युवाओं को भी प्रेरित करती है कि हमारा कितना
0: रामसर लेक जो है, पहले हमारे पास 13 या 14 थी, अब आप देखिए कितनी हो गई। तो ये समग्र विकास जो है ना, विद मेरे विरासत के साथ, तो ये एक बहुत 12 साल की एक उपलब्धि है।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर्जना जी। नीलू जी, आप आए और आपने हमें इतनी खूबसूरती से समझाया कि जो चार स्तंभ जो माने गए हैं वर्तमान सरकार द्वारा विकास के, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी, उनके सशक्तिकरण के लिए क्या क्या किया गया है पिछले 12 सालों में और आगे भी क्या हम उम्मीद कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद
0: सोनू जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमें आमंत्रित करने के लिए।
4: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे सशक्तिकरण से समृद्धि की ओर बढ़ते भारत पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे वरिष्ठ पत्रकार नीलू रंजन और सर्जना शर्मा। परिचर्चा का संचालन कर रही थी सोनू सूद। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।

0: यार कोई ऐसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बताओ जिसमें कम प्रीमियम हो, बोनस भी अच्छा मिले और भरोसे वाला भी हो।
1: TLI है ना।
2: सरकारी कर्मचारी के साथ साथ सभी प्रोफेशनल, ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर्स ले सकते हैं PLI पॉलिसी का फायदा और साथ में पोस्टल डिपार्टमेंट का भरोसा भी। अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से आज ही संपर्क करें या लॉग इन करें indiapost.gov.in पर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त अन्नदाताओं के अथक परिश्रम और योगदान के प्रति सम्मान का प्रयास है। विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद की 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का शुभारंभ किया। दिल्ली सरकार ने कल होने वाली नीट पुनः परीक्षा के लिए विशेष तैयारियां की। केंद्र सरकार ने 16 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन FDC दवाओं के निर्माण, बिक्री और वितरण पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल दिल्ली सहित पूरे विश्व में मनाया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जारी पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त सभी अन्नदाताओं के अथक परिश्रम और योगदान के प्रति सम्मान का निरंतर प्रयास है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि इस योजना के तहत 9 करोड़ से अधिक किसान परिवारों को 18,880 करोड़ रुपए की सीधी सहायता प्रदान की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सहयोग किसानों को कृषि संबंधी खर्चों में आर्थिक संबल प्रदान कर रहा है और उत्पादकता तथा आय वृद्धि में सहायक बन रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के जन्म दिवस के अवसर पर आज दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने उन्हें शुभकामनाएं दी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उपराज्यपाल ने कहा कि राष्ट्रपति का प्रेरणादायक जीवन सफर, विनम्रता और जनसेवा के प्रति समर्पण देशभर में लाखों लोगों को प्रेरित करता है। एक अन्य सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि राष्ट्रपति का जीवन संघर्ष से शिखर तक की अनुकरणीय गाथा है। श्रीमती गुप्ता ने बताया कि उनका जीवन नारी शक्ति की प्रतीक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि द्रौपदी मुर्मू की शालीनता, संवेदनशीलता और संविधान

0: को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि बंगाल निरंतर प्रगति, समृद्धि और विकास के नए आयाम स्थापित कर रही है। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने आज भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद द्वारा आयोजित दो दिन के राष्ट्रीय संगोष्ठी का शुभारंभ किया। इस संगोष्ठी का विषय वर्तमान समय में शास्त्रार्थ का अनुप्रयोग था। इस अवसर पर श्री गुप्ता ने बताया कि भारतीय सभ्यता की वैचारिक शक्ति का आधार संवाद, तर्क और ज्ञान की समृद्ध परंपरा रही है। उन्होंने कहा कि शास्त्रार्थ ने सदियों से विभिन्न दृष्टिकोणों के बीच सार्थक विमर्श को प्रोत्साहित करते हुए समाज को बौद्धिक दिशा प्रदान की है।
1: लोकतंत्र की जो आत्मा है वो शास्त्रार्थ में बसती है, संवाद में बसती है। संवाद का अर्थ है सकारात्मक दृष्टिकोण से वाद विवाद। आज के युग में स्पीकर के नाते मैं कह सकता हूँ, मैं प्रतिदिन ये महसूस करता हूँ कि शायद संवाद और सहन शक्ति उसमें कमी आ रही है, और उसके पीछे का दृष्टिकोण ये है कि सब कुछ राजनीति से प्रेरित अगर हो जाएगा तो फिर सच कहीं ना कहीं पीछे छूट जाएगा, जो हमारे आज के युग की सबसे बड़ी आवश्यकता है।
0: पंचायती राज मंत्रालय ने निर्भया निधि परियोजना के अंतर्गत नई दिल्ली में निर्भय चेतना पर 3 दिवसीय प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। एक रिपोर्ट।
2: मंत्रालय ने कार्यक्रम के दौरान निर्भय चेतना प्रशिक्षण मॉड्यूल भी शुरू किया। मंत्रालय ने कहा कि निर्भय चेतना महिलाओं से संबंधित मुद्दों, जिनमें महिलाओं की सुरक्षा भी शामिल है, के प्रति पुरुषों के जागरूक करने की एक राष्ट्रीय पहल है। इसका उद्देश्य जमीनी स्तर पर लैंगिक समानता को बढ़ावा देना है। पंचायती राज के सचिव विवेक भारद्वाज ने कल सम्पन्न हुए कार्यक्रम के दौरान अपने संबोधन में कहा कि महिलाओं की सुरक्षा, गरिमा और समान भागीदारी सुनिश्चित किए बिना विकसित भारत की परिकल्पना को साकार नहीं किया जा सकता है। प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। नीट 2026 की पुनः परीक्षा कल आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा दिल्ली समेत भारत के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में आयोजित होगी। परीक्षा के सुचारू, निष्पक्ष और पारदर्शी संचालन को सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने देशभर में मॉक ड्रिल आयोजित की। एनटीए ने कहा कि पुनः परीक्षा की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और परीक्षा के सफल आयोजन के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। अधिक ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: परीक्षा के सुरक्षित, पारदर्शी और सुचारू संचालन के लिए पर्यवेक्षकों, समन्वयकों, पुलिस बलों और प्रशासनिक अधिकारियों सहित 2,00,000 से अधिक कर्मियों की तैनाती की गई है। निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है। इसमें सीसीटीवी निगरानी, आधार युक्त बायोमेट्रिक सत्यापन, परीक्षा सामग्री के परिवहन के लिए पुलिस एस्कॉर्ट के साथ जीपीएस सक्षम वाहनों का उपयोग तथा गोपनीय सामग्री को सील बंद प्रोटोकॉल के तहत निर्धारित स्थानों तक सुरक्षित ढंग से पहुँचाने की व्यवस्था शामिल है। एनटीए भ्रामक सूचनाओं पर रोक लगाने और किसी भी प्रकार की अनियमितता को रोकने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की भी सक्रिय रूप से निगरानी कर रहा है। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक आयोजित की जाएगी। प्रादेशिक समाचार के लिए सकलैन अख्तर।
0: इसी बीच दिल्ली सरकार ने भी पुनः परीक्षा के लिए विशेष तैयारियां की हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि सभी परीक्षा केंद्रों के आसपास जिला प्रशासन की ओर से विशेष कूलिंग जोन स्थापित किए जा रहे हैं, जहां अभिभावकों के बैठने और विश्राम की व्यवस्था के साथ साथ स्वच्छ पेयजल, शिकंजी, ओआरएस, चाय और प्राथमिक चिकित्सा जैसी सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। उन्होंने बताया कि परीक्षा केंद्रों के बाहर ही छात्रों और उनके परिजनों के लिए प्रतीक्षा व्यवस्था उपलब्ध होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि परीक्षा के दिन किसी भी परिवार को परिवहन, गर्मी या प्रतीक्षा से जुड़ी परेशानियों का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि नीट अभ्यर्थियों के लिए दिल्ली परिवहन निगम की बसों में निशुल्क यात्रा की व्यवस्था की गई है। दिल्ली में आज दीप स्तंभ फाउंडेशन मनोबल द्वारा यशोत्सव 2026 कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में दिव्यांग, अनाथ, ट्रांसजेंडर और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से आने वाले उन विद्यार्थियों का सम्मान किया गया जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए यूपीएससी, एस

0: एससी, बैंकिंग, राज्य सेवा, खेल, शिक्षा और अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों में अध्ययन जैसे विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यशोत्सव केवल एक सम्मान समारोह नहीं है बल्कि संघर्ष, संकल्प और सफलता का उत्सव है। उन्होंने कहा कि आज सम्मानित हो रहे विद्यार्थियों ने यह सिद्ध किया है कि सही अवसर, मार्गदर्शन और आत्मविश्वास के बल पर कोई भी सपना असंभव नहीं होगा। केंद्र सरकार ने 16 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन एफडीसी दवाओं के निर्माण, बिक्री और वितरण पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। एक रिपोर्ट।
1: ये फैसला सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर की गई विशेषज्ञ समिति की समीक्षा के बाद लिया गया। समिति ने पाया कि इन दवाओं के संयोजन का पर्याप्त चिकित्सीय औचित्य नहीं है और इनके उपयोग से स्वास्थ्य संबंधी जोखिम हो सकते हैं। प्रतिबंधित दवाओं में त्वचा रोग, दर्द निवारण, ऐंठन और कुछ एंटीबायोटिक दवाएं शामिल है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि इस कदम का उद्देश्य सुरक्षित, प्रभावी और वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। मंत्रालय ने राज्य औषधि नियामकों और संबंधित एजेंसियों को इस प्रतिबंध को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं। अमन की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए वैष्णवी।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल दिल्ली सहित पूरे विश्व में मनाया जाएगा। इस वर्ष योग दिवस का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग, जो सभी आयु वर्ग के लिए योग के महत्व पर बल देता है। हमारी संवाददाता ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा देशभर में लगभग 100 स्थानों पर विशेष योग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
2: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य समारोह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित किया जाएगा। कल दिल्ली सरकार भी योग दिवस के उपलक्ष्य में शहर के विभिन्न स्थानों पर योग कार्यक्रमों का आयोजन करेगी। इस आयोजन के लिए दिल्ली सरकार ने व्यापक तैयारियां की हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता असोला भाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आयोजित विशेष योग कार्यक्रम में शहरवासियों के साथ योग करेंगी। इस कार्यक्रम में दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा, वरिष्ठ अधिकारी, पर्यावरण विशेषज्ञ और बड़ी संख्या में स्थानीय निवासी भी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि योग भारत की प्राचीन सांस्कृतिक विरासत है, जिसने आज पूरी दुनिया को स्वास्थ्य, संतुलन और सकारात्मक जीवन का मार्ग दिखाया है। उन्होंने कहा कि योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं बल्कि शरीर, मन और आत्मा के समन्वय का विज्ञान है, जो वर्तमान समय की व्यस्त जीवन शैली में व्यक्ति को मानसिक शांति, ऊर्जा और आत्मविश्वास प्रदान करता है। मुख्यमंत्री ने दिल्ली वासियों से योग को अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाने की अपील भी की है। योग कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री सेंचुरी परिसर में विकसित भारत नर्सरी का निरीक्षण करेंगी। इस दौरान मुख्यमंत्री वहां उगाए जा रहे विभिन्न देशी वृक्षों, पौधों और जैव विविधता संवर्धन से जुड़ी गतिविधियों की समीक्षा करेंगी। प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से नीतिका गुप्ता।
0: इसी कड़ी में आकाशवाणी समाचार आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव का विशेष साक्षात्कार प्रसारित करेगा। आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज चैनल पर यह साक्षात्कार आज रात 9:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। श्री जाधव ने कहा कि कामकाजी लोगों के लिए सरकार ने वाई ब्रेक ऐप भी शुरू किया है।
3: लोग दिन भर चेयर पे बैठे काम करना पड़ता है, वो लोग भी जब लंच ब्रेक होता है तब तक बहुत सारी थकान वो लोगों में आती है, तो वो थकान दूर करने के लिए भी उनके लिए वाई ब्रेक नाम का एक हमने ऐप निकाला है कि उसमें 10 मिनट में तुम चेयर पर बैठे बैठे कौन से आसन कर सकते हो, करने से जो भी तुम्हारा थकान आई होगी वो दूर हो जाएगी।
0: वहीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में दिल्ली मेट्रो की सेवाएं कल तड़के 4 बजे से शुरू होंगी। दिल्ली सरकार द्वारा आयोजित 3 दिवसीय जन कल्याण शिविर के आज आखिरी दिन लोगों में अधिक उत्साह देखा गया। शिविर में नागरिकों को विभिन्न सरकारी योजनाओं तथा सेवाओं का सीधा लाभ मिल रहा है। शिविर में लोगों ने राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, वृद्ध और विधवा पेंशन, नए जल कनेक्शन, आधार पंजीकरण, ई श्रम कार्ड, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना और प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना जैसी जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाया। इस शिविर में विभिन्न विभागों के अधिकारी मौके पर ही दस्तावेजों की जांच कर त्वरित प्रक्रिया पूरी कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने आज पांडव नगर पुलिस

स्टेशन में थाना दिवस जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया। जन सुनवाई कार्यक्रम के दौरान स्थानीय निवासियों और शिकायतकर्ताओं ने पुलिस अधिकारियों से बातचीत की और अपनी शिकायतें, चिंताएं और सुझाव साझा किए। दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन विश्वास के अंतर्गत अब तक 209 खोए और चोरी हुए मोबाइल फोन बरामद किए हैं, जिसमें से 161 मोबाइल फोन उनके मालिकों को सौंप दिए गए। पुलिस ने बताया कि तकनीकी निगरानी और समन्वित जांच से मोबाइल फोन का पता लगाया गया है। राजधानी दिल्ली में आज भीषण गर्मी का प्रकोप जारी रहा। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 40.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग ने कल बादल छाए रहने की संभावना व्यक्त की है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त अन्नदाताओं के अथक परिश्रम और योगदान के प्रति सम्मान का प्रयास है। विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद की 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का शुभारंभ किया। दिल्ली सरकार ने कल होने वाली नीट प्रवेश पुनः परीक्षा के लिए विशेष तैयारियां की। केंद्र सरकार ने 16 फिक्स डोज कॉम्बिनेशन FDC दवाओं के निर्माण, बिक्री और वितरण पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल दिल्ली सहित पूरे विश्व में मनाया जाएगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना की है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी ने विश्व नेताओं के साथ अपने दूरदर्शी शासन और संपर्क के जरिए वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है। राष्ट्रपति ने मोहन चरण मांझी सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ओडिशा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में एक जनसभा में आज ये बात कही। प्रधानमंत्री भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं से सशक्त होकर आदिवासी समुदाय भारत के विकास में सक्रिय योगदान दे रहे हैं। श्री मोदी ने पूर्वी भारत के विकास में तेजी लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के पूर्वोदय दृष्टिकोण का भी उल्लेख किया।
1: ओडिशा में आर्थिक गतिविधियां, निवेश और उद्योगों को आकर्षित करने का सामर्थ्य आज नजर आ रहा है। केंद्र सरकार का विजन है पूर्वी भारत के विकास से भारत का विकास, इसलिए हम पूर्वोदय की नीति पर काम कर रहे हैं। जिस पूर्वी भारत को कांग्रेस के दौर में पिछड़ेपन का पर्याय बना दिया गया था, आज वो प्रगति का प्रवेश द्वार बन रहा है।
0: इस दौरान ओडिशा में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया। बाद में प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंग दिवस समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी।
1: आज यहाँ सैकड़ों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास हुआ है। रेल, रोड, कृषि, इससे जुड़ी ये परियोजनाएं बंगाल को नई गति देगी। इन परियोजनाओं से यहाँ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। मैं बंगाल के लोगों को इन विकास परियोजनाओं की बधाई देता हूँ।
0: श्री मोदी ने प्रधानमंत्री किसान योजना की 23वीं किश्त के रूप में 18,880 करोड़ रुपए जारी किए। इससे देश भर के 9,44,00,000 से अधिक किसानों को लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री कोलकाता में कल स्वदेश में निर्मित नौसेना के 3 जहाजों आईएनएस दुनागिरी, आईएनएस संशोधक और आईएनएस अग्रय का अनावरण करेंगे। इन पोतों में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। इनके निर्माण में 200 से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों ने योगदान दिया है। पिछले 12 वर्षों से पेंशन तथा पेंशनभोगी कल्याण विभाग पेंशन नियमों और प्रक्रियाओं में निरंतर सुधार करके पेंशनभोगियों के जीवन स्तर को सुगम बना रहा है। इसी कड़ी में विभाग ने सभी सरकारी मंत्रालयों और विभागों के लिए भविष्य नामक केंद्रीकृत पेंशन प्रसंस्करण सॉफ्टवेयर का शुभारंभ किया है। इस सॉफ्टवेयर ने पेंशन मामलों के निपटान में होने वाली देरी और लिपिकीय त्रुटियों के साथ पेंशनभोगियों को होने वाले वित्तीय नुकसान और उत्पीड़न को दूर करने में सहायता प्रदान की है। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल विश्व भर में मनाया जाएगा। इस वर्ष का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम पश्चिम बंगाल के कोलकाता में ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में योगाभ्यास के दौरान राष्ट्र का नेतृत्व करेंगे। रेड रोड पर राष्ट्रीय कार्यक्रम सुबह 5 बजे शुरू होगा। कैलाश मानसरोवर यात्रा के तीर्थ यात्रियों का पहला जत्था आज नाथुला दर्रे से होते हुए चीन में प्रवेश कर गया। इस दल में कुल 47 लोग हैं। चेन्नई में भारत ने तीसरे और अंतिम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 9 विकेट से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीत ली है। भारत ने 29वें ओवर में 1 विकेट पर 224 रन बनाकर जीत हासिल की। यशस्वी जायसवाल 110 रन बनाकर नाबाद रहे। रोहित शर्मा ने 89 रन की पारी खेली। इससे पहले अफगानिस्तान ने 218 रन बनाए थे। जर्मनी में आईएसएसएफ जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में आज भारतीय टीम को 5 पदक मिले। समीर ने 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी। द न्यूज रेड बाय अभिनीत शुक्ला। President Draupadi Murmu today lauded Prime Minister Narendra Modi's leadership, stating that he has significantly enhanced India's prestige and influence on the global stage through his visionary governance and constructive engagement with the world leaders. Addressing a large public gathering at Rai Rangpur in Odisha's Mayurbhanj district, organized to mark the completion of 2 years of the Mohan Charan Majhi government in presence of Mr. Modi, the President said, India has consistently emerged as a voice of peace, dialogue and cooperation under Prime Minister Modi's stewardship. Addressing the public gathering, Prime Minister Narendra Modi lauded Odisha's progress as the state completed 2 years under Chief Minister Mohan Charan Majhi, saying it is moving rapidly on the path of development and contributing significantly to the growth of eastern India.
1: Odisha mein aarthik gativiidhiyan, nivesh aur udyogon ko aakarshit karne ka samarthya aaj nazar aa raha hai. Kendra sarkar ka vision hai purvi Bharat ke vikas se Bharat ka vikas. Isliye hum purvoday ki niti par kaam kar rahe hain. Jis purvi Bharat ko कांग्रेस के दौर में पिछड़ेपन का पर्याय बना दिया गया था, आज वो प्रगति का प्रवेश द्वार बन रहा है।
2: The Prime Minister today inaugurated and laid the foundation stones for development projects worth around 47,000 crore rupees across multiple sectors. Later, the Prime Minister arrived in West Bengal for a two-day visit. He took part in Paschim Banga Divas celebrations at Tarkeshwar in Hooghly district. He also released the 23rd installment of PM Kisan scheme worth 18,880 crore rupees, benefiting over 9.44 crore farmers across the country. Mr. Modi participated in a grand function to celebrate the state day along with Chief Minister Subhendu Adhikari. He launched, dedicated and laid the foundation stones for various development projects across railways, agriculture, rural development, fisheries and animal husbandry sectors. Speaking on the occasion, Prime Minister Modi said, BJP government has started working at super fast pace for Bengal's development. He expressed hope that this historic Paschim Banga Divas inspires development of West Bengal. Prime Minister Narendra Modi will lead the nation to celebrate International Yoga Day 2026 tomorrow at Red Road in Kolkata. Thousands of yoga enthusiasts will participate, while millions of citizens are expected to join virtually from across India and abroad. The event will reaffirm yoga's growing role as a global movement promoting health, harmony and collective well-being. This year marks the 12th International Yoga Day with the theme Yoga for Healthy Aging, which highlights the importance of adopting yoga as a lifelong practice for healthy, active and dignified aging. Prime Minister Narendra Modi will commission 3 indigenously built Indian Navy platforms, INS Dhunagiri, INS Sanshodhak and INS Agra in Kolkata tomorrow.

जी आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है ये 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। समय हुआ है 8:11 और 2 सेकंड और एफएम गोल्ड पर ये समय है कार्यक्रम मधुरिमा का। मधुरिमा में मैं हूं आपके साथ रेशमा और आज मधुरिमा में हम चर्चा करेंगे राग भटियार की और सुनेंगे उसी पर आधारित या उसकी झलक लिए कुछ गीत। तो शुरू करते हैं 1962 में आई फिल्म हरियाली और रास्ता से। इसे ये गीत सुनेंगे हम जिसे गाया है लता मंगेशकर और मुकेश ने और संगीत है शंकर जयकिशन का, बोल लिखे हैं शैलेंद्र सिंह ने।

0: विविधताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
1: FM गोल सुन रहे हैं आप 100.1 MHz पर। 8:19:30 हो गए हैं और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप मधुरिमा, जिसमें बात हो रही है आज राग भटियार की। तो श्रोताओं, राग भटियार मारवा थाट से उत्पन्न राग है और ये राग वक्र है और थोड़ा कठिन है, इसलिए सीखने के इच्छुक लोगों को इस राग को किसी गुरु से ही सीखने की सलाह दी जाती है। राग भटियार में दोनों मध्यम प्रयोग होते हैं, ऋषभ कोमल लगता है और शेष स्वर शुद्ध लगते हैं। इसकी जाति है संपूर्ण संपूर्ण वक्र, वादी स्वर है शुद्ध मध्यम और समवादी स्वर है षडज। आइए सुनते हैं 1963 में आई फिल्म रुस्तम सोहराब से लता मंगेशकर की आवाज में ये गीत। संगीत है सज्जाद का और बोल लिखे हैं जानेसार अख्तर ने।

0: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
1: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
0: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
1: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
0: और विनर्स को क्या मिलेगा?
1: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकेंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
0: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही www.dellytalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
2: हाँ, आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है ये, 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। मधुरी माँ कार्यक्रम में बात हो रही है राग भटियार की, और अभी आपने गीत सुना रुस्तम सोहराब फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज़ में। इस गीत में संतूर का बड़ा ही खूबसूरत प्रयोग हुआ है, और हालांकि इसमें कश्मीर के थोड़े पतले संतूर की जगह पर्शियन संतूर का इस्तेमाल हुआ है, और स्क्रीन पर भी है, और इसे नायिका ने जाने क्यों उल्टा पकड़ा हुआ है वैसे तो। और खैर, हम बात कर रहे हैं राग भटियार की। तो इस राग का गायन वादन समय है रात्रि का अंतिम प्रहर, या यूं कहें कि बिल्कुल भोर का समय। कभी कभी लोक गीत की झलक भी इसमें आती है, और उससे राग मांड का आभास होता है इसमें। शांत गंभीर से इस राग से कई बार वातावरण काफी भावनात्मक हो जाता है। कहते हैं उज्जैन के राजा भर्तृहरि ने अपने सन्यासी जीवन के दौरान राग भटियार में कुछ शुरुआती धुनें बनाई थीं। तो अब सुनते हैं कार्यक्रम का आखिरी गीत राग भटियार पर आधारित। फिल्म आराधना से गीत सुनेंगे हम किशोर कुमार की आवाज में, और इस गीत के बाद बस आज का मधुरिमा यहीं तक। आप एफएम गोल्ड सुनते रहिएगा, और 8:30 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन। तो इस गीत के साथ अब रेशमा को आप दीजिए अनुमति, और सुनते रहिए एफएम गोल्ड।

0: नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र मणि राजेश। स्पोर्ट्स कैंट के आज के अंक में आप सभी का स्वागत। हम एक बार फिर मौजूद हैं नए कलेवर, नए रंग, नए अंदाज, एक नई शुरुआत के साथ, जहां हमारे साथ है हर मैच का अपडेट, हर मैदान का हाल और हर खिलाड़ी की खबर। सब कुछ अधिक विस्तार के साथ शुरू करते हैं स्पोर्ट्स कैंट के साथ खेल की हर बात। शुरुआत मुख्य समाचार से। चेन्नई में भारत ने अफगानिस्तान को 9 विकेट से हराकर 3 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला में क्लीन स्वीप किया। महिला T20 विश्व कप क्रिकेट में कल मैनचेस्टर में भारत का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से होगा। जर्मनी में ISSF जूनियर निशानेबाजी चैंपियनशिप के दूसरे दिन भारत ने 5 पदक जीते। फीफा विश्व कप के 10वें दिन 3 मैच खेले जाएंगे। कल अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर अगले दौर में जगह बनाई। ऑकलैंड में FIH नेशंस कप में भारत ने चिली को हराकर फाइनल में जगह बनाई। खिताब के लिए कल मेजबान न्यूजीलैंड से मुकाबला। और मकाऊ ओपन बैडमिंटन के महिला सिंगल सेमीफाइनल में अश्मिता चालिया की हार के साथ ही भारत की चुनौती समाप्त। शुरुआत क्रिकेट के साथ। चेन्नई में भारत ने तीसरे और अंतिम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को अब से कुछ देर पहले 9 विकेट से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीत ली है। भारत ने 29वें ओवर में 1 विकेट पर 224 रन बनाकर जीत हासिल की। यशस्वी जायसवाल 86 गेंद में 110 रन बनाकर नाबाद रहे। रोहित शर्मा ने 79 रन की धुआंधार पारी खेली। इससे पहले अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए 218 रन बनाए थे। कप्तान हशमतुल्ला शाहिदी ने 102 रन की पारी खेली। भारत के लिए प्रसिद्ध कृष्णा ने 5 विकेट लिए। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। कप्तान शुभमन गिल को प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड मिला। उधर हार्दिक पांड्या चोट के कारण इंग्लैंड दौरे पर जाने वाली भारतीय ODI क्रिकेट टीम में शामिल नहीं हो सकेंगे। वह अफगानिस्तान श्रृंखला से पहले लगी क्वाड्रिसेप्स की चोट से उबर नहीं पाए हैं। उन्हें पूरी तरह फिट होने में अभी और समय लगेगा। उधर मांसपेशियों की चोट से जूझ रहे विराट कोहली के बारे में फैसला दोबारा उनकी जांच के बाद लिया जाएगा। इंग्लैंड के मैनचेस्टर में ICC महिला विश्व कप क्रिकेट में कल भारत का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से होगा। टीम इंडिया ने अपने शुरुआती दोनों मुकाबले जीतकर ग्रुप ए में अपना दबदबा बनाए रखा है, लेकिन अब उसके सामने एक कड़ी और बड़ी चुनौती है। एक रिपोर्ट।
1: पहले मैच में चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान को 64 रन और दूसरे मैच में कमजोर नीदरलैंड्स को 95 रनों से करारी शिकस्त देने वाली भारतीय महिलाओं के लिए इस विश्व कप की सबसे कठिन चुनौती दक्षिण अफ्रीका की आक्रामक बल्लेबाजी और बेहतरीन गेंदबाजी से पार पाना है। ऐसे में इस खतरनाक टीम के सामने जीत के लिए टीम को हर हाल में न सिर्फ अपनी लय को कायम रखना होगा बल्कि मनोबल को भी

0: भी ऊंचा बनाए रखना होगा। ये मुकाबला भारतीय बल्लेबाजी और दक्षिण अफ्रीका की गेंदबाजी के बीच माना जा रहा है, लेकिन इस बात को साबित करने के लिए एक बार फिर भारत की बल्लेबाजी को कठिन परीक्षा से गुजरना होगा। पावर प्ले में तेजी से रन बनाने की स्मृति मंधाना की काबिलियत और कप्तान हरमनप्रीत के अनुभव के साथ शेफाली वर्मा और ऋचा घोष की आक्रामक बल्लेबाजी अहम होगी। दूसरी तरफ दक्षिण अफ्रीका की उम्मीदें कप्तान लॉरा वोलवार्ट और मध्यक्रम के बल्लेबाजों पर टिकी होंगी। पहले दो मैचों में अच्छे प्रदर्शन के बाद आत्मविश्वास से भरी भारतीय गेंदबाजों को मैनचेस्टर की स्पिन फ्रेंडली पिच पर धार बनाए रखनी होगी। ऐसे में अनुभवी दीप्ति शर्मा और श्रीचरणी एक बार फिर टीम इंडिया की मजबूत कड़ी साबित हो सकती हैं। शेफाली वर्मा भी स्पिनर के रोल में फिर से फिट हो सकती हैं। भारत के लिए अच्छी बात यह है कि टीम किसी एक खिलाड़ी के प्रदर्शन पर निर्भर नहीं है, सभी खिलाड़ियों ने अपना योगदान दिया है। भारत के पास अच्छी तेज और स्पिन गेंदबाजी का विकल्प है। दूसरी पिछली बार T20 विश्व कप फाइनल खेल चुकी विरोधी टीम के पास दबाव से निपटने का काफी अच्छा अनुभव है। दोनों टीमों के पास अच्छे हरफनमौला हैं और ये इस ग्रुप का सबसे अहम मुकाबला साबित हो सकता है। 5 बार सेमीफाइनल में पहुंच चुकी भारतीय टीम अभी तक T20 विश्व कप नहीं जीत सकी है। इस मैच में जीत भारतीय टीम को न सिर्फ ग्रुप में और बेहतर स्थिति में पहुंचाएगी, बल्कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाले मुकाबले से पहले मानसिक मजबूती भी देगी। कोई शक नहीं है कि जीत के लिए दोनों टीमें अपना सब कुछ दांव पर लगा देंगी। जागृति शर्मा, स्पोर्ट्स स्कैन।
1: जर्मनी के सुहल में ISSF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप का दूसरा दिन भारत के लिए शानदार रहा। भारतीय जूनियर निशानेबाजों ने 5 पदक जीते। सुनते हैं रिपोर्ट।
2: शूटिंग में भारत हमेशा से अच्छा करता रहा है और आगे भी भविष्य सुनहरा दिखाई दे रहा है। इसका संकेत ISSF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में मिल रहा है। जूनियर निशानेबाजों का लगातार पदक जीतने का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में समीर ने फाइनल में शानदार प्रदर्शन करते हुए 28 हिट के साथ स्वर्ण पदक जीता। उधर 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में रोहित कानियान ने सटीक निशाने साधते हुए सोने का तमगा जीत लिया। 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन विमेन इवेंट में प्राची गायकवाड़ ने 354.7 के स्कोर के साथ रजत पदक हासिल किया। भारतीय निशानेबाजों ने टीम इवेंट्स में भी शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में कांस्य पदक जीता। रोहित कन्यान, वेदांत नितिन वाघमारे और हितेश श्रीनिवासन की टिकड़ी ने मिलकर भारत को पोडियम पर जगह दिलाई। 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल मेन टीम इवेंट में भारत को एक और कांस्य पदक समीर, अभिनव चौधरी और साहिल चौधरी की टिकड़ी ने दिलाया। चैंपियनशिप में भारत अब तक कुल 8 पदक जीतकर सबसे आगे है। इससे पहले सेजल कांबले ने 10 मीटर एयर पिस्टल व्यक्तिगत इवेंट में स्वर्ण पदक जीता, जबकि हिमांशी ने कांस्य पदक जीता। भारत ने 10 मीटर एयर पिस्टल विमेन इवेंट में भी स्वर्ण पदक जीता। सेजल कांबले, वंशिका चौधरी और नव्या बिश्नोई की तिकड़ी ने मिलकर कुल 1700 का स्कोर बनाया और स्टैंडिंग में टॉप पर रही और टीम का खिताब जीता। इन पदकों में 4 स्वर्ण, 1 रजत और 3 कांस्य पदक शामिल है। भारतीय टीम ने व्यक्तिगत और टीम इवेंट्स दोनों में लगातार अच्छे प्रदर्शन के साथ चैंपियनशिप में मजबूत शुरुआत की है। वैष्णवी, स्पोर्ट्स कैन।
1: और अब बात दुनिया के सबसे लोकप्रिय खेल फुटबॉल की। फीफा विश्व कप के 10वें दिन आज 3 अहम मैच खेले जाएंगे। ग्रुप एफ में नीदरलैंड्स और स्वीडन के बीच महत्वपूर्ण मैच होगा। यह मैच कांटे का रहने की उम्मीद है। एक अन्य मैच में जर्मनी की टीम आइवरी कोस्ट का सामना करेगी। तीसरा मैच इक्वाडोर और कुरासाओ के बीच खेला जाएगा। इससे पहले कल ग्रुप डी में मेजबान अमरीका ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर अगले राउंड में जगह बनाई। ग्रुप सी में मोरक्को ने स्कॉटलैंड पर जीत दर्ज कर अपने ग्रुप में शीर्ष पर जगह बना ली। इसी ग्रुप में दिग्गज ब्राजील की टीम ने हैती पर एकतरफा जीत हासिल की। कैसे रहे ये मुकाबले, जानते इस रिपोर्ट के जरिए।
3: सह मेजबान अमेरिका ने बेहतरीन खेल दिखाते हुए ऑस्ट्रेलिया को न सिर्फ एक तरफा अंदाज में 2-0 से शिकस्त दी, बल्कि शान से राउंड ऑफ 32 में जगह बनाने वाली टूर्नामेंट की दूसरी टीम बन गई। सिएटल स्टेडियम में मुकाबले की शुरुआत से ही अमेरिका ने आक्रामक खेल दिखाया और ऑस्ट्रेलिया के डिफेंस पर लगातार दबाव बनाए रखा। इसी का असर था कि ऑस्ट्रेलिया के डिफेंडर कैमरन बर्गेस फॉलरिन बोलागून के शॉट का बचाव करते हुए अपना ही पोस्ट में गेंद डाल बैठे और उनकी टीम 1-0 से पिछड़ गई। अमेरिका ने पहले का अंत होने से ठीक पहले उस समय अपनी बढ़त को दोगुना कर लिया जब मैच के 43वें मिनट में सर्जिनो डेस्ट ने शानदार शॉट लगाया। हालांकि उनका ये शॉट गोल पोस्ट में नहीं पहुंच सका, लेकिन सर्जिनो की नाकाम कोशिश को कैमरन बर्गेस ने बेहतरीन हेडर मारते

0: ने सफलतापूर्वक गोल में तब्दील कर दिया और अमेरिका को मैच में 2-0 की बढ़त दिला दी।
1: The goal scorer was not in offside position.
2: USA 2, Australia 0.
0: ये बढ़त अंत तक कायम रही और अमेरिका ने फीफा विश्व कप 2026 में लगातार दूसरी जीत के साथ नॉकआउट स्टेज में अपनी जगह बना ली। उधर फॉक्सबोरो में खांचे के मुकाबले में मोरक्को ने स्कॉटलैंड को 1-0 से हराया। बोस्टन स्टेडियम में मिली इस जीत के साथ ही मोरक्को ने ग्रुप में पहला स्थान भी हासिल कर लिया। मोरक्को की तरफ से मुकाबले का एकमात्र गोल इस्माइल सेबारी ने मैच शुरू होने के मात्र 71 सेकंड बाद ही कर दिया।
3: What Moroccan magic he is bringing to this World Cup. Morocco have their first win of this 2026 World Cup.
0: मैच के शुरुआत में ही बढ़त हासिल करने के बाद टीम ने पूरे मुकाबले में खेल की गति को अपने नियंत्रण में रखा। पहले गोल के बाद भी मोरक्को की टीम ने कई मौके बनाए लेकिन दूसरा गोल नहीं कर सकी। उधर फिलाडेल्फिया में बेहद मजबूत ब्राजील ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए हैती को 3-0 से हराया। इस जीत के नायक मैथ्यूस कुन्हा रहे जिन्होंने मैच में 2 गोल किए। इस जीत के बाद गोल अंतर के आधार पर ब्राजील ने ग्रुप सी में पहला स्थान हासिल कर लिया। मैथ्यूस कुन्हा ने अपने पहले वर्ल्ड कप मैच की शुरुआत को बेहद खास बनाया। उनके साथ विनिसियस जूनियर और राफिन्हा का प्रदर्शन भी दमदार रहा। ब्राजील के लिए मैच का पहला गोल 23वें मिनट में आया जब हेंस डेल क्रोइक्स का क्लियरेंस शॉट कुन्हा से लगकर गोल पोस्ट में चला गया। पहले हाफ के अंत से 9 मिनट पहले कुन्हा ने ब्राजील की बढ़त को दोगुना कर दिया। इसके बाद पहले हाफ के स्टॉपेज टाइम में विनिसियस जूनियर ने ब्राजील के लिए मैच का तीसरा गोल किया। लगातार दूसरी हार के साथ ही हैती की टीम फीफा वर्ल्ड कप 2026 से बाहर हो गई। कैलिफोर्निया में पराग्वे ने शानदार प्रदर्शन करते हुए तुर्कियों को 1-0 से हराया। सैन फ्रांसिस्को बे एरिया स्टेडियम में इस जीत के साथ पराग्वे ने टूर्नामेंट के अगले राउंड में पहुंचने की अपनी उम्मीदों को बनाए रखा है। वहीं हार के साथ ही तुर्की का टूर्नामेंट में सफर समाप्त हो गया है। मैच का एकमात्र गोल मटियास गैलार्जा ने खेल शुरू होने के सिर्फ 64 सेकंड बाद किया। यह मौजूदा टूर्नामेंट का सबसे तेज गोल भी है। गैलार्जा ने करीब 25 मीटर की दूरी से जोरदार शॉट लगाया और तुर्की के गोलकीपर को छकाते हुए शानदार गोल दागा।
4: What a start! What an incredible start! Paraguay in front. It's the fastest goal of the tournament. Turkey are heading home at the end of the group stage.
0: पराग्वे को हाफ टाइम से ठीक पहले बड़ा झटका लगा जब मिडफील्डर मिगुएल एल्मिरोन को रेड कार्ड दिखाकर मैदान से बाहर भेज दिया गया। पराग्वे के मिडफील्डर वर्ल्ड कप के इतिहास में पहले ऐसे खिलाड़ी बने जिन्हें फीफा के नए अनुशासनात्मक नियम के तहत सजा मिली। इसके चलते पराग्वे को पूरा दूसरा हाफ 10 खिलाड़ियों के साथ खेलना पड़ा। इसके बावजूद पराग्वे की टीम ने शानदार रक्षात्मक खेल दिखाया। गोलकीपर और डिफेंस लाइन ने मिलकर तुर्की को गोल करने का कोई मौका नहीं दिया। स्पोर्ट्स कैन के लिए प्रशांत कुमार।
5: न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में FIH नेशंस कप हॉकी में भारतीय महिला टीम फाइनल में पहुंच गई है। फाइनल कल खेला जाएगा। सुनते हैं अलका की ये रिपोर्ट।
6: अगले साल प्रोलीग में वापसी के लिए जद्दोजहद कर रही भारतीय शेरनियों ने नेशंस कप में शानदार प्रदर्शन का सिलसिला जारी रखते हुए अंतिम चार के मैच में विरोधी चिली की टीम को चारों खाने चित कर दिया। इस मैच में भारतीय टीम ने चिली पर शुरू से ही ताबड़तोड़ हमले किए। हमला इतना तीखा और सटीक था कि चिली की टीम कभी चिल कर ही नहीं सकी। भारत की जीत की नायिका नवनीत कौर और दीपिका रही। नवनीत कौर ने मैच के 6th और 13th मिनट में गोल दाग कर टीम को तेज शुरुआत दिलाई। इसके बाद दीपिका ने 14th और 18th मिनट में लगातार 2 गोल करके भारतीय बढ़त को 4-0 तक पहुंचा दिया। पहले क्वार्टर के अंत तक ही चिली की टीम भारतीय आक्रमण के सामने पूरी तरह से बिखर चुकी थी लेकिन भारतीय लड़कियों ने रहम नहीं बरती और दूसरे हाफ में भी ताबड़तोड़ हमले जारी रखे।
5: और उधर रोटरडम में कल भारतीय पुरुष हॉकी टीम FIH प्रो लीग के डच चरण का समापन मेजबान नीदरलैंड्स के साथ मैच खेलकर करेगी। हम आपको यह भी बता दें कि भारत जूनियर पुरुष कलात्मक जिम्नास्टिक टीम ने आज चीन के जूनी में खेली जा रही एशियाई चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया। हर्षित दामोदरन, निषाद नरवाने, SK नभी गली

अक्षत बजाज और मोहम्मद जैद अंसारी की युवा भारतीय टीम ने महाद्वीप की कुछ मजबूत टीमों के सामने शानदार प्रदर्शन किया और कांस्य पदक अपने नाम किया। चीन के शाओजिंग में दूसरी एशियन रिले चैंपियनशिप के आज पहले दिन भारत ने एक रजत और एक कांस्य पदक जीता। भारत की मिक्स्ड 4x400 मीटर रिले टीम ने कांस्य पदक जीता और इसके अलावा भारत की मिक्स्ड 4x400 मीटर टीम ने रजत पदक अपने नाम किया। भारत के अभय सिंह और वेलावन सेंथिल कुमार की जोड़ी मलेशिया के सारावाक में चल रही तीसरी एशियाई डबल्स स्क्वाश चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गई है। और हम आपको यह भी बताएं कि अश्मिता चालिया की हार के साथ ही मकाऊ ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत की चुनौती समाप्त हो गई है। महिला सिंगल सेमीफाइनल में आज अश्मिता को दक्षिण कोरिया की पार्क गायुन ने 17-21, 9-21 से हराया। नीरज चोपड़ा दोहा डायमंड लीग प्रतियोगिता में चौथे स्थान पर रहे। ओलंपिक में 2 रजत पदक जीतने वाले नीरज ने अपने तीसरे प्रयास में 85.69 मीटर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, जो पदक जीतने के लिए काफी नहीं था। और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल स्पोर्ट्स कैन में इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी खेल के मैदान की हर खबर के साथ। आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा, इस पर अपनी राय और सुझाव हमें स्पोर्ट्स कैन की ईमेल आईडी sportscan.air@gmail.com पर भेज सकते हैं। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत को शांति और सहयोग का पक्षधर बताया। कहा, वैश्विक संकटों और युद्ध जैसी परिस्थितियों का समाधान संवाद और कूटनीति से ही संभव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जनजातीय समुदाय देश के विकास में महत्वपूर्ण भागीदार बन रहा है। ओडिशा में 47,000 करोड़ रूपये से अधिक की परियोजनाओं का शुभारम्भ। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किश्त जारी की। 18,000 करोड़ रूपये से अधिक की राशि किसानों के खातों में अंतरित। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री कल कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर राष्ट्रीय समारोह का नेतृत्व करेंगे। नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा कल, परीक्षा केंद्रों पर कड़े सुरक्षा प्रबंध। ईरान ने युद्ध विराम उल्लंघन के बाद होर्मुज जल डमरू मध्य फिर से बंद किया। और चेन्नई में तीसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 9 विकेट से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीती। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत हमेशा शांति और सहयोग का पक्षधर रहा है, क्योंकि जटिल वैश्विक मुद्दों और युद्ध जैसे संकटों का समाधान केवल संवाद और कूटनीति से ही संभव है। राष्ट्रपति ने मोहन चरण मांझी सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ओडिशा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में एक जनसभा में ये बात कही। राष्ट्रपति ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व नेताओं के साथ अपने दूरदर्शी शासन और संपर्क के जरिए वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है।
1: देशर प्रधानमंत्री भव्य दायित्व ग्रहण करवा दिनरु
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना पद बनाया। मैं सभी नागरिकों की तरफ से इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए उन्हें बधाई देती हूं। मैं कामना करती हूं कि वे देश के लोगों के हित के लिए निरंतर काम करते रहें और भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का सपना साकार करने में राष्ट्र का नेतृत्व करते रहें।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं से सशक्त होकर जनजातीय समुदाय भारत के विकास में सक्रिय योगदान दे रहे हैं। उन्होंने पूर्वी भारत के विकास में तेजी लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के पूर्वोदय दृष्टिकोण का भी उल्लेख किया।
3: ओडिशा में आर्थिक गतिविधियां, निवेश और उद्योगों को आकर्षित करने का सामर्थ्य आज नजर आ रहा है। केंद्र सरकार का विजन है पूर्वी भारत के विकास से भारत का विकास, इसलिए हम पूर्वोदय की

0: किसान सम्मान निधि के तहत देश भर के 9 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में पैसे भेजे गए हैं। और पश्चिम बंगाल के किसानों के लिए एक और खुशी की खबर है, आज से राज्य में पीएम फसल बीमा योजना शुरू की जा रही है।
1: प्रधानमंत्री कोलकाता में कल आईएनएस दुनागिरी, आईएनएस संशोधक और आईएनएस अग्रय का अनावरण करेंगे। इन पोतों में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉकर टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल विश्व भर में मनाया जाएगा। इस वर्ष का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। मुख्य कार्यक्रम कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में योगाभ्यास के दौरान राष्ट्र का नेतृत्व करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि रेड रोड पर राष्ट्रीय कार्यक्रम सुबह 5 बजे शुरू होगा।
2: संस्कृति मंत्रालय द्वारा देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक स्थलों और योग परंपराओं को जोड़ते हुए देश भर के 100 विशेष स्थानों पर योग के विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस पहल के तहत 12 प्रमुख स्थलों पर बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें नई दिल्ली में लाल किला, उत्तराखंड में हरिद्वार, उड़ीसा में कोणार्क, कर्नाटक में हम्पी, तमिलनाडु में महाबलीपुरम, महाराष्ट्र में मुंबई, बिहार में नालंदा, गुजरात में अहमदाबाद, उत्तर प्रदेश में सारनाथ, लद्दाख में लेह, तेलंगाना में हैदराबाद और असम में सिलचर शामिल है। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के साथ मिलकर विदेशों में मौजूद 210 से ज्यादा भारतीय मिशन लगभग 2,500 स्थानों पर योग कार्यक्रम आयोजित करेंगे। वहीं दिल्ली में शांति पथ, यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, कर्तव्य पथ, न्यू मोतीबाग, सेंट्रल पार्क और तालकटोरा गार्डन जैसे प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर योग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: उपराज्यपाल मनोज सिन्हा कल श्रीनगर में डल झील के किनारे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का नेतृत्व करेंगे। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में विशेष योग दिवस समारोह आयोजित करेगा। इस आयोजन में लगभग 1,500 वरिष्ठ नागरिकों के शामिल होने की संभावना है। इसी कड़ी में आकाशवाणी समाचार आयुष राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार प्रताप राव जाधव का विशेष साक्षात्कार प्रसारित करेगा। आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज चैनल पर यह साक्षात्कार आज रात 9:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। श्री जाधव ने बताया कि कामकाजी लोगों के लिए सरकार ने वाई ब्रेक ऐप भी शुरू किया है।
3: लोग दिन भर चेयर पे बैठे काम करना पड़ता है, वो लोग भी जब लंच ब्रेक होता है तब तक बहुत सारी थकान वो लोगों में आती है, तो वो थकान दूर करने के लिए भी उनके लिए वाई ब्रेक नाम का एक हमने ऐप निकाला है कि उसमें 10 मिनट में तुम चेयर पर बैठे बैठे कौन से आसन कर सकते हो, करने से जो भी तुम्हारा थकान आई होगी वो दूर हो जाएगी।
1: दुनिया भर में भारतीय दूतावास और राजनयिक मिशन कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए पूरी तरह तैयार हैं। आज नेपाल में भारतीय दूतावास ने लुम्बिनी में योगासन कार्यक्रम आयोजित किया। चीन में भारतीय दूतावास ने पेइचिंग में आयोजित योग कार्यक्रम की झलकियां साझा की। उधर जापान में भारतीय दूतावास ने कल सुकिजी होंगन जी मंदिर में योग दिवस कार्यक्रम आयोजित करने की घोषणा की है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले संयुक्त अरब अमीरात में भी कई कार्यक्रम आयोजित हुए। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा कल आयोजित की जाएगी। परीक्षा देश के 551 शहरों और विदेश में 14 शहरों में होगी। इसमें 22,79,000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों के अंतर्गत आज राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल आयोजित की। एक रिपोर्ट।
4: परीक्षा के सुरक्षित, पारदर्शी और सुचारू संचालन के लिए पर्यवेक्षकों, समन्वयकों, पुलिस बलों और प्रशासनिक अधिकारियों सहित 2,00,000 से अधिक कर्मियों की तैनाती की गई है। निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है। एनटीए भ्रामक सूचनाओं पर रोक लगाने और किसी भी प्रकार की अनियमितता को रोकने

0: के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की भी सक्रिय रूप से निगरानी कर रहा है। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक आयोजित की जाएगी। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा कल संयुक्त अरब अमीरात में 3 निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम का प्रसारण कर रहा है। आज जानकारी सशक्त भारत के संकल्प को साकार करने वाली सरकार की परिवर्तनकारी पहलों के बारे में।
2: पिछले 12 वर्षों में सरकार ने भारत के हाईटेक क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाने का काम किया है। सशक्त भारत के 2 महत्वपूर्ण आधार हैं, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का विकास और स्पेस स्टार्टअप्स की तेजी से बढ़ती संख्या। सरकार की नीतियों और फैसलों से सेमीकंडक्टर क्षेत्र में सिर्फ योजनाएं ही नहीं बनी बल्कि अब निर्माण और डिजाइन से जुड़े कई इकाई भी काम कर रहे हैं। दिसंबर 2021 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन शुरू किया गया। इसके लिए 76,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। इस योजना के तहत सिलिकॉन फैब, कंपाउंड सेमीकंडक्टर इकाई, असेंबली और टेस्टिंग सुविधाओं तथा चिप डिजाइन के लिए 50% तक वित्तीय सहायता दी गई। साल 2026 में सरकार ने सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 शुरू किया, जिसके लिए 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य उद्योगों के सहयोग से शोध और प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करना, नई तकनीकों का विकास करना और भविष्य के लिए कुशल मानव संसाधन तैयार करना है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मिशन 1.0 ने इस जटिल उद्योग की मजबूत नींव रखी है।
3: We have been able to achieve that in the first.
4: हम अपने सेमीकंडक्टर मिशन के पहले चरण में ये हासिल कर पाए हैं। 75,000 से ज्यादा इंजीनियर इस क्षेत्र में प्रशिक्षित हो चुके हैं। 300 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज छात्रों को चिप डिजाइन करना सिखा रही हैं और भारत में 2 नैनोमीटर चिप्स डिजाइन की जा रही हैं, जो दुनिया की सबसे एडवांस चिप्स हैं। इनमें एनवीडिया और इंटेल की चिप्स भी शामिल हैं और ये सभी अब भारत में ही डिजाइन की जाती हैं।
3: They are all designed in India now.
2: वहीं भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 ने निजी कंपनियों को अंतरिक्ष क्षेत्र में पूरी तरह काम करने की अनुमति दी है। अब निजी संस्थाएं रॉकेट लॉन्च, उपग्रह निर्माण और संचालन, डेटा संग्रह और वितरण तथा ग्राउंड स्टेशन जैसी गतिविधियां कर सकती हैं। इस नीति के बाद भारत में स्पेस स्टार्टअप्स की संख्या 2014 में केवल 1 से बढ़कर 400 से अधिक हो गई है। इससे देश की निजी अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को नई गति मिली है। भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था वर्तमान में लगभग $8 अरब से अधिक की है और अगले 8 से 10 वर्षों में इसके 4 से 5 गुना बढ़कर $40 से $45 अरब तक पहुंचने की संभावना है। आकाशवाणी के साथ बातचीत में अनिल प्रकाश, स्पेस इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ इंडिया के महानिदेशक ने बताया कि भारत में अब 400 से अधिक स्पेस टेक स्टार्टअप्स हैं।
5: नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्पेस सेक्टर रिफॉर्म, स्पेस की स्थापना और प्राइवेट पार्टिसिपेशन को बढ़ावा देने वाली नीतियों ने एक नई क्रांति की शुरुआत की है। आज भारत में 400 से अधिक स्पेस टेक स्टार्टअप कार्यरत है, जो सैटेलाइट, लॉन्च व्हीकल, अर्थ ऑब्जर्वेशन और डाटा सर्विस जैसे क्षेत्रों में इनोवेशन कर रहे हैं।
2: सेमीकंडक्टर मिशन की उपलब्धियों और तेजी से बढ़ती निजी अंतरिक्ष क्षेत्र के माध्यम से भारत विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। ईरान की संयुक्त सैन्य कमान ने आज घोषणा की है कि होर्मुज जलडमरू मध्य को एक बार फिर बंद कर दिया गया है। ये फैसला लेबनान में इसराइल की सैन्य कार्रवाई का हवाला देते हुए लिया गया है। सरकारी टेलीविजन पर प्रसारित बयान में ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर इसराइल के हमले जारी रहे तो वह और कड़े कदम उठा सकता है। उधर दक्षिणी लेबनान में इसराइल के हवाई हमलों में 2 बच्चों सहित 16 लोगों की मौत हो गई। ये हमले संघर्ष विराम की खबरों के कुछ ही घंटों बाद हुए। कैलाश मानसरोवर यात्रा के तीर्थयात्रियों का पहला जत्था आज नाथुला दर्रे से होते हुए चीन में प्रवेश कर गया। इस दल में 47 लोग हैं। चेन्नई में भारत ने तीसरे और अंतिम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 9 विकेट से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीत ली है। भारत ने 29वें ओवर में 1 विकेट पर 224 रन बनाकर जीत हासिल की। 5 विकेट लेने वाले प्रसिद्ध कृष्णा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत को शांति और सहयोग का पक्षधर बताया। कहा, वैश्विक संकटों और युद्ध जैसी परिस्थितियों का

0: As the voice of peace, dialogue and cooperation, as it believes issues can only be resolved through mutual discussion and not war. Prime Minister Narendra Modi asserts, tribal communities are emerging as active participants in India's development journey, launches development projects worth more than 47,000 crore rupees in Odisha. Prime Minister releases 23rd installment of PM Kisan Samman Nidhi scheme of over 18,000 crore rupees. Prime Minister to lead International Day of Yoga 2026 celebrations at Kolkata's historic Red Road tomorrow. NEET UG 2026 re-examination to take place tomorrow under strict vigil. That is all in the news at 9. Good night.
1: Spotlight.
2: This is Akashvani. In the program Spotlight, on the eve of International Yoga Day, we bring you an exclusive interview with Pratap Rao Jadhav, Union Minister of State, Independent Charge, Ministry of Ayush. Interviewer is Deeksha Saxena, Akashvani correspondent.
3: हर साल की तरह इस वर्ष भी 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। इस साल विश्व 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है। आखिर क्या है योग? ये ऐसी प्राचीन भारतीय विद्या है जिसने पूरी दुनिया को ये सिखाया है कि सांसों पर नियंत्रण के माध्यम से हम अपने विचार और जीवन को किस प्रकार संतुलित कर सकते हैं। विश्व भर में योग की बढ़ती लोकप्रियता भारत की समृद्ध संस्कृति विरासत को भी प्रमाण कर रही है। योग दिवस 2026 और योग से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मुख्य अतिथि मौजूद हैं। मैं स्वागत करती हूं केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री प्रताप राव जाधव जी का। सर, आकाशवाणी में आपका बहुत बहुत स्वागत।
4: नमस्कार, धन्यवाद।
3: सबसे पहले मैं आपसे इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम योगा पर हेल्दी एजिंग के बारे में जानना चाहूंगी। इस थीम को चुनने के पीछे क्या विचार था?
4: अभी इस साल जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिन है 12वां, उसकी थीम बहुत ही दूर की सोच हम जिसे बोलेंगे कि हमारे प्रधानमंत्री ने की है, क्योंकि बहुत सारे सुझाव थीम के बारे में आए थे। हमने उसमें से कुछ गिने चुने प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजे थे और उन्होंने ये थीम उसमें से सिलेक्ट की। इसके पीछे का एक ही मतलब है कि आज पूरे विश्व में सबसे ज्यादा युवा वाला अगर कोई देश होगा तो हमारा भारत देश। लेकिन जब हम आगे जाकर सोचेंगे, हो सकता है 25-50 साल के बाद में दुनिया में सबसे ज्यादा बुजुर्ग वाला देश भी भारत ही रहेगा। और उस समय भी फिर हमारे बुजुर्ग लोगों की स्वास्थ्य ठीक रहे, वो भी उनकी सेहत अच्छी रहे और उनको कोई बीमारी या कठिनाई ना हो, ये सोचकर ये थीम रखी है कि योग फॉर हेल्दी एजिंग, कि अगर बुढ़ापे में भी आप स्वस्थ रहना चाहते हो तो आज से हर दिन योगा करो। और उसके लिए हमने योग 365 भी हमने लॉन्च किया है कि एक दिन योग करने के लिए नहीं है, योग हर दिन करना चाहिए। तो ये थीम के पीछे का मतलब है कि बुढ़ापे में भी आप स्वस्थ रहो।
3: आज विश्व भर में जो वैज्ञानिक हैं और चिकित्सा समुदाय है वो योग की हेल्दी एजिंग में काफी योगदान दे रहे हैं और उसको लेकर काफी गंभीरता से विचार भी कर रहे हैं। काफी सारे रिसर्च पेपर भी इस विषय पर पब्लिश हो चुके हैं, तो इस विषय में कृपया आप हमारे श्रोताओं को थोड़ी जानकारी दें।
4: ये देखिए, जो भी बड़े बड़े योग संस्थान हैं, हमारे भी आयुष की भी जो मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान है, कि पहले जो था हमारा आयुर्वेदा था, योगा था, लोग तो इसको जानते थे, इसकी ताकत भी जानते थे कि भाई कितना उपयोगी है, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे कि वो एविडेंस मांगते थे, रिसर्च क्या हुआ इसके बारे में पूछते थे, तो वो बहुत कम था। लेकिन 2014 में जब आयुष मंत्रालय की स्थापना हुई और 2014 से लेकर आज 2026 तक ये 12 साल में योगा क्या हो, आयुर्वेदा हो, सभी के आयुष के ऊपर बहुत सारे हमने रिसर्च भी बढ़ाए, एविडेंस भी हम इकट्ठा कर रहे हैं कि हम खुले दिल से दुनिया के सामने जाए कि हमारे प्रमाण है और ये बात सही है और उसमें है भी। तो वैसे योगा के भी रिसर्च हमारे बहुत सारे इंस्टीट्यूट है। अपन गए थे बेंगलोर में, चलो हम आयुष मंत्रालय भी हमको, हम उनको आर्थिक मदद भी करते हैं रिसर्च करने के लिए। तो ये सभी के ऊपर रिसर्च के वजह से ये लोगों को प्रमाण आ गया कि योगा, और दूसरा लोगों ने खुद अनुभव लिया कोरोना के समय, जब कोरोना जैसी महामारी आई तब कोई दवा टेबलेट नहीं थी या वैक्सीन भी नहीं था, तब लॉकडाउन में लोगों ने घर में बैठकर ही दिन रात शाम सवेरे योगा किया, आयुर्वेदिक उपचार काढ़ा वगैरह लिए, और हमारे इतनी बड़ी जनसंख्या वाले देश ने भी कोरोना पर हमने कंट्रोल वहां पर किया। तो लोगों को तो ये मालूम है कि योगा ये प्रिवेंटिव है, कोई बीमारी ना हो, स्वस्थ रहने के लिए योगा किया जाता है। और दूसरा, ये सिर्फ शरीर के लिए नहीं, मन की शांति के लिए भी योगा बहुत अच्छी तरह से काम करता है, और इसके भी प्रमाण है, दुनिया मान रही है। अभी देखो 2014 में जब संयुक्त राष्ट्र की बैठक में ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिन हमारा मंजूर हुआ 21 जून, आज 190 कंट्री से ज्यादा कंट्री में ये हमारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिन मनाया जाता है। हमारे देश में तो गांव-गांव तक योग का लोग अभ्यास करते हैं, प्रोटोकॉल का अभ्यास करते हैं। और हमारे प्रधानमंत्री की भी ये सोच रही थी कि हर आदमी, चाहे बालक हो या चाहे बुजुर्ग हो, चाहे महिला हो या हमारे यंगस्टर हो, सभी ने योगा करना चाहिए।
3: आपने इतने विस्तार में हमें समझाया योगा के बारे में, और हर साल ही देश के अलग अलग भाग में योगा का मेन कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मेन इवेंट कलकत्ता यानी कलकत्ता में आयोजित किया जा रहा है। इस बड़े आयोजन के लिए किस प्रकार की तैयारियां चल रही हैं, और इस बार के मुख्य कार्यक्रम में क्या विशेषताएं होंगी?
4: इस बार से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल के कोलकाता को चुना है। जैसा कि हमें हर साल अलग अलग प्रदेशों में जाके योग दिन मनाया जाता है, लेकिन कलकत्ता चुनने के पीछे भी बहुत बड़ा इतिहास है, क्योंकि हमारे स्वामी विवेकानंद ने ही पश्चिमी देशों में जाकर योग का महत्व लोगों को बताया था, योग का प्रचार भी किया था। लेकिन दुर्भाग्य एक है कि कोलकाता हो या पश्चिम बंगाल में पिछली जो सरकारें थी उन्होंने कभी योग को महत्व नहीं दिया। शायद उनकी गलत फहमी होंगी कि योग अध्यात्म से जुड़ा हुआ है, योग तो ऋषि मुनियों की देन है, हम इसका अगर प्रचार प्रसार करेंगे तो लोग कुछ उनकी वोट बैंक है वो नाराज हो जाएंगी। उनको खुश रखने के लिए उन्होंने कभी योगा को प्रमोट नहीं किया। लेकिन ये साल वहाँ की पूरी जनता ने भारी बहुमत से वहाँ पर एक हिंदुत्ववादी विचारसरणी वाली एनडीए सरकार, बीजेपी सरकार वहाँ पर चुन के दिए, और वो वहाँ के आम लोगों की भी ये अपेक्षा है कि योग हमारे तरफ भी आए, हम भी लोग योग यहाँ पर सीखे। कोलकाता को चुना गया, बहुत सारी तैयारी हमने उसमें कही कि जैसे कि 21 जून के 100 दिन पहले के काउंटडाउन कार्यक्रम होता है, तो वो 100 दिन में पूरे भारतवर्ष के 100 बड़े बड़े शहरों में भी योग महोत्सव वहाँ के इंस्टीट्यूट को साथ में लेके किए जाए। उसके बाद में हमारा आयुष मंत्रालय और मुरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान द्वारा 4 बड़े काउंटडाउन के कार्यक्रम होते हैं, जो भी हमारे अलग अलग प्रदेशों में चारों दिशाओं में हमारे देश के होते हैं। तो उसका पहला कार्यक्रम जो हुआ था वो दिल्ली में हुआ था, भरत मंडपम में। दूसरा जो कार्यक्रम था वो महाराष्ट्र के लोणार शहर में हुआ था, जहाँ पर वर्ल्ड फेमस क्रेटर है। उसके बाद में 50 दिन पहले वाला जो कार्यक्रम था वो हमने हैदराबाद में जो इंस्टीट्यूट है हमारा कान्हा शांतिवनम हार्टफुलनेस, बहुत अच्छी ढंग से वहाँ पर किया। सिर्फ वहाँ पर हमने योग महोत्सव नहीं किया, तो लोनार में हमने एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड वहाँ पर त्रिकोणासन का लोनार में बनाया। हैदराबाद में हार्टफुलनेस में भुजंगासन का भी 6000 से ज्यादा, लोनार में भी 6000 से ज्यादा लोगों ने एक साथ में किया था महाराष्ट्र में, तो वो भी रिकॉर्ड वहाँ पर स्थापित किया। फिर उसके बाद में 25 दिन पहले वाला खजुराहो में हमने मध्य प्रदेश में किया, और अभी मेन इवेंट ये कोलकाता में होने जा रहा है। तो कोलकाता में भी बहुत सारे जो तैयारी मुझे पूछी, और 21 तारीख को सवेरे हमारा जो रेड रोड है वहाँ पर करेंगे, क्योंकि पहले हमने परेड ग्राउंड चुना था, लेकिन अभी ये बारिश के दिन है, कभी भी बारिश आ सकती है, तो वहाँ थोड़ी भी बारिश आए तो कीचड़ होने से डिस्टर्ब हो जाएंगे करके, और रेड रोड एक अच्छी जगह है कि वहाँ बारिश भी रही तो कोई तकलीफ नहीं होगी, योगा कर सकते हैं। तो वहाँ पर योगा का मेन कार्यक्रम रहेगा, और वहाँ के कारपोरेशन और वहाँ के राज्य सरकार के साथ भी जाके हमने फिजिकली भी बैठक की, उनमें भी बहुत सारा उत्साह दिखा। तो उन्होंने देखा हम यहाँ तो रोड पर करेंगे, लेकिन कलकत्ता के शहर के अंदर हर स्ट्रीट के ऊपर हम योगा करने के लिए लोगों की व्यवस्था करेंगे, हर जगह स्क्रीन लगाएंगे, वहाँ पर भी हम कोई मैट वगैरह ये बिछाएत करके लोग घर के बाहर आके गली में ही 45 मिनट का योग प्रोटोकॉल का अभ्यास करेंगे। तो तैयारी बहुत है, हमने तो ऐसा अनुमान लगाया था कि भाई 1 लाख तक लोग शामिल होना चाहिए वहाँ पर, लेकिन उन्होंने खुद हो गया कि हम गली गली में करके हम 10 लाख तक भी लोगों को योगा करने के लिए बाहर निकालने की कोशिश करेंगे।
3: सर, योगा महोत्सव के दौरान जो आपने खजुराहो जिसका जिक्र किया था आपने अभी, उसके दौरान योगा संगम पोर्टल और योगा पार्क पोर्टल भी लॉन्च किया गया, तो हमारे श्रोताओं को कृपया आप बताएं कि योगा पार्क पोर्टल क्या है और आम जनता को इससे क्या लाभ होगा?
4: ये योग पार्क का जो पाउडर है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी हर गांव में, चाहे छोटा गांव हो या बड़ा शहर हो या हमारी नगर पालिका हो, कि हर जगह में, हर एरिया में अभी ऐसे योग क्लब बनने लगे। लोग एक जगह इकट्ठा आके योग करते। देखो, ये अकेले करने में थोड़ा दिक्कत आती है, क्या लोगों को ऐसा एकदम फ्रीली महसूस नहीं होता, बस 50-100 लोग एक साथ में आके योगा करते हैं तो उनका उत्साह भी बना रहता है, तो उसके लिए योग पार्क बनना चाहिए। तो वो हमने स्कीम वहां पर

0: हमने पीछे जो हमारी आयुष इंडस्ट्रीज है, बड़े बड़े वैद्यनाथ वगैरह जैसे हमारे जो बहुत सारे कंपनियां हैं कि इनको हमने बुला के भी बोला था कि भी सीएसआर फंड में से कुछ योग पार्क बनना चाहिए, तो उन्होंने सबने मिलकर लगभग 1000 से ज्यादा योग पार्क बनाने के लिए भी उन्होंने कंसेंट दिया था। अभी हम नगर पालिका कारपोरेशन नगर पंचायत है इनसे मिलकर हम कर रहे हैं कि जगह उनकी रहेगी, वहां पर एक योग पार्क बनेगा जहां सभी लोग जाके योग करेंगे। तो योग पार्क के पीछे की लोगों को थोड़ा योगा करने के लिए सुविधा मिले और सामूहिक रूप से लोग वहां पर योग करें।
1: योग वर्ल्ड वाइड इतना ज्यादा लोकप्रिय हो चुका है कि 14 जून यानी कि योग दिवस से एक हफ्ते पहले आपके मंत्रालय ने एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जिसमें सुबह 5 बजे उठ के पूरी दुनिया भर से 4.5 लाख से ज्यादा लोगों ने योगा करा। इस पे मैं आपसे और जानकारी चाहूंगी।
0: पहले जो राज्यकर्ता लोग थे उन्होंने कभी योग को महत्व नहीं दिया, प्रचार प्रसार भी करने की कोशिश नहीं की, लेकिन 2014 से जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पंतप्रधान इस देश के बने, उन्होंने हमारे देश में और देश के बाहर के भी लोगों तक योगा को ले जाने की कोशिश की और लोग भी ये समझने लगे कि भाई योगा से हमको मन शांति मिलती है, शारीरिक स्वास्थ्य हमारा अच्छा रहता है, बहुत सारी बीमारियों से हम दूर रह सकते हैं, इसके प्रमाण भी है, रिसर्च पेपर भी पब्लिश हुए हैं। तो इससे आप कौन ऐसा आदमी है कि वो चाहता नहीं कि मैं स्वस्थ रहे, ये तो सभी लोग चाहते हैं, लेकिन ये छोटे समय में आधा घंटा पौना घंटा में कुछ समय देखे ये कर सकते हैं, तो इसको लोकप्रिय बनाया। अभी जो तुमने जिक्र किया कि आज यूट्यूब पर एक लाइव स्ट्रीम हमने एक आयोजन किया था, गिनीज बुक में भी उसका रिकॉर्ड तय हो गया। पहले का जो रिकॉर्ड था तो उसमें 2,46,452 लोगों ने ऑनलाइन योगा किया था, ये देखा नहीं, इसमें योगा भी लोगों ने किया है सवेरे उठ के। और आज का जो हमारा रिकॉर्ड है तो 4,35,837 लोगों ने वहां पर एक साथ में अलग अलग जगह पर, किसी ने घर में किया, किसी ने गली में किया, किसी संस्थानों ने बाहर किया, हमने भी यहां पर सभी हमारे मंत्रालय के लोगों ने यहां पर लॉन में योगा किया। तो ये लोगों का अट्रैक्शन बढ़ रहा है योगा के प्रति। अब बहुत सारे युवा भी अभी योगा करने लगे कि हमने योग अनप्लग नाम का भी एक हमने उनके लिए पैकेज लाया हुआ है कि उनके माध्यम से युवा को भी हम जोड़ रहे हैं, महिलाओं को भी जोड़ रहे हैं, बुजुर्गों की भी है, नॉन कम्युनिकल जो 10 बड़े डिसीज है उनके लिए भी हमने योग के पैकेज बनाए हुए। बीपी वालों ने कौन से आसन करना चाहिए, शुगर वालों ने कौन से करना चाहिए, अगर कोई मेंटली उसको कोई तकलीफ है तो उसके लिए कैसा ध्यान और योगा एक साथ में कर सकते हैं, कैंसर हो, हार्ट का प्रॉब्लम हो, किडनी हो, लीवर हो, पैनक्रिया हो, ये सभी के लिए अलग अलग पैकेज। इतना ही नहीं, लोग दिन भर चेयर पे बैठे काम करना पड़ता है, वो लोग भी जब लंच ब्रेक होता है तब तक बहुत सारी थकान वो लोगों में आती है, तो वो थकान दूर करने के लिए भी उनके लिए वाई ब्रेक नाम का एक हमने ऐप निकाला है कि उसमें 10 मिनट में तुम चेयर पर बैठे बैठे कौन से आसन कर सकते हो, करने से जो भी तुम्हारा थकान आई होगी वो दूर हो जाएगी और फिर से तुम अच्छी तरह से काम। उसके बाद में हमने अपनी योग फॉर एयर ट्रेवल्स लॉन्च किया। अभी लोग एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाते 8-8, 10-10 घंटे एक ही चेयर पर बैठे रहना पड़ता है प्लेन में, तो थकान सी महसूस होती है, तो फिर प्लेन में भी तुम चेयर पे बैठे कौन से आसन कर सकते हो, वो भी हमने लॉन्च कर दिया। उसके ऐसे बहुत सारे योग को प्रचलित लोगों को प्रमाण देने के लिए निकाले और लोकप्रिय भी होते जा रहे हैं।
1: भारत वर्तमान में विकसित भारत के संकल्प को साकार करने की दिशा में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, आपके अनुसार इस यात्रा में योग का क्या महत्व है?
0: 2047 तक हमारे प्रधानमंत्री और हमारे सभी देशवासियों ने हमने सपना देखा है कि हमको विकसित बनना है। मेरे ख्याल से जो मैंने अभी तक नजदीक से देखा है, अनुभव किया है, इसमें योग का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। जैसा कि हम बोलते हैं कि जो हमारा फायदा होता है कुछ गिनते हैं, तो उसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऐसे दो टाइप के हमको कोई भी चीजों में दिखता है, इसमें डायरेक्ट भी फायदे होने वाले हैं, इनडायरेक्ट भी। जब लोग योगा करेंगे स्वस्थ रहेंगे, हमारे देश के नागरिक अगर स्वस्थ होंगे तो निश्चित उनका योगदान हमारे देश को आगे बढ़ाने में भी ज्यादा रहेगा, कम समय में भी हमारा देश विकसित राष्ट्र बनने जाएगा। दूसरी बार योग की वजह से रोजगार बढ़ रहा है, अब हमारे पाठ्यक्रमों में भी योग आ गया, एशियाड में भी योग आ गया, अभी योग को खेल का दर्जा भी मिल गया, तो अभी स्कूल से योगा सिखाना शुरू होगा तो हर जगह पर डिमांड होगी योग टीचर योग इंस्ट्रक्टर। अभी बाहर के देशों से भी बहुत सारी डिमांड आ रही है कि हमें योग टीचर योग इंस्ट्रक्टर हमें दीजिए योग सिखाने के लिए, और अभी लोगों में भी जो अवेयरनेस आ रहा है तो लोग भी अभी जगह जगह पे, जैसे कि हमारे ट्यूशन क्लास चलते हैं बच्चों के, अभी योगा क्लास शुरू हो गए बहुत सारे गांव में हमारे भी, तो वहां पर लोग फीस दे के 1 घंटा योगा सीखने जाते हैं या करने जाते हैं कि भाई हम अकेले में घर में नहीं कर सकते तो फिर वहां जाओ, तो एक रोजगार भी बढ़ गया, तो निश्चित रूप से देश

0: के विकास में, देश की आर्थिक स्थिति बढ़ाने में योग का बहुत बड़ा योगदान रहेगा।
1: बहुत बहुत धन्यवाद जादव जी, आपने योग दिवस 2026 के विभिन्न पहलुओं पे बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमारे श्रोताओं के साथ साझा करी और आपको भी योग दिवस की बहुत बहुत बधाई।
0: धन्यवाद।
2: ऑन द ईव ऑफ द इंटरनेशनल योगा डे यू आर लिसनिंग टू एन एक्सक्लूसिव इंटरव्यू विद प्रताप राव जाधव, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट, इंडिपेंडेंट चार्ज, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। Interviewer was Deeksha Saxena, Akashvani correspondent. This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani.
3: Spotlight. ये आकाशवाणी है, आइए सुने राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती।
4: साउंड कैमरा एक्शन।

नमस्कार, राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती के जून महीने के अंक में आपका स्वागत है। चित्र भारती के इस अंक में संपादकीय शास्त्रीय संगीत के दिग्गज फिल्म संगीत की दुनिया में

पर एक रपट और स्मृति शेष में नमन जानी मानी गायिका सुमन कल्याणपुर को। सबसे पहले संपादकीय शास्त्रीय संगीत के दिग्गज फिल्म संगीत की दुनिया में 21 जून को मनाया जाता है विश्व संगीत दिवस। इस दिन को मनाने की शुरुआत हुई थी सन 1982 में। 21 जून का ही दिन इसलिए चुना गया था क्योंकि इस दिन होता है समर सोल्स्टिस यानी ग्रीष्म संक्रांति, साल का एक सबसे लंबा दिन, ताकि आप संगीत की स्वर लहरियों का ज्यादा मजा ले सकें। संगीत सिर्फ एक कला नहीं, संगीत जीवन का सुकून है। संगीत ना होता तो कितनी सूनी होती ये दुनिया। आज चित्र भारती के संपादकीय में हम विश्व संगीत दिवस पर लाए हैं एक खास पेशकश, ऐसे कलाकारों की बातें जो वैसे तो शास्त्रीय संगीत में सक्रिय रहे पर जब वो फिल्म संगीत के मैदान में आए तो उन्होंने अपनी और ज्यादा चमक बिखेरी और हमें दिए कुछ अनमोल गाने, यानी कुछ ऐसे गायक और संगीतकारों की बातें जो शास्त्रीय संगीत की दुनिया से आते हैं। शास्त्रीय संगीत और फिल्म संगीत हमेशा दो अलग अलग ध्रुव रहे हैं। एक लंबे समय तक शास्त्रीय संगीत की दुनिया में फिल्म संगीत को कमतर माना जाता रहा और शास्त्रीय संगीत के कलाकारों ने फिल्म संगीत से बाकायदा दूरी बनाकर रखी। पर फिर ऐसा वक्त आया जब शास्त्रीय संगीत की दुनिया के दिग्गजों ने फिल्म संगीत की जमीन पर अपने कदम रख ही दिए। अगर शुरू से बात करें तो बेगम अख्तर जैसी दिग्गज गायिकाओं ने फिल्मों में काम भी किया और गाने भी गाए। सन 1930 के जमाने में उन्होंने एक दिन का बादशाह, नल दमयंती और जवानी का नशा जैसी फिल्मों में अभिनय किया था। सन 1942 में उन्होंने महबूब खान की फिल्म रोटी में संगीतकार अनिल बिस्वास के निर्देशन में गाना भी गाया। इसके अलावा सत्यजीत रे ने सन 1958 में एक फिल्म बनाई जलसा घर। इस फिल्म में उस्ताद विलायत खान साहब का संगीत था। ये फिल्म अपने लाजवाब संगीत के लिए जानी जाती है। बेगम अख्तर ने इस फिल्म में

ऐसे मौकों पर फिल्म संगीत अपनी अप्रतिम ऊंचाई तक पहुंच जाता है। शास्त्रीय संगीत के कई दिग्गजों ने फिल्म संगीत में अपना योगदान दिया है। सन 1952 में विजय भट्ट ने एक फिल्म बनाई बैजू बावरा। इस फिल्म के लिए संगीतकार नौशाद ने राजी किया मालवा घराने

के संस्थापक उस्ताद अमीर खान साहब को। कितना सुखद था कि इस फिल्म का एक गाना पंडित डी वी पलुस्कर और उस्ताद अमीर खान साहब ने साथ

यहाँ ये जिक्र जरूरी है कि उस्ताद आमिर खान साहब ने सिनेमा के लिए शायद सबसे पहले नौशाद के ही संगीत निर्देशन में गाया था। फिल्म थी सन 1954 में आई शबाब। दूसरी बार उन्होंने सिनेमा के लिए तब गाया जब वी शांताराम ने फिल्म बनाई झनक झनक पायल बाजे, साल 1955। सन 1956 में राजा नवाथी की फिल्म आई बसंत बहार। इस फिल्म में ऐसा मौका आया जब फिल्म की सिचुएशन के मुताबिक शास्त्रीय संगीत की दिग्गज हस्ती पंडित भीमसेन जोशी को हराने की जिम्मेदारी पार्श्व गायक मन्ना डे को सौंपी गई। मन्ना डे तनाव में आ गए और चुपचाप पूना चले गए। उनकी पत्नी ने उन्हें समझाया कि आपका जो फर्ज है वो आपको निभाना होगा, ये तो सिर्फ फिल्मी गाना है, आपको ये गाना रिकॉर्ड करना ही होगा। और तब जाकर ये गाना रिकॉर्ड हुआ जो कालजयी बन गया।

0: अब आते हैं हिंदी सिनेमा की एक अजीमुशान फिल्म की ओर। ये फिल्म थी के आसिफ की मुगले आजम। इस फिल्म में एक खास सिचुएशन ऐसी है जिसके लिए के आसिफ को चाहिए थी पटियाला घराने के दिग्गज गायक उस्ताद बड़े गुलाम अली खां की आवाज। किसी तरह उन्हें मनाया गया। कहते हैं कि उन्होंने के आसिफ से एक बड़ी रकम की मांग की थी जिसे आसिफ साहब ने फौरन मान लिया था और इस तरह से मुगले आजम में उस्ताद बड़े गुलाम अली खां की आवाज में दो गाने रिकॉर्ड हुए। एक गाना था ये
1: जो गाना बनेगा
0: और दूसरा गाना था

1960 में आई फिल्म कोहिनूर। इस फिल्म में एक गाने में सितार बजाया था उस्ताद अब्दुल हलीम जाफर खान साहब ने। कहते हैं कि इस गाने में अभिनय के लिए दिलीप कुमार ने महीनों उस्ताद जी से सितार की तालीम ली थी। इसी तरह से फिल्म मेरी सूरत तेरी आंखें के इस गाने में तबला बजाया था बनारस के बेमिसाल तबला वादक गुदई महाराज यानी पंडित सामता प्रसाद जी ने। वी शांताराम ने सन 1964 में बनाई फिल्म गीत गाया पत्थरों ने। इस फिल्म में संगीत था रामलाल जी का, जो खुद एक सिद्ध शहनाई वादक थे। इस फिल्म का शीर्षक गीत गाया था जयपुर घराने की दिग्गज गायिका विदुषी किशोरी अमोनकर।

0: क्योंकि यहाँ हमने रामलाल जी की शहनाई का जिक्र किया तो इसी बहाने याद कर लें जाने माने शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्ला खान साहब को। सन 1959 में आई विजय भट्ट की फिल्म गूंज उठी शहनाई। इस फिल्म के बैकग्राउंड म्यूजिक में शहनाई बजाई थी उस्ताद बिस्मिल्ला खान साहब ने, पर गानों में बजी शहनाई रामलाल जी ने खुद बजाई थी। सन 1966 में एक फिल्म आई थी लड़की सह्याद्री की। वी शांताराम के निर्देशन वाली इस फिल्म में मेवाती घराने के प्रसिद्ध गायक पंडित जसराज ने एक गीत गाया था।
1: वंदना करो अर्चना करो,
0: ये गीत राग अहीर भैरव पर आधारित था। गीतकार थे भरत व्यास और संगीतकार थे वसंत देसाई। बहुत बाद में पंडित जसराज ने फिल्म 1920 में ये गाना गाया। सन 1976 में आई फिल्म कादंबरी। इस फिल्म में संगीत दिया था उस्ताद विलायत खान साहब ने। उन्होंने इस फिल्म में आशा भोसले से अमृता प्रीतम की ये रचना गवाई थी।

जानी मानी गायिका विदुषी बेगम परवीन सुल्ताना ने भी कई फिल्मी गाने गाए हैं। उनका सबसे मशहूर गाना है फिल्म कुदरत का वो गीत, जिसे आर डी बर्मन ने स्वरबद्ध किया था। इस गाने के गीतकार थे मजरूह सुल्तानपुरी।

पर उन्होंने इसके अलावा भी कई फिल्मों में गाया है। विदुषी परवीन सुल्ताना ने फिल्म गदर में ये गीत गाया। इस गाने में उनके साथ थे पटियाला घराने के जाने माने गायक पंडित अजय चक्रवर्ती।

सन 1985 में अमोल पालेकर ने फिल्म अनकही बनाई। इस फिल्म का संगीत जयदेव ने दिया था। पंडित भीमसेन जोशी ने इस फिल्म में दो गाने गाए।

सन 1985 में फिल्म आई सुरसंगम, जिसके जरिए शास्त्रीय संगीत की दुनिया के अनमोल पंछी उतरे फिल्म संगीत के मैदान पर। पंडित राजन और पंडित साजन मिश्र, संगीतकार

माने बांसुरी वादक पंडित हरि प्रसाद चौरसिया और जाने माने संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा ने ऐसे तो कई फिल्मी गानों में अपने अपने साजों का कमाल दिखाया है, पर आगे चलकर उन्होंने जोड़ी बनाई शिव हरि की जोड़ी और कई फिल्मों में संगीत दिया। ऐसी ही एक फिल्म

जाने माने सितार वादक पंडित रविशंकर ने कई फिल्मों में संगीत दिया, जैसे नीचा नगर, पाथेर पांचाली, अपराजितो वगैरह। पर उन्होंने ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म अनुराधा में क्या कमाल के गाने बनाए थे। जाने कैसे सब

1997 में सई परांजपे ने फिल्म साज बनाई। इस फिल्म में उस्ताद जाकिर हुसैन ने न केवल अभिनय किया था बल्कि कुछ गाने भी बनाए थे। चूंकि जिक्र चला है तो आपको बता दें कि उस्ताद जाकिर हुसैन के पिता उस्ताद अल्लाह रखा खान साहब ने भी कई फिल्मों में संगीत दिया था। यह है उनका संगीतबद्ध किया एक गाना।

0: प्रिय संगीत की दिग्गज हस्तियों ने फिल्म संगीत का हाथ कभी कभी पकड़ा है। जब शास्त्रीय संगीत की बड़ी हस्तियां फिल्मी गानों से जुड़ती हैं, तो फिल्म संगीत और ज्यादा निखर जाता है। ये था विश्व संगीत दिवस के मौके पर चित्र भारती का संपादकीय शास्त्रीय संगीत के दिग्गज फिल्म संगीत की दुनिया में। और अब मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह पर एक रपट। मुंबई में 15 जून से 21 जून तक आयोजित किया जा रहा है 19वां मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। इस फिल्म समारोह का आयोजन नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और भारत सरकार का सूचना और प्रसारण मंत्रालय करता है। ये एक ऐसा फिल्म समारोह है जिसमें डॉक्यूमेंट्री, शॉर्ट फिक्शन और एनिमेशन फिल्में दिखलाई जाती हैं। ये दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा और सबसे पुराना डॉक्यूमेंट्री फिल्म समारोह है। आपको बता दें कि मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आरंभ सन 1990 में हुआ था। ये फिल्म समारोह हर दूसरे बरस आयोजित किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र को गोल्डन कॉन्च पुरस्कार दिया जाता है और 10 लाख रुपए नगद मिलते हैं। इस समारोह में इस बरस कुल मिलाकर 55 लाख रुपए के पुरस्कार दिए जाएंगे। प्रतियोगिता श्रेणी के सभी पुरस्कारों का निर्णय अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय जूरी के द्वारा किया जाता है। प्रतियोगिता फिल्मों के अलावा AIFF जूरी रेट्रोस्पेक्टिव, बेस्ट ऑफ द फेस्टिवल्स, MIFF प्रिज्म, कंट्री फोकस डॉक्यूमेंट्री और रीस्टोर्ड क्लासिक्स जैसे कई विशेष पैकेज इस फिल्म समारोह का हिस्सा हैं। इस फिल्म समारोह के दौरान पैनल चर्चा, एक खुला मंच, सेमिनार और डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माण पर कार्यशालाएं भी आयोजित की जाएंगी। ये फिल्म निर्माताओं और फिल्म प्रेमियों के लिए एक अनूठा मंच है जहां आकर वो अपने विविध दृष्टिकोण साझा कर सकते हैं और आगे बढ़ने के अवसरों का पता लगा सकते हैं। इस फिल्म समारोह में एक सेक्शन है प्रिज्म, जिसमें भारत और दुनिया भर की चोटी की शानदार डॉक्यूमेंट्री फिल्में दिखाई जाएंगी। इस फिल्म समारोह में वेव्स डॉक बाजार का भी आयोजन किया जा रहा है। ये एक ऐसा मंच है जो फिल्म निर्माण की यात्रा को पोषित करेगा और गति प्रदान करेगा। इसमें है एक व्यूइंग रूम जहां रजिस्टर्ड रिप्रेजेंटेटिव को एक समूह के सामने अपनी डॉक्यूमेंट्री, लघु फिल्म या एनिमेशन फिल्म प्रदर्शित करनी होगी। इस तरह से ये जगह वितरण सौदे हासिल करने, सह निर्माताओं को आकर्षित करने और फिल्म महोत्सव स्क्रीनिंग के लिए पैसे जुटाने का एक लॉन्च पैड बनेगा। इसके अलावा एक इमर्सिव मार्केट भी है जो पहली बार शामिल किया जा रहा है। इसमें इमर्सिव कंटेंट क्रिएटर्स, प्रोड्यूसर्स और टेक्नोलॉजी पार्टनर्स के लिए एक मिलन स्थल होगा जहां आकर वो आपस में कोलैबोरेट कर पाएंगे। VR, AR, XR और इंटरएक्टिव अनुभवों पर केंद्रित ये मार्केट नई परियोजनाओं को प्रदर्शित करने और सहयोग को बढ़ावा देने का काम करेगा। इस बार के फिल्म समारोह में कई मास्टर क्लासेस भी आयोजित की जाएंगी, जैसे फास्ट फिल्म क्या माइक्रो ड्रामा सिनेमा का फास्ट फैशन है, या फिर विचार से रूपरेखा तक एक दृश्य की संरचना। ये थी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह पर एक रपट। और अब स्मृति शेष में आज हम नमन कर रहे हैं जानी मानी पार्श्व गायिका सुमन कल्याणपुर को। 31 मई को सुमन कल्याणपुर हमारे बीच नहीं रही। स्मृति शेष। कम लोग जानते हैं कि सुमन कल्याणपुर का जन्म 28 जनवरी 1937 को भवानीपुर बंगाल में हुआ था। ये जगह अब बांग्लादेश में है। पांच बहनों में सबसे बड़ी सुमन की परवरिश मुंबई में हुई। ये वो जमाना था जब लड़कियों को बाहर खेलने की इजाजत नहीं थी। ऐसे में उनकी दिलचस्पी गायन में हो गई।
1: 1953 में जब मैं आर्ट स्कूल में थी, मुझे किसी फिल्म के लिए गाने का मौका मिला, मगर केवल गाने ही रिकॉर्ड हो पाए, फिल्म नहीं बनी। उसके बाद एक मराठी फिल्म में गाना गाया, उसका नाम था शुक्राची चांदनी। लेकिन बात यह है कि उस फिल्म की चांदनी भी स्टूडियो के सेट पर भी उतरी नहीं, वो भी नहीं बन पाया। फिर उसके बाद शेख मुख्तार की फिल्म बनी मंगू, जिसका

कुमार राजकुमार। सुमन कल्याणपुर के जीवन का सबसे बड़ा दुख ये रहा कि उनकी आवाज लता मंगेशकर से मिलती जुलती थी, तभी तो उनके गानों को लता मंगेशकर के गाने समझ लिया जाता था।

0: बहुत बरस पहले सुमन कल्याणपुर विविध भारती के स्टूडियो में आई थी और उन्होंने फौजी भाइयों के लिए जयमाला कार्यक्रम पेश किया था।
1: कई वर्षों के बाद आज फिर से मुझे आपसे बात करने का मौका मिला है। आप हमें सुरक्षित जीवन प्रदान करते हैं, देश की आन बान के लिए अपने प्राणों की आहुति तक देने में पीछे नहीं हटते। लेकिन ऐसा मत सोचिए कि हम आपके लिए कुछ नहीं सोचते। हम कलाकार अपनी कला से आपका मनोरंजन करते हैं, अपने गीतों से आपके हर क्षण में सहभागी बनते हैं। आप युद्ध में हों या शांति में, सुख में हों या दुख में, परिवार के साथ हों या अकेले, भीड़भाड़ वाले शहर में हों या सीमा के एकांत मोर्चे पर, हर जगह हर पल हम अपनी कला से अपने गीतों के जरिए आपके आसपास ही रहते हैं। आप सुन पाएं या ना सुन पाएं, मगर यकीन मानिए हम आपको ही आवाज देते रहते हैं।

मुझे बचपन से ही गाने का बड़ा शौक था। मेरे पिताजी और माताजी को भी संगीत का शौक था और इसीलिए हम सब बहन भाई संगीत में रुचि रखते हैं। जब मैं स्कूल में पढ़ती थी तो उस जमाने में कुछ लोकप्रिय गीत गाया करती थी। उस जमाने के गायिकाओं में से नूरजहां जी और लता दीदी के गीत मुझे बहुत ही अच्छे लगते थे। जिन गीतों ने मुझे बहुत आकर्षित किया वो गीत एक से बढ़कर एक मधुर हैं और ऐसे कई गीत हैं जो मुझे बहुत ही पसंद हैं। जब भी कोई नया गीत हमें मिल जाता तो मैं और मेरी सहेली शारदा बल से हमारे छत पर बैठकर अक्सर वो गीत गाया करते थे। उनमें से कुछ गीतों की शुरुआत मैं आपको गाकर बताती हूँ। नूरजहां जी का ये गाना मुझे बहुत पसंद है।

0: मुझे याद है लता दीदी एक बार हमारे पड़ोस में आई थी, तब मैं स्कूल में पढ़ती थी। मैं बार बार इधर से उधर, उधर से इधर आ जा रही थी, बस लता दीदी को देखने के लिए, कुछ बोलने के लिए। मगर बोलना तो क्या, उनको देख भी ना पाई। खैर, धीरे धीरे समय बीत गया, मैं भी बड़ी हो गई।
1: एक समय ऐसा आया जब लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी के बीच रॉयल्टी को लेकर मन मुटाव हो गया था। ऐसे में लता जी ने रफी साहब के साथ गाना बंद कर दिया था। इस पूरे दौर में सुमन कल्याणपुर ने मोहम्मद रफी के साथ कई युगल गीत गाए। फिल्म दिल ने फिर याद किया।

सुमन जी के गीतों में शामिल हैं कुछ भोजपुरी गाने भी। सुमन कल्याणपुर चली गई, लेकिन उनकी आवाज हमेशा कायम रहेगी और हमारे मन की वादियों में यादों के फूल खिलाती रहेगी।

ये था राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती का इस महीने का अंक। शोध, आलेख, स्वर और संपादन यूनुस खान, प्रस्तुति अनुश्री पाठक। राष्ट्रीय प्रसारण के लिए फिल्म पत्रिका चित्र भारती का निर्माण विविध भारती मुंबई में किया गया।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत हमेशा शांति और सहयोग का पक्षधर रहा है, क्योंकि जटिल वैश्विक मुद्दों और युद्ध जैसे संकटों का समाधान केवल संवाद और कूटनीति से ही संभव है। राष्ट्रपति ने मोहन चरण मांझी सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ओडिशा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में एक जनसभा में ये बात कही। राष्ट्रपति ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व नेताओं के साथ अपने दूरदर्शी शासन और के जरिए वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है।
1: देशर प्रधानमंत्री भाव्य दायित्व ग्रहण करिवा दिनरु
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना पदभार संभालने के बाद से राष्ट्रीय हित में कई कदम उठाए हैं। इस महीने उन्होंने लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल पूरा करने का रिकॉर्ड बनाया। मैं सभी नागरिकों की तरफ से इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए उन्हें बधाई देती हूं। मैं कामना करती हूं कि वे देश के लोगों के हित के लिए निरंतर काम करते रहें और भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का सपना साकार करने में राष्ट्र का नेतृत्व करते रहें।
1: यह मोर आंतरिक कामना।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं से सशक्त होकर जनजातीय समुदाय भारत के विकास में सक्रिय योगदान दे रहे हैं। उन्होंने पूर्वी भारत के विकास में तेजी लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के पूर्वोदय दृष्टिकोण का भी उल्लेख किया।
3: ओडिशा में आर्थिक गतिविधियां, निवेश और उद्योगों को आकर्षित करने का सामर्थ्य आज नजर आ रहा है। केंद्र सरकार का विजन है पूर्वी भारत के विकास से भारत का विकास। इसलिए हम पूर्वोदय की नीति पर काम कर रहे हैं। जिस पूर्वी भारत को कांग्रेस के दौर में पिछड़ेपन का पर्याय बना दिया गया था, आज वो प्रगति का प्रवेश द्वार बन रहा है।
0: इस दौरान ओडिशा में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया। बाद में प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। प्रधानमंत्री ने किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त के रूप में 18,880 करोड़ रुपए जारी किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे देश भर के 9,44,00,000 से अधिक किसानों को लाभ मिलेगा।
3: साथियों, आज पीएम किसान सम्मान निधि के तहत देश भर के 9 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में पैसे भेजे गए हैं और पश्चिम बंगाल के किसानों के लिए एक और खुशी की खबर है। आज से राज्य में पीएम फसल बीमा योजना शुरू की जा रही है।
0: प्रधानमंत्री कोलकाता में कल INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय का अनावरण करेंगे। इन पोतों में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल विश्व भर में मनाया जाएगा। इस वर्ष का विषय है बढ़ते उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। मुख्य कार्यक्रम कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में योगाभ्यास के दौरान राष्ट्र का नेतृत्व करेंगे। रेड रोड पर राष्ट्रीय कार्यक्रम सुबह 5 बजे शुरू होगा। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट UG 2026 की पुनर्परीक्षा कल आयोजित की जाएगी। ये पुनर्परीक्षा भारत के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में होगी। इन पुनर्परीक्षा में 22,79,000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे। परीक्षा से पूर्व राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने नीट UG पुनर्परीक्षा की तैयारियों के अंतर्गत राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल आयोजित किए हैं। ईरान की संयुक्त सैन्य कमान ने आज घोषणा की है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य को एक बार फिर बंद कर दिया गया है। यह फैसला लेबनान में इसराइल की सैन्य कार्रवाई का हवाला देते हुए लिया गया है। महाराष्ट्र के परभणी जिले के मनवत तालुका में आज एक निर्माणाधीन मंदिर का ढांचा गिरने से कम 5 श्रद्धालुओं की मौत हो गई और लगभग 40 अन्य घायल हो गए। चेन्नई में भारत ने तीसरे और अंतिम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 9 विकेट से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीत ली है।

0: faith and failure to uphold commitments aimed at ending the conflict. And with that, we end this news bulletin.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं सर फिरोजी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत को शांति और सहयोग का पक्षधर बताया। कहा, वैश्विक संकटों और युद्ध जैसी परिस्थितियों का समाधान संवाद और कूटनीति से ही संभव। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल दुनिया भर में मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर योगाभ्यास के दौरान राष्ट्र का नेतृत्व करेंगे। ईरान ने युद्ध विराम उल्लंघन के विरोध में हॉर्मुज जल डमरू मध्य बंद किया और तीसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 9 विकेट से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीती। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत हमेशा शांति और सहयोग का पक्षधर रहा है, क्योंकि जटिल वैश्विक मुद्दों और युद्ध जैसे संकटों का समाधान केवल बातचीत और कूटनीति से ही संभव है। राष्ट्रपति ने मोहन चरण मांझी सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ओडिशा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में एक जनसभा में ये बात कही। राष्ट्रपति ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व नेताओं के साथ अपने दूरदर्शी शासन और संपर्क के जरिए वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है। प्रधानमंत्री मोदी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल दुनिया भर में मनाया जाएगा। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है, बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। ये विषय उम्र बढ़ने के साथ स्वस्थ, सक्रिय और सम्मानित जीवन जीने के लिए योग का आजीवन अभ्यास करने के महत्व पर बल देता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम पश्चिम बंगाल के कोलकाता में ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में सामान्य योगाभ्यास के दौरान राष्ट्र का नेतृत्व करेंगे। इस कार्यक्रम में हजारों लोग योगासन करेंगे, जबकि देश दुनिया के लाखों लोगों के वर्चुअल माध्यम से जुड़ने की संभावना है। दुनिया भर में भारतीय दूतावास और राजनयिक मिशन कल 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए पूरी तरह तैयार हैं। एक रिपोर्ट।
2: नेपाल में आज भारतीय दूतावास ने लुम्बिनी डेवलपमेंट ट्रस्ट और बीपी कोइराला इंडिया नेपाल फाउंडेशन के सहयोग से योगासन कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में वरिष्ठ अधिकारी और सैकड़ों लोग शामिल हुए। चीन में भारतीय दूतावास ने पेइचिंग में आयोजित योग कार्यक्रम की झलकियां साझा की। इस कार्यक्रम में लोगों ने बड़े उत्साह से योग सत्रों में भागीदारी की। वहीं जापान में भारतीय दूतावास ने कल सुकीजी होंगन जी मंदिर में योग दिवस कार्यक्रम आयोजित करने की घोषणा की है। दूतावास ने लोगों को योगासन कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है। इस बीच ओमान में भारत के राजदूत प्रशांत पिसे ने भारतीय समुदाय के सदस्यों और भारत के मित्रों को कल दूतावास में होने वाले योग दिवस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: इस बीच संयुक्त अरब अमीरात में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। संयुक्त अरब अमीरात में भारत के राजदूत डॉक्टर दीपक मित्तल के नेतृत्व में जबल हवीद पर्वत की चोटी पर सुबह सुबह योगासन और ध्यान के सत्र आयोजित हुए। इस कार्यक्रम का आयोजन अल एन शहर के भारतीय सामाजिक केंद्र ने किया। उधर दुबई में भारतीय महावाणिज्य दूतावास दुबई पुलिस की पॉजिटिव स्प्रिट काउंसिल के साथ कल सुबह 5:30 बजे से 6:30 बजे तक दुबई पुलिस अधिकारी क्लब में योगासन कार्यक्रम आयोजित करेगा। अबुधाबी में भारतीय दूतावास सुबह 8 बजे से 9 बजे तक निर्देशित योग सत्र के लिए प्रतिभागियों को आमंत्रित कर रहा है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। ईरान की संयुक्त सैन्य कमान ने आज घोषणा की है कि हॉर्मुज जल डमरू मध्य को फिर से बंद कर दिया गया है। लेबनान पर इसराइल की सैन्य कार्रवाई जारी रहने का हवाला देते हुए ये फैसला किया गया है। एक रिपोर्ट।
3: ईरान ने कहा है कि ये संघर्ष खत्म करने की प्रतिबद्धताओं को बनाए रखने में अमेरिका विफल रहा है और इससे उस पर विश्वास कम हुआ है। सरकारी टेलीविजन पर प्रसारित बयान में संयुक्त सैन्य कमान ने चेतावनी दी कि यदि इसराइल के हमले जारी रहे तो और उपाय किए जाएंगे। ये घटनाक्रम ऐसे

0: समय हुआ है जब इस सप्ताह के शुरू में अमेरिका और ईरान के बीच अंतरिम समझौते के बाद हॉर्मुज के रास्ते वाणिज्यिक जहाजों की आवाजाही फिर शुरू हो गई थी। इस बीच दक्षिणी लेबनान पर इसराइल के हवाई हमलों में 2 बच्चों सहित 16 लोग मारे गए। संघर्ष विराम समझौते की खबरों के कुछ घंटों बाद ही ये हमले हुए। लेबनान की राष्ट्रीय न्यूज एजेंसी ने बताया कि हमलों में नाबतीह शहर और पड़ोस के कई गांवों को निशाना बनाया गया। माना जा रहा है कि इस हमले में 7 लोग मलबे में दबे हैं। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: इस बीच अमेरिका और ईरान के बीच अगले दौर की वार्ता के लिए अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची स्विट्जरलैंड जा रहे हैं। ये वार्ता कल शुरू होनी थी लेकिन लेबनान में इसराइल और हिजबुल्ला के बीच जारी संघर्ष के कारण इसे स्थगित कर दिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका और ईरान के बीच होने वाली इस नई वार्ता में संभावित परमाणु समझौते पर चर्चा होने की उम्मीद है। ये बातचीत हाल ही में दोनों देशों के बीच हुए समझौता ज्ञापन के बाद हो रही है जिसका उद्देश्य पश्चिम एशिया में तनाव और संघर्ष को समाप्त करना है। अमेरिकी मीडिया के अनुसार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के वरिष्ठ सलाहकार और दामाद जेरेड कुशनर भी स्विट्जरलैंड पहुंच चुके हैं। हालांकि वॉशिंगटन और तेहरान के बीच बातचीत कब शुरू होगी इसकी आधिकारिक जानकारी अभी नहीं दी गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हुए उन्हें मजबूत और प्रभावशाली नेता बताया है। एक साक्षात्कार में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि श्री मोदी के पिछले 12 सालों के नेतृत्व में भारत को मजबूती और स्थिरता मिली है। उन्होंने कहा कि भारत और अमरीका के बीच व्यापारिक संबंध अच्छे हैं और दोनों देशों के बीच कारोबार जारी है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को दुनिया भर में सम्मान मिलता है और वो सशक्त नेता हैं। देश भर में बढ़ती महंगाई और आर्थिक दबाव के कारण हफ्तों से चल रहे सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बाद बोलिविया के राष्ट्रपति रोड्रिगो पाज ने आपातकाल की घोषणा कर दी है। एक रिपोर्ट।
2: राष्ट्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति रोड्रिगो पाज ने अवरुद्ध सड़कों को खोलने और सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए आपातकाल लागू करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि बोलिविया के लोग अब सड़क अवरोधों के बंधक नहीं रह सकते जिन्होंने काम, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति को बाधित कर दिया है। श्रमिक संघों, किसानों और पूर्व राष्ट्रपति इवो मोरालेस के समर्थकों द्वारा समर्थित ये प्रदर्शन हाल के हफ्तों में और तेज हो गए हैं में प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति पाज के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। लंबे समय से जारी सड़क अवरोधों के कारण कई क्षेत्रों में भोजन, ईंधन और चिकित्सा आपूर्ति की कमी हो गई है और आर्थिक गतिविधियां बुरी तरह प्रभावित हुई हैं। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से मैं प्रशांत कुमार।
1: सीरिया के उत्तरी अलेप्पो प्रांत में अज्ञात व्यक्ति ने 2 सैनिकों की हत्या कर दी। रक्षा मंत्रालय के हवाले से सरकारी समाचार एजेंसी सना ने कहा कि दोनों सैनिकों को अलेप्पो के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में मनबिज शहर के निकट निशाना बनाया गया। सीरिया में सत्ता हस्तांतरण की अवधि में सुरक्षा बलों को निशाना बनाने की घटनाएं बढ़ रही हैं। यूनान में आज भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 5.8 मापी गई। यूरोपीय भूमध्य सागरीय भूकंपीय केंद्र के अनुसार ये भूकंप क्रीट द्वीप पर रेथिमनो शहर के पास 13 किलोमीटर की गहराई पर आया। अब तक जानमाल के किसी नुकसान की कोई खबर नहीं है। चेन्नई में भारत ने तीसरे और अंतिम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 9 विकेट से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीत ली है। भारत ने 29वें ओवर में 1 विकेट पर 224 रन बनाकर जीत हासिल की। इससे पहले अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए 218 रन बनाए थे। प्रसिद्ध कृष्णा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। कप्तान शुभमन गिल को प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड मिला। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत को शांति और सहयोग का पक्षधर बताया। कहा, वैश्विक संकटों और युद्ध जैसी परिस्थितियों का समाधान संवाद और कूटनीति से ही संभव। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल दुनिया भर में मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर योगाभ्यास के दौरान राष्ट्र का नेतृत्व करेंगे। ईरान ने युद्ध विराम उल्लंघन के विरोध में हॉर्मुज जल डमरू मध्य बंद किया। और तीसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 9 विकेट से हराकर श्रृंखला 3-0 से अपने नाम की। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

10:31 हो चुके हैं। आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर स्वागत है आप सबका। प्रोग्राम हर सिंगार में आपके साथ मैं विकास।

फिल्म का नाम था चुपके चुपके और 1975 की ये फिल्म बहुत पुरानी फिल्म है, लेकिन देखिए ना, गीत और संगीत इसका आज भी उतना ही तरोताजा है, बिल्कुल किसी फूल की तरह। फूल हमेशा से इंसानी एहसास के सबसे खूबसूरत प्रतीकों में कह सकते हैं कि शामिल रहे। उनकी नरमी, रंगत और खुशबू ने शायरों को हर दौर में अपनी ओर खींचा है। उर्दू शायरी में फूल कभी मोहब्बत की निशानी बनकर सामने आता है, तो कभी बिछड़ने और उदासी का एहसास जगाता है। कई शायरों ने फूल और कांटे को जिंदगी के सुख दुख, उम्मीद और संघर्ष से जोड़कर नए

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय

समय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 26 जून तक टोल फ्री नंबर 1-800-11-7800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

देखा जाए तो फूल सिर्फ बाग की शोभा नहीं होते, ये दिल के जज्बात भी बयां करते हैं। कभी किसी की मुस्कान में खिलते हैं तो कभी यादों में महकते हैं। शायरों ने फूलों में मोहब्बत का सबसे खूबसूरत और सबसे नाजुक रूप देखा है। जावेद वशिष्ठ एक शायर हुए, वो लिखते हैं कि कांटों पे चले हैं तो कहीं फूल खिले हैं, कांटों पे चले हैं तो कहीं

प्रोग्राम का ये आखिरी गीत, और आखिरी गीत के साथ विकास आपसे कहना चाहता है कि फूल की असली पहचान उसकी खुशबू है, जो बिखर कर भी जिंदा रहती है। और शायद तभी परवीन शाकिर कहती हैं कि वो तो खुशबू है, हवाओं में बिखर जाएगा। मसला फूल का है, फूल किधर।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत हमेशा शांति और सहयोग का पक्षधर रहा है, क्योंकि जटिल वैश्विक मुद्दों और युद्ध जैसे संकटों का समाधान केवल संवाद और कूटनीति से ही संभव है। राष्ट्रपति ने मोहन चरण मांझी सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ओडिशा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में एक जनसभा में

0: बात कही। राष्ट्रपति ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक नेताओं के साथ अपने दूरदर्शी शासन और संपर्क के जरिए वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है।
1: देशर प्रधानमंत्री भाव्य दायित्व ग्रहण करवा दिन
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना पदभार संभालने के बाद से राष्ट्रीय हित में कई कदम उठाए हैं। इस महीने उन्होंने लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल पूरा करने का रिकॉर्ड बनाया। मैं सभी नागरिकों की तरफ से इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए उन्हें बधाई देती हूं। मैं कामना करती हूं कि वे देश के लोगों के हित के लिए निरंतर काम करते रहें और भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का सपना साकार करने में राष्ट्र का नेतृत्व करते रहें।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं से सशक्त होकर जनजातीय समुदाय भारत के विकास में सक्रिय योगदान दे रहे हैं। उन्होंने पूर्वी भारत के विकास में तेजी लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के पूर्वोदय दृष्टिकोण का भी उल्लेख किया।
3: ओडिशा में आर्थिक गतिविधियां, निवेश और उद्योगों को आकर्षित करने का सामर्थ्य आज नजर आ रहा है। केंद्र सरकार का विजन है पूर्वी भारत के विकास से भारत का विकास। इसलिए हम पूर्वोदय की नीति पर काम कर रहे हैं। जिस पूर्वी भारत को कांग्रेस के दौर में पिछड़ेपन का पर्याय बना दिया गया था, आज वो प्रगति का प्रवेश द्वार बन रहा है।
0: बाद में प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किश्त के रूप में 18,880 करोड़ रूपए जारी किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे देश भर के 9,44,00,000 से अधिक किसान को लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री कोलकाता में कल INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय का अनावरण करेंगे। इन पोत में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल विश्व भर में मनाया जाएगा। इस वर्ष का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। मुख्य कार्यक्रम कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में योगाभ्यास के दौरान राष्ट्र का नेतृत्व करेंगे। रेड रोड पर राष्ट्रीय कार्यक्रम सुबह 5 बजे शुरू होगा। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट UG 2026 की पुनः परीक्षा कल आयोजित की जाएगी। ये पुनः परीक्षा भारत के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में होगी। इस पुनः परीक्षा में 22,79,000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे। महाराष्ट्र के परभणी जिले के मनवथ तालुका में आज एक निर्माणाधीन मंदिर का एक हिस्सा गिरने से कम 5 श्रद्धालुओं की मौत हो गई और लगभग 40 अन्य घायल हो गए। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस त्रासदी पर गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने प्रत्येक मृतक के परिवार को 5,00,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। चेन्नई में भारत ने तीसरे और अंतिम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 9 विकेट से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीत ली है। भारत ने 29वें ओवर में 1 विकेट पर 224 रन बनाकर जीत हासिल की। 5 विकेट लेने वाले प्रसिद्ध कृष्णा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। और मौसम विभाग ने कल पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र और सिक्किम में अत्यधिक तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अगले 2 दिनों तक असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: ये आकाशवाणी है। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए सशक्तिकरण से समृद्धि की ओर बढ़ते भारत पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार नीलू रंजन और सर्जना शर्मा। परिचर्चा का संचालन कर रही हैं सोनू सूद।
1: 12 वर्षों के कार्यकाल में वर्तमान सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सभी को भागीदार बनाकर राष्ट्र विकास का जो मूल मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, उसके तहत उन्होंने जो एक लक्ष्य रखा है 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने का भारत को, उसमें उन्होंने चार जो स्तंभ है उनकी पहचान की है, जिसे ज्ञान भी कहा जाता है, गरीब, युवा और अन्नदाता यानी कि हमारे किसान और नारियां। तो इन चारों जो वर्ग है उनके सशक्तिकरण पर सरकार ने लगातार बल दिया है। अगर हम हर बजट में देखें, जो भी प्रमुख संबोधन होता है प्रधानमंत्री जी का, उसमें इन वर्गों को सशक्त करने की बात की जाती है। और आज हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट सर्जना शर्मा जी और नीलू रंजन जी जुड़े हैं। इनसे हम समझना चाहेंगे कि इन 12 वर्षों में जो ये चार वर्ग है, इनको सशक्त करके कैसे जो देश को समृद्ध करने का सपना है उसको साकार करने की तरफ हम बढ़े हैं। सो आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत कार्यक्रम।
2: थैंक यू सोनी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
3: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: सर्जना जी, सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं, लेडीज फर्स्ट कहा जाता है। सो आपसे मैं महिलाओं की ही बात करना चाहूंगी। जिस तरह का विकास महिलाओं का हुआ है और जो सरकार का मूल मंत्र रहा है कि विमेन्स डेवलपमेंट से आगे बढ़कर हमें विमेन्स लेड डेवलपमेंट यानी महिलाओं के नेतृत्व में विकास जो है उसकी ओर बढ़ना है, हमें बताएं कि इन 12 वर्षों में कौन से ऐसे परिवर्तनकारी रिफॉर्म्स हैं जो महिलाओं के लिए लाए गए हैं जिनको आप सबसे महत्वपूर्ण मानती हैं।
2: सोनू जी देखिए, महिला जो है वो कोई भी परिवार है, परिवार की धुरी महिला है, और जो एक अच्छा परिवार है वो एक अच्छे समाज का, और एक अच्छा समाज अच्छे राष्ट्र का निर्माण करता है। अगर महिला सशक्त है, अगर महिला समृद्ध, मेरा मतलब खाली पैसे से नहीं, और भी बहुत सारी चीजें होती है जिसको समावेशी विकास कहते हैं, अगर महिला उस तरह की है तो वो पूरे अपने परिवार को बढ़िया करेगी, समाज को अच्छा बनाएगी और फिर राष्ट्र को। तो इसका मतलब धुरी जो है परिवार से लेकर राष्ट्र तक महिला के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता। भले ही आज से कुछ साल पहले तक महिलाएं बहुत घर से बाहर नहीं निकलती थी, लेकिन घर में रहते हुए भी जो उनकी अर्थव्यवस्था है, जो उनका मनी मैनेजमेंट है, जो उनका रिलेशनशिप मैनेजमेंट है, पुरुषों को तो शायद बहुत चीजें घर की पता भी नहीं होती जितना वो खुद सब मैनेज कर लेती हैं। आपने देखा होगा कि कोविड में पूरी दुनिया की इकोनॉमी ध्वस्त हुई, लेकिन भारतीय महिलाओं को जिस तरह की ट्रेनिंग है पैसे को जोड़ने की और आत्मनिर्भरता का, जो उनका मूल मंत्र है, तो उसके कारण हमारी अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी रही, क्योंकि सेविंग की बहुत आदत है हमारी महिलाओं को। तो मोदी जी ने जो ये सोचा, तो उसमें देखिए दो तीन चीजें तो मैं कहूंगी कि जो सबसे अच्छी रही, एक है उज्ज्वला योजना और एक है हर घर नल हर घर जल। तो ये जो दो चीजें सुलभ हुई हैं महिलाओं को, उससे उनकी जो फिजिकल लेबर है वो कम हुई है, उनकी एफिशिएंसी इम्प्रूव हुई है। आपको लकड़ियां बिनने जंगल में नहीं जाना और धुएं में काम नहीं करना। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत आपको सब्सिडाइज सिलेंडर मिल रहा है, तो आप सोचिए उसकी कितनी मेहनत कम हुई, खाना अच्छा बनेगा, वो भी खुद भी रिलैक्स रहेगी। दूसरा है, अगर हम देखें कि हमारे भारत में बहुत सी ऐसी जगहें थी जहां पे महिलाओं की आधे से ज्यादा एनर्जी पानी लाने में भी लगती थी
1: जी।
2: तो ये जल मंत्रालय ने जो काम किया है, हर घर नल जो पहुंचाया है, हर घर जल पहुंचाया है, उसका भी बहुत लाभ हुआ है। फिर आपने इनको कहा है कि जरूरी नहीं कि आप 10 से 5 की जॉब करने जाओ, अगर आपके घर के आसपास या अपने घर में बैठे आप क्रोशिया भी बुनते हैं, आप स्वेटर भी बुनते हैं, आपको सिलाई भी आती है, या आपके आसपास जैसे कि मखाना की खेती में आपने देखा होगा, मशरूम खेती, बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जो लखपति दीदी बनी है उन्हीं चीजों से। जरूरी नहीं कि आपके पास बीए एमए की डिग्री हो, ऐसा भी नहीं है। तो जो इस तरह की योजनाएं हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप जो बनाए, जिसमें कि लगभग 91 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप है और 10 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बन गई हैं
1: जी।
2: तो इस तरह की की जो योजना है और दूसरा मुद्रा योजना जो है कि अगर अपने घर में मुझे कोई काम शुरू करना है, मुझे लगा कि मुझे एक सिलाई स्कूल खोलना है, मुझे लगा कि मुझे क्रोशिया सेंटर बनाना है अपने घर में, मुझे लगा कि मेरे पास जो स्किल है जो मुझे किसी स्कूल से नहीं अपनी फैमिली से ट्रेडिशनल मिली है, अगर मैं उसी को आगे विकसित कर, कौशल हुनर जो कि परंपरागत हमारे यहाँ आपने देखा कि कोई साड़ी बनाता है तो कोई लकड़ी का सामान बनाता है, तरह तरह की चीजें हैं, मतलब गिनाना मुश्किल है क्योंकि भारत में इतनी विविधता है। अब कुछ तो महिलाएं जैसे हल्दी उगा रही है, कोई मशरूम उगा रहे हैं, तो उनको जो लोन मिल रहा है सस्ती किश्तों में, मतलब कि उनको बहुत ज्यादा भागदौड़ नहीं करनी, और मुद्रा लोन जो मिल रहा है इससे भी उनका जो लाइफ है वो बहुत आसान हुई है। दूसरा है शिक्षा को लेकर भी बहुत काम हुए हैं, केजी टू पीजी जो है कि आप केजी से लेकर पीजी तक बच्चियां जो है वो पढ़ेंगी। और फिर ये है कि सुरक्षा का वातावरण, आप देखेंगे कि कई राज्यों में तो ऐसा था कि

0: छह बजे के बाद लड़कियां घर से नहीं निकलती। उत्तर प्रदेश का मैं आपको एक उदाहरण दूं, जैसे कि तो अब देखिए वहां बेखौफ लड़कियां रात को 2-2.5 बजे तक भी आराम से घूम सकती हैं, क्योंकि सुरक्षा इतनी ज्यादा। जब तक माँ और बेटी को नहीं लगेगा कि वो सुरक्षित है, तो बेटी बाहर काम करने उसको कोई जाने नहीं देगा।
1: बहुत इंपॉर्टेंट, ये सशक्तिकरण का,
0: ये बहुत, हाँ, सुरक्षा की भावना, वो जो इस सरकार ने सुरक्षा की भावना दी, महिला थाने खोले, महिला हेल्पलाइन खोली कि आप तुरंत फोन कीजिए, आपको मदद मिलेगी। और एक और देखिए कि महिलाओं को मैटरनिटी लीव में डबल किया है, 3 महीने से 6 महीने किया, ये भी एक बहुत बड़ा सशक्तिकरण है महिला का।
1: बिल्कुल,
0: मातृत्व सुरक्षा योजना है, शिशु योजना है, इन सब योजनाओं ने महिलाओं के जीवन को आसान किया है, सुविधा दी है। मैं बात कर रही हूँ उन महिलाओं की जो कि अभी तक बहुत बाहर निकल के काम नहीं करते। अब हम बात करते हैं उन महिलाओं की जो पढ़ लिख के आगे, जैसे कि आपने सैनिक स्कूल लड़कियों के लिए खोल दिया गया, जैसे कि NDA खोल दिया गया लड़कियों के लिए, लड़कियां फाइटर पायलट हैं। तो ये जो इस तरह की चीजें भी आई है ना, उससे पूरे देश में बाकी लड़कियों को भी एक प्रेरणा मिली। 26 जनवरी परेड का आपने जो स्वरूप बदलते हुए देखा होगा, आप देखिए कैसे स्वरूप बदला है। पहले आप देखिए किसी भी कंटिंजेंट में लेडी नहीं लीड करते,
1: एकदम गर्व से सर ऊंचा हो जाता।
0: अब आप देखिए, अब 26 जनवरी परेड का रूप बदल गया है। तो मुझे लगता है बहुत सारे, और इसका सबका कारण मैं एक समझती हूँ, क्योंकि इस सरकार का जो है अंत्योदय, जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, शुरू से ही भाजपा का ये मूल नियम रहा है अंत्योदय, अंत से उदय करना है। तो ये बहुत सी योजनाएं जो है, जो सबसे वंचित वर्ग है वहां से शुरू होती है, और जैसे कि जो अफोर्ड कर सकते हैं LPG, तो उनको अब आप देखिए सबका हटा दिया, हमने भी सरेंडर किया, और वो उन वर्गों तक पहुंचा जिनको उसकी आवश्यकता थी।
1: सो बिल्कुल टारगेटेड जो है, फोकस्ड इम्प्लीमेंटेशन भी हुई है रिफॉर्म्स की। नीलू जी, अगर हम एक बहुत बड़ी जो शक्ति मानी जाती है भारत की, कि भारत एक युवा देश है, यहाँ पे डेमोग्राफिक डिविडेंड है, तो जिस तरह से जो युवा पीढ़ी है उस पर जो ध्यान दिया है सरकार ने, और जिस तरह से उनका सशक्तिकरण हुआ है, आप किन पहलुओं को इन 12 वर्षों में सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं? अगर आप टॉप 2-3 हमें बताएं कि कौन सी आपको पॉलिसी डिसीजंस जो है वो सबसे आपको लगता है कि परिवर्तनकारी सिद्ध हुए हैं या हो सकते हैं।
2: देखिए, सबसे बड़ी बात यह है युवाओं के लिए कि युवाओं में अपनी ऊर्जा बहुत होती है, शक्ति उनकी अपनी बहुत है
1: जी।
2: उस ऊर्जा को अवसर देने की जरूरत है, उसके लिए बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको
1: जी।
2: ये पहली बात है, सबसे महत्वपूर्ण बात है। और समस्या ये थी कि युवाओं को अवसर नहीं मिलता था, और वो जीवन के हर फील्ड में, चाहे वो अर्थव्यवस्था के किसी भी फील्ड में चले जाएं, शिक्षा में चले जाएं, खेल में चले जाएं, हर फील्ड में वो काम कर सकते हैं, उनकी एनर्जी है, और सबके अपने अपने खासियत है। तो जो उनकी रुचि है, जो वो कर सकते हैं, उसमें अवसर कैसे दिए जाएं, तो मैं ये कह सकता हूं कि युवाओं के लिए अवसर के ऐसी अनंत संभावनाओं के दरवाजे खुल गए हैं कि हर युवा जो है वो अपने अपने कौशल के विकास में, अपने अपने क्षेत्र में जिसमें करना चाहता है वो कर रहा है। और इसलिए आप देखें, खेल हो, शिक्षा हो, चाहे वो स्वरोजगार हो, चाहे वो साइंटिफिक चीजें डेवलपमेंट हो, नई टेक्नोलॉजी हो, जो अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी है, IT से रिलेटेड है, आप युवाओं को देखेंगे पूरी दुनिया में छा रहे हैं भारत के युवा। इसमें 2-3 चीजें महत्वपूर्ण है जो देखने की बात है कि जैसे युवाओं के लिए अवसर की जब मैं बात करता हूं, तो पहले मेडिकल की सीटें जो थी, अगर MBBS के देख लें तो 55,000-56,000 की होती थी, 140 करोड़ के देश में केवल 56,000 MBBS आप बना रहे थे, आज वो 1,25,000 की सीटें हो गई हैं, डबल से भी ज्यादा हो गई हैं। जो पोस्ट ग्रेजुएट थी वो लगभग 30-32,000 के आसपास थी, वो लगभग 65-70,000 हो गई, डबल से ज्यादा वहां भी हुई हैं। ये यूथ पहले बाहर जाता था, यूक्रेन से कर रहा है, चीन से कर रहा है, नेपाल से कर रहा है, वहां जो यूक्रेन की आपदा में कैसे फंस गए थे सब देख रहे हैं, MBBS कर रहे थे, इंजीनियरिंग कर रहे थे। वैसे यूनिवर्सिटीज जो है, मेडिकल कॉलेजों की संख्या जो है, सीटें बढ़ी हैं, तो मेडिकल कॉलेज की संख्या बढ़ी है, वो लगभग 380 के आसपास थी आजादी के बाद, 2014 तक खोली गई थी, वो लगभग 750 के आसपास हो गई है। 50-60 और मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, जो सीटें जो है MBBS की वो 50,000 और बढ़ने वाली है। ये युवाओं को अवसर दिया देश के भीतर कि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, आपके लिए है। ऐसे यूनिवर्सिटीज, क्योंकि यूनिवर्सिटीज में एडमिशन आप देखते थे कितना मारामारी है, एडमिशन नहीं मिलता था, लोग जो है वो ओपन स्कूलिंग करते थे, ओपन स्कूलिंग अभी भी खुला है और वो एक बढ़िया विकल्प है कि उसमें हम कैसे कर सकते हैं, क्या हम और कोई काम करते हुए भी हम ओपन स्कूलिंग से कोई शिक्षा ले सकते हैं। लेकिन यूनिवर्सिटीज की संख्या लगभग 800 से बढ़ करके और 1300-1400 हो गई है, वो डबल हो गई है, ये तो उन्हीं के लिए हुआ है। और खेल में प्रतिभाओं को निखारने के लिए सरकार ने पैसे दिए हैं, जो स्कीमें लाई हैं, जो युवा खेल जो प्रतिभाएं हैं उनको कैसे ट्रेनिंग दी जा रही है, तो आप देखें कि

0: ओलंपिक खेल हो, चाहे एशियाड खेल हो, चाहे कोई भी खेल हो, जो भारतीय युवा, जो कहा जाता था कि खेलों के लिए भारत में युवाओं का जो शारीरिक संरचना है वो ऐसे खेलों में कंपटीशन के लिए नहीं है, वो कहीं ना कहीं कम है, वो गलत थी बात, वो कहा जाता था।
1: और ये अपॉर्चुनिटी दी खेलो इंडिया जैसे आयोजनों के,
0: खेलो इंडिया वही मैं कह रहा हूँ, खेलो इंडिया आयोजन वो तो एक आयोजन है, लेकिन आप जो साई के सेंटर्स हैं, जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो सेंटर्स हैं, वहां पे युवाओं पे जो इन्वेस्ट किया जा रहा है, उनको जो ट्रेनिंग दी जा रही है, उन पे जो खर्च हो रहे हैं, इंटरनेशनल कोचेज अगर युवा को अच्छा कर रहा है, ओलंपिक के और एशियाड के लायक कर रहा हो, तो जर्मनी हो चाहे कहीं, वो सरकार के खर्चे पे ट्रेनिंग हो रही है। तो ये एक बड़ा अवसर जो है युवाओं के लिए है। निश्चित रूप से आप कह सकते हैं कि सारे युवाओं को जो है वो सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती है, सारे युवा इस तरफ नहीं जाएंगे, तो वोकेशनल स्टडीज का जो है एक बड़ा उन्होंने किया है ट्रेनिंग, और जो ITI हमारा जो ट्रेनिंग का जो था उसका मॉड्यूल को पूरा चेंज किया है। पहले युवाओं को होता था कि वहीं पे है ITI करो, जो कोर्सेज है वही करो, वो सब पुराने कोर्सेज हो गए, अब उसको रीडिजाइन किया जा रहा है कि हर डिस्ट्रिक्ट में अगर ITI है तो उस डिस्ट्रिक्ट में कौन से उद्योग हैं, वहां कहां प्रशिक्षित युवाओं की मांग है, तो ऐसे वहां पे उसी लेवल पे उनको ट्रेनिंग दें, वहां फैसिलिटीज दें। अब कितने ट्रेनर हैं, किस किस फील्ड में हैं, ये नहीं पता था। अब सरकार एक नया बना रही है डायरेक्टरी जिसमें कि किस फील्ड के कितने अच्छे ट्रेनर हमारे कहां कहां हैं, कहां कहां गैप है, कहां क्या डिमांड है, दे सकते हैं, तो एक बड़ा चीज है। और सबसे बड़ी चीज जो है वो सबसे बड़ी चीज जो सबसे ऊपर जाती है वो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, वो तो बिल्कुल विशुद्ध युवाओं के लिए है
1: और बदलते परिवेश के अनुसार जो जरूरतें हैं उसके अनुकूल है।
0: उसने जो 10+2+3+2 का जो पूरा का पूरा शिक्षा मॉडल था उसका शिकंजे से युवाओं को मुक्त कर दिया है कि आपको 12th करना है, फिर 3 साल जो है आपको BA करना है, फिर 2 साल PG करना है, फिर MPhil करना है, ये करना है, उसके बाद कम्पिटेटिव एग्जाम देना है। अगर बीच में आपकी पढ़ाई छूट गई तो छूट गई, आपकी सारी मेहनत खत्म। अब उसमें बिल्कुल फ्लेक्सी कर दिया है कि क्रेडिट सिस्टम होगा, आपने 1 साल पढ़ा, 1 साल के बाद आपकी जरूरत पड़ गई, घर में कोई समस्या हो गई, कुछ कहीं नौकरी आपको करनी पड़ रही है, या आपको कहीं कोई अच्छी नौकरी मिल गई, आप वहां चले गए, आपको लगा कि वो पढ़ लेते तो मेरा हो जाता, तो जो आपने 1 साल पढ़ा हो, 2 साल पढ़ा हो, वो आपके क्रेडिट में है, वो आप कर सकते हैं। जो सिलेबस चुनने में जो था, जो समस्याएं थी कि बच्चा क्या करेगा, साइंस लेगा तो बायोलॉजी लेगा, केमिस्ट्री लेगा, जब वो क्या होता है मैथमेटिक्स लेगा, फिजिक्स लेगा, मतलब एक था कि आप सेट हैं उसी में हैं। अब कोई बच्चा जो है वो हिस्ट्री में पढ़ना चाहता है और मैथमेटिक्स में अच्छा हो, वो क्यों नहीं ले।
1: तो युवाओं के लिए बहुत सारे जो
0: मतलब जितने शिकंजे थे, जो अनंत संभावनाएं, जो अवसर उसके युवाओं के लिए है, वो अवसर के दरवाजे सरकार ने खोले हैं।
1: बिल्कुल,
0: कि आप जो करना चाहे करो, युवाओं में इतनी ऊर्जा है कि वो बाकी सब कुछ कर लेंगे, उनको करने के लिए आपको कुछ सपोर्ट की जरूरत नहीं है, केवल अवसर देने की जरूरत है। और पिछले 12 सालों में वो अवसर मैंने इतने गिनाए आपको कि जो जो करना चाहे, जहां करना चाहे, इस देश में अवसर है, आपको देश छोड़ के जाने की जरूरत
1: तो नहीं। सरकार का जो ये एक सोच है कि आप जॉब सीकर के बजाय जॉब क्रिएटर बने, आत्मनिर्भर उद्यमी, जिस तरह से अगर हम स्टार्टअप्स की अगर हम जब स्टैटिस्टिक्स देखते हैं कि 350 स्टार्टअप्स थे 2014 में और अब वो बढ़कर जो संख्या है 2.2 लाख हो गई है, आपको लगता है कि ये जो एक इनोवेशन की स्पिरिट, एंटरप्रेन्योरशिप की स्पिरिट, इसको बहुत बढ़ावा दिया गया है इन 12 वर्षों में?
0: बिल्कुल निश्चित रूप से। स्टार्टअप्स जब शुरू शुरू आया था तो लोग कह रहे थे कि भाई युवाओं को नौकरी चाहिए, स्टार्टअप में क्या कर लेंगे, कैसे कर लेंगे। अब आप देखें कि उसमें जो स्टार्टअप्स हैं वो अब बड़े बड़े बन रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के रूप में हो रहे हैं, 8,000-10,000 करोड़ का उनका टर्नओवर वो तत्काल हो रहा है, 150-200 स्टार्टअप ऐसे हो गए हैं जिनका टर्नओवर जो आप देखें तो अच्छी अच्छी कंपनियों से बेहतर है वो, तो वो एक अवसर। और स्टार्टअप में सरकार का जो मदद है
1: स्टार्टअप इंडिया द्वारा
0: कि उसमें आपको ये टैक्स में छूट है, और इसमें आपके जो पुराने इंस्टीट्यूट हैं, IIT हैं, IIM, उन्होंने जिस ढंग से उनको आगे बढ़ाया है, वहां उनके टीचर जो मेंटोर हैं, वहां पे एक इकोसिस्टम बन रहा है, वो चल रहा है। और अगर स्टार्टअप में देखेंगे तो टेक के क्षेत्र में जो कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी में ज्यादातर वो काम कर रहे हैं, बाकी तो नए नए जो वेंचर्स उसमें भी आ रहे हैं, उसमें आप देखेंगे कि पेटेंट की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ी, यानी कि जो हमारे यूथ जो कहीं रिसर्च में लगे हुए हैं, कुछ नई चीज ढूंढ रहे हैं, पहले पेटेंट नहीं होता था, पूरा पेटेंट के जो रजिस्ट्री, जो पूरे मैकेनिज्म है वो चेंज किया जा रहा है, लाखों यूथ जो है वो अब नए नए पेटेंट के लिए हर साल लाखों अप्लाई हो रहे हैं, और पेटेंट मिल रहा है, पेटेंट मिलने का मतलब यह है कि बिल्कुल नई चीज, नए इनोवेशन करके आप दे रहे हैं। तो ये हर क्षेत्र में यूथ के लिए उन्होंने, चाहे खेल हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे रोजगार हो, अगर आप रोजगार देने वाला स्टार्टअप जैसा अगर आप उद्यमी बनना चाहते हैं तो वो अवसर भी है जो पहले नहीं मिलता था।
1: बिल्कुल। और अगर हम तीसरे स्तंभ की बात करें किसानों की, तो किसानों के सशक्तिकरण का रंजन जी जो एक क्रांतिकारी हमने बदलाव देखा है प्रोडक्शन फिगर्स में, अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें तो हम टॉप 10 एक्सपोर्टर्स ऑफ द वर्ल्ड में अब शामिल हो गए एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स, और जिस तरह से नई मिनिस्ट्रीज का गठन हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, एलाइड सेक्टर्स के लिए एक अलग मिनिस्ट्री, किसानों के सशक्तिकरण को आप कैसे देखते हैं पिछले 12 सालों में, और इसका आधुनिकीकरण जो हुआ है उसके प्रमुख पहलू आप क्या मानते हैं?
0: देखिए, उसमें पहले आपको समझना पड़ेगा कि जब खेती में दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती है, एक तो होता है इनपुट कॉस्ट, कि आप जब खेती करने जा रहे हैं तो आपको क्या क्या उसमें लगाना पड़ेगा, और अगर खराब हो गई फसल, बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया, कुछ भी हो गया, आपदा आ गई, तो आपका क्या होगा। पहले जो समस्या थी कि इनपुट कॉस्ट की तुलना में जो हम मिनिमम जो गारंटी सरकार देती भी थी कि हम खरीदेंगे, तो कुछ फसलों पे थी, चावल था, गेहूं था, एक दो फसलें और थी, वो नहीं थी कि ये हम आपको खरीदेंगे। अगर आप देखेंगे 12 सालों में तो जो उर्वरक है, जो फर्टिलाइजर है, कीमत उसकी लगभग सेम है, 12 साल में नहीं बढ़ा है, सरकार को सब्सिडी बढ़ रही है, लेकिन वो लगभग 250-300 रुपए की बोरी जो 45 किलो की जो यूरिया की थी आज भी वही है,
1: बहुत बड़ा समर्थन है।
0: इसका मतलब कि जो कॉस्ट आपका है वो उर्वरक वाला वो नहीं बढ़ा है, वो सेम है। दूसरा कि पूरे देश में बिजली जो है वो 24 घंटे उपलब्ध है लगभग, मतलब ग्रामीण इलाकों में कहते हैं कि एवरेज 22-23 घंटे बिजली आज है, पहले नहीं होती, या और किसान अधिकांश जो राज्य है उसमें किसानों की बिजली फ्री है, तो सिंचाई के लिए आपको कोई अलग से कोई कॉस्ट नहीं आ रहा है, और आपके खाद्यान्न की कीमत अगर आप देखेंगे तो कुछ बढ़ा ही है। दूसरी इससे भी बड़ी बात यह है कि सरकार जो सहायता दे रही है 2,000 रुपए का,
1: 6,000 प्रति वर्ष, तीन इंस्टॉलमेंट
0: में, 2,000 के, तीन इंस्टॉलमेंट में 6,000 के हैं, तो वो उसका अगर आप समय देखेंगे कि वो उस वक्त दिया जाता है, और छोटे किसान, आपके अधिकांश जो देश में किसान हैं 12 करोड़ छोटे किसान हैं, उनके पास पैसे नहीं होते हैं, जिस वक्त उनको बुआई करनी होती है, जो खेत लगाना होता है, कुछ करना होता है, बीज खरीदने के लिए पैसे नहीं होते हैं, उनके लिए उस वक्त उनको पैसे दिए जाते हैं, वो मदद उनको दी जा रही है, किसान क्रेडिट कार्ड उनको दिया जा रहा है कि लाख रुपए तक अगर आपका खर्च कोई करना हो तो बहुत सस्ते में, कुछ नहीं देना है आपको, आप उसमें खर्च कर सकते हैं। जो फिशरीज का जो अलग से मिनिस्ट्री बना करके उनका जो ब्लू रेवोल्यूशन जो उनका किया है और जो एक्सपोर्ट बढ़ा है वो आप देखिए, हॉर्टिकल्चर में जो भारत का एक्सपोर्ट जो मेनली जो आपको दिख रहा है एक्सपोर्ट जो कृषि क्षेत्र में वो उसमें दिख रहा है, क्योंकि उसमें 10% 12% का ग्रोथ है, वो एक बड़ी ताकत के रूप में भारत उभर रहा है। तो किसान एज ए होल कह लें आप, बड़ा परिवर्तन हुआ है, और किसान अगर आप कहते हैं ना सिर्फ, तो किसान नहीं होता है सिर्फ, उसी घर में महिलाएं भी, महिलाओं का जो सेल्फ हेल्प ग्रुप बन रहा है,
1: जैसा अभी सर्जना जी बता रही हैं,
0: तो वो भी तो वहीं बन रही हैं, जो 10 करोड़ महिलाएं हैं वो भी तो किसान परिवारों से ही आती हैं, वो किसान परिवार सशक्त हो रहा है। जो मार्केट का डेवलपमेंट, जो आपकी सड़कें बन रही हैं, तो उन सड़कों के बनने से किसान का जो प्रोडक्ट है वो मार्केट तक आसानी से पहुंच रहा है, और आपने आज 20-25 फसलें ऐसी हो गई हैं जिनके गारंटी सरकार दे रही है खरीदने के लिए कि हम उसको खरीदेंगे, है ना, आप उपजाओ और गारंटी है इस कीमत पे हम करेंगे। कई राज्य सरकारों ने इधर भावांतरण योजना शुरू कर दी है कि अगर आपको मार्केट से कम कीमत में आपको बेचना पड़ रहा है, मार्केट में बेच रहे हैं, तो वो उस कीमत का पैसा हम आपको देंगे, यानी किसानों को कोई नुकसान नहीं होगा। तो जो अन्नदाता है उसके लिए उन्होंने खोला है, सारी चीजें व्यवस्था हो रही है, जो मतलब जो सीधे से कहां से नहीं जुड़ा है, किसान से लगता है कि जुड़ा हुआ नहीं है। अब मान ले कि जो सरोवर बनाने का था कि जीर्णोद्धार करना है, तमाम तालाबों का सब भर गए थे, सब कुछ है, वो किसका पानी का लेवल बढ़ रहा है, वहां सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध हो रही है, किसको जा रहा है फायदा, ये कई चीजें सीधे उनसे जुड़ी हुई नहीं है। जो ग्रामीण इलाकों में जो गरीब परिवार हैं उनका जो फ्री में इलाज जो 5 लाख का हो रहा है, उसमें बहुत सारे परिवार ऐसे गरीब हैं जो आयुष्मान भारत योजना के तहत, वो किसान परिवार से आते हैं, जो 55-60 करोड़ लोग हैं वो कहां से 55-60 करोड़ लोग हैं, बहुत सारे वहां से भी हैं। इसीलिए किसानों पे जो इनपुट कॉस्ट है, उनके जो जीवन के लिए जरूरी चीजें हैं, जो खर्चे हैं, सरकार ने उसे कम किया है, उनकी उत्पादकता बढ़ाई है, और अब कोऑपरेशन मिनिस्ट्री अलग से बना करके उनका कैसे वो जो फार्मर का जो प्राथमिक जो है वो संघ बने, कोऑपरेटिव बने,

0: उसकी 1 लाख के आसपास हो गया है, उसमें है कि 2-3 लाख कोऑपरेटिव बनाने हैं। कोऑपरेटिव बना करके सिर्फ कोऑपरेटिव नहीं करना है, इंटरनेशनल कैसे उनका ऑर्गेनिक खेती करे, कैसे वो विदेश में एक्सपोर्ट हो, इसके लिए अलग से कोऑपरेटिव बना दिया है।
1: बिल्कुल।
0: तो हर तरफ से किसानों को सशक्त कर, किसान सशक्त मतलब देश सशक्त।
1: बिल्कुल। सर्जना जी, अगर आपके पास आए, जैसा कि अभी नीलू जी कह रहे थे कि सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है, जो सारे चारों स्तंभ हैं ये भी आपस में जुड़े हुए हैं। अगर हम खासतौर से वंचितों की बात करें, जो इन्हें मार्जिनलाइज्ड कहते हैं या आर्थिक रूप से कमजोर, इनके बारे में थोड़ा सा बताएं कि इनके जैसे जो जनजातीय समूह के लिए जो स्टेप्स उठाए गए हैं या जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए स्टेप्स उठाए गए हैं, ये मार्जिनलाइज सेक्शन के लिए आप हमें बताएं कि किस तरह के परिवर्तनकारी उपाय हुए हैं।
2: वर्ग में तो एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। वो ऐसे आया है कि एक तो सबसे पहले उस वर्ग में आत्मसम्मान, आत्म गौरव की भावना पैदा करना, जो हमारे शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, जिनको पहले आदिवासी बोला जाता है, अभी वनवास जनजाति जैसे हैं, तो इनके लिए आप देखें कि जो उनके हीरो रहे हैं, बिरसा मुंडा हैं और बहुत सारे, उन सबको इन्होंने निकाला और जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है बिरसा मुंडा जी के नाम से। फिर आदि मेले लगने शुरू हुए और एकलव्य स्कूल बनाए गए हैं इन बच्चों के लिए, उसका नाम है एकलव्य स्कूल, कि जितने ट्राइबल बच्चे हैं, क्योंकि अगर वो रेगुलर स्कूल में नहीं जा पा रहे तो आप उनको बोर्डिंग स्कूल है ये, उसमें आप उनको पूरी तरह से एक आधुनिक शिक्षा भी दे रहे हैं, आप उनको शिक्षा से जोड़ रहे हैं। दूसरा, जो ट्राइबल्स हैं वो हमारे जल वन के रक्षक और संस्कृति के रक्षक सबसे ज्यादा वो हैं। हम जो पढ़े लिखे शहरी हैं, हम पर्यावरण की उतनी रक्षा नहीं कर सकते जितना वो लोग करते हैं। तो उनके लिए जो वन धन योजना है उससे बहुत लाभ है। उनको कहीं नहीं जाना, नौकरी के लिए एप्लीकेशन नहीं देना, क्योंकि उन लोगों को ये भी मालूम है कि कौन सी जड़ी बूटी का क्या असर है। उन पत्तों को हम नीलू जी या आप जंगल में जाके नहीं पहचान सकते। उनको पता है कि कौन सा फूल जब खिलेगा तो उसके बाद कब बारिश होगी, कब आंधी आएगी। तो वो लोग प्रकृति के साथ सहचर हैं, प्रकृति के। ये जो मंत्रालय है, ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री है, तो ये भी आप देखिए कि वैसे तो अटल जी के समय में बना था, लेकिन अब इसमें बहुत सारे परिवर्तन आए हैं। और ये खेलने में बहुत अच्छे हैं, ये हॉकी में है, स्पेशली तीरंदाजी में, कुश्ती में, तो उस पर भी ध्यान दिया गया है। इनके लिए बोर्डिंग्स खोले गए, इनके लिए कोचेस दिए गए हैं, इनके लिए बहुत सारी योजनाएं हैं। और जिस एरिया में जो चीज ज्यादा जो पैदावार हो रही है, अब देखिए कि जैसे मखाना बोर्ड बिहार में बनाया गया, पहले तो नहीं था। दूसरी बात, खाली मखाना बोर्ड बना देने से काम नहीं होगा, ट्रेनिंग है उनकी, फिर उनकी प्रोडक्ट की कीमत है, फिर उनकी प्रोडक्ट को देश में और विदेश में सब जगह पे उनको मंच मिले, ई कॉमर्स जिसको वो भी चला रहे हैं। अभी जब मोदी जी यात्रा पर गए, हमारे प्रधानमंत्री जी, फ्रांस, स्लोवाकिया और G7 में, तो मैं जो लिस्ट देख रही थी, आप सोचिए, उसमें वो पिछली बार मखाने लेके गए थे, इस बार वो ठेकुआ भी लेके गए। ठेकुआ भी आप मतलब,
1: हाँ, उन्होंने सम्मान दिलाया है पूरे
2: श्री अन्न उसको नाम दिया, जिसको मोटा अनाज सब बोलते थे, अब उसको देखिए मान श्री अन्न, और सब चीजों की कीमतें भी बढ़ गई उसकी वजह से, और उसका किसान को लाभ हो रहा है। आज मखाने का आप रेट देखिए बाजार में, तो वो सारा आप सोचिए कि वो लाभ किसान को जा रहा है। और दूसरा, जैसा अभी नीलू जी ने कहा कि खाली विकास समग्र होना चाहिए, अगर मेरे पास प्रोडक्ट है और मैं मंडी तक ही नहीं पहुंच पाऊं, तो मेरे पास मंडी तक पहुंचने के लिए सड़क नहीं है, साधन नहीं है, तो मेरी प्रोडक्ट का क्या होगा, क्योंकि ये तो पेरिशेबल आइटम जो होती है, तो उनको तुरंत बाजार चाहिए। तो ये भी बहुत सुविधा हुई है उसके लिए
1: जी।
2: और जब ये MSP की बात होती है, तो MSP अब कहा कि आप जाके किसान अपनी फसल, जरूरी नहीं कि किसी को, भाई जिसको जो कीमत दे रहा है किसान को, जितनी दे रहा है, और जिसके पास वो जाके खरीद ले,
1: हो जाता है।
2: नहीं, खरीद लीजिए जाके जितना रेट है। तो ये विपक्ष जो कहता रहा, जो किसान आंदोलन हुआ, उन्होंने MSP की बात की, तो वो उससे 4 कदम आगे चले। तो वंचित वर्ग में फिर है कि पढ़ाई है उनकी, पहले लोगों को लगता था कि अगर बेटी पैदा हो गई तो क्या होगा, अब किसी को नहीं लगता। सुकन्या समृद्धि योजना है, लड़कियों को वर्दी है, लड़कियों को सब कुछ। और दूसरा, अगर मान लीजिए अब जो असंगठित क्षेत्र था, जहां पर ये वंचित वर्ग जिसकी आप बात कर रहे हैं, क्योंकि उसके पास कोई स्किल, कोई एजुकेशन कुछ नहीं था, या उसके पास अपना पारंपरिक हुनर भी, कौशल भी नहीं है कोई, तो खैर कौशल विकास मंत्रालय भी खोला गया और कौशल विकसित किया जा रहा है। तो अगर उसके पास कुछ भी नहीं, तो वो किसी मान लो फैक्ट्री में काम कर रहा है, तो ये भी सरकार ने सुनिश्चित किया, जो नए 4 लेबर कोड आए हैं, कि अगर कोई असंगठित क्षेत्र में है और काम कर रहा है, स्पेशली महिलाएं हैं, तो उनका तय कर दिए गए हैं कि आप इससे कब वेज पे

0: बिल्कुल काम नहीं करवाओ
1: जी।
0: तो ये आप देखिए कितनी अच्छी बात है।
1: हाँ।
0: फिर दूसरा, अगर महिला आपके यहाँ काम कर रही है तो आप उसको घर पहुँचाने की व्यवस्था भी करेंगे, फैक्ट्री आपकी करेगी
1: जी।
0: तो ये भी एक अच्छी बात है। अब सैनिटरी पैड पर देखिए, लड़कियों की जो सबसे बड़ी एक समस्या होती है कि वैसे इसको कहा गया था कि ये बातचीत करने के, लेकिन ये भी एक रुपए में जन औषधि केंद्र में सैनिटरी नैपकिन मिल रहा है लड़कियों को, किशोरियों को। तो आप सोचिए महिलाओं को, तो ये भी
1: बहुत बड़ा,
0: हम इसको एक अगर देखें तो एक तरह से ये भी एक सशक्तिकरण की ओर एक बड़ा कदम है। पिंक टॉयलेट्स हैं महिलाओं के लिए, अलग से अच्छे शौचालय बनाए गए हैं। तो ये ऐसी चीजें हैं जो आपको, अगर हम किसी मैनेजमेंट स्कूल की बुक देखें तो उसमें ये चीजें नहीं दिखेंगी, लेकिन पिछले 12 साल में जो इतनी छोटी छोटी चीजों को सोच के समझ के जिनके ऊपर काम किया गया, पिछले 12 साल में जनधन खाते खोले गए, डायरेक्ट बेनिफिट उनको मिल रहा है, लेकिन उसके साथ साथ उनका कौशल विकसित किया गया,
2: और एक तरह से जो हमारी ट्रेडिशन है हमारे देश की, वो भी अलाइव,
0: मतलब कि हमारी एजुकेशन पॉलिसी जो मैकॉले ने जो लाया था उसने व्हाइट कॉलर जॉब को बहुत प्रेफरेंस दिया था, पर ये जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, जो सरकार की औद्योगिक नीतियां हैं, जो MSME आप देखिए ना, MSME सेक्टर में कितनी चीजें जो महिलाएं घर में बैठे बैठे शौक शौक में बना लेती हैं, जिनको ये शौक है, जिनके पास स्किल है, अपनी दादी नानी माँ से सीखा है, तो उसके लिए भी सरकार लोन दे रही है।
1: बिल्कुल।
0: तो ये बहुत महिलाओं का सशक्तिकरण। दूसरा मैं आपसे कहूंगी कि जैसे मातृत्व वंदन है, वो योजना कितनी अच्छी है, जो मातृ शिशु रक्षा योजना है, तो ऐसी योजनाएं पहले था कि हाँ,
2: और एक्चुअली वो फिगर्स में दिखाई दे रहा है कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज जो अस्पतालों में अब हो रही हैं, उनका संख्या इतनी बढ़ गई है, 98% पे पहुंच गई है, और भी जो मॉर्टेलिटी रेट
0: जो
2: है,
0: बेसिक मेरी जरूरत है वंचित वर्ग की, अगर हम बात करते हैं कि रोटी कपड़ा और मकान
1: जी,
0: उनको प्रधानमंत्री आवास योजना में घर दिया जा रहा है
1: जी,
0: ठीक है, उनको जो राशन दिया जाता है एक BPL जो है उससे बिलो में जो राशन मिलता है, ठीक है, वो आज नहीं तो कल कमाने लगेगा, वो भी बाकी समाज के साथ पेस मिलेगा, लेकिन जब उसको अपनी बेसिक जरूरतें पूरी हो रही हैं, तो उसको उसके लिए नहीं स्ट्रगल करना, इसलिए उसका जीवन स्तर आगे बढ़ा, और कितने करोड़ लोग नीलू जी गरीबी रेखा से ऊपर उठे,
3: 25 करोड़
0: गरीबी रेखा से ऊपर उठे, और डिजिटल पेमेंट देखिए आप, सारी दुनिया आज हमसे सीखना चाहती है भारत,
2: और ये जो डिजिटलाइजेशन की आप बात कर रही हैं वो पूरे देश में है,
0: सब्जी वाला भी कहता है जी यहाँ पे पेमेंट कर दो, जो फूल बेच रहा है वो भी कहता है, गोलगप्पे वाला
1: जी,
0: टिक्की वाला,
2: व्यापक सशक्तिकरण है। अगर हम सामाजिक न्याय की बात करें, समावेशी विकास की बात करें, तो कुछ ऐसे आंकड़े हैं, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में 71% बेनिफिशियरीज जो है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC फार्मर्स हैं, और मुद्रा योजना की अगर हम बात करें या जनधन योजना की बात करें, तो 70% से अधिक जो अकाउंट्स हैं वो महिलाओं के हैं। सो आपको लगता है कि जो स्कीम्स हैं वो अच्छी भी हैं, लेकिन वो ज्यादा जरूरी है कि वो इम्प्लीमेंट बहुत कहें कि सिंसियरिटी से हुई है।
3: निश्चित रूप से मैं ये अनुभव अपना बताता हूँ, जहां मैं अभी गया था पिछले दिनों, जगदलपुर गया था, जगदलपुर का नाम सुनते ही बस्तर सोचते हैं लोग, नक्सली प्रभावित था, नक्सली इलाके में कोई सरकारी कर्मचारी जा ही नहीं सकता था, स्कूल जला दिए थे, जो जंगल में जो लोग थे उनको सारी चीजें नहीं मिलती थी। अब वहां के जो प्रोडक्ट हैं, जो वहां ट्रेनिंग दी जा रही थी, और बिल्कुल एक संस्थागत रूप में सब कुछ लाया जा रहा है वहां पे, कि जो कैंप लगे थे, नक्सल समस्या खत्म हो गई, तो जो सुरक्षा बलों के कैंप थे उसको सेवा केंद्र में बदला जा रहा है। अमित शाह जो गृह मंत्री हैं वो खुद हमारे साथ थे, उनके साथ मैं भी था, वहां मैंने देखा कि जो जंगल के प्रोडक्ट हैं, जैसे इमली बहुत होती है, अब इमली वहां पे जो तोड़ा और वो बिचौलिए सब खाते थे और जैसे थे जाता था, अब वो मशीनें लगी हैं, उनको ट्रेनिंग दी जा रही है कि इमली को कैसे आप पैकेजिंग करो, 500 ग्राम के, 1 किलो के छोटे पैकेजिंग, बिल्कुल एकदम उसको, और उसके बीज हटने चाहिए, उसका ये होना चाहिए, और बिल्कुल शुद्ध ऑर्गेनिक बिना किसी केमिकल के, और उसकी बहुत डिमांड है। एक वहां महुआ बहुत होता है, फ्री में चुनते हैं, अब महुआ और बाकी जो श्री अन्न है मिला करके इतने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट बन रहे हैं उसके, तो मार्केटिंग की एक सोच का अंतर आया है,
2: एक अवेयरनेस क्रिएट,
3: अवेयरनेस नहीं, सोच का अंतर ये है कि जब देश आजाद हुआ था तो हमने ये मान लिया था कि ये तो ट्राइब्स हैं, ये जैसे हैं वैसे ही खुश हैं, इनमें हमें छेड़छाड़ नहीं करनी है, इनको हमारे डेवलपमेंट जो होते हैं, इनको हमारे स्कूल नहीं चाहिए, इनको हमारी बिल्डिंग नहीं चाहिए, इनको गाड़ी नहीं चाहिए, इनको जहाज नहीं चाहिए, इनको कुछ नहीं चाहिए, इनको ये जंगल में ही खुश है। अब आपने उनको छोड़ दिया तो उस जंगल में नक्सली घुस गए, अब जो चेंज

0: आया है कि सारी सुविधाएं वो जंगल में रहें, जहां है जैसे जी रहे हैं रहें, लेकिन सारी सुविधाएं हम पहुंचाएं और उनके जो चीजें हैं वो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट तक भी जाए, बाकी जगह भी जाए,
1: विकास
2: और उनके बच्चे पढ़े भी, अगर वो चाहे शिक्षा वहां पे पहुंचे।
0: एकलव्य स्कूल का उन्होंने नाम लिया कि आदिवासी बच्चे।
2: अच्छा, आप जो सोच की बात कर रहे हैं नीलू जी, यहाँ पे मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि जो टर्मिनोलॉजी भी यूज की गई है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, कितनी खूबसूरत है कि रिकॉग्नाइज कर रही है सरकार की एस्पिरेशंस है उन लोगों की और उनको पूरा करने के लिए ये पॉलिसी मेजर्स उठाए जा रहे हैं।
0: वो यही है कि जब आप सिंसियरली देखते हो कि जिले हैं तो कौन कौन से जिले देश में जो है वो पिछड़े, पहले होता था पिछड़े राज्य की बात, लेकिन अगर आप देखोगे केरल में भी तो केरल कहें कि वहां बहुत साक्षरता है, वहां महिलाओं का सशक्तिकरण है, ये है, तमाम चीजें हैं, लेकिन वहां भी कुछ जिले जो है पीछे रह जाते हैं। और जब बिल्कुल आप पिछले जो हो गए छत्तीसगढ़ का, तो छत्तीसगढ़ के कुछ जिले बहुत अच्छे हैं। तो जो जिले पीछे छूट गए हैं वो किन किन मापदंडों पे छूटे हैं, वहां क्या करने की जरूरत है। अब वो जब हो गया तो जिले के भीतर ब्लॉक है, तो अब 500 ब्लॉक्स के अलग चल पड़ी है वहां पे। यानी कि जब समग्र और समेकित विकास की आप बात सोचते हो कि अंत्योदय जो उन्होंने कहा कि दीनदयाल उपाध्याय जी का था कि कोई छूटे न पीछे, ये जब आपकी सोच होती है तो जितने लोग छूटे हुए हैं सबको आप चुनते हो, क्यों छूट गया, क्या कमी है, क्या हम लगाएं कि यहाँ पे आ जाए, वो चीजें हो रही है।
2: सर्जना जी, आप भी कुछ कहना चाहेंगी?
3: देखिए, मुझे जो सबसे अच्छा दो तीन चीजें लगती हैं, एक है विरासत के साथ विकास
2: जी,
3: जो स्लोगन है वो बहुत बढ़िया लगता है मुझे, कि हम अपनी परंपराओं को, अपनी ट्रेडिशंस को बचाते हुए विकास की राह पर चले। ऐसा विकास ना हो जो हमें हमारी जड़ों से अलग कर दे। तो हमारी जड़ों से जोड़ने का जो विकास है वो, ये सोच बहुत अच्छी है। अगर मैं अपनी जड़ से उखड़ कर कहीं बहुत उन्नति करती हूँ अपने समाज से, अपने रीति रिवाज से, अपनी परंपराओं से, तो वो विकास एक दिन जाकर मुझे दिल को बहुत दुखी करेगा। लेकिन मैं अपनी जड़ों से भी जुड़ू, अपनी परंपरा से, अपनी संस्कृति से, और उसके साथ मेरा विकास हो रहा है। अब एक चीज मैं और कहना चाहूंगी कि यूनेस्को धरोहर में अब हमारी टेंजिबल एंड इनटेंजिबल कितनी सारी चीजें आ गई। आप सोचिए, हमारा गरबा, हमारी दुर्गा पूजा, हमारी दिवाली, हमारे बहुत सारी चीजें हैं जो अब यूनेस्को की लिस्ट में शामिल होगी। और एक और सोचिए, पर्यावरण की दृष्टि में रामासर जो आर्द्र भूमि जिनको हम बोलते हैं, वो 100 होने वाली है। 99 तो हो ही चुकी, हो गई शायद 100 हो गई।
2: और ये सब चीजें युवाओं को भी प्रेरित करती है कि हमारा कितना,
3: रामसर लेक जो है पहले हमारे पास 13 या 14 थी, अब आप देखिए कितनी हो गई। तो ये समग्र विकास जो है ना विद मेरे विरासत के साथ, तो ये एक बहुत 12 साल की एक उपलब्धि है।
2: बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर्जना जी, नीलू जी, आप आए और आपने हमें इतनी खूबसूरती से समझाया कि जो चार स्तंभ जो माने गए हैं वर्तमान सरकार द्वारा विकास के, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी, उनके सशक्तिकरण के लिए क्या क्या किया गया है पिछले 12 सालों में और आगे भी क्या हम उम्मीद कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद
3: सोनू जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमें आमंत्रित करने के लिए।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे सशक्तिकरण से समृद्धि की ओर बढ़ते भारत पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे वरिष्ठ पत्रकार नीलू रंजन और सर्जना शर्मा। परिचर्चा का संचालन कर रही थी सोनू सूद। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।
5: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

प्रोग्राम का आखिरी गीत पहुंच रहा है आप तक रेशमा की आवाज में और घड़ी बता रही है कि विकास अब जाने का वक्त आ चुका है। इस उम्मीद के साथ कि आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक रखिएगा आप अपना ख्याल, उनका ख्याल जो रखते

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। बारहवां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज विश्व भर में मनाया जाएगा। इस वर्ष का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। मुख्य कार्यक्रम कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित होगा। प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में योगाभ्यास के दौरान राष्ट्र का नेतृत्व करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि रेड रोड पर राष्ट्रीय कार्यक्रम सुबह 5 बजे शुरू होगा।
1: संस्कृति मंत्रालय द्वारा देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक स्थलों और योग परंपराओं को जोड़ते हुए देश भर के 100 विशेष स्थानों पर योग के विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस पहल के तहत 12 प्रमुख स्थलों पर बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें नई दिल्ली में लाल किला, उत्तराखंड में हरिद्वार, उड़ीसा में कोणार्क, कर्नाटक में हम्पी, तमिलनाडु में महाबलीपुरम, महाराष्ट्र में मुंबई, बिहार में नालंदा, गुजरात में अहमदाबाद, उत्तर प्रदेश में सारनाथ, लद्दाख में लेह, तेलंगाना में हैदराबाद और असम में सिलचर शामिल है। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के साथ मिलकर विदेशों में मौजूद 210 से ज्यादा भारतीय मिशन लगभग 2500 स्थानों पर योग कार्यक्रम आयोजित करेंगे। वहीं दिल्ली में शांति पथ, यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, कर्तव्य पथ, न्यू मोतीबाग, सेंट्रल पार्क और तालकटोरा गार्डन जैसे प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर योग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में विशेष योग दिवस समारोह आयोजित करेगा। इस आयोजन में लगभग 1500 वरिष्ठ नागरिकों के शामिल होने की संभावना है। वहीं उपराज्यपाल मनोज सिन्हा आज श्रीनगर में डल झील के किनारे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का नेतृत्व करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता में आज INS दोनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय का अनावरण करेंगे। इनमें 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत हमेशा शांति और सहयोग का पक्षधर रहा है, क्योंकि जटिल वैश्विक मुद्दों और युद्ध जैसे संकटों का समाधान केवल संवाद और कूटनीति से ही संभव है। राष्ट्रपति ने मोहन चरण मांझी सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ओडिशा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में एक जनसभा में ये बात कही। राष्ट्रपति ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व नेताओं के साथ अपने दूरदर्शी शासन और संपर्क के जरिए वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है। इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं से सशक्त होकर जनजातीय समुदाय भारत के विकास में सक्रिय योगदान दे रहे हैं। उन्होंने पूर्वी भारत के विकास में तेजी लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के पूर्वोदय दृष्टिकोण का भी उल्लेख किया। बाद में प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किश्त के रूप में 18,880 करोड़ रुपए जारी किए गए। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे देश भर के 9,44,00,000 से अधिक किसानों को लाभ मिलेगा। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट UG 2026 की पुनः परीक्षा आज आयोजित की जाएगी। ये पुनः परीक्षा भारत के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में होगी। इस पुनः परीक्षा में 22,79,000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे। नीट UG 2026 पुनः परीक्षा आज संयुक्त अरब अमीरात में 3 निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होगी। पत्तनपोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि 3 भारतीय ध्वज लगे टैंकर सफलतापूर्वक हॉर्मूज जल डमरू मध्य को पार कर चुके हैं और भारत आ रहे हैं। इनमें 86,00,000 मीट्रिक टन से अधिक कच्चा तेल है। इन टैंकरों में 94 भारतीय चालक दल के सदस्य भी सवार हैं। ये तेल टैंकर देश वैभव, देश विभोर और सनमार हेराल्ड हैं। ईरान की संयुक्त सैन्य कमान ने घोषणा की है कि हॉर्मूज जल डमरू मध्य को एक बार फिर बंद कर दिया गया है। यह फैसला लेबनान में इसराइल की सैन्य कार्रवाई का हवाला देते हुए लिया गया है। चेन्नई में भारत ने तीसरे और अंतिम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 9 विकेट से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीत ली है। भारत ने 29वें ओवर में 1 विकेट पर 224 रन बनाकर जीत हासिल की। 5 विकेट लेने वाले प्रसिद्ध कृष्णा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अभिनीत शुक्ला। Prime Minister Narendra Modi has said that tribal communities are emerging as active participants in India's development journey, empowered by a range of welfare and outreach initiatives of the centre. Addressing a public gathering at Rajrangpur in Odisha's Mayurbhanj district, the Prime Minister lauded Odisha's progress as the state completed 2 years under Chief Minister Mohan Charan Manjhi. He said the centre's Purvoday vision aims to drive India's growth through the rapid development of eastern India.
3: ओडिशा में आर्थिक गतिविधियां, निवेश और उद्योगों को आकर्षित करने का सामर्थ्य आज नजर आ रहा है। केंद्र सरकार का विजन है पूर्वी भारत के विकास से भारत का विकास, इसलिए हम पूर्वोदय की नीति पर काम कर रहे हैं। जिस पूर्वी भारत को कांग्रेस के दौर में पिछड़ेपन का पर्याय बना दिया गया था, आज वो प्रगति का प्रवेश द्वार बन रहा है।

लैंसडाउन हिल स्टेशन की वो खूबसूरत सुबह थी। पहाड़ों के खूबसूरत आंगन में चारों ओर सूरज की सुनहरी रश्मियां बिखरी हुई थी। हल्के हल्के पवन के झकोरे पेड़ों को झूला झूला रहे थे। होटल के लॉन में बैठी नंदिनी दुनिया से बेखबर किसी गहरे ख्याल में खोई थी। बीच बीच में वो पेन से पेपर पर कुछ लिखती भी जा रही थी। कभी तो उसके खूबसूरत चेहरे पर उदासी के बादल घिराते तो कभी होठों पर मुस्कान खिल जाती। वो अपनी जिंदगी के खूबसूरत लम्हों को कहानी में बुन रही थी और बीच बीच में गुनगुनाती जा रही थी।

कहानी लिखने में खोई नंदिनी को पता भी नहीं चला कि कब सूरज की सुनहरी रश्मियों को बादलों ने अपनी आगोश में ले लिया। हवाएं बावरी हो उठी और नंदिनी की कहानी के पन्ने इधर उधर उड़ने लगे। नंदिनी उड़ते पन्नों को समेटने की नाकाम कोशिश करने लगी। इसी बीच बारिश की नन्ही नन्ही बूंदें आसमान से बरस उठी। नंदिनी को ऐसा लग रहा था जैसे कागज के पन्ने नहीं बल्कि उसकी कीमती यादें बिखर रही हों। वो दौड़ दौड़ कर उन उड़ते बिखरे पन्नों को बीन रही थी। तभी अचानक दो हाथ और आगे बढ़े और कागजों को समेटने में नंदिनी की मदद करने लगे। सारे पेपर जब इकट्ठे हो चुके तो नंदिनी ने सुकून की गहरी सांस लेकर उस अजनबी चेहरे की ओर देखा जिसके हाथ उसकी सहायता कर रहे थे। वो नंदिनी की ही हमउम्र एक खूबसूरत महिला थी। नंदिनी ने मुस्कुराकर उस अजनबी महिला का शुक्रिया अदा किया। थैंक यू डियर, अगर आज आप ना होती तो मेरी तो सारी मेहनत ही बेकार गई होती। इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं, इंसान ही तो इंसान के काम आता है, वो अजनबी महिला बोली। थोड़ी ही देर में वो दोनों महिलाएं होटल के कैफेटेरिया में बैठी कॉफी एंजॉय कर रही थी। बाहर बारिश तेज हो गई थी। कैफेटेरिया में बजती धीमी धीमी गजल नंदिनी की धड़कनों से खेलने लगी।

आपका नाम जान सकती हूँ? उस अजनबी महिला ने पूछा तो नंदनी के ख्यालों की तंद्रा टूटी। जी नंदनी। और तुम्हारा? ओह सॉरी, मेरा मतलब आपका। आपका नहीं, तुम्हारा। अच्छा लग रहा है आपका इतने अपनेपन से बातें करना। वैसे मेरा

0: आरती है। बहुत प्यारा नाम है। आरती तुम कहाँ से हो?
1: जी दिल्ली से।
0: अरे मैं भी दिल्ली से ही हूँ। यहाँ घूमने आई हो ना?
1: जी नहीं, हस्बैंड के साथ आई हूँ। उन्हें बिजनेस के सिलसिले में इधर आना था तो मैं भी साथ आ गई।
0: और तुम?
1: मैं अपने ख्यालों के साथ, अपनी यादों के साथ आई हूँ।
0: अपनी जिंदगी को पन्ने पर उतारना चाहती थी तो कुछ दिन ऑफिस से छुट्टी लेकर यहाँ भीड़ भाड़ से दूर चली आई, और अब रोज सुबह लॉन में बैठकर यादों के मोती चुनती हूँ और अपनी आत्मकथा में पिरोती हूँ।
1: क्या बात है। एक बात बताऊं, मुझे कहानियां पढ़ने का बहुत शौक है, खास तौर पर किसी की बायोग्राफी।
0: तुम मुझे अपनी कहानी सुनाओगी ना?
1: आरती ने बेहद अपनेपन से पूछा तो नंदिनी इनकार ना कर सकी और एक गहरी सांस लेकर बोली,
0: बहुत लंबी और दर्द भरी कहानी है आरती, कल सुबह लॉन में मिलना, तुम्हें सब सुनाऊंगी। अभी ऑफिस के कुछ जरूरी काम करने हैं, कल मिलते हैं। ये कहती हुई नंदिनी अपने रूम की ओर बढ़ गई। आरती उसे जाती हुई देखती रही। जाने क्यों उसे आरती की कहानी से अपनी कहानी जुड़ी हुई महसूस हो रही थी, और वो सोच रही थी कि हमारी जिंदगी के ये बीतते पल, किसी का मिलना बिछड़ना, ये सुबहें ये शामें ये रातें।

अगली सुबह होटल के लॉन में बैठी नंदिनी आरती का इंतजार कर रही थी। आरती थोड़ी देर से आई तो नंदिनी ने पूछा, बड़ी देर कर दी आरती? और तभी उसका ध्यान आरती के माथे की ओर गया। और ये तुम्हारे माथे पर चोट कैसी? तुम ठीक तो हो ना? हाँ नंदिनी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस जरा सा बाथरूम में पैर फिसल गया और ये चोट लग गई। खैर इसे छोड़ो, तुम अपनी कहानी सुनाओ ना। पता है मैं कहानी के इंतजार में रात भर ठीक से सो नहीं पाई, आरती चहकते हुए बोली। नंदिनी अब अपने अतीत के पन्ने पलटने लगी थी। वो बहुत छोटी थी जब उसके माता पिता दुनिया से चल बसे। मामा मामी ने नंदिनी को पाल पोस कर बड़ा किया। मामी ने हमेशा ही उसे बोझ समझा और उनका बर्ताव नंदिनी के प्रति हमेशा रूखा ही रहा। लेकिन नंदिनी मामा के स्नेह के सहारे सांसें ले रही थी। अभी वो 19 साल की ही हुई थी कि मामी ने जिद पकड़ ली उसकी शादी कर दी जाए। मामी ने उसके लिए एक लड़का भी देख लिया जो उनकी ही सहेली का बेटा था, मिलिंद। नंदिनी को अच्छी तरह से याद था वो दिन जब उसने पहली बार मिलिंद को देखा। मिलिंद ने भी पहली ही नजर में नंदिनी को पसंद कर लिया। अपनों के प्यार के लिए तरसती नंदिनी को जब मिलिंद का प्यार मिला तो उसे लगा कि उसे सारी

को प्यार तो करती थी, लेकिन वो अभी शादी नहीं करना चाहती थी। ये नंदिनी की किस्मत ही थी कि वो पढ़ाई में बहुत अच्छी थी और उसका सपना था एक मशहूर लॉयर बनकर पीड़ित और असहाय लोगों को न्याय दिलाना। उसे विश्वास था कि मिलिंद उसे समझेगा और शादी के लिए जल्दी नहीं करेगा। एक शाम जब नंदिनी मिलिंद से मिली तो उसने डरते डरते अपने दिल की बात मिलिंद के सामने रख दी। नंदिनी बोली, मिलिंद मैं भी पढ़ना चाहती हूँ, मेरा सपना है लॉयर बनना, तुम्हें शादी की जल्दी तो नहीं है ना? ये सुनते ही मिलिंद के चेहरे का रंग बदल गया। वो कठोर अंदाज में बोला, क्यों पढ़कर क्या करोगी, शादी तो हो रही है ना तुम्हारी, और वैसे भी लड़कियां तो इसीलिए पढ़ती हैं ना कि उन्हें अच्छा रिश्ता मिल जाए। देखो नंदनी, मेरे पापा का बिजनेस है जो मुझे संभालना है, और तुम्हें घर, अगर मुझसे शादी करनी है तो पढ़ाई का ख्याल दिल से निकाल दो। मेरे पेरेंट्स को ऐसी बहू चाहिए जो उनकी और मेरी सेवा कर सके और घर की देखभाल कर सके, और वैसे भी नंदिनी वकील बहू कौन चाहेगा? क्यों, नंदिनी ने सवाल किया। एक्चुअली जो वकील लड़कियां होती है ना, वो बात बात पर कानून की धमकी देती हैं, तो इसलिए मैं तो बिल्कुल भी तुम्हारी पढ़ाई के फेवर में नहीं हूं। लेकिन अगर तुम फिर भी जिद करोगी तो मैं तुमसे यही कहूंगा नंदिनी कि पढ़ाई और प्यार दोनों में से किसी एक को चुन लो। नंदिनी एक दोराही पर खड़ी थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो पढ़ाई और प्यार दोनों में से किसे चुने। खड़ी

नंदिनी ने एक फैसला कर लिया था। दरअसल संघर्ष और अकेलेपन ने उसे ये समझ दे दी थी कि उसके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। इसलिए बहुत सोच समझकर उसने मिलिंद से शादी के लिए इनकार कर दिया। उस दिन घर में खूब हो हल्ला मचा। मामी का गुस्सा अपनी चरम सीमा पर था। वो गुस्से में चीख रही थी और मामा से कह रही थी, देखो जी, इस लड़की को दूर कर दो मेरी आंखों के सामने से। बचपन में अपने माँ बाप को खा गई और अब मेरा घर नाश करने पर तुली है। इतना अच्छा लड़का और घर परिवार देखा था इसके लिए, लेकिन महारानी को पढ़ना है। अब मैं अपनी सहेली को क्या मुंह दिखाऊं, क्या कहूं उसे। मेरा तो सम्मान इसने मिट्टी में मिला दिया। अच्छा सिला दिया है इसने हमारी परवरिश का, जरा भी नहीं सोचा हमारे बारे में। एहसान मानना तो दूर, अपमान अलग से करवा दिया। चुप हो जाओ सरला, ये बच्ची है अभी, नासमझ है। मामा जी ने मामी को समझाने की कोशिश की। बड़ी आई बच्ची, बच्ची दिखती है ये तुम्हें। ले जाओ अपनी बच्ची को मेरी आंखों के सामने से। इससे कहो ये घर छोड़कर चली जाए, नहीं तो मैं चली जाऊंगी, देख लेना। मामी बोले जा रही थी और मामा जी खामोश खड़े थे। नंदिनी ने मामा जी को आस भरी नजरों से देखा तो मामा जी नजरें चुरा कर चुपचाप वहां से चले गए। नंदिनी उस रात सो नहीं पाई, सोचती ही रही। फिर एक फैसला कर उठी, कुछ कपड़े और अपने जरूरी सामान बैग में रखे और घर से निकल गई। घर से निकलकर वो अपनी

धीरे धीरे दिन रात के पंछी उड़ने लगे और कई बरस बीत गए। नंदिनी की मेहनत रंग लाई और उसने समाज में अपना एक मकाम हासिल कर लिया। लेकिन इन सब में जो सबसे अजीब बात थी वो ये कि इस मकाम पर पहुंचकर भी नंदिनी संतुष्ट नहीं थी। इन गुजरे दिनों में ऐसा कोई भी दिन नहीं गया था जब नंदिनी को मिलिंद की याद ना आई हो। वो मिलिंद और उसके प्यार को नहीं भुला पाई थी। अक्सर जब उसे अकेलापन सताता था तो उसे लगता शायद उसने गलत फैसला ले लिया था। जब भी किसी कपल को हाथों में हाथ डाले घूमते देखती तो उसके दिल में एक हूक सी उठती और वो सोचती कि काश मिलिंद की बात मानकर वो उससे शादी कर लेती तो आज वो भी इन्हीं की तरह सुखी होती, उसकी जिंदगी में भी प्यार होता, किसी का सहारा होता जिसके लिए वो बचपन से तरस रही है। जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जा रही थी मिलिंद के प्यार की तलब और उसकी यादों का साया नंदिनी के ज़हनो दिल पर फैलता जा रहा था।

अपना अफसाना सुनाते सुनाते नंदिनी की आंखों से आंसू बहने लगे थे। चुपचाप सुनती आरती के चेहरे पर कई रंग आ जा रहे थे। आखिर में नंदिनी बोली, आरती मैं ना बहुत पछता रही हूँ। काश कि मिलिंद एक बार मुझे मिल जाए तो मैं उससे माफी मांग लूँ। मैं उसे मनाऊं कि वो मेरे साथ एक नए सिरे से जिंदगी शुरू करे। काश कि एक बार, बस एक बार मेरा मिलिंद मुझे मिल जाए। नंदिनी को सुनते सुनते अब आरती चुप ना रह सकी और बोली, नंदिनी तुमने जो भी फैसला किया था बहुत अच्छा किया था। एक बार मैं भी तुम्हारी तरह ही दो राह पर खड़ी थी और मुझे भी शादी और करियर में से किसी एक को चुनना था, लेकिन मैंने शादी को चुना और आज मैं तुमसे कहीं ज्यादा पछता रही हूं। ये मेरे माथे की चोट देख रही हो, जिसके बारे में अभी थोड़ी देर पहले तुमने मुझसे पूछा था? ये बाथरूम में गिरने की वजह से नहीं आई, ये मेरे पति ने मुझे दी है, क्योंकि कल सुबह मैं तुमसे बात करने में बिजी हो गई थी और उनके कुछ जरूरी काम करना भूल गई थी। ऐसी ना जाने कितनी चोटें मेरे तन और मन पर लगी हैं नंदिनी, जिसे मैं किसी को नहीं दिखा सकती। आज मैं अपनी पहचान ढूंढती हूँ जो मुझे कहीं नहीं मिलती। मेरा बस एक ही काम रह गया है, पति की

सेवा करना, उन्हें खुश रखना और बदले में जिल्लत सहना। एक एक पैसे के लिए उनका मुंह देखती हूं। मेरी अपनी कोई पसंद नापसंद नहीं है, मेरा अपना कोई फैसला भी नहीं है। हर बात के लिए बस उन पर निर्भर होकर रह गई हूं। हालांकि ऐसा सभी महिलाओं के साथ नहीं होता, कुछ की जिंदगी बहुत बेहतर भी होती है। हम दोनों में सिर्फ एक ही फर्क है नंदिनी, तुम जिसे खोकर पछता रही हो ना, मैं उसे पाकर पछता रही हूं। बोलते बोलते आरती थोड़ी रुकी, एक गहरी सांस लेकर फिर बोली, माना कि तुम अकेली हो नंदिनी, लेकिन स्वतंत्र हो। तुम्हारी अपनी एक पहचान है, अपने फैसले खुद करती हो, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाती। और जहां तक खुश रहने का सवाल है ना नंदिनी, तो खुशियां किसी सहारे की मोहताज नहीं होती। जिंदगी को देखने का नजरिया बदलो, खुशी तुम्हारे साथ ही है। खुश रहने के हजार तरीके हैं, और हाँ, जिंदगी अभी बाकी है। और तुमने वो गीत सुना है, जिंदगी

जिंदगी अपने आप में प्यार का ही गीत है नंदनी, इसे किसी और सहारे की जरूरत नहीं। आरती अभी कुछ और कहना ही चाहती थी कि अचानक उसके मोबाइल की रिंगटोन बजी और वो किसी अनजाने डर से अपने रूम की ओर भागी। आरती चली गई तो नंदनी ने देखा कि आरती अपना पर्स वहीं भूल गई है। कुछ देर इंतजार करने के बाद भी जब आरती नहीं लौटी तो नंदनी उसका पर्स लेने उसके रूम की ओर बढ़ी। नंदनी जैसे ही आरती के रूम के बाहर पहुंची तो उसने सुना कि भीतर से बहुत तेज तेज आवाजें आ रही हैं। ना चाहते हुए भी नंदनी ने दरवाजे को थोड़ा सा धक्का दिया। दरवाजा खुला तो जो शख्स सामने खड़ा था उसे देखकर नंदनी के होश उड़ गए। जी हाँ, नंदनी के सामने मिलिंद खड़ा था और आरती फर्श पर गिरी हुई थी। नंदनी आरती के पास पहुंची, उसे संभाला और अपने पर्स से विजिटिंग कार्ड निकाला। आरती को देते हुए बोली, आरती ये रहा मेरा पता, एडवोकेट दुर्गेश नंदनी। अगर तुम्हें कोई कानूनी सलाह चाहिए तो मुझे कॉल करना और हाँ, जब भी जरूरत हो बिना बताए मेरे घर चले आना। इतना कहते हुए नंदनी वापस मुड़ी और एक तीखी नजर मिलिंद पर डाली जो चेहरे पर संकोच का भाव लिए खड़ा था। नंदनी तेज तेज कदमों से अपने रूम की ओर बढ़ गई, अपना सामान पैक किया और वापस मुड़ चली दिल्ली की ओर। एक दिन नंदनी फिर अपनी कहानी को मुकम्मल कर रही थी, लेकिन अब उसका नायक मिलिंद नहीं, वो खुद अपनी कहानी की नायिका थी, जिसमें नए सिरे से जीने की तमन्ना हिलोरे ले रही थी।

साथियों, तो ये थी आज की कहानी, जिंदगी अभी बाकी है। कहानी की प्रस्तुति और निर्देशन रश्मि कुकरेती का। तो अब मुझे यानी कुसुम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत हमेशा शांति और सहयोग का पक्षधर रहा है, क्योंकि जटिल वैश्विक मुद्दों और युद्ध जैसे संकटों का समाधान केवल संवाद और कूटनीति से ही संभव है। राष्ट्रपति ने मोहन चरण मांझी सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ओडिशा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में एक जनसभा में ये बात कही। राष्ट्रपति ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व नेताओं के साथ अपने दूरदर्शी शासन और संपर्क के जरिए वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है। इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं से सशक्त होकर जनजातीय समुदाय भारत के विकास में सक्रिय योगदान दे रहे हैं। उन्होंने पूर्वी भारत के विकास में तेजी लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के पूर्वोदय दृष्टिकोण का भी उल्लेख किया। बाद में प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त के रूप में 18,880 करोड़ रुपए जारी किए गए। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे देश भर के 9,44,00,000 से अधिक किसानों को लाभ मिलेगा। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज विश्व भर में मनाया जाएगा। इस वर्ष का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। मुख्य कार्यक्रम कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी इस कार्यक्रम में योगाभ्यास के दौरान राष्ट्र का नेतृत्व

0: करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि रेड रोड पर राष्ट्रीय कार्यक्रम सुबह 5 बजे शुरू होगा।
1: संस्कृति मंत्रालय द्वारा देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक स्थलों और योग परंपराओं को जोड़ते हुए देश भर के 100 विशेष स्थानों पर योग के विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस पहल के तहत 12 प्रमुख स्थलों पर बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें नई दिल्ली में लाल किला, उत्तराखंड में हरिद्वार, उड़ीसा में कोणार्क, कर्नाटक में हम्पी, तमिलनाडु में महाबलीपुरम, महाराष्ट्र में मुंबई, बिहार में नालंदा, गुजरात में अहमदाबाद, उत्तर प्रदेश में सारनाथ, लद्दाख में लेह, तेलंगाना में हैदराबाद और असम में सिलचर शामिल है। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के साथ मिलकर विदेशों में मौजूद 210 से ज्यादा भारतीय मिशन लगभग 2500 स्थानों पर योग कार्यक्रम आयोजित करेंगे। वहीं दिल्ली में शांति पथ, यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, कर्तव्य पथ, न्यू मोतीबाग, सेंट्रल पार्क और तालकटोरा गार्डन जैसे प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर योग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में विशेष योग दिवस समारोह आयोजित करेगा। इस आयोजन में लगभग 1500 वरिष्ठ नागरिकों के शामिल होने की संभावना है। वहीं उपराज्यपाल मनोज सिन्हा आज श्रीनगर में डल झील के किनारे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का नेतृत्व करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता में आज INS दोनागिरी, INS संशोधक और INS आग्रह का अनावरण करेंगे। इनमें 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज एक दिवसीय राजस्थान दौरे पर रहेंगे। इस दौरान श्री वैष्णव राज्य में यात्रियों की सुविधा बढ़ाने और रेल संपर्क को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण रेलवे अवसंरचना परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे। श्री वैष्णव बीकानेर से अपने दौरे की शुरुआत करेंगे, जहां वे बीकानेर रेलवे स्टेशन से लालगढ़ जाप साबरमती एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट UG 2026 की पुनः परीक्षा आज आयोजित की जाएगी। ये पुनः परीक्षा भारत के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में होगी। इस पुनः परीक्षा में 2,79,000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे। नीट UG 2026 पुनः परीक्षा आज संयुक्त अरब अमीरात में 3 निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होगी। पत्तनपोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि 3 भारतीय ध्वजवाहक टैंकर सफलतापूर्वक हॉर्मूज जल डमरू मध्य को पार कर चुके हैं और भारत आ रहे हैं। इन टैंकर में 94 भारतीय चालक दल के सदस्य भी सवार हैं। ये तेल टैंकर देश वैभव, देश विभोर और सन्मार हेराल्ड हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

वक्त हुआ है 1:10 और ठीक 57 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर गीत सुहाने, मैं हूं राखी आपके साथ।

आरती फिल्म का गाना आपने सुना? रफी और लता की आवाज में मजरूह ने इसे लिखा और संगीत दिया रोशन ने।

काला पानी फिल्म का गाना आपने सुना रफी की आवाज में। मजरूह सुल्तानपुरी ने इसे लिखा और संगीत दिया एसडी बर्मन ने। इस रात पुरानी यादों की तरह कुछ पुराने गीत साथ हैं। उनकी मधुर धुने हवा में खुलकर मन के बंद दरवाजों को धीरे धीरे खोल देती हैं। हर गीत अपने साथ कोई भूली बिसरी कहानी, कोई मीठा एहसास और किसी अपने की याद ले आता है। ऐसी रातों में लगता है जैसे समय ठहर गया हो और सुरों की छाओ में मन को एक अनकही शांति मिल गई हो। पुराने गीत केवल संगीत नहीं होते, वो बीते हुए खूबसूरत लम्हों के हमसफर बन जाते हैं।

देवदास फिल्म का गाना आपने सुना, लता मंगेशकर की आवाज में। साहिर ने इसे लिखा और संगीत दिया एसडी बर्मन ने। जिसे तू कबूल कर ले वो दुआ कहां से लाऊं। ये एक ऐसी भावना है जिससे प्रेम, समर्पण और बेबसी एक साथ छलकते हैं। मन चाहता है कि कोई ऐसी प्रार्थना मिल जाए जो सीधे उस प्रिय के दिल तक पहुंच जाए। कोई ऐसा शब्द मिल जाए जो हर दूरी और हर संकोच को मिटा दे। लेकिन कुछ रिश्ते और कुछ चाहते इतनी अनमोल होती हैं कि उनके लिए शब्द भी कम पड़ जाते हैं।

असली नकली फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। हजरत जयपुरी ने इसे लिखा और संगीत दिया शंकर जयकिशन ने। प्रेम जब बहुत गहरा हो जाता है तब उसकी खो जाने का भय मन में कहीं घर कर लेता है। दिल जानता है कि ये रिश्ता विश्वास और अपनेपन से बना है, फिर भी कभी कभी भविष्य की अनिश्चितताएं मन को बेचैन कर देती हैं। शायद यही प्रेम की खूबसूरती है।

सूरज फिल्म का गाना आपने सुना मोहम्मद रफी की आवाज में। इसे लिखा हसरत जयपुरी ने और संगीत दिया शंकर जयकिशन ने। बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, ये सिर्फ एक गीत की पंक्ति नहीं बल्कि उस खुशी का उत्सव है जो किसी प्रिय के आने से दिल में खिल उठती है। जैसे सूनी राहों पर अचानक बहार उतर आए, जैसे मौसम में रंग और खुशबू खुल जाए, प्रिय की एक झलक से मन का हर कोना जगमगा उठता है और लगता है मानो प्रकृति भी उसके स्वागत में फूल बिछाने की तैयारी कर रही हो।

बहारों के सपने फिल्म से आपने गाना सुना लता की आवाज में। मजरूह ने इसे लिखा और संगीत दिया आरडी बर्मन ने।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 26 जून तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की

0: वक्त हुआ है 1:37 और ठीक 32 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। इस वक्त आप सुन रहे हैं गीत सुहाने, मैं हूँ राखी आपके साथ। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।
1: आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहे, देखिए एक दिन प्यार हो

एक मुसाफिर एक हसीना फिल्म से आपने गाना सुना। आशा और रफी की आवाज में राजा मेहदी अली खान ने इसे लिखा और संगीत दिया ओपी नैयर ने। कुछ रिश्ते अचानक नहीं बनते, वो मुलाकातों, बातों और साझा मुस्कुराहटों के बीच चुपचाप आकार लेते हैं। हर मुलाकात दिल में एक नया एहसास छोड़ जाती है और कब अपनापन मोहब्बत में बदल जाता है इसका पता भी नहीं चलता। प्रेम अक्सर शोर से नहीं बल्कि ऐसे ही शांत और अनकहे पलों में जन्म लेता है। जब किसी का साथ आदत बन जाए और उसकी मौजूदगी दिल को सुकून देने लगे।

बहारें फिर भी आएंगी। इस फिल्म का गाना आपने सुना रफी की आवाज में, अनजान ने इसे लिखा और संगीत दिया ओपी नैयर ने। मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है, ये दिल की उस मासूम बेबसी का इजहार है, जब किसी की मुस्कान बातों या अदाओं का असर अचानक ही मन पर होने लगता है। दिल तो भावनाओं का घर है, वो कब किसकी ओर खिंच जाए, कब किसी की यादों में खो जाए, इसका हिसाब कहाँ रखता है।

ये रात फिर ना आएगी फिल्म से आपने गाना सुना रफी और आशा की आवाज में। एस एच बिहारी ने इसे लिखा और संगीत दिया ओपी नैयर ने। जुदाई के पल में भी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ती। जी हाँ, हमारी आस जुदाई के पल में भी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ती। जब कोई अपना विदा होता है तो दिल अगली मुलाकात की आस में एक छोटा सा वादा मांग लेता है। ये वादा सिर्फ मिलने का नहीं बल्कि यादों, अपनत्व और रिश्ते की गर्माहट को बनाए रखने का होता है।

मोहब्बत इसको कहते हैं। फिल्म से यह आपने गाना सुना, रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाज में। मजरूह ने इसे लिखा और संगीत दिया खयाम ने। वक्त हुआ है 1:56 और ठीक 56 सेकंड। अब से बस कुछ ही देर में सुनिए समाचार। समाचारों के बाद रात सुरमई मेरे यानी राखी के साथ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत हमेशा शांति और सहयोग का पक्षधर रहा है, क्योंकि जटिल वैश्विक मुद्दों और युद्ध जैसे संकटों का समाधान केवल संवाद और कूटनीति से ही संभव है। राष्ट्रपति ने मोहन चरण मांझी सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ओडिशा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में एक जनसभा में ये बात कही। राष्ट्रपति ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व नेताओं के साथ अपने दूरदर्शी शासन और संपर्क के जरिए वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है। इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं से सशक्त होकर जनजातीय समुदाय भारत के विकास में सक्रिय योगदान दे रहे हैं। उन्होंने पूर्वी भारत के विकास में तेजी लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के पूर्वोदय दृष्टिकोण का भी उल्लेख किया। बाद में प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त के रूप में 18,880 करोड़ रुपए जारी किए गए। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे देश भर के 9,44,00,000 से अधिक किसानों को लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता में आज INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय का अनावरण करेंगे। इनमें 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज विश्व भर में मनाया जाएगा। इस वर्ष का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। मुख्य कार्यक्रम कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में योगाभ्यास के दौरान राष्ट्र का नेतृत्व करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि रेड रोड पर राष्ट्रीय कार्यक्रम सुबह 5 बजे शुरू होगा।
1: संस्कृति मंत्रालय द्वारा देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक स्थलों और योग परंपराओं को जोड़ते हुए देश भर के 100 विशेष स्थानों पर योग के विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस

0: पहल के तहत 12 प्रमुख स्थलों पर बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें नई दिल्ली में लाल किला, उत्तराखंड में हरिद्वार, उड़ीसा में कोणार्क, कर्नाटक में हम्पी, तमिलनाडु में महाबलीपुरम, महाराष्ट्र में मुंबई, बिहार में नालंदा, गुजरात में अहमदाबाद, उत्तर प्रदेश में सारनाथ, लद्दाख में लेह, तेलंगाना में हैदराबाद और असम में सिलचर शामिल है। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के साथ मिलकर विदेशों में मौजूद 210 से ज्यादा भारतीय मिशन लगभग 2500 स्थानों पर योग कार्यक्रम आयोजित करेंगे। वहीं दिल्ली में शांति पथ, यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, कर्तव्य पथ, न्यू मोतीबाग, सेंट्रल पार्क और तालकटोरा गार्डन जैसे प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर योग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में विशेष योग दिवस समारोह आयोजित करेगा। इस आयोजन में लगभग 1500 वरिष्ठ नागरिकों के शामिल होने की संभावना है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा आज श्रीनगर में डल झील के किनारे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का नेतृत्व करेंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज एक दिवसीय राजस्थान दौरे पर रहेंगे। इस दौरान श्री वैष्णव राज्य में यात्रियों की सुविधा बढ़ाने और रेल नेटवर्क को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण रेलवे अवसंरचना परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 की पुनः परीक्षा आज आयोजित की जाएगी। ये पुनः परीक्षा भारत के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में होगी। इस पुनः परीक्षा में 22,79,000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे। नीट यूजी 2026 पुनः परीक्षा आज संयुक्त अरब अमीरात में 3 निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। फीफा विश्व कप में ग्रुप एफ में नीदरलैंड और स्वीडन के बीच मैच अमेरिका के ह्यूस्टन में एनआरजी स्टेडियम में चल रहा है। नीदरलैंड स्वीडन के खिलाफ 4-1 से आगे है। इससे पहले ब्राजील ने फिलाडेल्फिया स्टेडियम में हैती पर 3-0 की आसान जीत के साथ फीफा विश्व कप में अपनी पहली जीत दर्ज की। 5 बार के विश्व चैंपियन ब्राजील के लिए मैथियस कुन्हा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पहले हाफ में 2 गोल किए, जबकि विनीसियस जूनियर ने 3रा गोल दागा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय महवश फातिमा। Prime Minister Narendra Modi said tribal communities are emerging as active participants in India's development journey, empowered by a range of welfare and outreach initiatives of the centre. Addressing the public gathering at Rai Rangpur in Odisha's Mayurbhanj district, the Prime Minister lauded Odisha's progress as the state completed 2 years under Chief Minister Mohan Charan Majhi. On the occasion, the Prime Minister inaugurated and laid the foundation stones for development projects worth around 47,000 crore rupees across multiple sectors. Later, Prime Minister Narendra Modi took part in Paschim Banga Divas celebrations at Tarkeshwar in Hooghly district of West Bengal. He also released the 23rd installment of PM Kisan scheme worth 18,880 crore rupees, benefiting over 9.44 crore farmers across the country. The 12th International Day of Yoga will be celebrated today with the theme Yoga for Healthy Aging. The main event of International Day of Yoga 2026 will be held at the historic Red Road in Kolkata in West Bengal, where Prime Minister Narendra Modi will lead the nation in the practice of the Common Yoga Protocol. Meanwhile, in view of the celebrations of International Day of Yoga in the national capital, Delhi Metro services will today commence at 4 a.m. from its originating stations. The Delhi Metro Rail Corporation said that the train services will be available at an interval of 30 minutes till 6 a.m. The National Eligibility Cum Entrance Test, NEET UG 2026, re-examination is set to take place today. The re-examination will be held across 551 cities in India and 14 cities abroad for over 22.79 lakh candidates. Ahead of the examination, the National Testing Agency, NTA, has conducted nationwide mock drills as part of preparations for the re-examination. The NTA said it is fully prepared for the smooth, fair and transparent conduct of the examination. We have a report.
3: Over 2 lakh personnel, including observers, coordinators, police forces and administrators have been deployed for the secure, transparent and smooth conduct of the examination. A multi-layered

वक्त हुआ है 2:10 और ठीक 57 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर रात सुरमई, मैं हूं राखी आपके साथ।

आसमान पर चांद अपनी चांदनी बिखेर रहा है, तारे खामोशी से टिमटिमा रहे हैं और हवाओं में एक मधुर सी नमी खोली हुई है। ऐसी रात में दिल अचानक ही पुराने गीतों की दुनिया में खो जाता है। हर धुन कोई याद जगाती है, हर शब्द किसी अनकहे एहसास को छू जाता है। लगता है जैसे रात अपने आंचल में मोहब्बत, इंतजार और मीठी यादों की अनगिनत कहानियां समेटे बैठी हो। ये रात सुरमई है और दिल गुनगुना रहा है।

यादों की बारात फिल्म से आपने गाना सुना आशा और रफी की आवाज में। मजरूह ने इसे लिखा और संगीत दिया आरडी बर्मन ने। चुरा लिया है तुमने जो दिल को, अब उसे वापस मांगने का मन ही नहीं करता। कुछ चोरियां ऐसी होती हैं जो शिकायत नहीं मुस्कान दे जाती हैं। दिल जब किसी का हो जाए तो उसकी हर धड़कन में उसी का नाम गूंजने लगता है।

शक्ति फिल्म का गाना आपने सुना लता और किशोर की आवाज में। आनंद बख्शी ने इसे लिखा और संगीत दिया आरडी बर्मन ने। कभी कभी मोहब्बत दस्तक देकर नहीं आती, वो चुपचाप दिल में उतर जाती है। ना कोई तय लम्हा याद रहता है, ना कोई खास वजह, बस किसी की बातें अच्छी लगने लगती हैं, उसकी मौजूदगी सुकून देने लगती है और देखते ही देखते दिल उससे ऐसा जुड़ जाता है कि पता ही नहीं चलता कब एक साधारण सी मुलाकात प्यार के इकरार में बदल गई।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

वक्त हुआ है 2:32 और ठीक 32 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर रात सुरमई। मैं हूँ राखी, आपके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

कुर्बानी फिल्म का गाना आपने सुना, कंचन, मनहर और आनंद की आवाज में। इंदीवर ने इसे लिखा और संगीत दिया कल्याण जी आनंद जी ने। हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे कि तुम्हारी मुस्कान से दिन रोशन हो जाए और तुम्हारी याद से शाम महक उठे। ये चाहत किसी शोर की मोहताज नहीं, बल्कि दिल की धड़कनों में बसी एक खामोश दुआ की तरह है।

जाबाज फिल्म का गाना आपने सुना मनहर की आवाज में। इंदेवर ने इसे लिखा और संगीत दिया कल्याण जी आनंद जी ने।

वक्त हुआ है 2:46 और ठीक 5 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। इस वक्त आप हैं राखी के साथ और प्रोग्राम है रात सुरमई।

एक दूजे के लिए फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर और अनूप जलोटा की आवाज में। आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत हमेशा शांति और सहयोग का पक्षधर रहा है, क्योंकि जटिल वैश्विक मुद्दों और युद्ध जैसे संकटों का समाधान केवल संवाद और कूटनीति से ही संभव है। राष्ट्रपति ने मोहन चरण मांझी सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ओडिशा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में एक जनसभा के दौरान ये बात कही। राष्ट्रपति ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व नेताओं के साथ अपने दूरदर्शी शासन और संपर्क के जरिए वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है। इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं से सशक्त होकर जनजातीय समुदाय भारत के विकास में सक्रिय योगदान दे रहे हैं। उन्होंने पूर्वी भारत के विकास में तेजी लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के पूर्वोदय दृष्टिकोण का भी उल्लेख किया। बाद में प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। प्रधानमंत्री मोदी कोलकाता में आज INS दोनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय का अनावरण करेंगे। इनमें 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज विश्वभर में मनाया जाएगा। इस वर्ष का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। मुख्य कार्यक्रम कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में योगाभ्यास के दौरान राष्ट्र का नेतृत्व करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि रेड रोड पर राष्ट्रीय कार्यक्रम सुबह 5 बजे शुरू होगा।
1: संस्कृति मंत्रालय द्वारा देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक स्थलों और योग परंपराओं को जोड़ते हुए देश भर के 100 विशेष स्थानों पर योग के विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस पहल के तहत 12 प्रमुख स्थलों पर बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें नई दिल्ली में लाल किला, उत्तराखंड में हरिद्वार, उड़ीसा में कोणार्क, कर्नाटक में हम्पी, तमिलनाडु में महाबलीपुरम, महाराष्ट्र में मुंबई, बिहार में नालंदा, गुजरात में अहमदाबाद, उत्तर प्रदेश में सारनाथ, लद्दाख में लेह, तेलंगाना में हैदराबाद और असम में सिलचर शामिल है। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के साथ मिलकर विदेशों में मौजूद 210 से ज्यादा भारतीय मिशन लगभग 2500 स्थानों पर योग कार्यक्रम आयोजित करेंगे। वहीं दिल्ली में शांति पथ, यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, कर्तव्य पथ, न्यू मोतीबाग, सेंट्रल पार्क और तालकटोरा गार्डन जैसे प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर योग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में विशेष योग दिवस समारोह आयोजित करेगा। इस आयोजन में लगभग 1500 वरिष्ठ नागरिकों के शामिल होने की संभावना है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज राजस्थान के एक दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान श्री वैष्णव राज्य में

यात्रियों की सुविधा बढ़ाने और रेल संपर्क को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण रेलवे अवसंरचना परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 की पुनः परीक्षा आज आयोजित की जा रही है। ये पुनः परीक्षा भारत के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में होगी। इस पुनः परीक्षा में 22,79,000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे। नीट यूजी 2026 पुनः परीक्षा आज संयुक्त अरब अमीरात में 3 निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। पद्मश्री पी नारायण कुरूप के निधन से मलयालम साहित्य ने अपनी एक विशिष्ट आवाज खो दी है। वे कवि, आलोचक, व्यंग्यकार और विद्वान थे जिन्होंने शास्त्रीय परंपराओं को समकालीन विचारों के साथ मिलाया। उनका निधन कल रात केरलम की राजधानी त्रिवेंद्रम में हुआ। फीफा विश्व कप के ग्रुप ई में जर्मनी और आइवरी कोस्ट के बीच मैच कनाडा के टोरंटो स्थित बीएमओ फील्ड में चल रहा है। अब से कुछ देर पहले ग्रुप एफ के मैच में नीदरलैंड्स ने स्वीडन को 5-1 से करारी शिकस्त दी। ये मैच अमेरिका के ह्यूस्टन में एनआरजी स्टेडियम में खेला गया। इससे पहले ब्राजील ने फिलाडेल्फिया स्टेडियम में हैती को 3-0 से हराकर फीफा विश्व कप में अपनी पहली जीत दर्ज की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

3:10 हो चुके हैं हमारे स्टूडियो की घड़ी में आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पे। जब मन थक कर बैठ जाए कहीं, वो हौसलों की बात सुनाए सिर्फ और सिर्फ यही। सच यही है कि हर किसी को एक सच्चे हमराही की तलाश है, तो हाजिर है बंदा।

कभी सोचा है कि हम सब कहानियां सुनने के इतने शौकीन क्यों होते हैं? वैसे ये बात तो सच है कि हम सब एक चलती फिरती कहानी है, या यूं कहें कि एक उपन्यास का एक छोटा सा टुकड़ा बस बात करने की देरी है। तो कहानियां हम कई बार लिखते हैं, कहानियां हम कई बार कहते हैं, और कहानी कहते लिखते कई बार हम खुद कहानी हो जाते हैं। पर ये सच है कि हम सब कुछ न कुछ किसी न किसी से कहना चाहते हैं, और चलती फिरती कहानी कभी दूसरों के लिए कुछ लेकर के आती है, और कभी हम अपनी कहानी से खुद ही बहुत सारी और कहानी जोड़ के यूं ही आगे बढ़ते रहते हैं। ये है हमराही, आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पे, और हमराही है हम आपके साथ।

चलो ये तो हुई कहानी की बात, लेकिन रात का समय है, चांद अपनी चांदनी बिखेर रहा है और इसके लिए आपको देखना पड़ेगा बाहर। लेकिन इस खूबसूरत रात में एक कमी महसूस होती है कभी कभी, और वो है तुम्हारी कमी।

हर तारा जैसे उसका नाम लिखता हो, हर खामोशी जैसे उसकी आवाज आती हो। कभी साथ बैठकर जो सपने हमने देखे थे, आज वही यादें रात भर जगाती हैं। और कुछ ऐसे सीन या कोई ऐसी चीज है जो हमेशा हमें याद आती है। हमराही, तुम्हारी याद आज भी उतनी ही खास है जितनी तब थी।

बहुत सारी ऐसी अनसुनी बातें, बहुत सारी खामोशियां जो हमें लगता है कि बहुत कुछ कह रही हैं, और उन्हीं में से एक है कुछ यादें, बड़ी अजीब सी, जो दिखाई नहीं देती, जिसे हम छू भी नहीं सकते, लेकिन फिर भी बड़ा गहरा असर रखती हैं सब कुछ। कुछ यादें चेहरे पर मुस्कान लाती हैं तो कुछ आंखें नम कर जाती हैं। कभी किसी की हंसी याद आती है तो कभी किसी की बातें। शायद वो पल कभी दोबारा लौट के तो नहीं आएगा। समय आगे बढ़ता जाता है, हालात बदलते हैं, लोग बदलते हैं, लेकिन कुछ तो है जो वहीं का वहीं ठहरा रहता है। शायद वो यात्रा, शायद वो पल जब लगता था कि हाँ, हम सब कुछ कर सकते हैं, चांद के उस पार भी बड़े आराम से जा सकते हैं।

अगर तैयार हैं तो फिर आ जाइए, शामिल हो जाइए हमारे साथ हमराही में आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पे। अगर हम बात करें रिश्तों की, तो रिश्तों की उम्र कैलेंडर से तो नापी नहीं जाती, वो तो उन बातों से बनती है जो कभी कहीं नहीं गई। अनकही बातों की एक लड़ी बनती है, और जब मोहब्बत थक जाती है तब हमें कई बार ऐसा लगता है कि शायद वो एक नई कहानी बन जाती है। दो लोग एक घर में तो रहते हैं लेकिन अलग अलग कमरों में। खामोशी तब बोलने लगती है, एक ठहराव, एक अधूरापन, एक सवाल जिसे हम हमेशा खोजा करते हैं रिश्तों की धूल भरी अलमारी में। आखिर हो क्या जाता है? ये सब चीज़ें कभी कभी जादू लगती है, या फिर ऐसा लगता है कि उसके ऊपर कुछ वर्कआउट हमको करना चाहिए था, है ना?

और जो ये शुरुआत हुई उसके बाद की कहानी कई बार हम यूं ही कह सकते हैं कि पहले मैं थी, फिर हम हुए, और उसके बाद हम किसी तीसरे को ढूंढने लगते हैं। और ये लगता है कि कोई तीसरा आएगा तो शायद हमारी कहानी थोड़ी सी और आगे बढ़ेगी। वो रात भी बाकी रातों जैसी ही होगी जैसी कि हमने सोचा था, लेकिन हमारी सोच और सच्चाई दोनों काफ़ी अलग हो जाते हैं, बहुत अलग। कुछ घर बहुत बड़े होते हैं लेकिन उसमें रहने वालों के हिस्से में आसमान थोड़ा सा छोटा पड़ जाता है। कई सारे घर में दीवारें, सारो सामान, सारी सुविधाएं होती हैं, लेकिन अगर रिश्तों की आहट की बात करें तो वो कभी कभी ढूंढना पड़ता है। कहाँ है, कैसे है, क्यों है, कब है, कई सारे सवाल हमारे पास।

चलो हमने साजे दिल छेड़ भी दिया, चलो ये माना कि इस रात की तन्हाई में तुम्हें याद भी कर लिया, चलो ये भी माना कि जो मैंने ना ना ना कहा था वो सब शायद थोड़ा और जोर से तुम पूछते तो वो हाँ भी हो सकता था, लेकिन जो समय है उसकी बात ही निराली होती है, क्योंकि जब वो याद आता है तो फिर उसके पीछे बहुत सारी और कहानियाँ याद आ जाती हैं, और शायद हमराही होने का जो एक हमें एहसास होता है वो भी शायद लगने लगता है, है ना। आकाशवाणी दिल्ली की FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पे हमराही है ये।

कई बार तो यूं भी लगता है कि जिंदगी की इतनी भाग दौड़ में अगर कुछ याद आ गया, कुछ याद रह गया, कुछ याद बार बार आता जा रहा है, तो शायद ये भी एक बहुत अच्छी बात है ना, क्योंकि एक कोना तो है जो सिर्फ हमारे लिए है, और वो याद जैसे कि कभी चाय के कप से उठती हुई भाप हो, जैसे कि कभी किसी पुराने गीत की धुन हो, या फिर किसी रात की खामोशी हो, वो सब कुछ याद आता है। लोग कहते हैं कि समय सब कुछ भुला देता है, लेकिन कुछ रिश्ते भूलने के लिए नहीं होते, उन्हें बस दिल के एक कोने में संभाल कर रखा जाता है। आज भी जब हम चांद को देखते हैं तो यकीन बताइएगा कि बहुत सारी कहानियां याद नहीं आती कि हाँ, ये चांद जहां आज हमें दिख रहा है, किसी के आसमान में कहीं और भी तो नजर आ रहा होगा, और लगता होगा कि शायद किसी को हमारी याद भी आ जाए, क्योंकि जो दिल के तार हैं वो अगर कोई छेड़ गया है तो फिर उसको हम कैसे गुनगुनाएंगे।

0: रात भर तुमको दिल के तार छेड़ कर।
1: लेकिन क्या ऐसे सच में हो सकता है कि किसी ने दिल के तार छेड़े हो और हमें पता ही न चले?

0: अब तो बात बात पर दिल भी रूठने लगा। दिल का क्या कीजिए हुजूर, वो अपना होकर भी कई बार अपना नहीं रहता है।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पे ये है हमराही। मैं हूँ आपके साथ, वही जिसको आप हमराही कहते हैं, क्योंकि जिंदगी का सफर कहते तो यही है कि अकेले तो तय नहीं किया जा सकता, हमराही की जरूरत पड़ती है। और हमारे स्टूडियो की घड़ी में वक्त हुआ है 3:48 और ठीक 50 सेकेंड।

0: कुछ ना रहा।
1: और वो टूटन, और वो ऐसी आवाज उस टूटन की शायद हमेशा हमारे साथ रहती है। आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पे हमराही आपके साथ है। हमराही वो नहीं जो सिर्फ साथ चले, बल्कि वो है जो खामोशी को समझे, थकान में हौसला बने और मुश्किल रास्तों में उम्मीद दे। लेकिन हर किसी का हमराही हमेशा ऐसा ही एहसास दिलाए, ये भी तो नहीं हो सकता। कुछ लोग कुछ दूर तक साथ चलकर पूरी जिंदगी की याद बन जाते हैं, और कुछ लोग जिंदगी भर हमारे साथ रहते हैं लेकिन फिर भी याद में शायद वो उतने शामिल नहीं रह पाते जितने की होनी चाहिए। इसलिए हमराही बहुत जरूरी है। हमें प्यार, अपनापन, भरोसा और बिछड़ने के बाद भी यादों की अहमियत सिखा जाता है। पर हम बार बार यही कहते हैं अपने आप से कि पीछे मुड़ मुड़ के ना देखो तो ज्यादा बेहतर है। लेकिन कोई एक ऐसा पल जरूर होता है जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। बारहवां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज विश्व भर में मनाया जाएगा। इस वर्ष का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। मुख्य कार्यक्रम कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में योगाभ्यास के दौरान राष्ट्र का नेतृत्व करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि रेड रोड पर राष्ट्रीय कार्यक्रम सुबह 5 बजे शुरू होगा।
1: संस्कृति मंत्रालय द्वारा देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक स्थलों और योग परंपराओं को जोड़ते हुए देश भर के 100 विशेष स्थानों पर योग के विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस पहल के तहत 12 प्रमुख स्थलों पर बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें नई दिल्ली में लाल किला, उत्तराखंड में हरिद्वार, उड़ीसा में कोणार्क, कर्नाटक में हम्पी, तमिलनाडु में महाबलीपुरम, महाराष्ट्र में मुंबई, बिहार में नालंदा, गुजरात में अहमदाबाद, उत्तर प्रदेश में सारनाथ, लद्दाख में लेह, तेलंगाना में हैदराबाद और असम में सिलचर शामिल है। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के साथ मिलकर विदेशों में मौजूद 210 से ज्यादा भारतीय मिशन लगभग 2500 स्थानों पर योग कार्यक्रम आयोजित करेंगे। वहीं दिल्ली में शांति पथ, यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, कर्तव्य पथ, न्यू मोतीबाग, सेंट्रल पार्क और तालकटोरा गार्डन जैसे प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर योग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में विशेष योग दिवस समारोह आयोजित करेगा। प्रधानमंत्री मोदी कोलकाता में आज INS दोनागिरी, INS संशोधक और INS आग्रह का अनावरण करेंगे। इन पोत में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत हमेशा शांति और सहयोग का पक्षधर रहा है, क्योंकि जटिल वैश्विक मुद्दों और युद्ध जैसे संकटों का समाधान केवल संवाद और कूटनीति से ही संभव है। राष्ट्रपति ने ओडिशा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में एक जनसभा के दौरान ये बात कही। राष्ट्रपति ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व नेताओं के साथ अपने दूरदर्शी शासन और संपर्क के जरिए वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है। इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं से सशक्त होकर जनजातीय समुदाय भारत के विकास में सक्रिय योगदान दे रहे हैं। बाद में प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट UG 2026 की पुनः परीक्षा आज आयोजित की जाएगी। ये पुनः परीक्षा भारत के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में होगी। इन पुनः परीक्षा में 22,79,000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे। नीट UG 2026 पुनः परीक्षा आज संयुक्त अरब अमीरात में 3 निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज राजस्थान के एक दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान श्री वैष्णव राज्य में यात्रियों की सुविधा बढ़ाने और रेल संपर्क को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण रेलवे अवसंरचना परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि 3 भारतीय ध्वज वाहक टैंकर सफलतापूर्वक हॉर्मूज जल डमरू मध्य

को पार कर चुके हैं और भारत आ रहे हैं। इनमें 86 लाख मीट्रिक टन से अधिक कच्चा तेल है। इन टैंकर में 94 भारतीय चालक दल के सदस्य भी सवार हैं। ये तेल टैंकर देश वैभव, देश विभोर और सनमार हेराल्ड हैं। फीफा विश्व कप के ग्रुप ई में जर्मनी और आइवरी कोस्ट के बीच मैच कनाडा के टोरंटो स्थित बीएमओ फील्ड में चल रहा है। अब से कुछ देर पहले ग्रुप एफ के मैच में नीदरलैंड्स ने स्वीडन को 5-1 से करारी शिकस्त दी। ये मैच अमेरिका के ह्यूस्टन में एनआरजी स्टेडियम में खेला गया। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र और सिक्किम में अत्यधिक तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अगले 2 दिनों तक असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

लो भाई, साथ चलते चलते सुबह हो गई, 4:10 और ठीक 58 सेकंड हो गए और ये पल बड़ा स्पेशल हो जाता है, बहुत ही खास, क्योंकि अचानक से ऐसे लगता है कि नींद खुल गई, सुबह हो गई और शायद हम सच के आईने के सामने खड़े हैं। स्वागत है आपका आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पे।

हर बात में जिक्र हो जिसका, उसे ही मौसम कहते हैं। और जब मौसम को इशारों से बुलाने की बात हो, ये भला कैसे मुमकिन है। पर ये जरूर है कि हम इशारों इशारों में मौसम की बात करते करते बहुत कुछ सुन लेते हैं और बहुत कुछ कह जाते हैं। ये है अरुणिमा। सुबह के 4:16 और ठीक 30 सेकंड हो चुके हैं हमारे स्टूडियो की घड़ी में आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पे।

लो फिर आपने बुलाया, हम आ गए आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पे। लेकर के आए हैं हम आपके लिए अरुणिमा। और जहां तक बात है इस सौदे की, तो सौदा कुछ बातों का तो होता ही नहीं, क्योंकि कुछ चीजें हमें अपने प्रयास से मिलती हैं और कुछ चीजें हमें बस ऊपर वाला दे देता है। कुछ लोग हमारी जिंदगी में आते हैं और बिना कोई वादा किए चले भी जाते हैं। न कोई शर्त है, न कोई हिसाब किताब है, है तो सिर्फ और सिर्फ एक एहसास है जो हर दूरी हर खामोशी के बाद भी वैसा ही रहता है, जो हर वक्त पास रहे ये जरूरी नहीं उसकी याद भी हमारे साथ रहे। लेकिन सौदे की जब बात आती है तो कुछ बातों का सौदा हो ही नहीं सकता। कुछ रिश्ते तो बस दिल से निभाए जाते हैं, चाहे लोग साथ रहें या फिर ना रहें, उनकी अहमियत कभी भी कम नहीं होती है। है ना आपके साथ भी ऐसा कुछ? कभी कभी तो ये ख्याल आता ही होगा दिमाग में।

हाँ वो एक तारा जो सबसे चमकीला है, हाँ वो एक तारा जो हमें सबसे ज्यादा अपने पास लगता है। ऐसा लगता है कि शायद हम उस तारे को हाथ बढ़ा करके तोड़ तो नहीं लेंगे, या फिर कम से कम छू तो लेंगे ही। हाँ हाँ वही एक तारा जो हमेशा हमारी नजर में बना रहता है। क्या कहेंगे आप उसे? कुछ चीजें, कुछ बातें हमें सिर्फ अच्छी लगती हैं, समझ में आए या फिर ना आए, लेकिन उन्हें समझ के या फिर उन्हें महसूस करके अच्छी फीलिंग आती है और लगता है कि इतना काफी है। आकाशवाणी दिल्ली की FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पे अरुणिमा।

और उस सुनहरी शाम की याद अभी तक है, है ना। और जब हमारा वो जो जिसको कहते हैं ना, हमने अपने एक आशिया बनाया है, आशिया बनाते हैं, उसमें हम बसते हैं और उसके बाद फिर बुलाते हैं और सबको बुलाते हैं। कई बार लगता है कि इतने सारे मेहमानों में कहीं जिंदगी रह तो नहीं गई, और उसके बाद फिर हम जिंदगी को बुलाना शुरू करते हैं कि जिंदगी तुम मेरे घर आओ, खुशी तुम मेरे घर आओ और समय तुम भी मेरे घर आओ। और कुछ चीजें जिसका इंतजार हमेशा हम करते रहते हैं, और जो आवाजें हैं वो ठीक इस गाने की तरह होती हैं।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 26 जून तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की

लो भाई, मौसम की सरगम शुरू हो गई। इसे कहते हैं कि रात खत्म हो गई, चांद धीरे धीरे ओझल हो गया, तारों ने अपनी महफिल समेट ली। खिड़की से आती सुबह की पहली किरण ने एक नया संदेश दिया है कि भाई उठो, सुबह हो गई। आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पे अरुणिमा। और जहां तक रही बात की, तो भाई बात तो जब निकलेगी तो फिर सुबह तो क्या काफी दूर तलक जाएगी।

न जाने कितने लोगों ने अपने अलार्म को फिर से बंद कर दिया होगा, न जाने कितने लोगों की नींद खुल गई होगी ये देखने के लिए कि भाई अभी तक अलार्म बजा क्यों नहीं। रात खत्म हो गई, सुबह हो गई, लेकिन अब भी हम आखिर क्यों ऐसे थोड़े से अनमने से हैं, थोड़े से अटपटे से हैं और थोड़े जागे थोड़े सोए से हैं। और ये सारी की सारी चीज़ें हमें यही एहसास दिलाती हैं कि हाँ हम हैं, हम हैं कि चलो उठो, हम हैं कि चलो फिर से शुरू हो जाओ एक नई उम्मीद के साथ, एक नए वादे के साथ और एक नए दिन के साथ। हम हैं तभी तो इस बात का विश्वास है कि सब ठीक हो जाएगा। हम हैं इस वक्त आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पे 100.1 मेगाहर्ट्ज पे। ये है अरुणिमा। हमारे स्टूडियो की घड़ी में वक्त हुआ है 4:47 और ठीक

न जाने क्या ऐसा है अंधेरे में और न जाने क्या ऐसा है उस अंधेरे को चीर कर आती हुई रोशनी में कि अपने आप हर चीज एक नई उम्मीद के साथ बहने लगती है, हर बात कुछ अलग सी लगने लगती है और कैसी भी रात जाए जो दिन आता है वो नया सा लगने लगता है। इसे कहते हैं नेचर का जादू और ये जादू हम सब के साथ चलता है और हर दिन का हम इसी तरह से स्वागत करते हुए आगे बढ़ते हैं।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। बारहवां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज विश्व भर में मनाया जा रहा है। इस वर्ष का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। आज मुख्य कार्यक्रम कोलकाता में आयोजित किया जाएगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शहर के रेड रोड पर आयोजित सामूहिक योग सत्र में शामिल होंगे। कार्यक्रम ठीक इसी समय शुरू हो रहा है। प्रधानमंत्री सुबह 6:30 बजे से 7:50 बजे तक कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर भारत के 3 जहाजों

0: INS Dunagiri, INS Sanshodhak और INS Agre को नौसेना में शामिल करेंगे। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा आज आयोजित की जा रही है। परीक्षा भारत के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में होगी। इसमें 22,79,000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने कल राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल का आयोजन किया। एजेंसी ने कहा कि वो परीक्षा के सुचारू, निष्पक्ष और पारदर्शी संचालन के लिए प्रतिबद्ध है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत हमेशा शांति और सहयोग का पक्षधर रहा है, क्योंकि जटिल वैश्विक मुद्दों और युद्ध जैसे संकटों का समाधान केवल संवाद और कूटनीति से ही संभव है। राष्ट्रपति ने ओडिशा में मोहन चरण मांझी सरकार के 2 वर्ष पूरे होने पर ओडिशा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में एक जनसभा में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व नेताओं के साथ अपने दूरदर्शी शासन और संपर्क के जरिए वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं से सशक्त होकर जनजातीय समुदाय भारत के विकास में सक्रिय योगदान दे रहे हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज राजस्थान के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। वे राज्य में कई महत्वपूर्ण रेलवे अवसंरचना परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे। श्री वैष्णव बीकानेर रेलवे स्टेशन से लालगढ़ साबरमती एक्सप्रेस को झंडी दिखाएंगे। इसके बाद वे जयपुर में खातीपुरा रेलवे स्टेशन से जयपुर दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस को रवाना करेंगे। श्री वैष्णव उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा विकसित कई अवसंरचना परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि भारतीय ध्वज वाले 3 टैंकर सफलतापूर्वक हॉर्मुज जल डमरू मध्य को पार कर भारत आ रहे हैं। इनमें 86,00,000 मीट्रिक टन से अधिक कच्चा तेल है। टैंकर देश वैभव, देश विभोर और सनमार हेराल्ड पर 94 भारतीय चालक दल के सदस्य सवार हैं। श्री सोनोवाल ने सोशल मीडिया पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार भारत के समुद्री हितों की रक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। भारत ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी की अनुचित टिप्पणियों को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने का उन्हें कोई अधिकार नहीं है। श्री जायसवाल ने कहा कि मानवाधिकारों के मामले में पाकिस्तान के दयनीय रिकॉर्ड को देखते हुए ये टिप्पणियां विशेष रूप से बेतुकी हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि वर्तमान विश्व व्यवस्था की अनिश्चितताओं के बीच मजबूत तैयारी बनाए रखना आवश्यक है। श्री सिंह ने मेघालय के शिलांग स्थित पूर्वी वायु कमान मुख्यालय में सैनिकों से बातचीत करते हुए तकनीकी दक्षता, रणनीतिक दूरदर्शिता और संस्थागत नवाचार की आवश्यकता पर बल दिया। प्रसिद्ध मलयालम कवि और साहित्यकार पद्मश्री पी नारायण कुरूप का कल रात केरलम में निधन हो गया। वे 91 वर्ष के थे। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, बिहार, ओडिशा, तटीय कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, रायलसीमा, कराईकल, केरलम और माहे में मंगलवार तक तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय हरप्रीत कौर। The 12th International Day of Yoga, IDY 2026, is being celebrated today with the theme Yoga for Healthy Aging. The main event is being held at the historic Red Road in Kolkata in West Bengal, where Prime Minister Narendra Modi is leading the nation in the practice of the common yoga protocol. We have a report.
2: The Ministry of Culture is organizing special yoga celebrations across 100 iconic locations in the country, connecting India's rich cultural heritage, historical landmarks and yoga traditions. As part of this initiative, major celebrations will be held at 12 prominent locations including Red Fort in New Delhi, Haridwar

दिन है सुहाना मस्ताना, ये तो मैंने गानों के द्वारा आपको बता दिया, लेकिन इस दिन की खासियत बहुत सारी है। ये माना कि आज है संडे और आपको उठना था थोड़ा लेट, लेकिन कभी कभी संडे थोड़े अलग रूप में आता है। वैसे मैं आपको बताऊं कि 21 जून केवल साल का लंबा, सबसे लंबा दिन नहीं होता, बल्कि इस दिन के और भी कई सारे इम्पोर्टेंस हैं जो मैं आपको बताऊंगी। फिलहाल तो हम आपको यही कहेंगे कि इस शो में हम भोर सुहानी में आपको यही संदेश देना चाहते हैं कि भाई ये दिन आज आपका बहुत ही खास बीतने वाला है, ये हमें पक्की तरह से पता है। बस थोड़ी सी आपको, जिसको कहना चाहिए ना कि मेहनत नहीं, थोड़ी सी कोशिश करनी पड़ेगी और कुछ नहीं।

गीत प्यार का आप गा सकते हैं। जी हाँ, गीत प्यार का आप गा सकते हैं। और आज की अगर हम बात करें तो आज ये सबसे लंबा दिन माना जाता है, बल्कि सूर्य की जो विशेष ऊर्जा और प्रकृति के बदलाव का प्रतीक भी माना जाता है। ज्योतिषीय दृष्टि से ये दिन हम कहेंगे कि आत्मविश्वास से भरपूर है, पॉजिटिविटी इसके अंदर भरी हुई है और स्पिरिचुअली भी ये बहुत उन्नति के साथ जुड़ा हुआ है। सूर्य की ऊर्जा के साथ जुड़कर हम सब अपने जीवन में एक नई प्रेरणा और संतुलन हो सकता है महसूस करें अगर हम योग करें। जी हाँ, आप सबको बहुत बहुत बधाई इंटरनेशनल योगा डे।

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, जिसका जोश, जिसका जुनून बहुत सारे लोगों के पास है इस वक्त, मैं इस बात को महसूस कर सकती हूँ। और कई सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने अपने जितने भी जानने वाले हैं सबको भोर सुहानी में ये ज़रूर कहा होगा कि भाई आज तो हमें जल्दी उठना है। और इस जो बहुत बड़ा एक ये कहा जाए कि ये योग दिवस है, इसमें पार्टिसिपेट करना है, और बहुत सारे लोगों ने इसकी शुरुआत कर भी दी है। तो हम सबको यही कहना चाहते हैं कि इस नए जोश, इस नए रंग के साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। और जो लोग मुझे सुन रहे हैं वो लोग भी आए, पार्टिसिपेट करें और देखें कि कैसा लगता है।

और इस सुहाने मौसम की जब बात हुई है तो हम आपको बता दें कि आज का मौसम कुछ बहुत सारे ऐसे हिस्से हैं जहां पे तेज गर्मी हो सकती है, उमस हो सकती है और कुछ ऐसी जगह जहां पे गरज के साथ हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। देश के अलग अलग राज्यों में मौसम का हाल अलग अलग है, ये आप जानते हैं। अगर हम दिल्ली और दिल्ली NCR की बात करें तो तेज धूप और उमस रहेगी दिन में, लेकिन अभी मौसम बहुत सुहाना है, इस बात से बिल्कुल भी इनकार नहीं किया जा सकता। हाँ, शाम को थोड़ी सी हल्की बूंदाबांदी हो सकती है, ऐसी उम्मीद की जा रही है।